0: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी वादियाँ और बीच में चमकता पतरातू डैम। यहाँ का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। यही वजह है कि लोग इसे झारखंड का मनाली कहते हैं। मानसून में झारखंड के रामगढ़ के पतरातू की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि बाइक राइडर से लेकर फैमिली टूरिस्ट तक हर कोई यहाँ की शांत वादियों का आनंद लेने पहुँचता है। रांची से रामगढ़ जिले के पतरातू के बीच महज 32 किलोमीटर का सफर हर किसी को रोमांच से भर देता है। पिठौरिया घाटी की घुमावदार सड़कों के बीच लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। पतरातू डैम यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटक यहाँ बोटिंग का आनंद लेते हैं, जबकि शाम के समय डूबते सूरज का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ बने लेक रिजॉर्ट, पार्क और लंबा वॉकवे फैमिली ट्रिप के लिए इसे और खास बनाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी पतरातू वैली किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बाइकिंग, रोड ट्रिप और कैंपिंग का अलग ही रोमांच है। कई ट्रैवलर्स तो इसे वीकेंड राइड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून तलाश रहे हैं तो पतरातू वैली आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकती है। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: मौसम की चुनौती के बीच उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा। अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख लोगों ने किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट। तय वक्त से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है मॉनसून। 4 दिन पहले पहुंचने की संभावना। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की उम्मीद। फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला। भारत की तरफ से फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा। कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद। आईपीएल में हैदराबाद को 82 रन से मात देकर गुजरात टाइटंस ने जीता मैच। लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 रन पर सिमटी हैदराबाद की टीम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ये देखते हैं खास कार्यक्रम अच्छी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: हम आपको 10 शिक्षाएं राम जी की बतलाएंगे। पहली शिक्षा सुनिए, पूछो क्या, जोर से पूछो तब बताएंगे। मुंबई वाले होते बड़े कंजूस हैं। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, पीछे हम मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे। पहली बार जब आए, एक बहन जी होंगी पनवेल की, कार चला रही थी आगे आगे। अब वो बार बार ऐसा हाथ करें, हमें लगा मुड़ेंगी, तो हमने धीरी कर ली। उनने फिर हाथ भीतर कर लिया, सीधी चली जाए। थोड़ी देर बाद फिर हाथ निकाला, हमें लगा शायद अब मुड़ेंगी, ध्यान भूल गई होंगी। फिर भी नहीं मुड़ी, हमने फिर मोटरसाइकिल धीरे करी। अब तीसरी बार उन्होंने फिर हाथ निकाला, अब हमारा दिमाग ही खराब हो गया। हमने मोटरसाइकिल तेज चलाई, आगे आकर के खड़े होकर रुकी रुकी। बोली जी बोलिए भाई साहब क्या बात है। हम कहा बहन जी एक बात बताओ, बार बार हाथ निकालती हो, मुड़ती नहीं हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने। अरे बोले महाराज जी, हम मुड़ने के लिए हाथ नैन पालिश सुखा रहे हैं। हम समझ गए हम पनवेल आ गए। उसी दिन हम समझ गए थे पनवेल आ गए हैं। ऐसे लोग पनवेल मुंबई में ही पाए जाते हैं। तब से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पनवेल वालों को समझते हैं ठीक तरीके से। हाँ खैर, ये पूर्व जन्म की घटना है, इससे क्या लेना देना अभी, क्योंकि कल तक हमें रुकना है। कौन गालियां खाए बोलो सीताराम। तो राम जी से 10 चीजों में कौन सी सीख सीखनी है, 10 बातें पूछो। पहली बात बताओ गुरु जी, जोर से बोलो। राम जी की पहली बात हमने ली है एक पत्नी व्रतधारी। राम जी की पहली शिक्षा क्या है, एक पत्नी। जिस वक्त राम जी का प्रादुर्भाव भया उस वक्त अनेक पत्नियों का विधान था, लेकिन यही तो मर्यादा है। प्रभु श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण करके पूरे दुनिया को एक नई शिक्षा दी। क्या? जिसकी एक पत्नी व्रतधारी होता है, जो एक पत्नी व्रतधारी होता है वह ब्रह्मचारी की ही श्रेणी में आता है। एक बात। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने बात बताई एक पत्नी व्रतधारी राम जी की बात, अब मान लो कोई लफड़ों में फंस जाए तब क्या करे, इसका भी एक उपाय बताया है रामायण में। पूछो कहां। रामचरितमानस में जब राम जी महाराज पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी जैसे ही पहुंचे, राम जी का पंचवटी पहुंचना हुआ उसी समय

0: सूपनखा राम जी के पास आई, क्या बोली?
1: तुम सम पुरुष ना मो सम नारी।
0: राम जी से भेष बदल करके वह सूपनखा आई, बोली महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। राम जी बोले हम करें क्या? सूपनखा बोली महाराज शादी कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? राम जी बात कर रहे सूपनखा से पर देख रहे जानकी जी की तरफ। रामायण में वर्णन आया सीतह चिताय कही तही बाता। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जिससे बात करेगा उसकी तरफ देखेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन राम जी बात कर रहे सूपनखा से, देख रहे जानकी जी की तरफ, तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप सूपनखा से बात कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, इसका उत्तर क्या है? राम जी ने मुस्कुराते हुए मानो बड़ा प्यारा संदेश दुनिया वालों को दिया हो कि जब कोई भी वासना का रूप धारण करके तुम्हारे ऊपर डोरे डालने आ जाए तब घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी की तरफ देख करके उससे बात करना, कभी तुम्हारा मन नहीं भटकेगा और तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सीता चीता कही तही बाता। राम जी ने जानकी जी की तरफ देख करके कहा एक बात और, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति सदैव प्रत्येक युद्ध में अजय रहता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ का भी पालन करता है, उसके वीर के तेज के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकती है, वह सदा अजय रहता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए राम जी की पहली शिक्षा है एक पत्नी व्रतधारी। अच्छा राम जी की दूसरी शिक्षा क्या है? हा हा हा, दूसरी शिक्षा बड़ी प्यारी, भाई के प्रति प्रेम। भाई हेतु परित्याग राम जी ने किया, ये भारत के लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। राम जी राजपाट भाई के लिए त्यागते हैं। देखो जो अपना राजपाट भाई के लिए छोड़ दे वो श्री राम, और जो राजपाट के लिए भाई छोड़ दे वो आजकल के लोग। धन्य है राम जी, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा, एक वचन मानकर राजपाट जो रात को राजा बनने वाले थे सुबह प्रातः काल ही बन के राजा बन गए। लेकिन राम जी ने भ्रातत्व प्रेम का यहाँ प्रमाण दिया है कि भाई के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले अगर भाई के प्रति इतनी उदारता रखेंगे तो घर घर नहीं घर मंदिर बन जाएगा। ये राम जी की दूसरी शिक्षा। एक राम है जो भाई पर मरते मिटते हैं, इतना प्रेम करते कि मरते मिटते हैं। और आजकल के लोग ऐसे हैं, आजकल के भाई ऐसे हैं कि भाई को ही मारते मिटाते हैं, भाई को ही मारना मिटाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों से राम जी के जीवन काल की दूसरी शिक्षा यही कहना चाहेंगे, मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रियजनों और हमारे प्रिय पागलों, जो रामचरितमानस का आदर्श लेगा, जो राम को अपना आदर्श मानेगा, वह ऐसा जीवन जिएगा उसकी जिंदगी में जीते जी ही स्वर्ग बन जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन केवल राम जी का ही प्रेम भाई के प्रति नहीं है, भरत जी के प्रति, भरत जी का प्रेम भी राम जी के प्रति था। और कितना? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि भरत भाई के प्रेम की कोई समता नहीं। राम जी जब बन गए, चित्रकूट में निवास किया, भरत जी को पता लगा, आहा, भरत जी से कहा कि आप जो है अयोध्या चलो ननिहाल से। भरत जी अयोध्या आए, और जब पूरी बात भरत जी को पता लगी तो गुरुदेव ने कहा सुनो भरत जी,

छह चीजें भगवान के हाथ में, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश। लेकिन हे भरत, अब तुम एक काम करो, राम बन के राजा हो गए, तुम अयोध्या के राजा हो जाओ। बताए भरत जी ने क्या जवाब दिया। भरत जी बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार है, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन यह आज्ञा नहीं हम आपकी मानेंगे। क्यों, हम तो गुरु हैं। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहते, गुरुदेव जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ दिया हो और हम अगर राज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो महाराज ये पृथ्वी फट जाएगी, भरत उसमें समा जाएगा, इसलिए मेरे गुरुदेव हम हर आज्ञा आपकी मानेंगे लेकिन राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे। जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ा उन्हीं राम के लिए हम भी, यहाँ तक कि राजपाट तो छोड़ो हम अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हैं। आहा, तो किसी ने कहा इतना ही प्रेम है तो राम जी को लौटा लाओ, तुम्हारे कहने पर ही राम जी आ जाएं। पर भरत जी का भी प्रेम देखना, बोले चलो कहां मिलेंगे, चित्रकूट में। तो गुरु जी बोले चित्रकूट जाना ही है, रथ से चलो जल्दी पहुंच जाओगे। भरत जी रथ से नहीं गए, बोले अगर राम जी पैदल गए और हम रथ से जाएंगे तो धर्म न जाने कहां चला जाएगा, हमारे स्वामी प्रभु श्री राम हैं और हम रथ से नहीं, वो तो पैदल गए, धर्म हमारा बनता कि सिर बलि जाऊं, सिर के भले जाऊं तभी हमारा काम बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे भाई गए हम भी वैसे वैसे चले। आहा, और भरत जी नंगे पैर जिस तरफ राम जी गए थे उसी तरफ गए, प्रयागराज पहुंचे तो महात्मा पहले तो विचार करने लगे कि भरत जी अगर चित्रकूट पहुंच जाएंगे आफत हो जाएगी, राम जी भरत जी का रोना देख करके वापस लौट आएंगे, और अगर राम जी वापस लौट आए तो रावण का वध नहीं होगा। तो महात्मा पहले तो रोकने का विचार करते, लेकिन जैसे ही भरत जी की दशा देखते आंखों में आंसू, आंखें एकदम लाल, पैरों में फटे हुए, एकदम विह्वल स्थिति, और वो आर्तनाद हर एक एक दो दो मिनट बाद जब भरत जी दोनों बाएं फैलाकर कहें, हे भैया राम, हे राम, हे राम, हे राम, इस आर्तनाद को सुनकर प्रयागराज के महात्मा भी बोल पड़े कि हे भगवान अब तो एक ही कृपा करना, भरत को हम ऐसा रोता नहीं देख सकते हैं, तो कृपा करके भरत के साथ वापस अयोध्या चले जाए। ऐसा प्रेम भरत का, इतना गहरा प्रेम भरत का। मेरे भारत के लोगों, मेरे प्रियजनों, भाई वही है जो अपने भाई के लिए टूट पड़े, धन्य है भरत जी, रो पड़े, झरझर करके आंसू बहा रहे। यहां एक चर्चा और आती है, प्रयागराज के महात्मा कहते हैं हमने तपस्या की तो हमें राम जी के दर्शन मिले। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हम विचार कर रहे थे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा, लेकिन जब भरत जी के दर्शन हुए और भरत जी को देखा तो महात्मा दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़े प्रयागराज के, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है, भरत भाई के दर्शन है। और झरझर करके आंसू बहाते, माई बाप मेरे प्रियजनों, जाकर के गले लगा लिया राम जी को। भरत जी को देखकर एक घड़ी राम जी भी बोल पड़े, भरत अगर तुम्हें लगता है कि हमारे चलने में तुम्हारी प्रसन्नता है तो हम चल पड़ेंगे। राम जी की बात सुनकर देवता चकित हो गए, कहीं राम जी वापस न लौट जाए। भरत जी तो कारुण्य भाव में आर्तनाद करते हुए राम जी के चरणों में है। मेरे प्रियजनों, राम जी के जीवन का यह दूसरी शिक्षा है, क्या
राम जी ने अपने जीवन काल में यही पूरी दुनिया वालों को सिखाया कि जो भाई के लिए अटूट प्रेम रखेगा उसका घर घर नहीं घर मंदिर होगा, और जहां भाई भाई में प्राम प्रेम होगा वहीं राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं राम राज्य होगा।

इस घर में भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम। आजकल हम समाज में बड़ी दुर्दशा देखते हैं, भाई भाई ऐसे लड़ते, अदालतों पे पहुंचते, कोर्टों में जाते। वो भाई भाई जो एक माँ के जाए, एक कटघरे में एक भाई खड़ा, दूसरे कटघरे में दूसरा भाई खड़ा, और दोनों दलीलें दे रहे, दोनों वकीले लगा रहे, दोनों लड़ रहे। माई बाप लोग हमसे पूछते, राम राज्य क्या है? मेरे प्रिय जनों, जिस घर में ये बातें बंद हो जाएं, वहीं राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। जिस घर में भाई भाई का प्रेम हो जाए, वहीं राम राज्य है। जिस घर में बहन भाई का प्रेम हो जाए, उसी घर में राम राज्य है। मेरे भारत के लोगों और हमको जानने वाले प्रियजनों, आज की कथा में हम प्रार्थना करेंगे। राम जी का दूसरा गुण है भ्रातृत्व प्रेम, भाई के प्रति अटूट प्रेम। ये राम जी से सीख लेनी है कि हमें भाई भाई में, बहन भाई में खूब प्रेम रखना है। राम जी की ये दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा सुन, राम जी में तीसरी शिक्षा जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। राम जी जीते बहुत प्यारा है। यहां हम लोग जीवन का महत्व तो ही पता नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बंगले बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, जिए जा रहे, न ये पता है कि बनना क्या, न ये पता कि हम कौन है। नाम पूछो तो नाम तो बता देते हो, पर क्या तुम्हारा यही नाम है? कभी तुमने विचार किया? ये नाम तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद रखा गया, पर हु आर यू, तुम हो कौन, तुम किस लिए आए? क्या तुम पैसे कमाने आए? क्या तुम केवल संसाधन जोड़ने आए? क्या तुम केवल साधना जोड़ने आए? या तुम साधन जोड़ने के साथ साथ साधना पकड़ करके परमात्मा को पकड़ने आए? कभी नहीं पूछता व्यक्ति। हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं, काका हाथ रसी। वो एक बात बहुत अच्छी बोलते, उन्होंने कविता में लिखा, काका हाथ रसी कहते थे, बहुत भावपूर्वक है, उनकी विनोद में है, इसको आप लोग बहुत गंभीर में मत लेना, कि आप कुछ लोग गंभीर में इसको ले लो, बहुत विनोद की बात है। लेकिन काका हाथरसी जी बोलते थे, वो बड़े भाव से कहते थे, काम कुछ तू ऐसा कर जा, मरण कहे काका कबीराय, काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। पर इसका मतलब ये जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ है। मेरे पागलो, जीवन उसी का सार्थक है जिसे गुरु कृपा मिल जाए, जिसे राम जी का पता मिल जाए, जिसे हनुमान जी मिल जाए, जिसे भक्ति मिल जाए। राम जी ने विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। रात को राजा बनना था, सुबह बन का राजा बना, और मां कौशल्या ने राम से पूछा, क्या बात है, मुहूर्त कब का है? आज सुबह हो गई, तुम्हारा आज राज्य अभिषेक है, कितने बजे का मुहूर्त है? राम जी मुस्कुरा करके आ गए हैं कैकेयी के पास से, महाराज दशरथ के पास से, मुस्कुरा करके मां से कहते हैं, मां

0: क्या तमाम प्रयासों के बावजूद आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे? लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे? प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा आपको परेशान कर रहा है? कौन सी होती हैं प्रॉपर्टी की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इट फील्स गुड टू बी इन कंट्रोल नो मैटर व्हाट। Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: मौसम की चुनौती के बीच उत्साह के साथ जारी है चारधाम यात्रा। अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का रेड अलर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट। तैवाक से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है मॉनसून, 4 दिन पहले पहुंचने की संभावना। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की उम्मीद। फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला, भारत की तरफ फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद। आईपीएल में हैदराबाद को 82 रन से मात देकर गुजरात टाइटंस ने जीता मैच। लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 रन पर सिमट गई हैदराबाद की टीम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
12: कहां पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट? फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आया ग्लैमरस अंदाज। रेड कार्पेट का कलर पीच कलर के गाउन में बला की खूबसूरत नजर आई आलिया भट्ट, दर्शकों को वेव करते हुए नजर आए। रेड कार्पेट एंट्री से पहले सोशल मीडिया पर सामने आया आलिया का खूबसूरत फोटोशूट, मेंट ग्रीन बॉल ड्रेस पहने नजर आए। अलगिया नीले लेवेंडर और पीले रंगों के साथ पेंट किया गया ये उनका गाउन, जिसमें बने हैं फ्रेंच रिवेरा का खूबसूरत नजारा। फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की भित्ति चित्रकार बांसुरी चौकसी ने मिलकर बनाया इसको। अभिनेता निर्देशक अंशुमान झा की फिल्म लकड़बग्गा टू द मंकी बिजनेस की कान फिल्म फेस्टिवल में होगी स्पेशल स्क्रीन। एफटीआई की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मून लेस नाइट बनी चर्चा का मुख्य विषय। फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर एमी वर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला भी कान में प्रीमियर के लिए पूरी तरीके से तैयार। कान में दिखाई जाएगी गुजराती फिल्म लालू कृष्णा सदा सहायते, महज 50 लाख के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया की भर में कर चुकी है 122 करोड़ का कलेक्शन। कान क्लासिक्स के लिए चुनी गई है मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अम्मा अरियान। अक्षय कुमार विद्यावालन और निर्देशक अनीस बज्मी एक बार फिर से आ रहे हैं साथ। 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी इनकी

0: केस जीतने के लिए कि इंसाफ दिलवाने के लिए?
1: जीतने के लिए 10,000 पर केस,
0: 20,000।
2: IPL 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 168 रन बनाए, जिसके जवाब में मात्र 86 रन पर सिमट गई हैदराबाद की टीम। गुजरात की तरफ से हुई शानदार गेंदबाजी, रबाडा और ट्रा होल्डर ने लिए 3-3 विकेट्स। साई सुदर्शन के बल्ले से निकले शानदार 61 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने भी खेली 50 रनों की अर्धशतकीय पारी। तो जीत के साथ अंक तालिका पर टॉप पर पहुंची गुजरात, कुल 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर आ गई है गुजरात टाइटंस। आईपीएल के 57वें मैच में टकराएंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। जीत कर दोबारा टॉप पोजीशन हासिल करना चाहेगी आरसीबी, जबकि लगातार चौथा मैच जीत चुकी है केकेआर। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में अगर नजर डालें तो केकेआर का पड़ा भारी नजर आता है। कोलकाता की टीम 36 में से 20 मैच जीती। प्लेऑफ के लिहाज से मुकाबला काफी अहम, प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए केकेआर को इस मुकाबले में हर हाल में जीतना होगा। मैच में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार से उम्मीदें हैं, वहीं पर केकेआर ने सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे पर ताव। समय से पहले मानसून की दस्तक, मौसम विभाग के मुताबिक हफ्ते के आखिरी तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मानसून की शुरुआती संभावना। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, मंगलवार रात बारिश के बाद तापमान में हुई गिरावट। आज भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से पूरी तरीके से घिरे रहने का अनुमान है, गरज चमक के साथ तेज हवाओं और हल्की बारिश के आसार। 5 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, लेकिन केवल पहाड़ों तक सीमित रहेगा असर। नोएडा में रही रात जमकर हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात से गर्मी को मिली राहत। हरियाणा के नूह मेवात में तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना, आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने बदली करवट। मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गिरते रहे ओले, अचानक आए बदलाव को लेकर लोगों में खुशी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल गरज चमक के साथ बारिश के आसार, आंधी चलने की भी संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निर्णय, विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की संख्या होगी सीमित। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन ने काफिले में कम गाड़ियां रखने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री कारकेट में 13 की जगह अब 8 गाड़ियां होंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए अहम फैसले, मुख्यमंत्री समेत सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब नाथ कॉरिडोर पर फोकस। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर श्री पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिजली बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ावा को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने और मंत्रियों के काफिले में 50% वाहनों की कटौती के आदेश जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे को देगी बढ़ावा। स्कूल कॉलेजों में बस सेवा बढ़ाने और पीक आवर्स में ऑफिस टाइम बदलने का सुझाव। उत्तर प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग, हेरिटेज और इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। तेलंगाना में जेल विभाग द्वारा चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल

0: में स्थापित एक जेल संग्रहालय और जेल अनुभव कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। जनता को जेलों के इतिहास और कैदियों के जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है संग्रहालय। बाहरी लोगों को जेल जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए एक विशेष जेल अनुभव विभाग का बनाया गया। गढ़वा दौरे पर सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार बूढ़ा पहाड़ का लिया उन्होंने जायजा। डीजी ने जवानों से भी मुलाकात की, बातचीत करके बढ़ाया हौसला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, जिसको अचला एकादशी कहा जाता है। क्या है इस एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और किन बातों का रखना है ध्यान, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अपरा यानी अचला एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हम सब रखते हैं, नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के, तमाम व्रत जितने भी रखे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक मन पर नकारात्मक असर डाल सकती है और चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो वो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकता है। यहां तक कि एकादशी का व्रत रख करके अगर साधना की जाए तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का उपाय करके, एकादशी का व्रत रख के आप अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एकादशी रखने का ज्यादा फायदा आपको प्राप्त नहीं होगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का, जिसको अचला एकादशी भी कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, आप किसी भी एकादशी का पालन करें, किसी भी एकादशी का उपवास रखें, आपका मन और आपका शरीर एकाग्र होगा। लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी जीवन में उत्पन्न कर देती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पालन करने से आपको गलतियों की क्षमा मिलती है, खास तौर से झूठ बोलने के पाप से, पाखंड से मुक्ति मिलती है। और अगर आपने कोई गलती की है जीवन में तो उस गलती की क्षमा मिल जाती है अगर आप अपरा एकादशी पर व्रत रखकर साधना करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है और इसके प्रभाव से इस व्रत को रखकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अपरा एकादशी का पालन अगर ईमानदारी से किया जाए, व्रत रख के उपासना साधना ध्यान किया जाए, तो ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। इस बार जो अपरा एकादशी है यानी अचला एकादशी है वो 13 मई को है, तो इसका पालन करके अपनी गलतियों को क्षमा करवाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। और अगर जीवन में कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत रखने का नियम क्या है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उस व्रत को रखने का नियम क्या है, तरीका क्या है? दो प्रकार से एकादशी का उपवास रखा जाता है। एक तो है निर्जल व्रत, दूसरा है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर या पानी पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर, फलों का रस लेकर, नींबू पानी पीकर उपवास रखना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है या लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कहीं कहीं पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में भगवान को फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर यही होगा कि अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। और उपवास रखने का मतलब ये होता है कि आप केवल अनाज नहीं खाएंगे, उससे उपवास नहीं होगा। जब भी मौका मिले पूरे 24 घंटे में अधिक से अधिक मंत्र जप करें, अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक ध्यान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। क्या करने से बचना चाहिए? तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। एकादशी के दिन कम से कम प्रभु मांस मदिरा का सेवन मत करिए, भले ही व्रत मत रखिए। अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखने का प्रयास करिए। और एकादशी की तिथि है तो कम से कम भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। और मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है नाम जप करिए। भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनके नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन, प्याज लहसुन भी ना हो, सात्विक भोजन खाइए और प्रक्रियाओं का पालन करिए, यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए, मंत्र जप करिए, स्तुति करिए, ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की अपरा एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आज के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप नए कपड़े पहनने जा रहे हैं या कर्ज लेने जा रहे हैं तो बुधवार को करिएगा। नए कपड़े धारण करना, कर्ज लेना बुधवार को शुभ होता है। इससे नए कपड़े लगातार मिलते रहते हैं, और कर्ज अगर बुधवार को लेंगे तो आसानी से चुका पाएंगे, जीवन में सफलता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: मौसम की चुनौती के बीच उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा। अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख लोगों ने किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट। तय वक्त से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है मॉनसून। 4 दिन पहले पहुंचने की संभावना। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की उम्मीद। फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला, भारत की तरफ से फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद। आईपीएल में हैदराबाद को 82 रन से मात देकर गुजरात टाइटंस ने जीता मैच, लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 रन पर सिमटी हैदराबाद की टीम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। कई बार ऐसा होता है हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन वो बिक नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है हमें जिसे लेने का मन है हम वो खरीद नहीं पाते। तो अलग अलग समस्याएं उससे रिलेटेड होती रहती हैं, तो उनसे बचने के उपाय क्या है और उन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप अपनी कुंडली के मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, मंगल से जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तक पर लाल रंग का गोल तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके मंगल को शक्ति मिलेगी।
0: और आइए अब जान लेते हैं 13 मई 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं कि संपत्ति यानी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं, और भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। मंगल जमीन जायदाद का मुख्य स्वामी है, मंगल की भूमिका इसमें ज्यादा होती है। इसके बाद संपत्ति से संबंध होता है शुक्र का। शुक्र आम तौर पर बने बनाए मकान का या बने बनाए फ्लैट का स्वामी होता है, उसमें शुक्र की भूमिका पाई जाती है। 12 राशियों में कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है, इसका संबंध प्रॉपर्टी से होता है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु अगर ये निगेटिव पोजीशन में हैं, अगर ये नकारात्मक स्थिति में हैं, तो संपत्ति के मामलों में आम तौर पर बाधा देते हैं। मंगल या शुक्र अगर कुंडली में खराब हो जाए, अगर निगेटिव हो जाए, तो ये संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। यानी मुख्य रूप से अगर आपकी कुंडली में मंगल बेहतर हो या कुछ मात्रा में अगर शुक्र बेहतर हो तो किसी न किसी तरीके से आपको संपत्ति का सुख मिल जाएगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की राशि मेष, वृष या मिथुन है उनका क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव आपको इस समय हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जानते हैं कि अगर आप संपत्ति ना खरीद पा रहे हो, आपका मन है कोई संपत्ति खरीदने का लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसे खरीद नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए?
1: देखिए, संपत्ति की पहली समस्या ये है कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, आप कोई संपत्ति खरीद लें, लेकिन आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे। तो अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करेंगे? एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए, बनवा लीजिए ट्रायंगुलर झंडा लाल रंग का, इस पर राम लिखवा लें, पीले रंग से लिखवा लें, सफेद रंग से लिखवा लें, इस पर राम लिखवा लें और मंगलवार को प्रातः इस झंडे को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें और संपत्ति खरीद लेने की प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं। ये उपाय 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा 2 बार ये उपाय कर लेने से निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ हो जाता है।
0: और अब जानते हैं कि अगर संपत्ति का निर्माण ना हो पा रहा हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जमीन तो होती है लेकिन हम उस पर अपना मकान या उस पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनवा पाते। बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार उसमें रुकावट आती है। अगर संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? जिस जमीन पर मकान बनवाना है आपको, संपत्ति का निर्माण करवाना है आपको, वहां पर मंगलवार को जाइएगा। जमीन के पूरब उत्तर कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में, या तो जमीन में ही एक तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा या तुलसी के पौधे का गमला रख दीजिएगा। उसी कोने में थोड़ी सी जमीन खोद करके एक नई ईंट जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं और वहां प्रार्थना कर लेते हैं तो संपत्ति का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी जमीन पर मकान या प्रॉपर्टी आप बनवा पाएंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवाल का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रियंका शर्मा ने हमें लिखा है, रांची से लिखती हैं, 21 जुलाई 1996 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:10 रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती हूं और अब मैं नौकरी छोड़ रही हूं, आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी। प्रियंका आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आप अगर नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी का प्रयास करें तो इस समय आपको दूसरी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अभी अपना इंडिपेंडेंट काम करना या अपना कोई व्यापार करना आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। अभी आपके लिए हर लिहाज से नौकरी करना ही बेहतर रहेगा। करियर और भविष्य आपका अच्छा दिखता है, उसके लिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न प्रीति ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 17 नवंबर 1995 का जन्म है, 10:55 रात को दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रीति आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। इस समय आपका विवाह अवश्य ही होना चाहिए। आने वाला समय आपकी कुंडली के लिहाज से ठीक है और अगर थोड़ी बुद्धिमानी से विवाह करेंगी तो वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। वैसे कुल मिला जुलाकर आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के बारे में, और अगर कोई आपकी संपत्ति है जिसे आप बेचना चाहते हो लेकिन वो बिक नहीं रही हो, आप लाख कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकान, हमारी जमीन ये बिक नहीं पाती। तो अगर संपत्ति बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हर मंगलवार को नहा करके धो करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा लगातार मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, कम से कम 11 मंगलवार अगर आप ऐसा करें तो जिस प्रॉपर्टी को बेचने की आपको सर्वाधिक जरूरत है वो संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी।
0: तो चलिए जानते हैं, अगर संपत्ति से संबंधित मुकदमे चल रहे हों, कई बार ऐसा होता है कोई प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्यूटेड होती है, उस पर हमें मुकदमे जो हैं वो लगातार चल रहे होते हैं, लेकिन हम लाख कोशिश करते हैं और वो सुलझ नहीं पाते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
1: प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, मकान को लेके अक्सर विवाद भी होते हैं और अक्सर मुकदमेबाजी भी होती है। तो अगर संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे चल रहे हों तो क्या उपाय करें कि ये मुकदमे समाप्त हो जाएं? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। अगर महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित ना करें, आप केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, थोड़े लंबे समय तक ये उपाय करें तो जल्दी से जल्दी संपत्ति के, जमीन के, जायदाद के मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, सेहत अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, नई जमीन खरीदी है और आपको उसमें जाना है, गृह प्रवेश करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
1: देखिए, अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हो, नई दुकान हो, नया मकान हो, नई जमीन हो और उसका प्रयोग करने जा रहे हो, तो क्या करेंगे, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है, जहां आपने मकान दुकान आदि बनवाया है या खरीदा है, वहां पर एक पूजा घर जरूर बनाइएगा और पूजा के स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिएगा या शिव जी का एक चित्र रखिएगा। घर में रहने की शुरुआत के पहले या दुकान में काम की शुरुआत के पहले उस संपत्ति पर जो नई प्रॉपर्टी है वहां पर एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न संजीव कुमार जी ने हमें गुजरात से लिखा है। 27 अगस्त 1969 का जन्म है, 8:15 रात को गांधीधाम गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं

0: इतनी प्रबल नहीं है, व्यापार में जाने की संभावना ज्यादा दिखती है। अगर संपत्ति का, शिक्षा का, लोहे या मशीनरी का, प्रिंटिंग का, खेती बाड़ी का कोई व्यापार आप करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बन रही है। आपने पहले से मोती धारण की हुई है, वो मोती धारण किए रखिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न शशि भूषण शुक्ला जी ने हमें लिखा है, वापी गुजरात से मेल लिखते हैं। 3 सितंबर 1973 का जन्म है। 3 बजे दोपहर में जन्म स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं और कहां पे करूं, वापी में करूं या गोरखपुर में करूं। शशि भूषण जी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा राहु की आपकी चल रही है। देखिए जुलाई 2026 के बाद आप अपना व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, दवाइयों का, लकड़ी या फर्नीचर का, ऐसा कोई व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा। गोरखपुर आपका जन्म स्थान है, वहां पर जाने की सलाह नहीं देंगे, आप वापी में उसके आसपास ही व्यापार करने का प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। अप्रैल 2027 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करें, शुक्र के उपाय करें, हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं और हम उसमें रहने लगते हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो हमें अच्छा फल दे और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो?
0: जी देखिए, बहुत सारे घरों का ऑरा ऐसा होता है, वाइब्रेशन ऐसा होता है कि जब आप उसमें रहते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आप वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छे अनुभव होने लगते हैं। और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जब से घर लिया तब से मुश्किल शुरू हो जाती है या उस घर में जाने पर दिक्कतें आनी शुरू होने लगती हैं। तो आप अपने घर के वाइब्रेशंस को सुधार सकते हैं बड़ी आसानी से। रोज संध्या काल में अपने घर में चारों तरफ, संभव हो तो हर कमरे में या घर के बीच में लिविंग एरिया में धूप बत्ती जलाएं, और अगर ये धूप बत्ती चंदन की सुगंध वाली, गुग्गल की सुगंध वाली हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा, सप्ताह में एक दिन, विशेष तौर से शनिवार के दिन अगर सुंदर कांड का पाठ आप अपने घर में करें, सारे परिवार के लोगों के साथ मिल करके अगर सुंदर कांड का पाठ करें, तो काफी चीजें बेहतर होंगी।

0: शुरू हो जाएंगे।
1: जिनका जन्मदिन 13 मई 2026 को आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 13 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क मत लीजिए, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लेकिन विवाह के मामलों में अभी इस साल में भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या हनुमान जी की उपासना से विवाह जल्दी हो सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही वो पति को इच्छित पत्नी से मिलवा देते हैं। इसके लिए माता सीता को अर्पित किया हुआ सिंदूर हनुमान जी को लगाएं और प्रार्थना करें, आपके शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी होगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि 13 मई 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार शुभ पहर का समय है। शाम को 7:30 से रात के 9 तक इस समय में भगवान गणेश की उपासना करें। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो जानेंगे हम पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य में इस समय कैसी दिक्कत आ सकती है। आज की गुड लक राशि है कर्क। कर्क वाले इस समय अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान दें। पेट की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं, इसीलिए खान पान में सावधानी बनाए रखें।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका मनचाहा विवाह होने में रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, तो क्या करेंगे। रोज सवेरे भगवान राधा कृष्ण की उपासना करिए। उनको गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें और उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करें। नित्य प्रातः काल अगर आप ये उपाय करें और मनचाहा विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
13: गुड न्यूज टुडे पर।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
3: It's my music and it's my station.
2: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आम तौर पर इन दिनों में बारिश देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने से यह बारिश हो रही है। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत लेकर आई है। राहत का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई।
1: लगभग प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी 13 मई तक। इसी दौरान अगर 13 मई तक अलर्ट्स की बात करें तो आज और कल के लिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में तेज हवाएं चलने की संभावना है और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। तो ओवरऑल 13 मई तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए 14 मई से वेदर एक्टिविटी थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु 14 मई से लेकर 16 मई तक स्पेशली लेट इवनिंग और आफ्टरनून में जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश का क्रम जारी।
0: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी मौसम की ये मेहरबानी देखने को मिल सकती है। आज से लेकर गुरुवार के बीच दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम के इस यूटर्न को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, वेस्ट UP, इनके लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है, जहाँ पे रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए हम हिलस्टॉर्म भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
0: मार्च से लेकर मई तक इस साल बैक टू बैक कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुके हैं, जिनके प्रभाव से आंधी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली और लोगों ने तपिश से ज्यादा ठंडे ठंडे मौसम का सामना किया। अब लोगों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि इस साल भी दक्षिण पश्चिम मानसून तय वक्त से पहले केरलम तट पर दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरलम तट पर पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके 25 से 27 मई के बीच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर श्रीलंका तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 48 घंटों में और मजबूत होगा। इसके चलते दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश, जबकि ओडिशा के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिस्टम मानसून को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। यही वजह है कि इस साल भी मानसून के वक्त से पहले केरलम तट पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर मानसून को लेकर मौसम विशेषज्ञों का यह अनुमान सही साबित हुआ तो खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। दिल्ली से मनीष अलर्टा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब मौसम से जुड़ी गुड न्यूज देते हैं आपको। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून वक्त से पहले केरलम तट पर दस्तक दे सकता है, जो यहां संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार 25 से 27 मई के बीच ये केरलम तट पर पहुंच सकता है। इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर देखें तो आज से लेकर गुरुवार के बीच दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और आइए अब देख लेते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, जो कुछ में आपको हंसी आएगी और कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
5: पापा सुनो, एक बात पूछूं।
6: हाँ, को पूछो।
5: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
6: हाँ, मिठाई आई थी।
5: आपने खाई थी?
6: हाँ, को खाई थी।
5: मम्मा को भी खिला लगा देते।
7: क्यों?
5: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
7: क्या?
5: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
4: तो हम सब जानते हैं इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सब कुछ चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दारापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
10: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
9: Smartless.
11: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
9: Marketplace.
12: Big three on the program today, or... You know, the big three of them.
9: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
14: Thank God I get to wake
13: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज़ टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने का दिया आदेश, एसपीजी को ईवी वाहन को शामिल करने को कहा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कटौती के निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर।
7: मौसम की चुनौती के बीच उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने दर्शन किए, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किए।

0: मॉनसून चार दिन पहले पहुंचने की संभावना, 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की उम्मीद।
1: फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला, भारत की तरफ फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ पवराज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना हमें अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
1: देखिए शुभ समाचार की शुरुआत कान फिल्म फेस्टिवल के साथ की जा रही है। इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की दुनिया के तमाम नामचीन सितारे अपनी चमक बिखेरने के लिए पहुंच चुके हैं। यहां पर दुनिया भर के सिने प्रेमियों को नई पुरानी और चर्चित फिल्मों का लुत्फ उठाने का मौका जरूर मिलेगा। इस बीच कई भारतीय फिल्में भी अपना जादू दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कौन कौन सी फिल्में देखेंगी वहां पर आगे आपको बताएंगे।
2: तो उत्तर भारत में मौसम फिर बदलने वाला है, कल भी दिल्ली में बारिश हुई, साथ ही आगे भी राहत की फुहारे गिरने के अनुमान है। वहीं पहाड़ों में भी बदले मौसम से कारोबारियों और पर्यटकों की चांदी हो गई है। ठंड बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है, सैलानियों की हलचल से हिल स्टेशन गुलजार है, तो वहां की एक खुशनुमा तस्वीर भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: बिल्कुल गीतिका, देखिए साथ ही साथ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, भक्तों का जोश बढ़ता ही चला जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यहां पर पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए हैं। कैसे हैं चारधाम के रंग आगे आपको दिखाएंगे।
2: तो महंगाई के दौर में जहां 10 रुपए में चाय मिलना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं गाजियाबाद में एक ऐसी पहल लोगों का पेट भर रही है जहां सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। किसने की है ये पहल और कितने लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है ये नेक कोशिश, इन सब की जानकारी आगे आपको देंगे।
1: बिल्कुल देखिए, इसके अलावा आईपीएल में आज आरसीबी और केकेआर का मैच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे रायपुर में खेला जाएगा, तो कैसी है दोनों टीमों की रणनीति बताएंगे आपको आगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे 9 बड़ी खबर।
2: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक करीब 12 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम यात्रा की, जिसमें सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 3 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
1: ये भव्य दिव्य तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से निकलकर आ रही हैं, जहां पर श्री रंगम के प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर में चित्रे उत्सव की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अलग अलग वाहनों पर दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ को चांदी के हाथी पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई।
2: फ्रांस के कांस में सितारों का मेला लगा हुआ है। भारत की तरह फिलहाल आलिया भट्ट ने जलवा बिखेर रही है। आलिया रेड कार्पेट पर पीच कलर के गाउन में बला की खूबसूरत नजर आई, दर्शकों को वेव करते हुए पेपराजी के सामने पोज देती नजर आई। वहीं इस फेस्टिवल में कई और सितारों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
1: राजस्थान की 43 डिग्री तापमान में एक विदेशी महिला की तपस्या की चर्चा जोर शोर से चल रही है। पुष्कर में रूस की रहने वाली ये महिला 9 धूनी अग्नि तप कर रही हैं। रूस की इस महिला ने 10 साल पहले नाथ संप्रदाय को अपनाया था, उसके बाद से राधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ नाम की ये महिला नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार जीवन यापन कर रही है। अग्नि तपस्या भी उसी परंपरा की कड़ी है।
2: देश में मॉनसून तय समय से 4 से 6 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरलम में मॉनसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरलम पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी।
1: सड़क हादसों को कम करने के लिए राजस्थान पुलिस ने शानदार पहल की है। दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर यात्रियों को रास्ते में ब्लैक स्पॉट गड्ढों और खराब सड़कों की गूगल मैप के जरिए जानकारी मिल सकेगी। स्थानीय प्रशासन NHAI की मदद से ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का काम तेजी से कर रहा है।
2: इटली में गिरो डी इटालिया के चौथे चरण का हुआ शानदार आयोजन। रेस में इक्वाडोर के जोनाथन नावेज ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस रोमांचक रेस में नावेज ने ओल लुइस ओला को मात दी, जबकि इटली के ग्यूलियो की कोन तीसरे स्थान पर फिनिश लाइन पार की।
1: आईपीएल के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बढ़त होगी। मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। रजत पाटीदार आरसीबी की कप्तानी करेंगे, जबकि अजिंक्य रहाणे केकेआर के नेतृत्व करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले दोनों टीमों को जो अंतिम प्लेइंग 11 चुनती है उसे देखना दिलचस्प होगा।
2: जैकी श्रॉफ की आगामी फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो दादा पोते के प्यारे रिश्ते, बचपन की कल्पनाओं और एलियंस के रोमांच पर आधारित है। मनीष सैनी द्वारा निर्देशित ये पारिवारिक कॉमेडी फिल्म 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कान फिल्म फेस्टिवल के शानदार आगाज के साथ। हमेशा की तरह कान में ग्लैमर सिनेमा और फैशन की जबरदस्त तड़का देखने को मिले। रेड कार्पेट पर दुनिया भर के सितारों ने अपने स्टाइल और मौजूदगी से सबका ध्यान आकर्षित किया। हॉलीवुड स्टार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स तक कान की महफिल में पहुंचे हैं, जहां पर चमकदार गाउन, क्लासिक टक्सीडोज और हाई फैशन लुक सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के प्रीमियर के साथ साथ रेड कार्पेट मोमेंट्स भी खूब चर्चा का विषय बन रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो भारतीय सितारों की एंट्री अब हो चुकी है। आलिया भट्ट ने अपने बहुत एलिगेंट पीच गाउन लुक से फैंस का दिल जीत लिया। रेड कार्पेट पर उनका सॉफ्ट ग्लैमर मेकअप, मिनिमल ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। वहीं पर गाउन को आलिया ने लॉन्ग दुपट्टे के साथ कैरी करके इंडियन टच भी दिया, जिसे वेस्ट के फैशन वर्ल्ड में कहा जाता है। और ये कान अपीयरेंस भारतीय सितारों की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को भी दर्शाता है। यहाँ पर देखिए फैशन और सिनेमा दोनों में भारतीय कलाकार खास पहचान बना रहे हैं। उसी की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तमाम और नामचीन बॉलीवुड के सितारे इसमें शामिल होंगे और हम आपको गुड न्यूज़ टुडे पर फैशन के जलवे लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आलिया भट्ट की तस्वीरें।
1: और चलिए अब आपको सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने सबका दिल जीत लिया। आलिया भट्ट ने अपने स्टनिंग लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आलिया ने तमारा लॉर्फ का कस्टम पीच कॉस्ट्यूम गाउन पहना। उनके लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया। आलिया के स्टेपलेस फ्लो लेंथ गाउन ने उनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया। गाउन के साथ आलिया ने लॉन्ग दुपट्टा कैरी किया और इस खास पोशाक को इंडियन टच भी दिया। जाहिर है कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू खूब चल रहा है। 23 मई तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। कान्स में भारत की रीजनल फिल्मों को अच्छा खासा स्पेस मिला है। पंजाबी, मलयालम और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को करीब आधा दर्जन फिल्में कान्स फिल्म फेस्टिवल में शोकेस होंगी। तो फेस्टिवल में कुल 21 फीचर फिल्में, 3 शॉर्ट फिल्म्स और 6 डॉक्यूमेंट्रीज को क्लासिक सेक्शन में दिखाया जाएगा।
2: कॉम्प्लिकेटेड स्विमिंग पर जेट फुटबॉल।

फ्रांस का रिवेरा शहर एक बार फिर से ग्लैमर से गुलजार है, क्योंकि यहाँ सज चुका है 1979 कांस फिल्म फेस्टिवल का मंच। फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज फिल्मी हस्तियां अपनी छाप छोड़ रही हैं। कांस में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी अपना जलवा बिखेरती नजर आई। फेस्टिवल की शुरुआत होते ही बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कारपेट पर पीच कलर के गाउन में आलिया बला के खूबसूरत नजर आई। पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया किसी फैशन दीवा से कम नहीं लग रही थी। उनका शानदार लुक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आलिया दर्शकों को वेव करते हुए पेपराजी के सामने पोज करती नजर आईं।

0: इसे स्टाइलिश गाउन के साथ ही आलिया ने प्यारा सा दुपट्टा भी कैरी किया, जिसे वो पूरे इवेंट में फ्लॉन्ट करती नजर आई। आलिया का ये खूबसूरत लुक रिया कपूर ने स्टाइल किया है। रेड कार्पेट पर अपनी एंट्री से पहले मिंट ग्रीन बॉल ड्रेस पहने आलिया भट्ट का बेहद खूबसूरत लुक सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये गाउन हल्के हरे, नीले, लेवेंडर और पीले रंगों से हाथ से पेंट किया गया है, जिसमें फ्रेंच रिवेरा का खूबसूरत नजारा बना है। आलिया की इस ड्रेस में कॉर्सेट टॉप है, जिसमें पतली स्पैगेटी स्ट्रैप्स और स्वीट हार्ट नेकलाइन है, नीचे से लहराते हुए स्कर्ट जैसी दिखती है। फूलों की डिजाइन, डीप नेकलाइन और सिंपल मेकअप से आलिया ने खुद को एक मॉडर्न प्रिंसेस जैसा लुक दिया। उन्होंने अपनी एक्सेसरीज को बिल्कुल मिनिमल रखा। हल्की ग्लोइंग स्किन, सिंपल हेयर स्टाइल, छोटे इयर रिंग्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ लुक को पूरा किया गया है। आलिया ने पैरों में ऑफ व्हाइट हील्स पहनी है, जो ड्रेस से अच्छी तरह मैच कर रही है। आलिया का ये लुक फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की भित्ति चित्रकार बासुरी चौकसी ने मिलकर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर आलिया की ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जो प्रिंसेस वाइब्स और समर परफेक्ट लुक दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में आने वाले दिनों में कई भारतीय सितारे आपको नजर आएंगे। आलिया के अलावा इस इवेंट में उर्वशी रौटेला भी पहुंची, जहां पर उन्होंने कान में लगातार पांचवी बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और रेड कार्पेट पर एक बार फिर से ग्लैमरस अंदाज में सबका ध्यान आकर्षित किया। इस बार देखिए, उर्वशी ने वियतनामी फैशन लेवल का स्टाइलिश गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर वॉक किया, जिसे फैंस और फैशन लवर्स ने खूब पसंद किया। उनका बोल्ड और ड्रामेटिक लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है, वायरल हो रहा है। वहीं 2025 के कान लुक की अगर हम बात करें तो उर्वशी अपने चर्चित तोता क्लच को लेकर खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उर्वशी रौटेला की कान फिल्म फेस्टिवल में, जब वो पहुंची किस प्रकार से उन्होंने जलवा बिखेरा, ये तस्वीर देखें।
2: तो नासिबा कांस फेस्टिवल 23 मई तक चलेगा और इस बार आर्ट हाउस सिनेमा के दिग्गजों के साथ कई नए फिल्मकारों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहीं इस इवेंट में एआई का जलवा भी देखने को मिल रहा है। जी हां, इस इवेंट की रौनक और बढ़ा रहे हैं एआई रोबो। एआई रोबोट्स अपनी शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। रेड कार्पेट के आसपास इनकी मौजूदगी ने टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मेल को और भी ज्यादा खास बना दिया है।
1: और देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। यूरोप के मशहूर फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की दुनिया के तमाम नामचीन सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे, तो साथ ही साथ दुनिया भर के सिने प्रेमियों को इस दौरान नई, पुरानी और चर्चित फिल्मों का मजा लेने का एक मौका भी मिल जाएगा। इस बीच कई भारतीय फिल्में भी अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार।
3: साल की तरह इस साल भी कई हिंदी और क्षेत्रीय फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिखाई जाएंगी। अभिनेता और निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस कान फिल्म फेस्टिवल के मार्चेडू फिल्म में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए तैयार है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक को प्रोडक्शन है। इसमें प्रमुख आकर्षण है FTII की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट। ये फिल्म राजन नाम के एक नाइट शिफ्ट वर्कर की कहानी है, जो आर्थिक तंगी और नींद की कमी से जूझते हुए मानसिक रूप से टूटने की कगार पर है। इसे कान के लासिनफ सेक्शन के लिए चुना गया है। फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला भी यहाँ प्रीमियर के लिए तैयार है। अमरजीत सिंह के सरोन के डायरेक्शन में फिल्म में एक नर्स की इमोशनल जर्नी के इर्द गिर्द घूमती है। कांस में वाहवाही बटोरने के बाद ये फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कांस में दिखाई जाने वाली बेहद अहम फिल्म है लालो कृष्णा सदा सहायते। अंकित सखिया के डायरेक्शन में बनी इस गुजराती फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही इतिहास रच दिया है। महज 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। अब इस फिल्म का कान में स्पेशल मार्केट प्रीमियर रखा गया है। मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अम्मा अरियान को 4K में रिस्टोर कर कांस क्लासिक सेक्शन में शामिल किया गया है। 1986 में रिलीज हुई यह फिल्म निर्देशक जॉन अब्राहम की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसे कान क्लासिक के लिए चुना गया है। डायरेक्टर चिदम्बरम अपनी नई मलयालम फिल्म बालन द बॉय के साथ कांस पहुंचे हैं। इस फिल्म को मार्केट सेक्शन में दिखाया जाएगा। श्रीमल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड फायर, जिसे फिल्म मार्केट सेक्शन में दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर कैरिन क्षिति सुवर्णा की पहली फिल्म 21 सितंबर का वर्ल्ड प्रीमियर 16 मई को कान के पैलेस थिएटर में होने जा रहा है। फिल्मों की इस लंबी फहरिस्त से साफ है कि भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग और सशक्त पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म से कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अब खबरें हैं कि रणवीर फ्यूचर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। दरअसल उनका ये प्लान एक फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर है, जिसमें सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फिल्म के 3 पार्ट बनेंगे। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसका ट्रेंड इन दिनों खूब ज्यादा चल रहा है। रणवीर इसमें भोलेनाथ का रोल निभाएंगे, लेकिन फिल्म का नाम क्या है, कहां से इसकी कहानी ली जाएगी, यही सब कुछ यहां जानिए।
4: नाम तय नहीं, डायरेक्टर का पता नहीं, स्क्रिप्ट आधी अधूरी, लेकिन एक चीज फाइनल है। फिल्म के लीड एक्टर धुरंधर रणवीर सिंह, जिनकी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 ने मिलकर दुनिया भर में 3100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, और अब कामयाबी के शिखर पर काबिज रणवीर ने फ्यूचर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर है, मतलब सिर्फ एक फिल्म बनाने का नहीं बल्कि एक फिल्म के 3 पार्ट बनाने का है, और वो भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म, जिसका ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। और रणवीर सिंह इसी ट्रेंड पर चलकर कामयाबी के रथ पर सवार रहना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी माँ कसम फिल्म के जरिए अमीश त्रिपाठी के नॉवल द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के राइट्स खरीद लिए हैं। रणवीर इस माइथोलॉजिकल कहानी को बड़े स्केल के साथ पर्दे पर पेश करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने अनन्या बिरला की कंपनी बिरला स्टूडियोज के साथ सुपर डील की है। रणवीर सिंह इस फिल्म में भगवान शिव के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 3 पार्ट में रिलीज की जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। स्क्रिप्ट पूरी होने पर तसल्ली से स्क्रीन प्ले पर काम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2028 में पहले पार्ट की शूटिंग शुरू हो जाएगी। रणवीर सिंह ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का टारगेट 2028 इसलिए रखा है कि वो अगस्त में प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। मार्च 2027 में धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की अगली फिल्म पर काम करेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह अपनी इस नई माइथोलॉजिकल फिल्म का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अभी ना तो फिल्म का नाम तय हुआ है और ना ही डायरेक्टर का। फिल्म की कास्टिंग भी अभी तय नहीं है सिवाय रणवीर सिंह के। बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ये सारा काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और आइए बात करेंगे मौसम की। मंगलवार रात को अचानक दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मई में हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, क्योंकि मंगलवार का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए गर्मी वाला था और तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा चुका था, लेकिन इस बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है।

0: दिल्ली वालों पर मौसम की मेहरबानी एक बार फिर राहत की फुहार बनकर बरसी है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की शाम के समय अचानक मौसम बदला और रात होते होते कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम में आए इस परिवर्तन की वजह से गर्मी के तेवर में नरमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 13 मई को भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में दोपहर को ही अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। तेज आंधी और हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण ठंडा और सुहावना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई को भी आसमान में आंशिक रूप से बादलों की मौजूदगी रहेगी और तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके बाद 15 मई से 18 मई तक आसमान साफ रहने की संभावना है और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हवाओं का असर बढ़ सकता है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में दस्तक देगा और इसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित रहेगा। आईएमडी का अनुमान है कि भारत में मई में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। अलग अलग इलाकों में तापमान की स्थिति मिली जुली रहेगी, जबकि कुछ हिस्सों में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना भी जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियां दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मॉनसून की समय से पहले दस्तक देने के लिए बेहद अनुकूल बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन गया है, जो अगले कुछ घंटों में और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही इसी सिस्टम से मॉनसून उत्तरी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 25 मई के आसपास मॉनसून केरल तट पर जमकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक रुपए में भरपेट खाना क्या है, ये आगे आपको दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने का दिया आदेश। एसपीजी को ईवी वाहन को शामिल करने को कहा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कटौती के निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर।
4: मौसम की चुनौती के बीच उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा। अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किए।
3: दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट।
4: से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है मॉनसून। चार दिन पहले पहुंचने की संभावना। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की उम्मीद।
3: फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला। भारत की तरफ से फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

और ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आप सबका स्वागत है। देखिए, चार धाम तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मौसम अपनी चालाकियां लगातार दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, भक्तों का जो जोश है वो भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस के साथ ITBP के भी जवान जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को जुटाने में लगातार तैनात है। साथ ही साथ यात्रियों को मौसम को लेकर लगातार अपील की जा रही है कि मौसम देखकर ही यात्रा करें, ताकि इसी तरह से निर्बाध जो यात्रा है वो उसका उत्साह बना रहे और उसी की तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में आस्था का मेला जमा हुआ है। हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालु तमाम पहुँच रहे हैं। वैसे ही चारों धामों में आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन के साथ ही केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम या फिर गंगोत्री यमुनोत्री, हर जगह भारी संख्या में यात्रियों का आना हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में औसतन रोज 15,000 से अधिक भक्त पहुंच रहे हैं, तो केदारनाथ धाम में 20,000 से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में औसतन हर रोज 12,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो यमुनोत्री धाम में 12 मई को 12,722 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,94,075 श्रद्धालु मां यमुना का दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर 12 मई को 12,600 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और अब तक 1,92,022 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 12 मई को

25,404 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का आशीर्वाद दिया। इस तरह से अभी तक 4,91,155 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा के धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 मई को 18,090 श्रद्धालुओं ने भू वैकुंठ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और अब तक बद्रीनाथ धाम में 3,02,821 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जबकि अगर चार धाम यात्रा में शामिल कुल श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी तक 11,80,043 श्रद्धालु पुण्य लाभ ले चुके हैं।

0: जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहां 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। धाम की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद दिखाई दे रहे हैं।
1: अच्छा के अच्छे इंतजाम है और यात्रा भी अच्छी चल रही है वहाँ पे और सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है वहाँ पे। मैं अभी से उतर के आ रहा हूँ बद्रीनाथ से। दर्शन के भी अच्छे इंतजाम है, लाइन से दर्शन हो रहे हैं और जो वहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनका पूरा सहयोग है वहाँ पे दर्शन कराने में।
0: मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चमोली जिला प्रशासन ने भी चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को सतर्क रहने और सावधानी के साथ यात्रा करने की सलाह दी है।
2: अभी जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सचेत किया जाता है कि सावधानी पूर्वक यात्रा करें और मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखें और कहीं पर बारिश या ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें और बाकी कोई आपदा की स्थिति आती है या कुछ अन्य कोई समस्या आती है तो हमारे आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से कारोबारी भी खुश हैं। स्थानीय उत्पादों की डिमांड भी बढ़ रही है।
3: अचानक गर्मी, अचानक सर्दी का इस समय देखने को मिल रहा है, यही बद्रीनाथ धाम में है। धूप रहते हुए तो बद्रीनाथ में अच्छी खासी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास भी हो रहा है। जहां एक और ठंड और मौसम चुनौती बना हुआ है, वहीं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो आस्था है, वो मौसम को भी चुनौती दे रही है। इतनी भीड़ इस बार बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही है, चाहे सड़कें कहें या फिर बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालु या फिर भारत का प्रथम गाँव माणा इस समय श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है।
0: बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा का रुख कर रहे हैं। माणा गांव भी यात्रियों से गुलजार नजर आ रहा है। लगातार मौसम बदलने के साथ ही इलाके में जबरदस्त ठंड और बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। ऐसे में माणा में गर्म कपड़ों की दुकान पर भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और जब बात कुदरती सुंदरता की हो तो हमारे देश से सुंदर दुनिया में कोई जगह नहीं। टूरिज्म के लिहाज से हम आपके लिए घूमने फिरने की कुछ ऐसी जगह लेकर आए हैं जो हमारे देश में ही है और अभी कम लोगों ने देखी है। ऐसी एक जगह है झारखंड का पतरातू। ये जगह रांची से कुछ घंटों के रास्ते पर है। इस खूबसूरत जगह को झारखंड का मनाली कहते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है और ये जगह धीरे धीरे बाइक राइडर्स से लेकर टूरिस्ट तक सबका पसंदीदा डेस्टिनेशन बनती जा रही है।

0: घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी वादियाँ और बीच में चमकता पतरातू डैम। यहाँ का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। यही वजह है कि लोग इसे झारखंड का मनाली कहते हैं। मानसून में झारखंड के रामगढ़ के पतरातू की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि बाइक राइडर से लेकर फैमिली टूरिस्ट तक हर कोई यहाँ की शांत वादियों का आनंद लेने पहुँचता है। रांची से रामगढ़ जिले के पतरातू के बीच महज 32 किलोमीटर का सफर हर किसी को रोमांच से भर देता है। पिठौरिया घाटी की घुमावदार सड़कों के बीच लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। पतरातू डैम यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटक यहाँ बोटिंग का आनंद लेते हैं, जबकि शाम के समय डूबते सूरज का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ बने लेक रिजॉर्ट, पार्क और लंबा वॉकवे फैमिली ट्रिप के लिए इसे और खास बनाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी पतरातू वैली किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बाइकिंग, रोड ट्रिप और कैंपिंग का अलग ही रोमांच है। कई ट्रैवलर्स तो इसे वीकेंड राइड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून तलाश रहे हैं तो पतरातू वैली आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकती है। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भाई आपको आईपीएल के मैदान में लिए चलते हैं। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होने जा रही है। ये मैच जो है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीजन में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होने जा रही हैं। पिछले सीजन में देखें अगर हम तो दोनों के बीच खेला गया मुकाबला बेंगलुरु ने जीता था। अब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। आरसीबी जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो वहीं पर बेंगलुरु 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है, जबकि कोलकाता के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत बहुत जरूरी है। उसके 10 मैचों में 9 अंक हैं। वैसे दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मैच हुए, इसमें बेंगलुरु ने 15 और कोलकाता ने 20 मैच जीते।
2: और चलिए अब आपको राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर्स के दिलचस्प वीडियो जरा दिखा देते हैं। क्रिकेटर कुकिंग करते नजर आए, ये वीडियो राजस्थान रॉयल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। वैभव इन दिनों आईपीएल में खेल रहे हैं, इसी बीच उनका अलग अंदाज भी सामने नजर आया और उन्होंने मजाक में कहा कि मम्मी की रोटी से ज्यादा गोल रोटी मैंने बनाई। वही टीम के कैप्टन रियान पराग और दूसरे खिलाड़ी भी खाना बनाते इस वीडियो में नजर आए।
3: मम्मी के रोटी से ज्यादा गोल रोटी है। बाकी
4: अगर इतना अच्छा जीतना है तो तुझे हम जिता देते हैं।
5: नमक डाल दिया ज्यादा।
1: देखिए महंगाई के दौर में जहां 10 रुपए में चाय मिलना भी अब मुश्किल हो रहा है, वहीं पर गाजियाबाद में एक ऐसी पहल लोगों का पेट भर रही है जहां सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
6: कतार लगी है, खाना बट रहा है, लोग आ रहे हैं, खाना ले रहे हैं। कोई खड़े होकर खा रहा है तो कोई बैठ कर खा रहा है। तेज धूप होने के बावजूद इस पार्क नुमा जगह पर खाना खाने वालों की भीड़ लगी है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के साहिबाबाद की हैं। यहाँ पर केवल 1 रुपए में खाना मिलता है, तो हर दिन दोपहर के वक्त आसपास की दुकानों और फैक्ट्रियों में कामकाज करने वाले लोगों, रिक्शा वालों से लेकर तमाम लोग यहाँ पर लंच करने पहुँचते हैं।
7: इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सिर्फ 1 या 2 रोज का किस्सा नहीं है, बल्कि ये हर रोज की कहानी है, हर रोज की तस्वीर है जब लोग समय से यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने दोपहर का खाना यहीं पर खाते हैं।
6: साहिबाबाद में यह लंगर पंडित गोपाल पुजारी चला रहे हैं। पंडित जी ने यहाँ पर लोगों को भोजन कराने का यह काम कोविड के दौरान शुरू किया था। कोविड के बाद कुछ समय तक यह सिलसिला बंद रहा, लेकिन 14 जनवरी 2022 से एक बार फिर से जो सिलसिला शुरू हुआ है वह लगातार जारी है। तब से इसी तरह यहाँ पर हर दिन दोपहर का खाना दिया जाता है और हर तबके के लोग यहाँ आकर अपनी भूख मिटाते हैं।
8: मैं तो यही कहूँगा कि वैसे तो लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं खाने के लिए, बट एक बार यहाँ भी आकर के देखो, वहाँ से कहीं ज्यादा अच्छा खाना यहाँ मिलता है।
9: हाँ, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भूख लग रहा तो खाना पड़ेगा है ना, ये किसी को कोई बंदा का खाना खा रहा है तो कोई आ जाएगा, तो भूख लग रहा तो 1 रुपये दे खाना पड़ता है। और कोई भी अपना मर्जी से सेवा करने लगते हैं, बहुत आदमी सेवा करने लगे, सेवा भी करते हैं,
8: लेकिन 1 रुपये में यहाँ फुल सेवा है। अगर है भी 1 रुपये तो खा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी पंडित जी खाना खिला देते हैं।
6: खास बात यह है कि यहाँ पर भोजन का मेन्यू हर दिन अलग होता है और लोगों को भरपेट भोजन कराया जाता है।
10: क्वालिटी फूड बनाते हैं, रोज बदल बदल के खाना लाते हैं। आज मेन्यू में थी बर्फी, आलू सोयाबीन की सब्जी, रोटी और चावल और बिस्किट भी। फुल मील है, लोग हमें देते हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी पनीर की सब्जी होती है, कभी छोले होते हैं, कभी मिक्स वेज होता है, कभी 2 सब्जी भी होती है, कभी 3 भी होती है, कभी पूड़ी भी होती है, कभी पराठे भी होते हैं, कभी खीर भी होती है, कभी जलजीरा भी होता है, कभी माजा भी होता है, कभी फ्रूटी भी, मतलब जितना हम लोग शुद्ध भोजन में खा सकते हैं। शुद्ध भोजन मतलब जो अगड़म सगड़म छोड़ के भगवान को जिसका भोग लग सके वो सारा यहाँ बटता है।
7: क्या बनना है ये कौन तय करता है?
11: ये श्याम बाबा करते थे।
10: श्याम बाबा करते हैं तय।
11: हाँ।
10: कल जो होगा हमारे पास लास्ट नाइट में, वो अगले दिन बनाना है हमें।
7: जो आज आया, जो कल स्टोर में है, वही बन जाए।
10: वही बन जाते हैं, वो भगवान की ऐसी कृपा है, रिपीट कुछ नहीं होता।
11: हम जो सोचेंगे वो ठाकुर जी अपने आप हमारे लिए सोचेंगे, और ये सोच मैं कभी नहीं रखती। उनको जो करना होगा वो करेंगे, हमें क्या करना, करने वाले तो कभी हमने सोचा था कि रसोई भी हम लोग चलाएंगे, नहीं सोचा था ना। तो श्याम बाबा की कृपा, जो ठाकुर जी अपनी सेवा में लगा ले उसे स्वीकार कर लो।
6: पंडित जी अपने परिवार के साथ इस मिशन में जुटे हुए हैं और अब तक तमाम लोग इससे जुड़ चुके हैं, जो खाना बनाने से लेकर बांटने तक की व्यवस्था में मदद करते हैं। इसकी बदौलत इनकी यह रसोई जरूरतमंदों का पेट और दिल दोनों भर रही है। पंडित जी का संदेश है, लोगों का भला करना चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे।
7: आप कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो श्याम कर रहे हैं, श्याम के नाम पर भी कुछ कह दीजिए, खत्म करते हैं।
10: ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। भगवान का इतना सा नाम लिया था, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। जय श्री श्याम।
7: भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम से सब कुछ चल रहा है। यहाँ की भीड़, यहाँ के लोग बताते हैं कि इस रसोई से उनका कितना बड़ा फायदा हो रहा है। और किसी को अगर आप एक वक्त का भोजन दे रहे हैं तो देने वाला उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि सब कुछ श्याम कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि लोग भी आगे आकर इसका हिस्सा बनते हैं, जिससे जो बन पड़ता है वो दे जाता है। कुल मिलाकर इस रसोई में आकर आप समाज को जुड़ते हुए देखते हैं, बिना ये सोचे कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अमीर, कौन गरीब। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
1: देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ जवानों ने एक आदमी की जान बचाई। जी हाँ, बताया गया है कि एक आदमी अपनी कार से जा रहा था, रास्ते में तबीयत खराब होने पर उसने गाड़ी हाईवे पर किनारे पर लगा दी। तभी पास में तैनात सीआरपीएफ कार के पास पहुंचे उनके जवान, तो कार सवार को बेहोश हालत में उन्होंने पाया। कार में बैठे आदमी को हार्ट अटैक आया था, ऐसे में तुरंत जवानों ने उस आदमी को CPR दिया, इमरजेंसी दवाइयां दी और मरीज को तुरंत नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। इस मदद के लिए सीआरपीएफ के जवानों की खूब चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज।
12: एक आम नागरिक अपनी कार में आता हुआ दिखाई दिया हमारे कार्मिकों को, और उसको आकर के हमारे जहाँ पर हमारे ट्रूप तैनात थे उसके पास उसने अपनी गाड़ी रोकी। हमारे जवानों को लगा कि चालक को कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत दौड़ करके वहाँ पर हमारे कार्मिक गए जवान, और उन्होंने देखा कि चालक अनकॉन्शस स्टेट में है। उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया गया, CPR दिया गया, साथ ही साथ हार्ट अटैक से संबंधित जो मेडिसिन है वो तुरंत उसको दी गई। उसके पश्चात उस व्यक्ति को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबेहरा पहुंचाया गया और जिससे कि उसकी जान बच सकी।
1: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए अर्षिता धवन की फनी इंस्टा स्टोरी।
13: एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी मैं लोगों को ये प्रूव करती रहूं कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूं, नहीं हूं, छुड़ैल हूं। दफा हो जाओ सारे, दूर रहो, एकदम दूर, ओके बाय।
14: मैं बिहार से आया हूं।
15: आया हूं कि आई हूं?
14: आई हूं। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था।
15: देखा था कि देखी थी?
14: देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया।
15: चला आया कि चली आई?
14: चली आई।
15: तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो?
14: आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है।
15: क्यों?
14: वो शराब वराब पीता है, मना करता हूँ तो।
15: आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है, कहाँ है बात कराओ।
14: वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई।
15: वो नहीं आई? पति नहीं आई?
14: गुरु जी धन्यवाद,
15: खुश
14: मैं बहुत खुश हूँ।
15: मोगैम्बो खुश हुआ है।
2: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
17: क्या है अपरा एकादशी की महिमा? अपरा एकादशी पर क्या होगा पूजा विधान? अपरा एकादशी पर किन पापों का होगा प्रायश्चित और मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wait.
2: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने का दिया आदेश। एसपीजी को ईवी वाहन को शामिल करने को कहा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी कटौती के निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने किया मेट्रो में सफर, लोगों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। महंगे होते सोने के बीच बाजार में बढ़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज, लोगों को लुभा रही है जयपुर की मीनाकारी ज्वेलरी। मौसम की चुनौती के बीच उत्साह के साथ जारी है चारधाम यात्रा, अब तक 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का रेड अलर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, इस साल तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है मौसम। फ्रांस के कान में लगा सितारों का मेला, भारत की तरफ से फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के पहुंचने की उम्मीद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, जिसको अचला एकादशी कहा जाता है। क्या है इस एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और किन बातों का रखना है ध्यान, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अपरा यानी अचला एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हम सब रखते हैं, नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के, तमाम व्रत जितने भी रखे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक मन पर नकारात्मक असर डाल सकती है और चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो वो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकता है। यहां तक कि एकादशी का व्रत रख करके अगर साधना की जाए तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका सीधा प्रभाव
मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का उपाय करके, एकादशी का व्रत रख के आप अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एकादशी रखने का ज्यादा फायदा आपको प्राप्त नहीं होगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का, जिसको अचला एकादशी भी कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, आप किसी भी एकादशी का पालन करें, किसी भी एकादशी का उपवास रखें, आपका मन और आपका शरीर एकाग्र होगा, लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी जीवन में उत्पन्न कर देती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पालन करने से आपको गलतियों की क्षमा मिलती है, खास तौर से झूठ बोलने के पाप से, पाखंड से मुक्ति मिलती है। और अगर आपने कोई गलती की है जीवन में तो उस गलती की क्षमा मिल जाती है अगर आप अपरा एकादशी पर व्रत रखकर साधना करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है और इसके प्रभाव से इस व्रत को रखकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
अपरा एकादशी का पालन अगर ईमानदारी से किया जाए, व्रत रख के उपासना साधना ध्यान किया जाए, तो ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। इस बार जो अपरा एकादशी है यानी अचला एकादशी है वो 13 मई को है, तो इसका पालन करके अपनी गलतियों को क्षमा करवाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, और अगर जीवन में कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत रखने का नियम क्या है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उस व्रत को रखने का नियम क्या है, तरीका क्या है? दो प्रकार से एकादशी का उपवास रखा जाता है। एक तो है निर्जल व्रत, दूसरा है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर या पानी पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर, फलों का रस लेकर, नींबू पानी पीकर उपवास रखना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है या लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कहीं कहीं पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में भगवान को फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर यही होगा कि अगर आप उपवास रखते हैं
तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। और उपवास रखने का मतलब ये होता है कि आप केवल अनाज नहीं खाएंगे, उससे उपवास नहीं होगा। जब भी मौका मिले पूरे 24 घंटे में अधिक से अधिक मंत्र जप करें, अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक ध्यान करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं, क्या करने से बचना चाहिए। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। एकादशी के दिन कम से कम प्रभु मांस मदिरा का सेवन मत करिए, भले ही व्रत मत रखिए। अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखने का प्रयास करिए। और एकादशी की तिथि है तो कम से कम भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। और मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है नाम जप करिए। भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनके नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन, प्याज लहसुन भी ना हो, सात्विक भोजन खाइए और प्रक्रियाओं का पालन करिए, यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए, मंत्र जप करिए, स्तुति करिए, ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की अपरा एकादशी के बारे में, अब जान लेते हैं आज के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप नए कपड़े पहनने जा रहे हैं या कर्ज लेने जा रहे हैं तो बुधवार को करिएगा।
नए कपड़े धारण करना, कर्ज लेना बुधवार को शुभ होता है। इससे नए कपड़े लगातार मिलते रहते हैं और कर्ज अगर बुधवार को लेंगे तो आसानी से चुका पाएंगे, जीवन में सफलता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

हम आपको 10 शिक्षाएं राम जी की बतलाएंगे। पहली शिक्षा सुनिए, पूछो क्या, जोर से पूछो तब बताएंगे। मुंबई वाले होते बड़े कंजूस हैं। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, पीछे हम मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे, पहली बार जब आए, एक बहन जी होंगी पनवेल की, कार चला रही थी आगे आगे, और वो बार बार ऐसा हाथ करें, हमें लगा मुड़ेंगी, तो हमने धीरे कर ली, उनने फिर हाथ भीतर कर लिया, सीधी चली जाए, थोड़ी देर बाद फिर हाथ निकाला, हमें लगा शायद अब मुड़ेंगी, ध्यान भूल गई होंगी, फिर भी नहीं मुड़ी, हमने फिर मोटरसाइकिल धीरे करी, अब तीसरी बार उन्होंने फिर हाथ निकाला, अब हमारा दिमाग ही खराब हो गया, हमने मोटरसाइकिल तेज चलाई, आगे आकर के खड़े, मुझे रुकिए रुकिए, बोली जी बोलिए भाई साहब क्या बात है, हम कहा बहन जी एक बात बताओ, बार बार हाथ निकालती हो, मुड़ती नहीं हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने? अरे बोले महाराज जी हम मुड़ने के लिए हाथ नैन पालिस सुखा रहे हैं। हम समझ गए हम पनवेल आ गए, उसी दिन हम समझ गए थे पनवेल आ गए हैं। ऐसे लोग पनवेल मुंबई में ही पाए जाते हैं, तब से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पनवेल वालों को समझते हैं ठीक तरीके से। हाँ खैर ये पूर्व जन्म की घटना है, इससे क्या लेना देना अभी, क्योंकि कल तक हमें रुकना है, कौन गालियां खाए, बोलो सीताराम। तो राम जी से 10 चीजों में कौन सी सीख सीखनी है, 10 बातें पूछो, पहली बात बताओ गुरु जी, जोर से बोलो। राम जी की पहली बात हमने ली है एक पत्नी व्रतधारी। राम जी की पहली शिक्षा क्या है, एक पत्नी। जिस वक्त राम जी का प्रादुर्भाव भया उस वक्त अनेक पत्नियों का विधान था, लेकिन यही तो मर्यादा है, प्रभु श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण करके पूरे दुनिया को एक नई शिक्षा दी। क्या, जिसकी एक पत्नी व्रतधारी होता है, जो एक पत्नी व्रतधारी होता है वह ब्रह्मचारी की ही श्रेणी में आता है। एक बात, अच्छा महाराज जी ये तो आपने बात बताई एक पत्नी व्रतधारी राम जी की बात, अब मान लो कोई लफड़ों में फंस जाए तब क्या करे, इसका भी एक उपाय बताया है रामायण में, पूछो कहां। रामचरितमानस में जब राम जी महाराज पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी जैसे ही पहुंचे, राम जी का पंचवटी पहुंचना हुआ, उसी समय

सूपनखा राम जी के पास आई, क्या बोली? तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। राम जी से भेष बदल करके वह सूपनखा आई, बोली महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। राम जी बोले हम करें क्या? सूपनखा बोली महाराज शादी कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? राम जी बात कर रहे सूपनखा से पर देख रहे जानकी जी की तरफ। रामायण में वर्णन आया सीतह चिताय कही तही बाता। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जिससे बात करेगा उसकी तरफ देखेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन राम जी बात कर रहे सूपनखा से, देख रहे जानकी जी की तरफ, तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप सूपनखा से बात कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, इसका उत्तर क्या है? राम जी ने मुस्कुराते हुए मानो बड़ा प्यारा संदेश दुनिया वालों को दिया हो कि जब कोई भी वासना का रूप धारण करके तुम्हारे ऊपर डोरे डालने आ जाए तब घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी की तरफ देख करके उससे बात करना, कभी तुम्हारा मन नहीं भटकेगा और तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सीता चीता कही तही बाता। राम जी ने जानकी जी की तरफ देख करके कहा एक बात और, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति सदैव प्रत्येक युद्ध में अजय रहता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ का भी पालन करता है, उसके वीर के तेज के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकती है, वह सदा अजय रहता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए राम जी की पहली शिक्षा है एक पत्नी व्रतधारी। अच्छा राम जी की दूसरी शिक्षा क्या है? हा हा हा, दूसरी शिक्षा बड़ी प्यारी, भाई के प्रति प्रेम। भाई हेतु परित्याग राम जी ने किया, ये भारत के लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। राम जी राजपाट भाई के लिए त्यागते हैं। देखो जो अपना राजपाट भाई के लिए छोड़ दे वो श्री राम, और जो राजपाट के लिए भाई छोड़ दे वो आजकल के लोग। धन्य है राम जी, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा, एक वचन मानकर राजपाट जो रात को राजा बनने वाले थे सुबह प्रातः काल ही बन के राजा बन गए। लेकिन राम जी ने भ्रातत्व प्रेम का यहाँ प्रमाण दिया है कि भाई के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले अगर भाई के प्रति इतनी उदारता रखेंगे तो घर घर नहीं घर मंदिर बन जाएगा।

आई के प्रेम की कोई क्षमता नहीं। राम जी जब बन गए, चित्रकूट में निवास किया, भरत जी को पता लगा। आहा, भरत जी से कहा कि आप जो है अयोध्या चलो ननिहाल से। भरत जी अयोध्या आए और जब पूरी बात भरत जी को पता लगी तो गुरुदेव ने कहा, सुनो भरत जी,

छह चीजें भगवान के हाथ में, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश। लेकिन हे भरत, अब तुम एक काम करो, राम बन के राजा हो गए, तुम अयोध्या के राजा हो जाओ। बताए भरत जी ने क्या जवाब दिया। भरत जी बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार है, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन यह आज्ञा नहीं हम आपकी मानेंगे। क्यों, हम तो गुरु हैं। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहते, गुरुदेव जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ दिया हो और हम अगर राज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो महाराज ये पृथ्वी फट जाएगी, भरत उसमें समा जाएगा, इसलिए मेरे गुरुदेव हम हर आज्ञा आपकी मानेंगे लेकिन राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे। जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ा उन्हीं राम के लिए हम भी, यहाँ तक कि राजपाट तो छोड़ो हम अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हैं। आहा, तो किसी ने कहा इतना ही प्रेम है तो राम जी को लौटा लाओ, तुम्हारे कहने पर ही राम जी आ जाएं, पर भरत जी का भी प्रेम देखना। बोले चलो, कहां मिलेंगे, चित्रकूट में। तो गुरु जी बोले चित्रकूट जाना ही है, रथ से चलो जल्दी पहुंच जाओगे। भरत जी रथ से नहीं गए, बोले अगर राम जी पैदल गए और हम रथ से जाएंगे तो धर्म न जाने कहां चला जाएगा। हमारे स्वामी प्रभु श्री राम हैं और हम रथ से नहीं, वो तो पैदल गए, धर्म हमारा बनता कि सिर बली जाऊं, सिर के भले जाऊं तभी हमारा काम बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे भाई गए हम भी वैसे ही वैसे चलेंगे। आहा, और भरत जी नंगे पैर जिस तरफ राम जी गए थे उसी तरफ गए, प्रयागराज पहुंचे तो महात्मा पहले तो विचार करने लगे कि भरत जी अगर चित्रकूट पहुंच जाएंगे आफत हो जाएगी, राम जी भरत जी का रोना देख करके वापस लौट आएंगे, और अगर राम जी वापस लौट आए तो रावण का वध नहीं होगा। तो महात्मा पहले तो रोकने का विचार करते, लेकिन जैसे ही भरत जी की दशा देखते आंखों में आंसू, आंखें एकदम लाल, पैरों में फटे हुए, एकदम विह्वल स्थिति, और वो आर्तनाद हर एक एक दो दो मिनट बाद जब भरत जी दोनों पांव फैलाकर कहें, हे भैया राम, हे राम, हे राम, हे राम, इस आर्तनाद को सुनकर प्रयागराज के महात्मा भी बोल पड़े कि हे भगवान अब तो एक ही कृपा करना, भरत को हम ऐसा रोता नहीं देख सकते हैं, तो कृपा करके भरत के साथ वापस अयोध्या चले जाए। ऐसा प्रेम भरत का, इतना गहरा प्रेम भरत का। मेरे भारत के लोगों, मेरे प्रियजनों, भाई वही है जो अपने भाई के लिए टूट पड़े। धन्य है भरत जी, रो पड़े, झरझर करके आंसू बहा रहे। यहां एक चर्चा और आती है, प्रयागराज के महात्मा कहते हैं हमने तपस्या की तो हमें राम जी के दर्शन मिले। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हम विचार कर रहे थे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा, लेकिन जब भरत जी के दर्शन हुए और भरत जी को देखा तो महात्मा दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़े प्रयागराज के, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है, भरत भाई के दर्शन है। और झरझर करके आंसू बहाते, माई बाप मेरे प्रियजनों, जाकर के गले लगा लिया राम जी को। भरत जी को देखकर

एक घड़ी राम जी भी बोल पड़े, भरत अगर तुम्हें लगता है कि हमारे चलने में तुम्हारी प्रसन्नता है तो हम चल पड़ेंगे। राम जी की बात सुनकर देवता चकित हो गए, कहीं राम जी वापस न लौट जाएं। भरत जी तो कारुण्य भाव में आर्तनाद करते हुए राम जी के चरणों में है। मेरे प्रियजनों, राम जी के जीवन का यह दूसरी शिक्षा है। क्या? राम जी ने अपने जीवन काल में यही पूरी दुनिया वालों को सिखाया कि जो भाई के लिए अटूट प्रेम रखेगा उसका घर घर नहीं घर मंदिर होगा, और जहां भाई भाई में प्रेम होगा वहीं राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं राम राज्य होगा।

जिस घर में भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, आजकल हम समाज में बड़ी दुर्दशा देखते हैं। भाई भाई ऐसे लड़ते, अदालतों पे पहुंचते, कोर्टों में जाते। वो भाई भाई जो एक माँ के जाए, एक कटघरे में एक भाई खड़ा, दूसरे कटघरे में दूसरा भाई खड़ा, और दोनों दलीलें दे रहे, दोनों वकीलें लगा रहे, दोनों लड़ रहे। माई बाप, लोग हमसे पूछते राम राज्य क्या है। मेरे प्रिय जनों, जिस घर में ये बातें बंद हो जाएं, वहीं राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। जिस घर में भाई भाई का प्रेम हो जाए, वहीं राम राज्य है। जिस घर में बहन भाई का प्रेम हो जाए, उसी घर में राम राज्य है। मेरे भारत के लोगों और हमको जानने वाले प्रियजनों, आज की कथा में हम प्रार्थना करेंगे। राम जी का दूसरा गुण है भ्रातृत्व प्रेम, भाई के प्रति अटूट प्रेम। ये राम जी से सीख लेनी है कि हमें भाई भाई में, बहन भाई में खूब प्रेम रखना है। राम जी की ये दूसरी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा सुन, राम जी में तीसरी शिक्षा, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। राम जी जीते बहुत प्यारा है। यहां हम लोग जीवन का महत्व तो ही पता नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बंगले बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, जिए जा रहे, न ये पता है कि बनना क्या, न ये पता कि हम कौन है। नाम पूछो तो नाम तो बता देते हो, पर क्या तुम्हारा यही नाम है? कभी तुमने विचार किया? ये नाम तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद रखा गया, पर हु आर यू, तुम हो कौन, तुम किस लिए आए? क्या तुम पैसे कमाने आए? क्या तुम केवल संसाधन जोड़ने आए? क्या तुम केवल साधना जोड़ने आए? या तुम साधन जोड़ने के साथ साथ साधना पकड़ करके परमात्मा को पकड़ने आए? कभी नहीं पूछता व्यक्ति। हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं, काका हाथ रसी। वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। उन्होंने कविता में लिखा, काका हाथ रसी कहते थे, बहुत भावपूर्वक है, उनकी विनोद में है, इसको आप लोग बहुत गंभीर में मत लेना, कि आप कुछ लोग गंभीर में इसको ले लो, बहुत विनोद की बात है। लेकिन काका हाथरसी जी बोलते थे, वो बड़े भाव से कहते थे, काम कुछ तू ऐसा कर जा, मरण कहे काका कबीराय, काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। पर इसका मतलब ये जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ है। मेरे पागलो, जीवन उसी का सार्थक है जिसे गुरु कृपा मिल जाए, जिसे राम जी का पता मिल जाए, जिसे हनुमान जी मिल जाए, जिसे भक्ति मिल जाए। राम जी ने विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। रात को राजा बनना था, सुबह बन का राजा बना, और मां कौशल्या ने राम से पूछा, क्या बात है, मुहूर्त कब का है? आज सुबह हो गई, तुम्हारा आज राज्य अभिषेक है, कितने बजे का मुहूर्त है? राम जी मुस्कुरा करके आ गए हैं कैकेयी के पास से, महाराज दशरथ के पास से, मुस्कुरा करके मां से कहते हैं, मां

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
3: Good news today is really good. In this case, it's not a murder and a chill. It's not a murder.
4: बाघों की स्वच्छंद अटकेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखता है सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसे आबाद करने में वैसे तो कई बाघ बाघिनों का अहम योगदान है, लेकिन यहां की पॉपुलर बाघिन T16 मछली के बाद अगर किसी बाघिन को याद रखा जाएगा तो वो है T39 नूर, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। 19 साल से ज्यादा उम्र की ये बाघिन नूर उम्रदराज होने के चलते भले ही अब रणथंभौर के बाहरी इलाकों में घूमती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वो यहाँ बखूबी सर्वाइव भी कर रही है और फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ है। हालांकि वन विभाग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए रणथंभौर की नूर पर यह खास रिपोर्ट।
5: ये रणथंभौर की जीवंत विरासत रणथंभौर की नूर है। नूर यानी यहाँ की एक लेजेंड बाघिन जो T39 के रूप में जानी जाती है और प्यार से इसे नूर या सुल्तानपुर फीमेल कहा जाता है। नूर महज एक साधारण बाघिन नहीं है, अपने असाधारण जीवन से नई मिसाल कायम करने वाली नूर यहाँ की सबसे उम्रदराज बाघिन है। 19 साल की नूर अब बढ़ती उम्र के साथ जंगल के बाहरी इलाकों में घूमती नजर आती है। आमतौर पर जंगली बाघों का जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन नूर बिना किसी बाहरी सहायता या मानवीय बाधा के रणथंभौर में 19 साल पूरे कर लिए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है। 2008 में रणथंभौर के सुल्तानपुर में बाघिन T39 नूर का जन्म हुआ। नूर बाघिन T13 बिंदा की संतान है, जबकि बाघिन T16 मछली नूर की मौसी है। बाघिन बिंदा और मछली ने भी लंबी उम्र पाई थी और दोनों का रणथंभौर को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नूर की तुलना अक्सर उसकी मौसी बाघिन T16 मछली से की जाती है, जो वंशावली बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नूर भी यहाँ 5 बार माँ बन चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 5 बार में नूर ने यहाँ कुल 9 शावकों को जन्म दिया। 2022 के आखिर में महज 15 साल की उम्र में नूर ने 2 शावकों को जन्म देकर सबको चौंकाया था। नूर ने 19 साल में रणथंभौर को आबाद करने में अहम भूमिका निभाई है। नूर की वंशपेला रणथंभौर में खूब फल फूल रही है। नूर की बेटी नूरी और सुल्ताना का अब यहाँ राज है।
6: तो ये बाघिन तो बहुत ही अनोखी है। ये बाघिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है, क्योंकि इसका जो एक बेटा है सुल्तान, वो धौलपुर और करौली दोनों जिलों में बाघ के बच्चे पैदा करने के लिए जाना जाता है। सुल्तान बहुत ही यहाँ का फेवरेट टाइगर रहा है और वहाँ जाकर के उसने परिवार बसाए। इसके और भी बच्चे रणथंभौर में बहुत ही फेमस रहे, सुल्ताना और नूरी, जिन्होंने अभी भी दो अलग अलग जोन में दिखते हैं। इसकी बेटी सुल्ताना अक्सर देखी जाती है रोड पर, गणेश रोड पर, परंतु इस जो बाघिन का पूरा परिवार का रणथंभौर के डेवलपमेंट में विकास में बहुत बड़ा योगदान था।
5: स्वभाव में शांत नूर के शरीर पर लहरदार धारियां हैं, जो किसी आभूषण के जैसे चमकती दिखती है, इसलिए उसे नूर यानी चमक नाम दिया गया। यही नहीं, वो यहाँ माला के नाम से भी जानी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बाघिन नूर के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। युवा बाघ बाघिनों के दबाव में अब बाघिन नूर रणथंभौर के जंगल के बाहरी इलाकों में ही दिखती है, जो बढ़ती उम्र के चलते इलाका छोड़ने और शांत स्थानों की तलाश करने का संकेत है।
7: P39 को किसी भी तरीके का कभी भी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या किसी तरीके की मेडिकल सपोर्ट की कभी आवश्यकता नहीं रही, और ये वाइल्ड में हमेशा ऐसी घूमती रही। हाँ, अब इसकी उम्र ज्यादा हो गई है, पेरिफेरल सीथ्रू में देखी जाती है। कल भी इसका मूवमेंट बोदल, जो हमारी उगाल की पुलिया, उसके पास देखा गया था, तो लगातार हमारी टीम इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। रणथंभौर को आबाद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसने 3 बार लिटर दिए, और जो अभी वर्तमान में T105 107 जो आप लाइग्रेस देखते हैं, जिनके और बच्चे हुए और पूरे इस मेल कोर जोन में जो रहते हैं वो इन्हीं के वंशज थे। बेटी 13 की बेटी थी, और नेचुरली वाइल्ड में किसी एक टाइगर का नेचुरली इतने समय तक जीवित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो इसने अचीव की।
5: रणथंभौर टाइगर रिजर्व जैसे जंगलों में जहां बाघ बाघिनों के लिए हर दिन अस्तित्व की परीक्षा होती है, वहां ये बाघिन नूर शानदार जीवन जी रही है। 19 साल की उम्र में भी रणथंभौर की नूर ने बाघों की कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, इसलिए वो आज भी पर्यटकों में पॉपुलर है और बाघों की रानी का ताज हासिल किया है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात के जूनागढ़ का गीरा सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ पर यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है, जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीर बनाई जाती है। इस कला को देखकर मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बनाया है।
5: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए, बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
8: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है, क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेकर बड़ी तक, मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग, जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
5: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है, यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात ये है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
8: 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा मित्र है सुरेश बा रूपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है, और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
5: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर शासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कश्मीर के कस्सू गांव की स्ट्रॉबेरी उन कई फसलों में शुमार है जो जिसकी कटाई पूरे कश्मीर घाटी में पिछले महीने के आखिर और इस महीने की शुरुआत में होती है। इसकी जल्दी कटाई होने के चलते ज्यादातर किसान अब अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक नकदी फसल है बल्कि लंबी सर्दियों के बाद ये फसल जो है किसानों को पैदावार के साथ साथ आमदनी भी देती है। इसलिए मध्य कश्मीर में कई किसान अपनी खेती का तरीका बदलकर स्ट्रॉबेरी की खेती अपना रहे हैं, क्योंकि साल के समय में स्ट्रॉबेरी की मांग न सिर्फ अच्छी हो जाती है बल्कि उन्हें इस फसल के लिए अच्छा खासा पैसा भी मिलता है।

0: श्रीनगर का गस्सू गांव, जो स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां स्ट्रॉबेरी अब कश्मीर में एक मीठा बदलाव ला रही है, क्योंकि अब यहां कई स्थानीय युवा और किसान पारंपरिक फसलों के बजाय स्ट्रॉबेरी को अपना रहे हैं।
1: पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी के कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई है, अब कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। इस खेती से न सिर्फ उन्हें अच्छी जो है आमदनी हासिल होती है, बल्कि साथ ही साथ इसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो दूसरे फसल भी अपने खेतों में उगाते हैं।
0: जहां कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है, अप्रैल मई में कटाई वाली ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा और अच्छी आजीविका दे रही है। यहां के स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान कहते हैं कि इस बार मौसम इस फसल के लिए अनुकूल रहा है। उनका मानना है कि इसकी खेती में बहुत श्रम लगता है और वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा इस खेती को अपनाएं, ताकि ये परंपरा जीवित रहे।
2: मार्च से फिर बारिश स्टार्ट हुई, जो इस फसल के लिए अच्छी है। आप देख रहे हैं कि इस साल अल्लाह का शुक्र है कि फसल अच्छी है। लास्ट ईयर की बात करें तो जब हार्वेस्ट पीरियड 2-3 दिन स्टार्ट हुए थे, उसी दौरान हुआ था बदकिस्मती से वो पहलगाम अटैक, जिसकी वजह से इस क्रॉप पे बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि टूरिस्ट फिर भाग गए, यहाँ पे कोई नहीं था, फिर मार्केट्स भी मतलब नहीं चल पा रहे थे। तो इस साल उम्मीदें हैं कि जो लास्ट ईयर मतलब लॉस हुआ वो इस साल कंपनसेशन हो जाएगा। और फसल की बात करें, फसल इस साल मतलब ठीक है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
0: किसान सरकार से मिल रही मदद से भी खुश हैं, बस उन्हें अब कुछ मार्केटिंग में समस्या आ रही है और वो इसका समाधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में अपनी उपज पहुंचाने के लिए विशेष रेल सेवा शुरू करना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
2: सबसे पहले हर किसी के लिए यही मैसेज है, अगर आपके पास 5-6 मरला ही ज़मीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं स्ट्रॉबेरी, सेफ्रॉन भी लगा सकते हैं या इवन नर्सरी भी लगा सकते हैं। तो दूसरी बात मैसेज है यहाँ की, मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट मतलब जम्मू एंड कश्मीर की और LG एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपने इस साल मतलब अच्छा स्टेप लिया कि आपने मतलब चेरी को मतलब एक्सपोर्ट करना है बाहर, उसके लिए आपने अलग से ट्रेन रखी है। तो माशाल्लाह इसमें मतलब फार्मर्स का ही मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, अगले 1-2 सालों में हम भी देखेंगे कि मुझे लगता है ये भी बाहर जाएगा, क्योंकि गुड स्ट्रेन मतलब अवेलेबल हो जाएगी।
0: स्ट्रॉबेरी विलेज में मुख्य रूप से लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक तरीके से खेती की जाती है। इस फल की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसके चलते घाटी के जिलों में ही इसकी खपत होती है। कश्मीर में लंबी सर्दियां के बाद सबसे पहली फसल जो तैयार होती है वो चेरी और स्ट्रॉबेरी ही है। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी की कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, यही देखते हुए कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में इसकी खेती करने लगे हैं। इससे खेती में न सिर्फ कमाई बढ़ी है, बल्कि स्ट्रॉबेरी की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई भी आसान हुई है। कश्मीर के स्ट्रॉबेरी विलेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, Norah Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: The music. music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: पीएम ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने का दिया आदेश, एसपीजी को ईवी वाहनों को शामिल करने को कहा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कटौती का निर्देश, सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने किया मेट्रो में सफर, आम लोगों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की। महंगे होते सोने के बीच बाजार में बड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज, लोगों को लुभा रही है जयपुर की मीनाकारी ज्वेलरी। मौसम की चुनौतियों के बीच उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक लगभग 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख लोगों ने किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा, मौसम हुआ सुहाना, आईएमडी ने आंधी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भी बारिश का येलो अलर्ट। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में लगा सितारों का मेला, भारत की तरफ से फिलहाल आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, कई और सितारों के यहां पर पहुंचने की उम्मीद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
14: मॉनसून से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने, समय से पहले मॉनसून की दस्तक की संभावना, आईएमडी के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआत की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, मंगलवार रात बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत। आज भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरे रहने का अनुमान, गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ का जताया अनुमान, से पहाड़ों तक असर सीमित रहने की संभावना। नोएडा में देर रात हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की जताई संभावना। यूपी के कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में होगी जोरदार बारिश। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण में होगी बारिश। उत्तराखंड के तीनों जिलों में बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में होगी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी तूफान से सतर्क रहने की अपील की, कहा कमजोर पेड़ के नीचे शरण लेने से बचे, अनावश्यक यात्रा करने से बचे। हरियाणा के नूह मेवात में तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना, अचानक मौसम ने बदली कर रखा। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से मिल रही है राहत, तापमान में भी दर्ज की जा रही है गिरावट। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गिरते रहे ओले, अचानक आए बदलाव को लेकर लोगों में खुशी की लहर। पूर्वी यूपी में कल गरज चमक के साथ बारिश के आसार, आंधी चलने की भी संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट जारी, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने पेश की मिसाल, पीएम मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, हालांकि इसके लिए नई गाड़ियां न खरीदने के भी निर्देश जारी किए। पीएम मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य योगी सरकार ने सरकारी काफिलों में 50% वाहन घटाने के निर्देश दिए। एमपी में सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से घटाए वाहन। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का लिया निर्णय, राजस्थान सीएम ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने के दिए निर्देश। आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना अब होगा और भी ज्यादा महंगा, वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें आज से लागू होंगी, सरकार के इस फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। सरकार ने सोने पर लगने वाले कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी। गुजरात के कच्छ में शादी के दौरान उड़ाए गए सोने के नोट और सिक्के की हुई बारिश, वीडियो हुई वायरल। कच्छ में लोक संगीत के दौरान पैसे उड़ाने की परंपरा काफी पुरानी है, लूटने के लिए मची हो। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का जन सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंच गया करीब 12 लाख पर। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूरे। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 3 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 2 लाख भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 3,86,000 पहुंच चुके हैं भक्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा, ड्राई फ्रूट फल और मिठाई का भोग किया गया। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, शेषनाग मुकुट और मुंड माला से सजा बाबा का दरबार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में यूपी के मंत्री ने किए दर्शन, भगवान महाकाल का लिया आशीर्वाद। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू, भोलेनाथ के किए दर्शन पूजे। दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, राजधानी में ईवी को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़े स्तर पर शुरू की तैयारी। आने वाले महीनों में राजधानी में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को किया जाएगा और भी ज्यादा मजबूत और विकसित, दिल्ली में पहले से 8,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन है मौजूद। 3,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है तैयारी, इससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्राहकों का बढ़ेगा भरोसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर युवक को पड़ा हार्ट अटैक, सीआरपीएफ की 90 बटालियन ने सीपीआर देकर बचाई युवक की जान। कुलगाम में सीआरपीएफ जवानों की सतर्कता आई काम, गोल्डन आवर में इलाज दिलाकर बचाई नागरिक की जिंदगी। तेलंगाना में जेल विभाग द्वारा चंचल गुंडा सेंट्रल जेल में स्थापित एक जेल संग्रहालय और जेल अनुभव कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला हुए इसमें शामिल। जनता को जेलों के इतिहास और कैदियों के जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है संग्रहालय, जेल सुधारों और दंड प्रणाली में बदलावों के बारे में दी जाएगी इसमें जानकारी। बाहरी लोगों को जेल जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए एक विशेष जेल अनुभव विभाग भी बनाया गया है, सुधारात्मक सुधारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य। गढ़वा दौरे पर सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार बूढ़ा पहाड़ के लिए जाएगा। डीजी ने जवानों से भी की मुलाकात, बातचीत कर बढ़ाया उनका हौसला। कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आया ग्लैमरस अंदाज। रेड कार्पेट पर पीच कलर के गाउन में बला की खूबसूरत नजर आई आलिया भट्ट, दर्शकों को वेव करते हुए वेपराजी के सामने पोज करती आई। रेड कार्पेट एंट्री से पहले सोशल मीडिया पर सामने आया आलिया का खूबसूरत फोटोशूट, मिंट ग्रीन बॉल ड्रेस पहने आलिया भट्ट ने खींचा सभी का ध्यान। हल्के हरे नीले लैवेंडर और पीले रंगों से हाथ से पेंट किया गया है ये खास गाउन, जिसमें बना है फ्रेंच रिवेरा का खूबसूरत नजारा। फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की भित्ति चित्रकार बांसुरी चोक्षी ने मिलकर तैयार किया है आलिया भट्ट का ये खास लुक, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। अभिनेता निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म लक्कड़ बग्गा 2 द मंकी बिजनेस की कांस फिल्म फेस्टिवल में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग, भारत इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक को प्रोडक्शन। FTII की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स बनी चर्चा का विषय, कांस के ला सिने सेक्शन के लिए चुनी गई है यह फिल्म। फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला भी कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के लिए तैयार, 29 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। कांस में दिखाई जाएगी गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते, महज 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म दुनिया भर में कर चुके है 122 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस। कांस क्लासिक्स के लिए चुनी गई है मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अमारियन, 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म को 4K में किया गया है रीस्टोर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
15: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: देश से बचत की अपील के बाद पीएम मोदी ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में की कटौती। इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधे से कम की गाड़ियां। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियों में की कटौती। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला। दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो में सफर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैं हमारी बेहद ही खास पेशकश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को लगातार दो दिन लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश हित में हमें ये तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई शादी हो, तो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सोने का काफी हिस्सा विदेश से आता है और उसके लिए विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ती है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आती है। देखिए, ईरान अमेरिका जंग से तेल सोना खरीदना काफी महंगा हो रहा है। ऐसे में पीएम ने सोना खरीदने के बजाय संयम चुनने की सलाह दी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सोने की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। देखिए, दो दिन तक लगातार पीएम मोदी ने अपील की और आज सुबह भारत सरकार ने सोने के आयात को लेकर बड़ा कदम भी उठा लिया है। अब गोल्ड पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है और इस फैसले का सीधा असर सोने की कीमतों और ज्वेलरी बाजार पर पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि बढ़ती गोल्ड इंपोर्ट से ट्रेड डेफिसिट और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सोने की खरीद को कुछ हद तक नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने तेल की खपत कम करने, सोने चांदी की खरीद कम करने जैसी अपील की है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था संभाली जा सके। देखिए, सोने चांदी की खरीद कम करने की वजह यह है कि जितनी खरीद बढ़ेगी दोनों का विदेश से आयात उतना ही बढ़ेगा। ऐसे में पीएम मोदी की अपील के बाद अब सरकार ने इम्पोर्ट टैरिफ ही बढ़ाने का फैसला किया है। तो देखिए, इस फैसले के तहत अब सोना चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% हो गया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ये समझने वाली यहाँ पर बात है, जबकि 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस है जो लगता है। सरकार के इस फैसले के बाद सोना और चांदी के और महंगा होने की बात कही जा रही और ये देखिए, ये तो तय भी है, लेकिन सरकार का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर पर आयात शुल्क बढ़ाने से सिर्फ आयात कम नहीं होगा बल्कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बाहरी दबाव भी घट सकता है। हालांकि आम ग्राहकों की अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मल कस्टमर्स यानी आम ग्राहकों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा होगा, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इससे विदेशी मुद्रा का खर्च कम होगा और ट्रेड डेफिसिट नियंत्रण करने में मदद मिलेगी सरकार को। अब आयात कम होता है तो रुपए पर दबाव घट सकता है, जिससे लंबे समय में महंगाई को काबू करके रखने में सहायता मिल सकती है। तो देखिए, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है और आम नागरिकों के लिए वाकई में ये बहुत बड़ा फैसला है। तो देखिए, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा सोना नहीं संयम चुनिए, पीएम की इस अपील के पीछे क्या मकसद है, क्या संदेश है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत दुनिया में चीन के बाद गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में शादी है, कोई कार्यक्रम है, सोने के बिना अधूरा है। हमारे देश में सालाना 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। भारत में गोल्ड का क्रेज ऐसा है, ऐसी दीवानगी है कि जरूरत का करीब 90% सोना हमें आयात करना पड़ता है, मतलब दूसरे देशों से हमें खरीदना पड़ता है। बीते एक साल की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें भारत में गोल्ड का इंपोर्ट 24% बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक उथल पुथल की वजह से घटकर $691 अरब रह गया है, जबकि 3 महीने पहले ये $728 अरब था। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा बढ़कर $84.5 अरब हो सकता है, जो कि GDP का करीब 2% है। CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति तब बनती है, देखिए समझने वाली बात है, जब कोई देश वस्तुओं सेवाओं और निवेश निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। और आसान भाषा में इसे अगर आप समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हालात तब ऐसे पैदा होते हैं जब कोई देश जितना कमा रहा है उससे अधिक खर्च कर रहा है, इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो देखिए, इसी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। जानकारों के अनुसार मौजूदा हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाए रखने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी,

0: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
1: पीएम मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। देखिए, बहुत से लोग राष्ट्रहित में मोदी के इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में असमंजस की भी स्थिति है। शादी ब्याह के मौसम चल रहे हैं और हिंदुस्तान में तो सोने और ज्वेलरी के बिना शादियां देखिए अधूरी ही मानी जाती हैं। कई रस्मों रिवाजों में सोने की ज्वेलरी के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सोना या उससे बनी ज्वेलरी ना खरीदे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी ने आखिर क्यों एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है देशवासियों से। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश।

0: बुनियाद पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: रविवार के बाद सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील को लेकर पूरे देश का माहौल सरगर्म है, क्योंकि सोना एक सामान्य कमोडिटी नहीं बल्कि देश की सभ्यता, संस्कृति, श्रृंगार, सुहाग और सौंदर्य का भी प्रतीक रहा है। इन सब के साथ ही सोना आपकी आर्थिक शक्ति का भी सूचक रहा है। वक्त के साथ रहन सहन से लेकर खान पान और पहनावे तक में बदलाव का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के आईने में एक एक तस्वीर हजारों साल से यथावत बनी हुई है, और वो है सोने की तस्वीर। हजारों साल पहले शादियों में होने वाले कुल खर्च का तकरीबन 25 से 30 फीसदी हिस्सा सोने की ज्वेलरी पर खर्च होता था, और आज भी शादियों पर होने वाले कुल खर्च का करीब 30 फीसदी हिस्सा सोने पर ही होता है। ये है सोने की अहमियत। यूं तो पीएम ने ये अपील व्यापक देश हित को ध्यान में रखते हुए की है, फिर भी सराफा बाजार से लेकर ज्वेलरी की छोटी छोटी दुकानों और कंज्यूमर्स तक में प्रधानमंत्री की अपील को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
2: देखिए, मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि सोना नहीं खरीदे, मैं समझता हूँ मोदी जी का स्टेटमेंट सही भी है, समझने के लिए फर्क भी है लोगों का। मोदी जी का कहना है कि जो इन्वेस्टर है गोल्ड के रूप में खरीदते हैं, डेड मनी कर देते हैं, जिससे देश के अंदर में बाहर से जो अपन जो सोना इम्पोर्ट करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है फॉरेन करेंसी का, उसको रोकने के लिए ये मोदी जी ने कहा है। बाकी आम उपभोक्ता जो ज्वेलरी खरीदता है, जिसके घर में शादी है हो रहा है, वो तो खरीदेगा ही। देखिए, आप मानिए, अपनी बेटी के लिए कोई भी अपने कोई ऐसा कोडियो उसको बिना खाली हाथ भेज देगा। कोई 10-5 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की ज्वेलरी खरीदते हैं, नहीं बड़े टारगेट वाले तो है नहीं, वो तो नए के बराबर होते हैं। और वैसे भी एक साल से जो हम देख रहे हैं मार्केट में इतनी मंदी आई हुई है 6-8 महीने से, तो 50% व्यापार हो चुका गोल्ड ज्वेलरी का।
1: दरअसल सोना सदियों से लोगों की भावना का भी हिस्सा रहा है। शादियों में या घर के किसी और फंक्शन में गोल्ड या उससे बनी ज्वेलरी रिश्तों की गहराई की पैमाइश का पैमाना बन जाता है। ऐसे में एक साल तक सोना ना खरीदने की पीएम की अपील पर असमंजस की स्थिति बन जाना स्वाभाविक है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि पीएम ने ये अपील की क्यों है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूत और स्थिर बनी हुई है, लेकिन युद्ध के असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में इसका असर ये पड़ा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। रुपए की मजबूती के लिए जरूरी है कि भारत के इंपोर्ट बिल को कम किया जाए। भारत में कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा आयात बिल सोने का ही होता है। भारत के कुल आयात बिल का करीब 10% हिस्सा अकेले गोल्ड का होता है, क्योंकि भारत को अपनी कुल खपत का करीब 90% सोना आयात करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत ने तकरीबन $72 अरब का सोना आयात किया है, जबकि वित्त 2024-25 में भारत ने $58 अरब का सोना आयात किया था। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में $45.5 अरब का सोना आयात किया गया था। इस बीच इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में आई अप्रत्याशित तेजी और रुपए के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की वजह से सोने के आयात बिल पर निश्चित रूप से बहुत बुरा असर पड़ा। अगर सोने का आयात बिल कम हो जाए तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सकारात्मक असर पड़ेगा और रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। अच्छी बात यह है कि कंज्यूमर से लेकर ज्वेलरी मेकर्स तक मौजूदा हालात की तासीर को शिद्दत से समझ रहे हैं, इसीलिए पीएम मोदी की अपील को सीधे तौर पर खारिज करने की जगह बीच का रास्ता अपनाने की बात कह रहे हैं।
3: जहां तक मोदी जी का कहने का है, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरे संसार में चल रही है, भारत में चल रही है, इस रिफॉर्म होना डिजर्व करता है, इस तरह के बात आना डिजर्व करता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सारी बेस्ड है गोल्ड पर। हालांकि ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो केवल 6% ही ज्वेलरी बनती है, टोटल जितना गोल्ड माइन होता है, जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है, उसका 6% ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में आता है। और हमारे जिस समय बात करें, हमारा राजस्थान का इतिहास उठा के देख लें, भारत का इतिहास उठा के देख लें, जब भामाशाह जी ने युद्ध नहीं लड़ा था लेकिन उन्होंने अपना सारा सोना चांदी दे दिया था। इस तरह ही हमारे शेखावटी क्षेत्र में जैन फैमिली, अग्रवाल फैमिली, चौधरी फैमिली, इन्होंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी गला के रख दी थी विदेशियों आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए। अब आक्रमण दूसरे तरीके से होते हैं, आजकल इकोनॉमिक आक्रमण हो रहे हैं, तो इस तरह से हमें हमारे मोदी जी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं।
1: दिलचस्प तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पहले से ही यानी बीते कुछ महीनों के दौरान सोने के इम्पोर्ट का इंडेक्स तेजी से गिरा है। इसी साल जनवरी में लगभग 100 टन सोने का आयात हुआ था जो फरवरी में गिरकर 65 से 66 टन रह गया। मार्च में तो इसकी भारी गिरावट आई और ये 20 से 22 टन तक आ गया। अप्रैल में सोने का आयात सिर्फ 15 टन रहने का अनुमान है जो पिछले कई दशकों में एक महीने में सबसे कम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में हिंदुस्तान के लोगों की जागरूकता काफी बढ़ रही है। जहां तक सोने की बात है तो निश्चित रूप से इससे लोगों का, खास तौर पर महिलाओं का, भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन खरीदारी रोकने की सूरत में ऐसा नहीं है कि लेन देन का विकल्प बंद हो जाएगा। एक तरीका ज्वेलरी के रोटेशन का भी हो सकता है।
4: जयपुर में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जितने भी ज्वेलर्स हैं वो पूरा पूरा सरकार को अभी समय पर सपोर्ट कर रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जो मोदी जी डिसीजंस ले रहे हैं वो एक बार के लिए सही है, हाल फिलहाल उनको सपोर्ट करना चाहिए। चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो भारतीय महिलाओं के पास कम से कम देखा जाए तो 10 ग्राम सोना, 1 तोला सोना होता ही है, तो अभी ये सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो यहाँ पे सोना है उसी को रोटेट किया जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम अभी नया सोना खरीदें। और निवेशकों को बोला जा रहा है कि एक बार के लिए उनको थम जाने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी सोना लेना सही नहीं है, तो एक बार वो जरूर पॉज कर लें। और जो दूसरे लोग जो आम खरीदार हैं उनसे, हालांकि सराफा मार्केट का जो कहना है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी यही सुझाव दिए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो घर में सोना है उसी को रोटेट किया जाए और इम्पोर्ट जो है उसको बहुत ज्यादा कम करने की अभी कोशिश की।
1: अजीब इत्तेफाक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील तब की है जब पूरे देश में शादियों का मौसम चल रहा है। शादियों में सोना या उससे बनी ज्वेलरी का क्या महत्व है ये किसी से छिपा नहीं है। लोगों की इच्छा भी यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी जाए, लेकिन शादियों में थोड़ी बहुत भी ज्वेलरी ना खरीदी जाए। यह फैसला लेना खास तौर पर महिलाओं के लिए आसान नहीं है।
5: मई है, जून है, ये शादी ब्याह का माहौल है, तो गहने तो लोग अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे। कस्टमर है यहाँ पर, इस समय दुकान में खरीदारी इनकी चल रही है, अपने पसंद का कुछ लेने की सोच रही है। मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका?
6: साईली।
5: आप मुझे ये बताइए कि अब देश के प्रधानमंत्री को तो आप बहुत प्यार करते हैं, हर जगह से वो जीत भी आ रहे हैं, अभी अभी हाल ही में उन्होंने कोलकाता को भी जीत लिया, तो अब उनका ये सजेशन कि भैया एक साल मत खरीदो सोना, आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है, आप साथ हैं उनके बात?
6: सरकार ने तो कह दिया है सोना एक साल मत खरीदो, पर घर में फंक्शन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो तो सोना लेना जरूरी है, क्योंकि शादी में तो सोना लेडीज लोग तो बहुत ज्यादा पहनते हैं और लेडीज के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सोना थोड़ा तो लेना चाहिए।
1: गोल्ड पुराने समय से ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, उत्सव त्योहार का हिस्सा है, इसीलिए इसे एक साल तक नहीं खरीदने का फैसला लेना कतई आसान नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर अपील करें तो उसका असर नहीं पड़े ये भी संभव नहीं। पीएम ने रविवार को अपील की और सोमवार से ही उसका असर ज्वेलरी शॉप पर दिखाई देने लगा।
7: कितना प्रभाव पड़ रहा है आज मार्केट, आपने देखा कितना असर है मार्केट में, कितना असर पड़ भी सकता है?
8: 25-30% के असर की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना असर ये जरूर पड़ेगा शायद।
7: कितनी वॉकिंग्स हुई हैं अगर हम देखें इस बयान के बाद, कितनी वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है?
8: वॉकिंग्स पे प्रभाव पड़ा है, आप देख ही रहे हैं शोरूम खाली है, जबकि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता। मंडे एक अच्छा दिन हमारे लिए होता है, संडे देहरादून का मार्केट बंद रहता है, तो मंडे जब हम आते हैं तो एक अच्छा दिन रहता है, अच्छे फुटफॉल्स रहते हैं, बट आज वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि पीएम मोदी की अपील का असर ज्वेलरी या गोल्ड इंडस्ट्री पर पड़ेगा, लेकिन व्यापक राष्ट्रहित में लोग एक साल तक इसके प्रभाव को झेलने के लिए तैयार हैं।
9: हमारा यही विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को चला रहे हैं और अच्छी तरह देश को चलाया, कोरोना से निकाल रहा है, ये संकट से भी हम निकल जाएंगे। हम थोड़ा अपना विचार करें तो जो वो सोच समझ के बोलना है कुछ समझ के बोलना है, तो अपन को व्यापारियों को भी वो रखना चाहिए कि जो वो बोल रहा है सही बोल रहा है, अपन व्यापार दूसरा भी कर सकते हैं, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं है कि सोने का ही व्यापार करें, एक साल की तो बात है।
10: व्यापार में कोई फर्क पड़ेगा आपका?
9: नहीं, व्यापार में काफी फर्क पड़ेगा, मगर देश के साथ हैं, देश के संकट के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलना है वो सही बोलना है, जो बोलना है वो सही बोलना है।
1: आपको बता दें कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में भीषण खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के नाम अपील की थी कि लोग सप्ताह में कम से कम एक समय का भोजन त्याग दें। देशवासियों से 1 जून के उपवास की अपील करने से पहले शास्त्री जी ने स्वयं और अपने परिवार के साथ मिलकर एक समय का उपवास रखकर मिसाल पेश की थी। शास्त्री जी की अपील को देशवासियों ने काफी गंभीरता से लिया और लोगों ने सोमवार को एक समय का व्रत रखना शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि बाद के दिनों में न सिर्फ देश का खाद्य संकट दूर हुआ बल्कि आज भारत के पास काफी सरप्लस अनाज भी है। पीएम मोदी की अपील को भी लोग सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, निश्चित रूप से इसके भी अच्छे प्रभाव भविष्य में दिखेंगे। जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनपी के साथ।

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
3: पापा सुनो, एक बात पूछूं।
4: हाँ, को पूछो।
3: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
4: हाँ, मिठाई आई थी।
3: आपने खाई थी?
4: हाँ, को खाई थी।
3: देते
4: क्यों?
3: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
4: क्या?
3: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
2: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सब कुछ चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दारापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: देश से बजट की अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले के गाड़ियों की संख्या में की कटौती, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधे से कम की गाड़ियां। पीएम की अपील के बाद कई राज्यों के सीएम ने की अपनी काफिले की गाड़ियों की में कटौती। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला। दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो में सफर। महंगे होते सोने के बीच बाजार में बढ़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज, लोगों को लुभा रही जयपुर की मीनाकारी ज्वेलरी। तेजी के साथ आगे बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध। सिद्रा में आधुनिक यात्रा निवास का निर्माण अंतिम चरण। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा, मौसम हुआ सुहाना। एमडी ने आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी।
5: एनईसीसी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
7: सच गई है, खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मैंने नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर एक अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
7: मानसून से जुड़ी गुड न्यूज, समय से पहले मानसून की दस्तक की संभावना। एमडी के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मानसून की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बदला मौसम, मंगलवार रात बारिश के बाद तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के नूह मेवात में तेज बारिश, ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना, अचानक मौसम ने बदली करवट। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट जारी, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 12 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक सबसे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 3 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 2 लाख भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक करीब 3,86,000 पहुंच चुके हैं भक्त। तेल संकट के बीच में प्रधानमंत्री ने पेश की मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य योगी सरकार ने सरकारी काफिले में 50% वाहन घटाने के निर्देश दिए। एमपी में सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से घटाए वाहन। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया, राजस्थान सीएम ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, राजधानी में ईवी को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़े स्तर पर शुरू कर दी है तैयारी। कान पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आया ग्लैमरस लुक। अभिनेता निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस की कान फिल्म फेस्टिवल में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग, भारत इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक को प्रोडक्शन। एफटीआईआई की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स बनी चर्चा का विषय, कान के लास्ट सिनेफ सेक्शन के लिए चुनी गई ये फिल्म। कान में दिखाई जाएगी गुजराती फिल्म लालो कृष्णा सदा सहायते, महज 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म दुनिया भर में कर चुकी है 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। कान क्लासिक्स के लिए चुनी गई है मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अम्मा अरियान, 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म को 4K में किया गया रीस्टोर। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल को मिला यूए सर्टिफिकेट, 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भूत बंगला ने 26वें दिन की धमाकेदार कमाई, 161 करोड़ पहुंचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में पूजा हेगड़े की एंट्री, पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं अल्लू और पूजा। 22 मई को सलमान और गोविंदा की कई फिल्में दोबारा हो रही रिलीज, सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया और मुझसे शादी करोगी, वहीं गोविंदा की आंखें और राजा बाबू हो रही री रिलीज। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर रिलीज, दादा पोते की कहानी पर आधारित है ये फिल्म।
4: सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा?
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
8: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
7: प्रधानमंत्री के काफिले में बढ़ेगी ईवी गाड़ियों की संख्या, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया आदेश, प्रधानमंत्री के आदेश के बाद कई सीएम ने भी काफिला छोटा किया।
8: इस साल वक्त से पहले दस्तक दे सकता है मॉनसून, 25 मई तक केरलम पहुंचने की उम्मीद, मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज।
7: मॉनसून से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, कुछ इलाकों में बारिश ने दी गर्मी से थोड़ी राहत।
8: मौसम के बदलते मिजाज की वजह से पूरे उत्साह के साथ चल रही है चारधाम यात्रा, 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे।
7: कान फिल्म फेस्टिवल में सजी सितारों की महफिल, भारत की तरफ से आलिया भट्ट हुई शामिल।

0: आज दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से रंग बदल रहा है। दरअसल मई का दूसरा हफ्ता चल रहा है जो कि आमतौर पर चुभन वाली गर्मी का होता है, लेकिन इस गर्मी में आज मौसम एक बार फिर से सुहाना हो चुका है।
1: देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर मौसम ऐसे ही सुहाना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। कम दबाव का सिस्टम बनने से मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो रहा है। इससे दक्षिण के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। अच्छी बात यह है कि 15 मई से एक और नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है, जिसका असर खास तौर पर पहाड़ों पर देखने के लिए मिल सकता है। अब गुड न्यूज ये भी है कि इस बार देश में मानसून तय समय से 4 से 6 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरलम में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच इसके केरलम पहुंचने की पूरी संभावना है।
0: आपको जानकर खुशी होगी कि अब मानसून का इंतजार सिर्फ आसमान देखकर नहीं करना पड़ेगा। आईएमडी ने एआई आधारित ऐसी प्रणाली भी शुरू की है जो कि 4 हफ्ते पहले तक मानसून का पूर्व अनुमान दे सकेगी। इससे किसान और साथ ही सिंचाई, खाद प्रबंधन और फसल सुरक्षा जैसे फैसले समय रहते लिए भी जा सकेंगे।
2: मई के महीने में आमतौर पर आसमान से आग बरसती है, लेकिन इस साल रिमझिम फुहार की आहट मिल रही है। चिलचिलाती गर्मी दतारत है और मौसम की ये बदली चाल राहत का पैगाम लेकर आई है। अब इस राहत की एक नई किस्त मानसून भी लेकर आ रहा है। मानसून विभाग ने मानसून से जुड़ी एक गुड न्यूज दी है। इस साल मानसून भारत में तय वक्त से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के करीब मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। अगले 48 घंटों में कम दबाव वाला क्षेत्र और मजबूत होगा। समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर ऊपर मानसूनी हवाएं चल रही है। ऐसे में इस हफ्ते के अंत तक मानसून अंडमान निकोबार में दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत के अन्य राज्यों तक पहुंचता है। केरलम में मानसून के पहुंचने की तय तारीख 1 जून मानी जाती है। केरल में दस्तक देते हुए भारत में मानसून के मौसम की शुरुआत मानी जाती है। मानसून के दस्तक देने से पहले ही देश के अलग अलग इलाकों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत भी हो जाती है। बंगाल की खाड़ी पर बन रहे कम दबाव क्षेत्र की वजह से अगले 2 दिनों में दक्षिण भारत और ओडिशा में बारिश के आसार जताए गए हैं। ये प्री मानसून बारिश मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यही वजह है कि इस साल मानसून के वक्त से पहले केरलम तट पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर है मानसून के जल्दी पहुंचने की खबर लोगों के लिए राहत की नई सौगात लेकर आई है, और इससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ वक्त से पहले हुई बारिश खेतों के लिए भी वरदान साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, मंगलवार रात को अचानक दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मई में हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, क्योंकि मंगलवार का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए गर्मी वाला था और तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, लेकिन इसी बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया है।
0: गुड न्यूज ये है कि जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है।

0: دلی والوں پر موسم کی مہربانی ایک بار پھر راحت کی فہار بن کر برسی ہے۔ دلی انسیار میں منگلوار کی شام کے سمے اچانک موسم بدلا اور رات ہوتے ہوتے کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ موسم میں آئے اس پریورتن کی وجہ سے گرمی کے تیور میں نرمی آئی ہے۔ موسم وبھاگ کا کہنا ہے کہ آج یعنی 13 مئی کو بھی آسمان آنشک روپ سے بادلوں سے گھرا رہے گا اور گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کے آثار ہیں۔ راجدھانی دلی سے قریب 70 کلومیٹر دور ہریانہ کے نوح میں دوپہر کو ہی اچانک موسم میں بدلاؤ دیکھا گیا۔ تیز آندھی اور ہواؤں کے ساتھ شروع ہوئی بارش کے بعد کئی علاقوں میں جم کر اوراوروشٹی ہوئی۔ موسم میں آئے اس بدلاؤ سے لوگوں کو بھیشن گرمی سے راحت ملی اور تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی اور واتاورن ٹھنڈا اور سہاونا ہو گیا۔ موسم وبھاگ کے مطابق 14 مئی کو بھی آسمان میں آنشک روپ سے بادلوں کی موجودگی رہے گی اور تاپمان 38 سے 40 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کا انمان ہے۔ اس کے بعد 15 مئی سے 18 مئی تک آسمان صاف رہنے کی سمبھاونا ہے اور تاپمان میں بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ موسم وبھاگ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی اور تیز ہواؤں کا اثر بڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ گڈ نیوز یہ ہے کہ 15 مئی سے ایک نیا پشچمی وکشوب اتر پشچمی بھارت میں دستک دے گا اور اس کا اثر केवल पहाड़ों तक सीमित रहेगा। IMD का अनुमान है कि भारत में मई में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। अलग अलग इलाकों में तापमान की स्थिति मिली जुली रहेगी, जबकि कुछ हिस्सों में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना भी जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियां दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मॉनसून की समय से पहले दस्तक देने के लिए बेहद अनुकूल बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन गया है, जो अगले कुछ घंटों में और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही इसी सिस्टम से मॉनसून उत्तरी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 25 मई के आसपास मॉनसून केरल तट पर जमकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से मौसम में बदलाव हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को और भी गर्मी से राहत मिलती रहेगी? पश्चिमी विक्षोभ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्दी आ सकता है कुछ दिनों में, क्या लगता है, क्या माने?
2: गुप्ता, मौसम विभाग ने पहले ये कह दिया था कि इस बार मई माइल्ड रहेगा, यानी गर्मी माइल्ड रहेगी, गर्मी कम रहेगी और बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक जिस तरह से आ रहे हैं, तापमान में गिरावट रहेगी, लोगों को राहत रहेगी। हालांकि चूंकि गर्मी का मौसम है तो जब पश्चिमी विक्षोभ का जैसे असर कम होता है वैसे ही तापमान बढ़ जाता है, लेकिन एक के बाद एक जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो उसकी वजह से पहाड़ों में बारिश होगी। ऊपर के जो हिली एरियाज हैं वहां बर्फबारी हो सकती है और बाकी जो मैदानी इलाके हैं उनमें हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे हालांकि जो फसल को है, आम वगैरह, अगर आंधी ना आए तो आम वगैरह को तो फायदा होगा, लेकिन आंधी आने से जो आम के कच्चे अमोरिया हैं वो गिर जाती हैं और उससे फसलों से किसानों का जो आम उत्पादक हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि न केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, क्योंकि हवा चलने से जो पार्टिकल्स होते हैं प्रदूषण के वो बिखर जाते हैं और उनको बिखरने की वजह से जो प्रदूषण का सघनपन है वो उससे राहत मिलती है। तो यानी कुल मिलाकर राहत भरी मई रहने की उम्मीद है और जो अभी दिखाई भी पड़ रही है, बीच बीच में बादलों की आवाजाही है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि दोपहर शाम तक एक दो बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
1: संजय जी, एक चीज बताइएगा कि फसलों को नुकसान ना पहुंचे बारिश की वजह से, उसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, क्या कुछ प्रबंध उसके लिए किए जा रहे हैं?
2: उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में जो 80% खेती होती है उसमें मौसम पर ही निर्भर है और जब एक बार मौसम बिगड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो आप ऐसा कोई शामियाना नहीं है, कोई ऐसी चादर नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो आप ग्रीन हाउस बनाकर उसको निजात दिला सकते हैं। ओले बरस रहे हैं तो ओले गिरेंगे ही गिरेंगे, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। क्लाउड सीडिंग के इंतजाम तो सरकार विज्ञान के दम पर करती है, लेकिन ओलावृष्टि, तूफान, इनको रोकने का कोई इंतजाम प्रकृति के साथ आप सहयोग करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करेंगे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा जो सारी दुनिया जलवायु परिवर्तन के नतीजों को भुगत रही है।
1: जी बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
3: तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मौसम बदला है, पहाड़ों पर कारोबारी और पर्यटकों की चांदी हो गई है, तो ठंड बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे कि उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से बढ़ गई है।
1: बिल्कुल, सैलानियों की चहल पहल से देखिए हिल स्टेशन गुलजार हैं, पर्यटक इन खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।

0: मौसम का बदलाव पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि शिमला और सिरमौर में हल्की बारिश हुई है। आज भी हिमाचल के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सामान्य से कम बारिश हुई है।
1: यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी 13 मई तक। इसी दौरान अगर 13 मई तक अलर्ट्स की बात करें तो आज और कल के लिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में तेज हवाएं चलने की संभावना है और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग का येलो कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। तो ओवरऑल 13 मई तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी।
0: 14 मई से पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से वेदर एक्टिविटी में कमी आएगी। हालांकि पहाड़ों पर ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेट्रो शहरों में गर्मी बढ़ने से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाद 14 मई से पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से वेदर एक्टिविटी में कमी आएगी। हालांकि पहाड़ों पर ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेट्रो शहरों में गर्मी बढ़ने से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार है। पिछले हफ्ते से रोज शाम को हो रही बारिश ने यहाँ का मौसम सुहाना बना दिया है। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ साफ और मनमोहक नजर आ रही हैं, जो पर्यटकों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
2: क्या बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है, यहाँ पे सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ
0: अंतवादियों में घूमना और बैजनाथ मंदिर
2: और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है, यहाँ पे सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए।
0: देश के कोने कोने से पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमना और बैजनाथ मंदिर के दर्शन और झील में नौकायन का रोमांच पर्यटकों को खूब भा रहा है। स्थानीय व्यापारी भी इस मौके से उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ों की बर्फबारी और बारिश का असर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक देखा जा रहा है। अगले 24 घंटों तक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आंधी चलने की संभावना है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जब बात कुदरती सुंदरता की हो तो हमारे देश से सुंदर दुनिया में कोई जगह नहीं। टूरिज्म के लिहाज से हम आपके लिए घूमने फिरने की कुछ ऐसी जगहें लेकर आए हैं जो हमारे देश में ही हैं और अभी कम लोगों ने देखी हैं। ऐसी एक जगह है झारखंड का पतरातू। ये जगह रांची से कुछ घंटे के रास्ते पर है। इस खूबसूरत जगह को झारखंड का मनाली भी कहते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी है और ये जगह धीरे धीरे बाइक राइडर से लेकर टूरिस्ट तक सबका पसंदीदा डेस्टिनेशन बनती जा रही है।

0: घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी वादियाँ और बीच में चमकता पतरातू डैम। यहाँ का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। यही वजह है कि लोग इसे झारखंड का मनाली कहते हैं। मानसून में झारखंड के रामगढ़ के पतरातू की खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि बाइक राइडर से लेकर फैमिली टूरिस्ट तक हर कोई यहाँ की शांत वादियों का आनंद लेने पहुँचता है। रांची से रामगढ़ जिले के पतरातू के बीच महज 32 किलोमीटर का सफर हर किसी को रोमांच से भर देता है। पिठौरिया घाटी की घुमावदार सड़कों के बीच लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। पतरातू डैम यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटक यहाँ बोटिंग का आनंद लेते हैं, जबकि शाम के समय डूबते सूरज का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ बने लेक रिजॉर्ट, पार्क और लंबा वॉकवे फैमिली ट्रिप के लिए इसे और खास बनाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी पतरातू वैली किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बाइकिंग, रोड ट्रिप और कैंपिंग का अलग ही रोमांच है। कई ट्रैवलर्स तो इसे वीकेंड राइड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून तलाश रहे हैं, तो पतरातू वैली आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकती है। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कश्मीर के गस्सू गांव की स्ट्रॉबेरी उन कई फसलों में से एक है जिसकी कटाई पूरे कश्मीर घाटी में पिछले महीने के आखिर और इस महीने की शुरुआत होती है। इसकी जल्द ही कटाई होने के चलते ज्यादातर किसान अब अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक नकदी फसल है बल्कि लंबी सर्दियों के बाद ये फसल किसानों को पैदावार के साथ आमदनी भी देती है। इसलिए मध्य कश्मीर में कई किसान अपनी खेती का तरीका बदलकर स्ट्रॉबेरी की खेती अपना रहे हैं, क्योंकि साल के इस समय में स्ट्रॉबेरी की मांग न सिर्फ अच्छी होती है बल्कि उन्हें इस फसल के लिए अच्छा खासा पैसा भी मिलता है।

0: श्रीनगर का गस्सू गांव, जो स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां स्ट्रॉबेरी अब कश्मीर में एक मीठा बदलाव ला रही है, क्योंकि अब यहां कई स्थानीय युवा और किसान पारंपरिक फसलों के बजाय स्ट्रॉबेरी को अपना रहे हैं।
1: पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी के कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई है, अब कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। इस खेती से न सिर्फ उन्हें अच्छी जो है आमदनी हासिल होती है, बल्कि साथ ही साथ इसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो दूसरे फसल भी अपने खेतों में उगाते हैं।
0: जहां कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है, अप्रैल मई में कटाई वाली ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा और अच्छी आजीविका दे रही है। यहां के स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान कहते हैं कि इस बार मौसम इस फसल के लिए अनुकूल रहा है। उनका मानना है कि इसकी खेती में बहुत श्रम लगता है और वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा इस खेती को अपनाएं, ताकि ये परंपरा जीवित रहे।
2: मार्च से फिर बारिश स्टार्ट हुई, जो इस फसल के लिए अच्छी है। आप देख रहे हैं कि इस साल अल्लाह का शुक्र है कि फसल अच्छी है। लास्ट ईयर की बात करें तो जब हार्वेस्ट पीरियड 2-3 दिन स्टार्ट हुए थे, उसी दौरान हुआ था बदकिस्मती से वो पहलगाम अटैक, जिसकी वजह से इस क्रॉप पे बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि टूरिस्ट फिर भाग गए, यहाँ पे कोई नहीं था, फिर मार्केट्स भी मतलब नहीं चल पा रहे थे। तो इस साल उम्मीदें हैं कि जो लास्ट ईयर मतलब लॉस हुआ वो इस साल कंपनसेशन हो जाएगा। और फसल की बात करें, फसल इस साल मतलब ठीक है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
0: किसान सरकार से मिल रही मदद से भी खुश हैं, बस उन्हें अब कुछ मार्केटिंग में समस्या आ रही है और वो इसका समाधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में अपनी उपज पहुंचाने के लिए विशेष रेल सेवा शुरू करना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
2: सबसे पहले हर किसी के लिए यही मैसेज है, अगर आपके पास 5-6 मरला ही ज़मीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं स्ट्रॉबेरी, सेफ्रॉन भी लगा सकते हैं या इवन नर्सरी भी लगा सकते हैं। तो दूसरी बात मैसेज है यहाँ की, मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट मतलब जम्मू एंड कश्मीर की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपने इस साल मतलब अच्छा स्टेप लिया कि आपने मतलब चेरी को मतलब एक्सपोर्ट करना है बाहर, उसके लिए आपने अलग से ट्रेन रखी है। तो माशाल्लाह इसमें मतलब फार्मर्स का ही मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, अगले 1-2 सालों में हम भी देखेंगे कि मुझे लगता है ये भी बाहर जाएगा, क्योंकि गुड स्ट्रेन मतलब अवेलेबल हो जाएगी।
0: स्ट्रॉबेरी विलेज में मुख्य रूप से लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक तरीके से खेती की जाती है। इस फल की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसके चलते घाटी के जिलों में ही इसकी खपत होती है। कश्मीर में लंबी सर्दियां के बाद सबसे पहली फसल जो तैयार होती है वो चेरी और स्ट्रॉबेरी ही है। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी की कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, यही देखते हुए कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में इसकी खेती करने लगे हैं। इससे खेती में न सिर्फ कमाई बढ़ी है, बल्कि स्ट्रॉबेरी की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई भी आसान हुई है। कश्मीर के स्ट्रॉबेरी विलेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
3: बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखता है सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसे आबाद करने में वैसे तो कई बाघ बाघिनों का अहम योगदान है, लेकिन यहां की पॉपुलर बाघिन T16 मछली के बाद अगर किसी बाघिन को याद रखा जाए तो वो है T39 नूर, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। 19 साल से ज्यादा उम्र की ये बाघिन नूर उम्रदराज होने के चलते भले ही अब रणथंभौर के बाहरी इलाकों में घूमती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वो यहां बखूबी सर्वाइव कर रही है और फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि वन विभाग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए रणथंभौर की नूर पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
4: ये रणथंभौर की जीवंत विरासत रणथंभौर की नूर है। नूर यानी यहाँ की एक लेजेंड बाघिन, जो T39 के रूप में जानी जाती है और प्यार से इसे नूर या सुल्तानपुर फीमेल कहा जाता है। नूर महज एक साधारण बागिन नहीं है, अपने असाधारण जीवन से नई मिसाल कायम करने वाली नूर यहाँ की सबसे उम्रदराज बागिन है। 19 साल की नूर अब बढ़ती उम्र के साथ जंगल के बाहरी इलाकों में घूमती नजर आती है। आमतौर पर जंगली बागों का जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन नूर बिना किसी बाहरी सहायता या मानवीय बाधा के रणथंभौर में 19 साल पूरे कर लिए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है। 2008 में रणथंभौर के सुल्तानपुर में बागिन T39 नूर का जन्म हुआ। नूर बागिन T13 बिंदा की संतान है, जबकि बागिन T16 मछली नूर की मौसी है। बागिन बिंदा और मछली ने भी लंबी उम्र पाई थी और दोनों का रणथंभौर को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नूर की तुलना अक्सर उसकी मौसी बागिन T16 मछली से की जाती है, जो वंशावली बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नूर भी यहाँ 5 बार माँ बन चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 5 बार में नूर ने यहाँ कुल 9 शावकों को जन्म दिया। 2022 के आखिर में महज 15 साल की उम्र में नूर ने 2 शावकों को जन्म देकर सबको चौंकाया था। नूर ने 19 साल में रणथंभौर को आबाद करने में अहम भूमिका निभाई है। नूर की वंशपेला रणथंभौर में खूब फल फूल रही है। नूर की बेटी नूरी और सुल्ताना का अब यहाँ राज है।
5: तो ये बागिन तो बहुत ही अनोखी है। ये बागिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है, क्योंकि इसका जो एक बेटा है सुल्तान, वो धौलपुर और करौली दोनों जिलों में बाघ के बच्चे पैदा करने के लिए जाना जाता है। सुल्तान बहुत ही यहाँ का फेवरेट टाइगर रहा है और वहाँ जाकर के उसने परिवार बसाए। इसके और भी बच्चे रणथंभौर में बहुत ही फेमस रहे, सुल्ताना और नूरी, जिन्होंने अभी भी दो अलग अलग जोन में दिखते हैं। इसकी बेटी सुल्ताना अक्सर देखी जाती है रोड पे, गणेश रोड पर। परंतु इस जो बाघिन का पूरा परिवार का रणथंभौर के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत बड़ा योगदान।
4: स्वभाव में शांत नूर के शरीर पर लहरदार धारियां हैं, जो किसी आभूषण के जैसे चमकती दिखती है, इसलिए उसे नूर यानी चमक नाम दिया गया। यही नहीं, वो यहाँ माला के नाम से भी जानी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बागिन नूर के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। युवा बाघ बागिनों के दबाव में अब बागिन नूर रणथंभौर के जंगल के बाहरी इलाकों में ही दिखती है, जो बढ़ती उम्र के चलते इलाका छोड़ने और शांत स्थानों की तलाश करने का संकेत है।
6: T39 को किसी भी तरीके का कभी भी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या किसी तरीके की मेडिकल सपोर्ट की कभी आवश्यकता

0: क्या होती है, वहाँ ये बागिन नूर शानदार जीवन जी रही है। 19 साल की उम्र में भी रणथंभौर की नूर ने बागों की कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, इसलिए वो आज भी पर्यटकों में पॉपुलर है और बागों की रानी का ताज हासिल किया है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया का जलवा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers.
5: The hits are on.
4: And hip-hop beats.
6: I'm in the game, I should I join with this G23.
4: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इस हफ्ते के अंत तक भारत को मिल सकता है चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ होगी मुलाकात। देश से बचत की अपील के बाद पीएम ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में की कटौती, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वो में आधे से कम की गाड़ियां। पीएम की अपील के बाद कई राज्यों के सीएम ने की अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला। दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो में सफर। तेजी से आगे बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध। सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा, मौसम हुआ सुहाना। एमडी ने आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भी बारिश का येलो अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: चलिए अब आपको दिखाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में ग्लैमर के रंग। हमेशा की तरह कान में ग्लैमर सिनेमा फैशन के जबरदस्त तड़के देखने को मिल रहे हैं। रेड कार्पेट पर दुनिया भर के सितारों ने अपने स्टाइल और मौजूदगी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हॉलीवुड स्टार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स और फैशन आइकन्स तक कान की महफिल में पहुंचे, जहां चमकदार गाउन, क्लासिक टक्सीडो, हाई फैशन लुक सोशल मीडिया पर छाए हुए नजर आए।
1: कान्स फेस्टिवल में फिल्मों के प्रीमियर के साथ साथ रेड कार्पेट मोमेंट्स की भी काफी

0: चर्चा हुई है, खासतौर पर भारतीय सितारों की एंट्री। आलिया भट्ट ने अपने बेहद ही एलिगेंट पीच गाउन लुक से फैंस का दिल जीता। रेड कार्पेट पर उनका सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, मिनिमल ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।
1: वहीं इस गाउन को आलिया ने लॉन्ग दुपट्टे के साथ कैरी कर इंडियन टच दिया, जिसे वेस्ट के फैशन वर्ल्ड में स्कैंडिनेवियन स्काफ कहा जाता है। उनका ये कान अपीयरेंस भारतीय सितारों की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है, जहां फैशन और सिनेमा दोनों में भारतीय कलाकार खास पहचान बना रहे हैं।
0: तो सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसने सबका दिल जीत लिया है। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपने स्टनिंग लुक से सबका ध्यान खींचा। आलिया ने तमारा राल्फ का कस्टम पीच कोट्योर गाउन पहना। उनके लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया। आलिया के स्ट्रैपलेस फ्लोर लेंथ गाउन ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। गाउन के साथ आलिया ने लॉन्ग दुपट्टा कैरी किया और इस खास पोशाक को इंडियन टच दिया। जाहिर है कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का जादू खूब चल रहा है। 23 मई तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। कान में भारत की रीजनल फिल्मों को अच्छा खासा स्पेस मिला। पंजाबी, मलयालम और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की करीब आधा दर्जन फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में शोकेस होंगी। फेस्टिवल में कुल 21 फीचर फिल्में, 3 शॉर्ट्स और 6 डॉक्यूमेंट्रीज को क्लासिक सेक्शन में दिखाया जाएगा।

इधर रिवेरा शहर एक बार फिर ग्लैमर से गुलजार है, क्योंकि यहाँ सज चुका है 79वें कान फिल्म फेस्टिवल का मंच। फैशन और ग्लैमर के इस महामंच पर दुनिया भर की दिग्गज फिल्मी हस्तियाँ अपनी छाप छोड़ रही हैं। कान में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी अपना जलवा बिखेरती नजर आई। फेस्टिवल की शुरुआत होते ही बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के गाउन में आलिया बला की खूबसूरत नजर आई। पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया किसी फैशन डीवा से कम नहीं लग रही थी। उनका शानदार लुक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आलिया दर्शकों को वेव करते हुए पेपराजी के सामने पोज करती नजर आई।

0: इस स्टाइलिश गाउन के साथ ही आलिया ने प्यारा सा दुपट्टा भी कैरी किया, जिसे वो पूरे इवेंट में फ्लॉन्ट करती नजर आई। आलिया का ये खूबसूरत लुक रिया कपूर ने स्टाइल किया है। रेड कार्पेट पर अपनी एंट्री से पहले मिड ग्रीन बॉल ड्रेस पहने आलिया भट्ट का बेहद खूबसूरत लुक सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये गाउन हल्के हरे, नीले, लेवेंडर और पीले रंग से हाथ से पेंट किया गया है, जिसमें फ्रेंच रिवेरा का खूबसूरत नजारा बना है। आलिया की इस ड्रेस में कॉर्सेट टॉप, जिसमें पतली स्पैगेटी स्ट्रैप्स और स्वीट हार्ट नेकलाइन है, नीचे के लहराते हुए स्कर्ट जैसी दिखती है। फूलों के डिजाइन, डीप नेकलाइन और सिंपल मेकअप से आलिया ने खुद को एक मॉडर्न प्रिंसेस जैसा लुक दिया। उन्होंने अपने एक्सेसरीज को बिल्कुल मिनिमल रखा। हल्की ग्लोइंग स्किन, सिंपल हेयर स्टाइल, छोटे इयररिंग्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ लुक को पूरा किया गया है। आलिया ने पैरों में ऑफ व्हाइट हील्स पहनी है, जो ड्रेस से अच्छी तरह मैच कर रही है। आलिया का ये लुक फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की भित्ति चित्रकार बांसुरी चौकसी ने मिलकर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर आलिया की ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो प्रिंसेस वाइब्स और समर परफेक्ट लुक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में कई इंडियन स्टार्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। आलिया के अलावा इस इवेंट में उर्वशी रौतेला भी पहुंची। उर्वशी ने कान में लगातार पांचवीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और रेड कार्पेट पर एक बार फिर से ग्लैमरस अवतार में वो नजर आई हैं। वियतनामी फैशन लेबल का स्टाइलिश गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उन्होंने वॉक किया, जिसे फैंस और फैशन लवर्स ने काफी पसंद किया। उनका बोल्ड ड्रामेटिक लुक सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। वहीं 2025 के कान लुक की बात करें तो उर्वशी अपने चर्चित तोता क्लच को लेकर खूब सुर्खियों में रही थी। उन्यासीवां कान फेस्टिवल 23 मई तक चलेगा और इस बार आर्ट हाउस सिनेमा के दिग्गजों के साथ कई नए फिल्म मेकर्स के बीच दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। जहां रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहीं इस इवेंट में एआई का जलवा भी देखने के लिए मिल रहा है। जी हां, इस इवेंट की रौनक और बढ़ रहे हैं क्योंकि एआई रोबोट यहां पर है। एआई रोबोट्स अपनी शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरत अंगेज कलाबाजियों से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। रेड कार्पेट के आसपास इनकी मौजूदगी ने टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मेल को और भी खास बना दिया है। कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। यूरोप के इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की दुनिया के तमाम नामचिन सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे, तो साथ ही साथ दुनिया भर के सिने प्रेमियों को इस दौरान नई, पुरानी और चर्चित फिल्मों का मजा लेने का मौका मिलेगा। इस बीच कई इंडियन फिल्म्स भी अपना जादू दिखाने के लिए तैयार हैं।
2: साल की तरह इस साल भी कई हिंदी और क्षेत्रीय फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिखाई जाएंगी। अभिनेता और निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस कान फिल्म फेस्टिवल के मार्चेदु फिल्म में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए तैयार है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक को प्रोडक्शन है। इसमें प्रमुख आकर्षण है FTII की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट। ये फिल्म राजन नाम के एक नाइट शिफ्ट वर्कर की कहानी है, जो आर्थिक तंगी और नींद की कमी से जूझते हुए मानसिक रूप से टूटने की कगार पर है। इसे कान के लासिनर सेक्शन के लिए चुना गया है। फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर एमी विर्क और रूपी गिल की फिल्म चढ़दी कला भी यहाँ प्रीमियर के लिए तैयार है। अमरजीत सिंह के सरोन के डायरेक्शन में फिल्म में एक नर्स की इमोशनल जर्नी के इर्द गिर्द घूमती है। कांस में वाहवाही बटोरने के बाद ये फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कांस में दिखाई जाने वाली बेहद अहम फिल्म है लालो कृष्णा सदा सहायते। अंकित सखिया के डायरेक्शन में बनी इस गुजराती फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही इतिहास रच दिया है। महज 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। अब इस फिल्म का कान में स्पेशल मार्केट प्रीमियर रखा गया है। मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अम्मा अरियान को 4K में रिस्टोर कर कांस क्लासिक सेक्शन में शामिल किया गया है। 1986 में रिलीज हुई यह फिल्म निर्देशक जॉन अब्राहम की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसे कान क्लासिक के लिए चुना गया है। डायरेक्टर चिदम्बरम अपनी नई मलयालम फिल्म बालन द बॉय के साथ कांस पहुँचे है। इस फिल्म को मार्केट सेक्शन में दिखाया जाएगा। श्रीमल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड फायर, जिसे फिल्म मार्केट सेक्शन में दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर कैरिन क्षितिज सुवर्णा की पहली फिल्म 21 सितंबर का वर्ल्ड प्रीमियर 16 मई को कान के पैलेस थिएटर में होने जा रहा है। फिल्मों की इस लंबी फहरिस्त से साफ है कि भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर अपने अलग और सशक्त पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कर लेते हैं जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो की, जिसमें जैकी श्रॉफ सुपर हीरो की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक कॉमेडी फिल्म है जो कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ट्रेलर में दिखता है कि एक बच्चे अपनी दादाजी को सुपर हीरो बताता है।
1: देखिए, वो अपने दोस्तों में अपने दादाजी की झूठी सुपर हीरो वाली कहानियां सुनाता रहता है, कभी समाज की रक्षा करने की तो कभी एलियन से दादाजी के लड़ाई लड़ने की। लेकिन क्या जैकी वाकई सुपर हीरो हैं? ये तो फिल्म देखने पर पता चलेगा। मनीष सैनी की डायरेक्टेड ये फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
4: माँ क्या करती थी, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना।
5: आप ऐसे टाइम पास करते रहो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी, दूर के ग्रह तक फेमस है दादा। वो दुनिया के इकलौते सुपर हीरो
6: अरे दीपू, जरा इधर बाल्टी अंदर ले जा, कमर रही।
7: सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा, ये तो उड़ के आएगा ना।
8: लगता है लड़के आया है,
9: एलियन आ गया। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने,
6: इन्होंने मान लिया।
10: राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
11: अब फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे हैं
12: और मैं पैसे ले लूं?
13: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
14: दोनों पागल बना रहे हैं।
15: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
16: कुछ स्टंट या सुपर हीरो जैसा कुछ करके दिखा सकते हो तो हमें लगे कि आप सच्ची सुपर हीरो हैं।
6: फोटो है मेरे एलियन दोस्त के साथ।
17: जादू है ये, पूरी दुनिया ने देख रखी है फिल्म।
18: चप्पल पुरानी,
19: आपको इंजेक्शन से दर्द होता है, ऊंचाई से डरते हो, फिर आप कहते हो कि आप सुपर हीरो।
6: एलियन आएगा तो मैं दिखा दूंगा।
19: एलियन कभी आने नहीं वाले।
6: आएंगे, मेरा मन कहता है आएंगे।
19: वो एलियन है करण अर्जुन नहीं, जो आएंगे।
20: आपकी तारीफ,
21: हम एलियंस हैं, दूसरी ग्रह से आए।
20: शादी वादी में आए किसी के?
21: नो, धरती पे अटैक होने वाला है।
22: दादा यार जगाओ अपनी पावर को।
23: दादा जगा तेरी पावर, जगा।
24: की तो
25: तोता उड़,
26: मैना उड़,
27: सुपर हीरो

0: बात बिगड़े पहला अटैक आप करना, तभी पावर आएगी।
1: और पावर नहीं आए तो
0: पॉइंट।
1: मायसेल्फ जगदीश, आई एम अ सुपर हीरो।
2: द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया गया है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जैकी श्रॉफ भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया के कई सवालों के मजेदार जवाब दिए हैं, वो सुनाते हैं आपको।
3: एंड उनके साथ यहाँ पे थैंक यू सो मच।
1: यहाँ से बच्चों का सपना पूरा हो वो सीखने मिलेगा, झाड़ पान के लिए झगड़ा होगा आगे चल के वो सीखने मिलेगा, बाकी बच्चे लोग को काम करते हुए देखने का मजा आएगा वो सीखने को मिलेगा कि जिंदगी जीने के लिए, मजे लेने के लिए, दुख दर्द ये सारी चीजें तो आती रहती है मगर खुशियां ही सब कुछ है। एक स्माइल चेहरे पे होना बड़ा जरूरी है। ये बच्चों की पिक्चर है तो बच्चों को बच्चों के बारे में सीखने मिलेगा कि आगे क्या है जिंदगी। अगर मैं सपना देखता हूं तो सपना तो देख, कुछ गोल देखेगा तो गोल मारेगा ना, है कि नहीं बिलू? तो एक कोई गोल देख के रख के भाई मेरा ये गोल है तो क्या तेरा फोकस लेजर हो जाता है? वो यही बच्चे लोग का यही कि नहीं, एक का तो है कि भाई ये मेरा ग्रैंडफादर सुपर हीरो है, मैं उसको उसी को सुपर हीरो बना के भेजूंगा, बना के रखा उसने मेरे को। सो द आइडिया इज यू मेक समवन समथिंग एंड ही बिकम्स इट। किसी के लिए अच्छा सोच, अपना अच्छा होगा।
4: ना दो लोगों के बारे में है, एक जिन्होंने दादा की कहानियां सुनाई है उनके लिए है और एक उन दादाओं के लिए जिन्होंने बचपन में कहानियां सुनाई है। ठीक है, ये फिल्म दोनों के लिए है और ये उसी के बारे में है कि वो एक बिलीफ होता था और तब आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, तब दादा सुपर हीरो ही लगता था। तो उस इमोशनल कनेक्ट की कहानी है। मेरे दादा मेरे को बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान रहा था अंग्रेजों के टाइम पे, मैंने बहुत अंग्रेजों को पीटा था। पापा ने ये कंफर्म नहीं किया लेकिन मैं आज तक मानता हूँ कि पहलवान थे, अंग्रेजों को पीटा था। तो ऐसी बातें ही हैं। मेरे दादाजी एक लाइन बस बोलना चाहूँगा, मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन वो कविताएं बनाते थे और वो कविताएं बना के ना याद रखते थे और उनके पास 100-150 कविताएं थी। तो जब भी वो बोलता दादा वो वाली कहानी वो कविता सुनाओ तो वो सुना देते याद करके। अच्छा, तो उनको ऐसे तो सबको अपना दादा किसी ना किसी वे में सुपर हीरो लगता है। तो मैं कुछ मेरी चीजें जो उनसे इंस्पायर है।
2: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए कहीं है खुशियाँ तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: Sachi Khabar.
11: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: गुजरात के जूनागढ़ का गिर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचाना जाता है। दरअसल यहाँ पर यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है, जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जाती है। इस कला को देखकर मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें और साथ ही थ्रेड आर्ट से बनवा कर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि रोजगार भी दिया है।
17: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए, बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
18: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है, क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेकर बड़ी तक, मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 10,000 तक की लाइन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग, जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
17: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं, तो उसे भी तैयार किया जाता है। यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात यह है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
18: 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा मित्र है सुरेश बा रूपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है, और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
17: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर सासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
16: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
19: और चलिए इन दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: Stack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: इस हफ्ते के अंत तक भारत को मिल सकता है चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। नोएडा एयरपोर्ट से सफर हुआ सस्ता, इंडिगो और अकासा ने घटाया हवाई किराया। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू हो रही हवाई यात्रा, अकासा ने टिकट बुकिंग की शुरू। देश से बचत की अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में की कटौती, इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधे से कम की गाड़ियां। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने की अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला। दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो से सफर। तेजी से आग बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने और भोजन करने के पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध। सिदरा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा, मौसम हुआ सुहाना। आईएमडी ने आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: मॉनसून से जुड़ी गुड न्यूज, समय से पहले मॉनसून की दस्तक संभव। IMD के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मॉनसून की शुरुआती संभावना। दिल्ली NCR में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, मंगलवार रात बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई, गर्मी से राहत। आज भी आसमान में आंशिक रूप से बादलों के घिरे रहने का अनुमान है, गरज चमक के साथ तेज हवाओं हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ का जताया अनुमान, सिर्फ पहाड़ों तक असा सीमित रहने की संभावना। नोएडा में देर रात हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी, मौसम विभाग ने बिजली गिरने की जताई संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान का रेड अलर्ट, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में होगी जबरदस्त बारिश। बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण होगी बारिश। उत्तराखंड के तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी तूफान से सतर्क रहने की अपील कर दी, कहा कमजोर पेड़ के नीचे शरण लेने से बचे, अनावश्यक यात्रा करने से भी बचे। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से राहत। तेज आंधी से कई जगहों पर गिर गए पेड़, यातायात प्रभावित। बंगलौर में देर रात हुई जमकर बारिश, सड़कों पर जल जमाव। ओडिशा के कई इलाकों में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से होगी बारिश। नागपुर में गर्मी का येलो अलर्ट, अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। हरियाणा के नूह मेवात में तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना, अचानक मौसम ने बदली करवट। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गिरते रहे ओले, अचानक आए बदलाव को लेकर लोगों में खुशी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश के आसार, आंधी चलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अलर्ट जारी हो गया, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन, पंजीकरण के लिए व्यापक का प्रबंध, सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण। जम्मू के विधायक अरविंद गुप्ता ने भगवती नगर यात्री निवास का निरीक्षण किया, अधिकारियों को साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए RFID कार्ड और KYC अनिवार्य। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा 12 लाख के पार। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब यात्रा, अब तक सबसे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया, अब तक आंकड़ा 3 लाख के पार। त्रिधाम में कल 12,600 भक्तों ने दर्शन किए, अब तक करीब 2,00,000 भक्त पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने दर्शन किए, अभी तक करीब 3,86,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाया हर हर महादेव के जयकारे।

भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार शीर्षनाग मुकुट और मुंडमाला से सजा बाबा का दरबार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उत्तर प्रदेश के मंत्री ने किया दर्शन, भगवान महाकाल का आशीर्वाद।

बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे, चिंटू भोलेनाथ का दर्शन पूजन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हनुमान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित शोभा यात्रा में सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, इस दौरान बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑर्गेनिक खेती से बदल रही किसानों की किस्मत, ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों की खिल रहे चेहरे। उधमपुर के रामनगर में दूरदराज गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान, किसानों को अच्छी खासे हो रहे हैं मुनाफे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रिकेटर नंदिनी शर्मा के घर खुशी का माहौल, विश्व कप टीम के लिए हुआ नंदिनी का चयन। तेलंगाना में जेल विभाग द्वारा चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में स्थापित एक जेल संग्रहालय और जेल अनुभव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। को जेलों के इतिहास और कैदियों की जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है संग्रहालय। जेल सुधारों और दंड प्रणाली में बदलाव करने के लिए बनाई गई है जानकारियां। बाहरी लोगों को जेल जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए विशेष यह सुविधा। गढ़वा दौरे पर सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार रा बूढ़ा पहाड़ का जायजा। डीजी ने जवानों से भी मुलाकात की, बातचीत करके बढ़ाया हौसला। अयोध्या काशी मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश में अब नाथ कॉरिडोर का फोकस। बरेली स्थित नाथ परंपरा से जुड़े 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों की विकास योजना पर काम शुरू। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, श्री पीताम्बरा पीठ में मत्था टेका। महाराष्ट्र की भीड़ में आम की अच्छी पैदावार ने बदल दी किसान की किस्मत, लाखों रुपए मुनाफा हुआ। दिल्ली में एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, छात्रों को सम्मानित किया। दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस से मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य योगी सरकार ने सरकारी काफिलों में 50% वाहन घटाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से हटाया भार। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय ले लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने के निर्देश दिए। आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना अब महंगा, वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% कर दिया। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें आज से हो गई लागू। सरकार के फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना। सरकार ने सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गुजरात के कच्छ में शादी के दौरान उड़ाए गए सोने के नोट और सिक्के

0: एनएन रंगासामी पांचवी बार उन्होंने संभाली पुडुचेरी की कमान, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक का मामला फिर से पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दाखिल की याचिका। परीक्षा प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में आयोजित करवाने की मांग। एनटीए को हटाकर तकनीकी रूप से मजबूत संस्था बनाने की भी मांग। पश्चिम बंगाल में अब ऊंची आवाज में मस्जिद मंदिर में नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया आदेश। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला। अहमदाबाद सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदल गए। कान पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म फेस्टिवल ग्रेट कार्पेट पर नजर आए। रेड कार्पेट पर पीच कलर के गाउन में बड़ा की खूबसूरत नजर आई आलिया भट्ट। रेड कार्पेट पर एंट्री से पहले सोशल मीडिया पर सामने आलिया भट्ट का खूबसूरत फोटोशूट, मिंट ग्रीन बॉल प्रेस पहने नजर आए। हल्के नीले, लेवेंडर और पीले रंगों के साथ पेंट किया गया ये गांव। फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर, डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की वित्तीय चित्रकार बांसुरी चौकसी ने तैयार किया। एक्टर डायरेक्टर अंशुमन झा की फिल्म लकड़ा बग्घा 2 द मंकी बिजनेस की कान फिल्म फेस्टिवल में होने जा रही है स्पेशल स्क्रीनिंग। एफटीआई की छात्रा मेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई है शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स बनी चर्चा का मुख्य विषय। फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर एमी विक और रूपी गिल की फिल्म चढ़ती कला भी कान प्रीमियर लीग के लिए तैयार।
1: देख मास फिर वो दिन आया जिन्हें मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी।
2: कितने पैसे लिए इस काम के?
0: कान में दिखाई जाएगी गुजराती फिल्म लालू कृष्णा सदा सहायते, महज 50 लाख के बजट में बनी और दुनिया भर में 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। कान क्लासिक के लिए चुनी गई है मलयालम सिनेमा की क्लासिकल फिल्म अम्मा अरिया। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल को मिला यूए सर्टिफिकेट, 15 मई को सिनेमाघरों में होने जा रही है रिलीज। बंगला ने 26वें दिन धमाकेदार कमाई की, 161 करोड़ के पार पहुंचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में पूजा हेगड़े की एंट्री पहले भी एक दूसरे के साथ कर चुके हैं काम। 22 मई को सलमान और गोविंदा की कई फिल्में दोबारा री रिलीज होने जा रही हैं। सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया, मुझसे शादी करूंगी, वहीं पर गोविंदा की आंखें और राजा बाबू हो रही है री रिलीज। विरोध के बाद सरकारी अफवाह बनने के पीछे हटी जैकलीन टक्सुकीश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी अपील।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए कहीं है खुशियां तो कहीं एक्शन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: कई सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
1: Gone! Home run!
0: NHL. College basketball.
2: He shoots it immediately. He makes it in.
0: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
3: One lap to go.
0: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: इस हफ्ते के अंत तक भारत को मिल सकता है चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। नोएडा एयरपोर्ट से सफर हुआ सस्ता, इंडिगो और अकासा ने घटाया हवाई किराया। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू हो रही है हवाई यात्रा, अकासा ने टिकट बुकिंग की शुरू। देश से बचत की अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले के गाड़ियों की संख्या में की कटौती। इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधी किए गाड़ियों की संख्या। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने की अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला। दिल्ली की मंत्री ने मेट्रो से किया सफर। तेजी से आगे बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक इंतजाम। सिदरा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण में। जिले NCR में बादलों का डेरा, मौसम हुआ सुहाना। IMD ने आधी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भी बारिश का येलो अलर्ट।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, ओ माय गॉड। इन गर्मियों के दिनों में तो रखना है हम सबको अपना खास ख्याल, तो हाइड्रेशन के साथ साथ गुड स्किन केयर। तो क्या है आपका समर स्किन केयर रूटीन? आज तो हम चर्चा करने वाले हैं स्किन केयर पर, खास गर्मियों के इन दिनों को लेकर। और उसके साथ साथ अपने शो सास बहू और बेटिया में हम तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ये नॉन स्टॉप सफर। कैसे? हमारी हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, महादेव एंड सन्स में छाया शादी का माहौल, झूम कर नाची रज्जी और नर्मदा। खतरे में पड़ेगी ईशा की जान, रक्षक बनकर आएगा सूरज।

0: होगा मन्नत और विक्रांत का मिलन, होगा दोनों का पुनर्विवाह।
1: मन्नत करना और विक्रांत सलूजा की शादी में जरूर आना।
0: झूम कर नाचेगी ललिता और कुसुम, रूहानी को होगा शक। रूही को मिलेगा उसका नाहर, शुरू होगा नया तमाशा। और मन सुंदर की अग्नि यानी कि अनन्या स्मर्शन करेंगे मस्ती भरा डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: रूहानी तो हमसे कह रही हैं कि गर्मियों के मौसम में वो तो इस्तेमाल करती हैं फेस मास्क का, और देखिए आजकल तो ये फेस मास्क हो गए कितने कन्वीनियंट। आपने बस वो पाउच खोला, फेस मास्क निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगा दिया, कुछ मिनटों के लिए छोड़ा और बस उसे निकाल कर डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन काश इसी तरह डिस्पोज कर सकती ये अपनी कहानी का हर ट्विस्ट और अपनी जिंदगी की हर मुसीबत। लेकिन हमें तो है इन पर पूरा विश्वास, ये तो कर लेती हैं हर मुसीबत को पार। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको सीधा गुरु और रूहानी के पास, उनके शो इस चुनौनी के सेट पर।
0: खुशी से झूमी कुसुम और ललिता, क्या रूहानी के सामने होगा कुसुम का खुलासा? क्या बढ़ेंगी गुरु और रूहानी की नफरतें? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जब से गुरु को ये पता चला है कि रूहानी उसे तलाक देना चाहती है तो गुरु की नफरतें बढ़ती जा रही हैं, और रूहानी वो तो वो मफलर ढूंढ रही है जो उसने गुरु के लिए बनाया है क्योंकि वो गुरु से अब प्यार जो करने लगी है। ऐसे में तभी कमरे में आ जाता है गुरु जो रूहानी पर अपना गुस्सा दिखाने लगता है, और रूहानी उसे बार बार यही कह रही है कि वो गुरु से दूर नहीं जाना चाहती। ऐसे में जाता हुआ गुरु फिर से रुक जाता है और रूहानी पर अपना गुस्सा जताते हुए अलमारी से वही मफलर ढूंढने लगता है, लेकिन उसी बीच उसके हाथ लग जाती है वो फाइल जो कुसुम ने रखी है।
3: अबे हमारी फाइल तो मिल गई, पर तुमने तुम्हारा तोहफा नहीं मिला। कहाँ है वो मफलर जिसपे तुम हमारे रिश्ते का नाम लिखी? देखो पूरे अच्छे से शायद मिल जाए तुम्हारा वो काल्पनिक तोहफा।
4: नहीं है जो तुम अपनी उंगलियों पर नचाओगे और नाचते रहेंगे। हमारे प्यार में पागल थे पर अब होश आ गया, हमारा झूठ साफ साफ नजर आ रहा है।
5: मंजर ही कुछ ऐसा बन गया है कि रूहानी अपने आप को सही साबित ही नहीं कर पा रही है। जैसे अब तक हो रहा था कि रूहानी कुछ भी कहती थी गुरु सुन लेता था और मामी हर बार गलत साबित हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि रूहानी बहुत कोशिश कर रही है कि उसके बारे में गुरु को कन्वे कर पाए कि रियल स्टोरी क्या है, उसके साथ क्या हुआ है या कहाँ कुछ गलत हो गया है, कुछ एक ब्लॉक है जो मिसिंग है, और मामी उस तक वो पहुँचने ही नहीं दे रही है। और इसी बात का सेलिब्रेशन किया है अभी मैंने कुसुम जी के साथ।
0: भाई गुरु की नाराजगी से रूहानी बेहद दुखी हो रही है, लेकिन उसी कमरे में कुसुम और ललिता भी मौजूद हैं, जिनकी नजर उस ग्रीन वाली फाइल पर है। खैर गुरु तो यहाँ से चला जाता है और रूहानी सारा बिखरा हुआ सामान समेटकर अपने कमरे से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही ललिता का मोबाइल बजता है तो कुसुम नाचने लगती है क्योंकि गाना उसकी कमजोरी है।
6: तुम भी दो चार लगा लो।
5: जीजा जी ने कुसुम जीजी को एक फाइल दी थी, ग्रीन कलर की फाइल है वो रखने की, कुछ 100 CR की डील हो रही है 100 करोड़ की, तो उस डील के रिकॉर्डिंग वो फाइल है और साथ ही एक मफलर बनाया था जो रूहानी ने गुरु के लिए, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, जो एक्सचेंज कर दिया गया, जीजा जी ने करवाया और ये करवाया गया हमारे जो जसलीन और बंटी हैं उनके थ्रू। तो अब रूहानी गुरु से ये कह रही है कि मैंने वो मफलर दिया था माँ जी को रखने के लिए और वो मफलर उसी अलमारी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन वाली फाइल मिल जाती है, मफलर तो नहीं मिलता है, और इसी की खुशी मनाती हुई मैं अभी आपको नजर आएंगी।
0: भाई कुसुम और ललिता तो झूम झूम कर नाचने लगती हैं इस बात से अनजान कि कमरे में कोई आ सकता है, और देखिए होता भी वही है, उसी वक्त रूहानी आ जाती है जिसके चलते

0: जी जी हैं, काफी हद तक उन पे काबू रखने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो कुसुम जी जी है नहीं, तो ना ही वो कुसुम जी जी जितनी शालीन हैं, शांत हैं, सभ्य हैं, तो मुझे और त्रिपुरारी जी को हर बार उन पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि बह ना जाए कहीं अपनी मस्ती में, तो वो एक काबू रखने की कोशिश की है। और अभी जैसा कि आपने देखा, उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे ही म्यूज़िक बजता है उनका अपने ऊपर से काबू हट जाता है। तो और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लिली भी थोड़ी सी यू नो मस्ती में बह गई है, तो वो भी नाचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम बस ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले थे लेकिन हम बच गए। और शायद रूहानी को शक भी हो गया है, प्रे कीजिए यार तो कि वो ज़्यादा ना सोचे इस बारे।
1: असल में ये कुसुम है ही नहीं बल्कि कुसुम की जुड़वा बहन है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ ललिता और उसके पतिदेव को पता है। हालांकि रूहानी को कहीं न कहीं शक हो गया है। तो वहीं गुरु भी परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर रूहानी वो मफलर ढूंढ पाएगी या नहीं। तो वहीं रूहानी की जिठानी बहुत दुखी हो रही है और कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे जल्द से जल्द मफलर मिले और रूहानी इस घर में रुक जाए, लेकिन रूहानी के जेठ नहीं चाहते कि रूहानी इस घर में रुके। ऐसे में ये बात रूहानी सुन भी लेती है और कहीं ना कहीं उसका दिल दुख रहा है। अब देखना होगा क्या रूहानी वो मफलर ढूंढ पाएगी और क्या रूहानी सभी के सामने गुरु से अपने प्यार का इजहार कर पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: वैसे डॉक्टर आरव भी, जितना ड्रामा चलता है ना आपकी जिंदगी में, मुझे तो नहीं लग रहा आपको होगी फुर्सत अपनी स्किन का ख्याल वगैरह रखने की। वैसे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत है, तो आप तो क्या ही रखेंगी उसका ख्याल, नेचुरली ग्लो करती हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना देती हूँ मैं आपके लिए एक सिंपल मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसमें है मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, और मैंने इसे मिक्स पानी से नहीं किया है बल्कि रोज वाटर से किया है। ये रखेगा आपको ठंडा ठंडा कूल कूल और आपकी स्किन हो जाएगी एकदम रिफ्रेश्ड और तरोताजा। वैसे तरोताजा तो कर रही है इनकी कहानी भी, हमें लेकर चलते हैं आप सबको डॉक्टर आरंभी के सेट पर।
1: दरी सहमी सी आरंभी, अवंतिका का खेल, बच्चे के लिए रोती बिलखती माँ,

0: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी बेहद परेशान है क्योंकि उसे बार बार किडनैपर्स का कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो विहान को मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में एक माँ की तड़प तो जागेगी ही, लेकिन उसकी ये तड़प छिप छिप कर देख रही है अवंतिका। असल में ये सारी चाल तो अवंतिका की ही है जो आरंभी को इस तरह परेशान देखना चाहती है। आरंभी उसका तो डर डर कर बुरा हाल हो रहा है। वो कोशिश कर रही है पता लगाने की कि आखिर उसके बच्चे विहान को किसने किडनैप किया है। इसी बीच अस्पताल में आरंभी के पापा भी भर्ती हो गए हैं क्योंकि उनके पैर में चोट जो लग गई है। ऐसे में आरंभी पहुंच गई है उनके जख्मों पर मरहम लगाने, लेकिन उसे इस तरह रोता देख आरंभी के मम्मी पापा दोनों ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि विहान का किडनैप हो गया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आरंभी डॉक्टर विश्वास को बताए, लेकिन आरंभी मना कर रही है।
1: अब सब जाती क्यों नहीं? सब कुछ अकेले करना चाहती है, दामाद जी को क्यों नहीं बताना चाहती? एक तो जिद करके डॉक्टर बन गई,

0: में भी सब कुछ खुद ही करना चाहती है। मत क्यों भरी गई है इसमें?
1: Arambhi is showing her strength by being strong. मतलब वो इलाज भी कर रही है, वो अपना काम संभाल रही है, ऑपरेशन के लिए भी जा रही है और अपने माँ बाप को दिलासा भी दे रही है. एट द सेम टाइम वो किडनैपर से भी डील कर रही है, हस्बैंड से भी डील कर रही है. सो यू नो इट इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट कैरेक्टर what is being shown.
2: भाई डॉक्टर आरंभी भले ही अपने आप को मजबूत कर ले, लेकिन एक माँ की तड़प साफ साफ दिखाई दे रही है. इतना ही नहीं, आरंभी की इस तड़प को उसके माँ बाप ने भी भांप लिया है और तो और उन्हें डाउट हो गया है कि इसी बीच डॉक्टर विश्वास भी वहाँ आ जाते हैं.
3: मुझे क्या बताना, मेरी गलती थी, मैं फोन पर बात कर रहा था. आनंद भी कह रही थी कि आपको ये सब ना बताए वरना आप बेरोजगार परेशान होंगे. कैसी बात कर रहे हो? मेरे को सत्य है, मुझे क्यों नहीं बता सकते अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो? इस लाइफ में नहीं उनकी, तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखता हूँ. मुझे भी इनकी सेवा करने का मौका था. चिकित्सा चाहिए ना, डॉक्टर अवंती का तुम्हें ढूंढ रही है उसके लिए.

0: मंजू जी अभी तो पूरी तरह से नहीं समझती है, आगे जाके होपफुली समझ जाए कि व्हाट आरंभी, क्या किस चीज़ से गुजर रही है, किस संकट से गुजर रही है पूरी तरह से। हाँ ये बात है कि वो सपोर्ट कर रही है कि कुछ तो हुआ है कि विहान का के किडनैप में कि आरंभी कुछ बता नहीं सकती है, तो उसमें वो डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है उस।
1: फिलहाल तो आरंभी के पापा ने बात को संभाल लिया, लेकिन अब आरंभी के पापा और माँ दोनों ही आरंभी से जानने की कोशिश करेंगे। और आरंभी जिसे
2: रोहित तो हमसे कह रही हैं कि उनका तो फेवरेट बन गया है वो चारकोल मास्क, वो तो ठीक है रोहित, लेकिन जब उसे लगाते हैं तो कितना स्कैरी लगता है बिकॉज इट्स ब्लैक इन कलर। वैसे चारकोल के मैंने बहुत बेनिफिट सुने हैं, इनफैक्ट कई लोग तो इस्तेमाल करते हैं चारकोल का अपने दांतों को ब्रश करने के लिए भी। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको नाहर और रूही के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड।
3: भैया आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? करूँ नाहर जी आपको कहाँ ढूंढूं?
1: पूरी हुई रूही की तलाश।
4: तो

0: मिल कर भी ना मिल सके ना हर। भिकारन संग रूही का झगड़ा, दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही अपने नाहर की तलाश करने के लिए निकल चुकी है और देखिए कैसे दर दर भटक रही है। तो वहीं एक भिकारन उसने नाहर को अपनी कमाई का जरिया बना रखा है और उसके हाथों तो रूही की अंगूठी भी लग चुकी है। ऐसे में उसकी कमाई तो नहीं हो रही, लेकिन वो अंगूठी बेचने के लिए नाहर को वहीं छोड़कर चली जाती है। इसी बीच नाहर की व्हीलचेयर बीच सड़क में जाने लगती है और इस बात से अनजान कि उस व्हीलचेयर में नाहर बैठा है, रूही उस अनजान व्यक्ति की जान बचाती है और जैसे ही वो कंबल हटाकर उसका मुंह देखने की कोशिश करती है कि तभी वो भिकारन वापस आ जाती है और रूही पर चिल्लाने लगती है।
1: अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पति को हाथ क्यों लगा रही हैं?
2: वो देखो,
1: मेरी सगाई वाली अंगूठी चुराई था, कहाँ मेरी अंगूठी? दीजिए, क्या समझा मैडम आपने? ये देखिए मैडम, मैं भिखारी जरूर हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हटिया, अरे रुकिए, ऐसे कैसे गलत फहमी हुई है? वो मेरी सगाई वाली अंगूठी थी और आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और आपने मेरा हाथ पकड़ते टाइम शायद वो अंगूठी मेरे हाथ से निकाल दी थी। कहाँ है मेरी अंगूठी? दीजिए मेरी अंगूठी।
0: भाई ये भिकारन तो बहुत ही चंट निकली, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए इसीलिए देखिए कैसे उसने वहाँ पर राह चलते सभी आदमियों को इकट्ठा कर लिया और रूही पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सभी लोग रूही पर नाराज होने लगते हैं, रूही सभी लोगों को समझाने लगती है और मौका पाते ही वो भिकारन नाहर को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, नाहर का हाथ लटक जाता है जिसके चलते उसकी अंगूठी रूही को नजर आ जाती है और रूही को पता चल जाता है कि वो उसके नाहर है। इससे पहले कि रूही अपने नाहर से मिल पाती, वो भिकारन चाल चल देती है और अपने दोनों आदमियों के जरिए नाहर को वहाँ से रफा दफा कर देती है। और जैसे ही रूही उस भिकारन को ढूंढ निकालती है तो व्हीलचेयर पर कोई नहीं होता। ऐसे में रूही उससे सवाल जवाब करने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उस व्हीलचेयर में उसके नाहर है। बस फिर क्या, वो भिकारन फिर से बवाल खड़ा कर देती है और सड़क से गुजर रहे सभी मुसाफिरों को रोक कर चीखने चिल्लाने लगती है। बेचारी रूही अपने नाहर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन फिर भी अपने नाहर से मिल ना सकी और तो और उसे अपने होने वाले बच्चे की रक्षा भी करनी है। ऐसे में रूही अपने नाहर को पुकारने लगती है, इतना ही नहीं ऊपर वाले से मन्नत भी मांगती है कि उसके नाहर उसके सामने आ जाए। और तभी वो दो आदमी जो नाहर को लेकर गए थे वो रूही के सामने आ ही जाते हैं और जाने अनजाने दोनों आपस में बात कर रूही को संकेत दे देते हैं। खैर रूही को पता तो चल गया है, देखना होगा क्या वो अपने नाहर के पास पहुंच जाएगी और क्या अपने नाहर को वापस घर ले जा पाएगी।
3: अब मैं और कुछ भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी।
4: कैसे झूठ रूही, क्या बोल रही?
0: और साथ ही क्या अग्नि और नकली नाहर का खुलासा सभी घर वालों के सामने कर पाएगी?
3: सच ये है, ये इंसान मेरे नाहर जी नहीं।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: यहाँ तो मेरा मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी हो गया है तैयार, और इसे मैंने मिक्स किया है थोड़ी सी क्वांटिटी रोज वाटर, और इसमें डाला है थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी। अब मेरी स्किन तो हो जाएगी ठंडी ठंडी कूल कूल। और यहाँ इसी तरह रेडी हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो आप भी कर लीजिए इसे बोर्ड, बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी, और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।
0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर बदल गया है राध्या का अंदाज। देखे तो साड़ी छोड़कर उसने पहन ली है ये ड्रेस, बाल को कर लिया है कर्ल, और दिखा राध्या का अलग ही अंदाज। असल में राध्या ने ये भेष बदला है निहारिका का पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन लगता है यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई है, क्योंकि आ गया है प्रथम, वो भी गुस्से में लाल। भाई राध्या को तो लग रहा था कि वो निहारिका को सबक सिखाएगा, और राध्या का प्लान था कि निहारिका को जेल भेजकर वो प्रथम की बेगुनाही साबित करेगी और प्रथम को छुड़वा लेगी। लेकिन यहाँ दादी ने तो पहले से ही खेल खेल लिया है। दादी ने प्रथम को एक ऐसी बात बताई है जिसके बाद प्रथम राध्या से ही नाराज हो गया है, और देखिए कैसे वो राध्या पर भड़क रहा है। इतना ही नहीं, बात तो इतनी आगे बढ़ गई है कि प्रथम ने सबके सामने ये कह दिया है कि वो निहारिका से शादी करेगा। भाई सारा किया धरा निहारिका का, लेकिन इल्जाम राध्या पर आ गया, और बात इतनी बिगड़ गई कि अब प्रथम भी राध्या से नफरत करने लगा है।
4: निहारिका को आते ही पता चल जाता है 5 मिनट बाद कि ये राध्या है, ये दादी है, तो वो बहुत भागने की कोशिश करती हैं, बहुत सारा फाइट सीक्वेंस जाता है राध्या निहारिका का, तभी प्रथम की एंट्री हो जाती है आउट ऑफ सडन। तो राध्या को लगता है कि चलो अभी प्रथम आ गया है, सब हो गया है, तो मे भी अब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, निहारिका जेल चली जाएगी, प्रथम को बेल मिल जाएगी, ओमकार को हार्ट अटैक आया हुआ है इसलिए 3 दिन की बेल मिली है, तो प्रथम को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। पर प्रथम ने आते ही पूरी बाजी पलट दी है, वो निहारिका के अगेंस्ट हैं थोड़ा थोड़ा, बट राध्या के अगेंस्ट ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो दादी ने AI से बनाई थी, जिसमें राध्या कह रही हैं कि मैं पैसों के लिए घर की बहू बनना चाहती हूँ, क्योंकि इतना अमीर खानदान है, ये है वो है। तो अभी राध्या बहुत शौक में है कि ये क्या है, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, आवाज़ उनकी ही सुनाई दे रही है। प्रथम निहारिका से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, राध्या को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए।
5: कहाँ है सबूत? कुछ हाथ लगा तुम्हारे? सबूत हमारे हाथ से निकल गया।
6: अरे पाप होने के नाते मैं कुछ रोक नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
5: हम आपसे हाथ छोड़ के विनती करते हैं, प्लीज प्रथम सर को बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाने दीजिए, उनके पापा को ना दिल का दौरा पड़ा है।
0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या राध्या निहारिका का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर प्रथम और निहारिका की शादी हो जाएगी। यही है कहानी में आने वाला ट्विस्ट।

0: दंगल टीवी के सीरियल पतिया नाड़ी में किशोरी को ये पता चल चुका है कि उसके पापा ने ही पैसे लेकर लाला से उसकी शादी करवाई थी। ऐसे में सारे मोहल्ले वालों को भी ये सच पता चल चुका है, जिसके बाद सभी लोग किशोरी को खरी खोटी सुना रहे हैं। और देखिए कैसे उससे ये सब कुछ सहन नहीं हो पा रहा।
1: गलती तो तेरे बाप से हुई है, अपनी ही बेटी को बेवकूफ बना दिया।
2: लोग तो सामान बेचते हैं, लेकिन इसके बाप ने तो इसे ही बेच दिया। अरे तू जिस अनाड़ी से डरती थी उसी से तेरी शादी करवा दी। कैसा होगा वो बाप जिसने अपनी बेटी को नरक में ढकेल दिया।
0: वैसे इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट भी आएगा, जहां किशोरी के पापा को चोट लग जाएगी।
1: भौजी,
0: भाई किशोरी पहले ही परेशान है, अब देखना होगा कि इसकी परेशानियों का हल किस तरह से निकलेगा।
3: Absolutely summer ready. और रख रही हूँ अपनी स्किन का खास ख्याल, उसी तरह आपका फेवरेट सितारा भी है यहाँ पर रेडी, और हमारी टीम रख रही है आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये स्पेशल मुलाकात, क्योंकि यहाँ तो हुई है ढेर सारी बातें और हमने जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। कैसे? ऐसे

0: चूहे की सौतन का अनोखा अंदाज। अग्नि संग एक दिन अनन्या का आशियाना, सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मन सुंदर में अग्नि का किरदार निभाने वाली अनन्या समर्थ, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई आज है छुट्टी वाला दिन, ऐसे में हम पहुंच गए हैं अग्नि यानी कि अनन्या के घर पर करने उनसे ढेर सारी बातें। तो भाई आज हम देखेंगे अग्नि का आशियाना, उनका डांसिंग टैलेंट, कितनी अच्छी वो कुक है ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ साथ अग्नि भले ही सीरियल में षड्यंत्र रचती हो, लेकिन रियल लाइफ में अनन्या काफी संस्कारी है। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं हम अग्नि यानी अनन्या के घर पर करने इस फन डे आउट की शुरुआत।
1: सास बहू और बेटिया में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम, प्लीज अंदर आइए। आज मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। तो जल्दी से अंदर आइए और शुरू करते हैं।
0: भाई सीरियल में तो अग्नि रूही के पीछे पड़ी हुई है, उसके खिलाफ चाल पर चाल चलती है क्योंकि उसे नाहर जो चाहिए। लेकिन बात करें रियल लाइफ की तो वो है भगवान जी की परम भक्त। बड़ा सा मंदिर है उनके घर में, वो माला जपती है, किताब में भगवान जी का नाम लिखती है और है काफी स्पिरिचुअल। तो भाई अपने दिन की शुरुआत अनन्या पूजा पाठ से करती है, तो चलिए हम भी आज अनन्या की पूजा में होते हैं शामिल और देखते हैं कि उनके मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं जिनकी वो पूजा करती है।
2: आपने अग्नि को देखा है, अग्नि को इतना प्यार दिया, उसकी दुनिया देखी है कि वो कहाँ रहती है, कैसे सोचती, कैसे बैठती, कहाँ उठती है, वो क्या खाती है, उसके बारे में आपको सब पता है जो लोग भी मन सुंदर फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी अनन्या की दुनिया, कि अनन्या कहाँ रहती है, अनन्या की दुनिया क्या है और अनन्या क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान से होती है और मेरे दिन की शुरुआत भगवान से होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको अपने मंदिर में लेकर चलूँ और आपको अपना मंदिर दिखाऊँ।

आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी सी मंदिर दिखाती हूँ जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ जो भी मेरे ज़िंदगी में है और मैं रोज़ इनको थैंक यू बोलती हूँ। तो आइए आज साथ में पूजा करते हैं और दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और मैं आपको अपने भगवान भी दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रिप्स करती हूँ, मैं बहुत सारी मंदिर वगैरह गई हूँ, तो मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आपको वो सब दिखाऊंगी। तो ये है मेरे खाटू जी, मैं खाटू श्याम गई थी तो वहाँ से इनको लेकर आई थी। और ये है साईं बाबा, ये मैं शिरडी गई थी तो मैं शिरडी से इनको लेकर आई थी। और ये मैं बनारस से हूँ और ये मैं काशी विश्वनाथ से लेकर आई थी मेरे शंकर जी को, भोलेनाथ को, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। और ये है मेरी राधा माँ जिनसे मैं अपनी सारी बातें कहती हूँ, जो मेरी सारी बातें सुनती हैं, और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, मेरे साथ रहती है हमेशा। और मैं ये है वृंदावन की मिट्टी, ये मैं वृंदावन से लेकर आई हूँ, इस पे श्री कृष्ण चले हैं इस मिट्टी पे, तो मैं इस जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं वहाँ से इस मिट्टी को लेकर आई थी। और मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ ये जल है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे जल है। मैं खाटू श्याम जी गई थी तो मैं वहाँ से ये जल लेकर आई थी। ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि इससे खाटू जी का स्नान कराया जाता है और जो भी इस जल को पीता है, अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी ऐसे तनाव है, इसको पीने से दूर होता है। तो ये मान्यता है वहाँ की, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये भी मैं खाटू श्याम से लेकर आई थी, वहाँ के कुंड का पानी है, कहते हैं कि खाटू जी का जहाँ शीश मिला था ये वहाँ के कुंड का पानी है, और इसको घर में छिड़कने से नेगेटिविटी जो है वो चली जाती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैं माउंट मैरी चर्च गई थी तो वहाँ से मैं वहाँ का होली वाटर लेकर आई थी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूजा। ये है मेरे वाहेगुरु, ये मैं अमृतसर गई थी तो मैं गोल्डन टेंपल से इनको लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, किसी स्पिरिचुअल टूर पे जाती हूँ तो वहाँ से वहाँ के जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ लाती हूँ। जैसे ये अभी मैं गई थी उज्जैन महाकाल, तो ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी, ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये मेरा शिव परिवार है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, कार्तिकी जी को बहुत मानती हूँ, गणेश जी को बहुत मानती हूँ, मैं गणेश जी और हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। तो ये मेरे हनुमान जी, दिल्ली में एक बहुत अच्छी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी की, कनॉट प्लेस के पास, वहाँ से मैं इनको लेकर आई हूँ। और मुझे बहुत श्रद्धा है हनुमान जी में, बहुत विश्वास करती हूँ मैं हनुमान जी में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहती हूँ और हनुमान जी तुरंत सुन लेते हैं मेरी बात। और हनुमान जी को मैं अपना भाई भी मानती हूँ, मेरा भाई नहीं है तो मैं बचपन से ही हनुमान जी और कृष्ण जी और गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ और मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो पूजा की थाल मैंने सजा दिया है और अब हम साथ पूजा करेंगे। और मैं आपको अपनी थाल दिखाती हूँ, इसमें है कुछ फूल, भगवान के लिए जल, भोग और दिया है। तो आइए अब साथ में भगवान की पूजा करते हैं।

तो पूजा और आरती करने के बाद मैं 108 बार अपने रुद्राक्ष माला से भगवान शिव का चैंट करती हूँ, ओम नमः शिवाय का, और उसके बाद मैं कृष्ण भगवान का चैंट करती हूँ, हरे रामा हरे कृष्णा। ये है मेरा चैंटिंग बैग, इसके अंदर मेरी माला है जिस पे मैं रोज़ चैंट करती हूँ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये मंत्र है जिसका मैं 108 बार रोज़ जाप करती हूँ, और ओम नमः शिवाय का मैं अपनी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज़ चैंट करती हूँ।

जैसा कि आपने शो में देखा है कि हमारे मन सुंदर शो में खाटू श्याम जी की पूजा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मन सुंदर मिला, मुझे अग्नि का कैरेक्टर करने को मिला, क्योंकि खाटू श्याम की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी। मैं भी खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं खाटू श्याम जी भी गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खाटू श्याम जी जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी है जीवन में वो सब खाटू जी की कृपा से, और मैं खाटू जी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं सेट पर भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं खाटू जी के पास जाती हूँ और उनका पैर छूती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ हर दिन के लिए।

एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर भगवान के सामने गाती हूँ आरती करने के बाद। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ।

0: देखा आपने कितनी स्पिरिचुअल है अनन्या और खाटू श्याम की वो परम भक्त है। तो भाई इनकी पूजा पाठ तो हो गई, अब बारी इनकी ये डायरीज देखने की जिसमें ये अपने सपने लिखती है, मैनिफेस्ट करती है और साथ ही इन डायरीज में वो लिखती है भगवान जी का नाम।
1: मैंने आपको दिखाया कि मेरी पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ वो है डायरी लिखना। तो आइए मैं आपको अपनी डायरी दिखाती हूँ। तो ये तीन डायरी है और इन तीनों डायरियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये डायरी है जिसमें मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ तो मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ और इसमें मैं राधा राधा लिखती हूँ। और ये वाली डायरी में मैं अपना डेली रूटीन लिखती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ये मैं ज़्यादातर शाम में लिखती हूँ या शूट पे, जब मैं मेरे पास खाली टाइम होता है तब मैं इस पे लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी राधा राधा वाली डायरी दिखाती हूँ जिस पे मैंने राधा राधा लिख रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें राधा राधा लिखा है और मैं रोज़ लिखती हूँ। और मेरे पास एक काउंटर है जिसमें मैं चांट करती हूँ राधा राधा और मैं लिखती भी हूँ राधा राधा। तो ये है मेरी एक और डायरी जिस पे भी मैं कभी कभी राधा राधा लिखती हूँ, लेकिन मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन, मेरी जो विश है उसको मैं लिखती हूँ। मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो जैसा कि इस डायरी पे लिखा है ड्रीम्स यानी सपने, तो मैं भी अपने सपने इसमें लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वेल विशर्स हैं जो मेरे, उनके लिए उनके वेलबींग के लिए मैं प्रे करती हूँ। और उसके बाद मेरा जो सपना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं और बड़ी एक्ट्रेस बनूँ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुंबई में मेरा अपना एक घर हो, मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी कार गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो और मेरे जो सपने हैं वो मैं इस डायरी पर लिखती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं डायरी लिखती हूँ, तो आइए साथ में आज डायरी लिखते हैं। और मैं रेड पेन से सबसे पहले मैं राधा राधा रेड पेन से लिखती हूँ क्योंकि रेड पेन का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया है।

0: आप देख रहे हैं मैंने राधा राधा लिख लिया, और इसको लिखने का पर्पस ये है कि जब से मैं इसको लिख रही हूँ मुझे मन में बहुत शांति महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, मैं भगवान से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ।
1: अब बारी अनन्या का घर घूमने की, जिसे अनन्या ने बड़े ही प्यार से सजाया है, इसीलिए तो आज वो अपने घर में रखा अपना कलेक्शन दिखा रही हैं, अपने शौक के बारे में बता रही हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में भी कुछ खास बातें सास बहू और बेटियां संग कर रही हैं अनन्या शेयर।
0: तो अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, और सबसे पहले जब मैं काम से आती हूँ तो मैं अपना बैग यहाँ फेंकती हूँ और यहाँ पे आराम से बैठ जाती हूँ और अपना शो लगाती हूँ टीवी पे, और मैं टीवी पे अपना शो देखती हूँ यहाँ से, और मूवीज़ देखती हूँ, टीवी देखती हूँ। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, आप देख सकते हो, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सिल्वर प्ले बटन जो कि मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर मुझे मिले थे, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ऑल माई फैंस, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बुद्ध भगवान।

जब मैं ये घर ले रही थी, मुझे इस घर की वाइब बहुत अच्छी लगी थी। मैंने और भी दो तीन घर देखे थे, बट मुझे इस घर की वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने घर चुना था, क्योंकि मुझे पीस बहुत चाहिए होता है लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कि मैं पीस के लिए, मेरे पास बुद्ध भगवान है, और आप देखोगे कि बुद्ध भगवान मेरे घर के चारों तरफ हैं, क्योंकि मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं बुद्ध भगवान को बहुत मानती हूँ। ये देखिए आप, ये बुद्ध भगवान है, उधर मैंने एक पेंटिंग भी लगा के रखी है बुद्ध भगवान की, और अंदर भी मेरे बुद्ध भगवान की पेंटिंग है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये है जीसस, ये मैंने मुंबई के माउंट मैरी चर्च से लिया था, और मैं अक्सर चर्च जाती हूँ, और मैं जीसस को बहुत मानती हूँ। ये है मेरा 1000 एपिसोड पूरा होने पे मुझे मेरे शो मन सुंदर से ये एक अवार्ड मिला था। ये मेरे भैया ने, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। कहते हैं इसको घर पे रखने से प्रॉस्पेरिटी आती है और वेल्थ आती है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। मैं हैरी पॉटर की भी फ़ैन हूँ, तो ये एक हैरी पॉटर का है, मैं आपको इसमें से हैरी पॉटर की आवाज़ आती है। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, पर क्योंकि उनको पता था मुझे हैरी पॉटर बहुत देखती हूँ, तो ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। इसमें जब मैं ट्रैवल करती हूँ या जब मेरा फ्री टाइम होता है, तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। आप देख सकते हो मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ा करती हूँ, और हर टाइप की किताब है मेरे पास। तो कभी कभी मेरा गज़ल पढ़ने का मन करता है, तो गज़ल की किताब है मेरे पास। कभी कभी जैसे आप देख सकते हो, द सीक्रेट है मेरे पास किताब। ये देखो, ये किताब है आयुष्मान खुराना की, क्रैकिंग द कोड। ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है। ये आयुष्मान खुराना मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो ये उनके जर्नी के ऊपर ये किताब है, मैंने ये किताब पढ़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो ये एक किताब बहुत अच्छी है जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन मानते हो, नहीं भी मानते हो, तो भी आप इस किताब को पढ़ो, आप मानने लगोगे। किताब है मेरे पास, इसमें बहुत सारी गज़लें हैं, शायरी है ये। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये किताब मेरी मौसी ने लिखा है, डॉक्टर माधुरी तिवारी, ये किताब उन्होंने लिखा है। और ये किताबें बहुत अच्छी हैं, अमेजोन सब जगह अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ इनको पढ़िएगा। मेरी मौसी बहुत अच्छी राइटर है। ये है मेरी मौसी, ये मेरी मौसी है, और ये उनकी किताब है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर आती हूँ मेरे फेवरेट कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ। और ये है फ्रेश फ्लावर्स, क्योंकि मुझे फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा फ्लावर्स को अपने आसपास रखती हूँ, तो मुझे फ्लावर्स से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये है फ्रेश फ्लावर्स जो मैंने रखे हुए हैं। ये है मेरा टेडी बियर, जिसके साथ मैं अक्सर सोया करती हूँ। तो आइए आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। वैसे मैं अपना बेडरूम किसी को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन सास बहू और बेटियाँ में मैं ये ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में मेरे ये मैनिफेस्टेशन बोर्ड लगाया है मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मानती हूँ। और ये है, बहुत जल्दी मैं मुझे शाहरुख खान और रणवीर कपूर के साथ काम करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो, क्रिसमस इन न्यूयॉर्क 2026, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्रिसमस है वो न्यूयॉर्क में बीते। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारा पैसा मांगा है यूनिवर्स से, एक गाड़ी मांगी है बहुत अच्छी सी,

0: आई डिजर्व माई ड्रीम होम, जैसे आप देख सकते हो आई डिजर्व माई ड्रीम होम. और मेरे ख्याल से सारे एक्टर का ये सपना होगा कि ये सपना और ये मुंबई में मेरा ऐसे एक सी व्यू घर हो, ऐसा मैं चाहती हूँ. और आप देखो कि मैं राधा जी को कितना मानती हूँ, राधा रानी है यहाँ पे.
1: और अब बारी चलने की अनन्या के कमरे में, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है.
0: पूरा रूम मेरा वाइट है, आप देख सकते हो, यहाँ तक कि मेरी बेडशीट भी वाइट है. तो ये यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के रेडी होती हूँ. ये तो अभी मेरा ये, इसके अंदर मैंने अपना सारा सामान रखे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है अभी फ़िलहाल, क्योंकि शूट से आपको पता है हमें इतना टाइम नहीं मिलता है. तो ये अभी बहुत मेसी हो रखा है, बट ये इसने सारे मेरे परफ्यूम्स, मेरे जो भी फाउंडेशंस, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो सब है. उसका हम एक अलग सेगमेंट ज़रूर बनाएंगे कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. और आप ये देख सकते हो कि ये कर्टेन है, ये ब्लैकआउट कर्टेन है, जिसकी वजह से जो बाहर की धूप है वो अंदर नहीं आती है. और ये मेरा बेड है जहाँ मैं सोती हूँ. और ये तो मैंने आपको बताया कि मेरी डायरीज हैं, जो मैं डायरी लिखती हूँ. मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ और मेरे पास अब जगह नहीं बचे हैं घर में कपड़े रखने के लिए. बाहर भी उधर भी कबर्ड है, मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी. और ये भी, ये दोनों कबर्ड्स मेरे भरे हुए हैं. और क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें मैंने सारे अपने वेस्टर्न आउटफिट्स रखे हैं, इसमें सारे इंडियन आउटफिट्स रखे हुए हैं. बट ये बहुत ज़्यादा मेसी है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. नहीं नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी है एक्चुअली. सो या, ये मेरे सारे इसमें वेस्टर्न आउटफिट्स हैं मेरे, सारे इंडियन आउटफिट्स इसमें है मेरे, और कुछ उस कबर्ड में भी है. और मेरे पास जगह नहीं बचे हैं. मुझे मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती, बोलती है तुम इतने कपड़े लेती क्यों हो अगर तुमको पहनने नहीं होते.
1: तो भाई अनन्या जितनी अच्छी एक्टर है उतनी ही अच्छी कुक भी है. और आज ये पहुँच गई है अपने रसोई में बनाने कुछ स्पेशल. तो आइए अनन्या से ही जानते हैं कि आज वो मास्टर शेफ पर क्या स्पेशल डिश बना रही हैं, जिसकी रेसिपी वो अपने दर्शकों संग कर रही हैं शेयर.
0: तो अब मैं आपको अपने किचन की ओर लेकर चलूंगी. और आज मैं सास बहू और बेटिया की टीम के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में. तो उसका नाम है एवोकाडो टोस्ट. तो आइए आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे एवोकाडो टोस्ट बनाती हूँ अपने घर में. एवोकाडो चाहिए. और हमें एक मीडियम साइज टोमेटो, अनियन, लेमन, कोरिएंडर, गार्लिक और चिली. यहाँ पे हमारे पास है ओरिगैनो, ये है हमारा ऑलिव ऑयल, ये हमारा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, और ये है चिली फ्लेक्स. और ब्रेड्स चाहिए हमको, तो चलिए शुरू करते हैं. चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले हम जो अपने ब्रेड्स हैं उन पे चीज़ स्प्रेड लगाएंगे. तो सबसे पहले हम एवोकाडो टोस्ट के लिए उसकी स्टफिंग बनाएंगे. उसके लिए हमें चाहिए एक चॉपर, जिसमें हम चॉप करेंगे अपने वेजिटेबल्स को, अपने अनियन और गार्लिक. और ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, तो उसमें हम अपने अनियन डालेंगे. वंस अगेन

सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। प्लीज ऑलिव ऑयल स्किप मत करना, ऑलिव ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पूरा टेस्ट ही बदल जाता है। और ज्यादा ऑलिव ऑयल नहीं डालना है, हम एक ढक्कन ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे बस। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जैसा भी आपको सॉल्ट पसंद हो। उसके बाद हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली ऑलरेडी डाली है, तो हम चिली फ्लेक्स ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और ओरिगैनो डालेंगे, ओरिगैनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और इसमें एक और चीज हम डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें लेमन

और जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे चीज बहुत पसंद है, तो हम इसमें थोड़ा सा और चीज डालेंगे ऊपर से ग्रेट करके, और बस इसको एयर फ्राई में डाल देंगे और ये बन जाएगा।

हमारा एवोकाडो टोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसको एयर फ्रायर में डालेंगे अपने। ये मेरा एयर फ्रायर है और सिंपली 5 मिनट के लिए इसको एयर फ्रायर करेंगे। किचन मुझे कुकिंग करना तो बहुत पसंद है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शूट्स में मुझे उतना समय नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा कुक कर सकूँ या कुछ, लेकिन कभी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कुक करना पसंद करती हूँ। अभी मेरे पास एक कुक दीदी है मेरी, वो मेरे लिए खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा अच्छा डाइट फूड और सारे फूड्स बनाती हैं मेरे लिए, और मैं भी खाना बनाती हूँ। और मेरी जो, मैं बहुत फूडी हूँ पर मेरी जो चॉइस है खाने को लेकर वो बहुत हेल्दी है, तो मैं हेल्दी खाना ज़्यादा बनाती हूँ। बहुत सारी सूप रेसिपीज है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मैं उस अपलोड करूंगी जब भी मुझे वक्त मिलेगा। तो मैं फूडी तो हूँ, तो मैं जो बनारस का फूड है उसको बहुत मिस करती हूँ, जैसे बनारस का पान आपने सुना होगा, बनारस की लस्सी, बनारस का मलाइयों, जो भी बनारस जाता है वो ज़रूर इन सब चीज़ों को खाता है। बनारस की कचौड़ी, घाट के पास कचौड़ियाँ मिलती हैं, ओह मेरे मुँह में पानी आ रहा है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ। तो हमारा एवोकाडो टोस्ट बन गया है, देखा आपने कितने जल्दी बन गया, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो उसको खाने जा रही हूँ अब। प्लीज़ आप लोग ये वाली रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, मैं इसको रोज़ खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो आजकल क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो अपना ब्रेकफास्ट मैं थोड़ा स्किप करती हूँ या थोड़ा लाइट रखती हूँ, जैसे कि मैंने नारियल पानी पी लिया या मैं कोई वेजिटेबल सूप पी लिया मैंने, तो ऐसे आजकल मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ ताकि मैं लंच थोड़ा हैवी कर सकूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एवोकाडो टोस्ट, मैं आई थिंक हर अल्टरनेटिव डे पर मैं इसको खाती हूँ।

0: भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब बारी अनन्या के अचीवमेंट्स को देखने की। जी हाँ, अनन्या के पास है वो कलेक्शन बचपन से लेकर अब तक का, जिन जिन में उन्हें अप्रिसिएशन मिला है, चाहे फिर वो पेपर की कटिंग हो, सर्टिफिकेट्स हो, या फिर हो तस्वीरें जो आज अनन्या हमें दिखा रही है।
1: तो मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी, और जब ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और बचपन से ही मैं डांस क्लास में जाती थी, एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने थिएटर किया। तो ये सारी मेरी मेहनत है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्कूल में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, प्लस मेरे शहर के आसपास कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और मैं बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने कथक सीखा है और मैंने एक्टिंग सीखी है, मैंने थिएटर सीखा है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख सकते हो, मैं जो मैंने स्कूल में और अपने शहर में आसपास जो मैंने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था, कि आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मन सुंदर का पहला फ़ोटोशूट है ये पहला लुक टेस्ट की पहली फ़ोटो है जो मैं आप सबको दिखाती हूँ, अग्नि का। और आप देख सकते हो कि मेरे शहर की न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग है मेरे पास, जो मेरे शहर में आता था, और ये मेरे स्कूल का नाम है। आप देख सकते हो कि मैं अपने स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी, डांस हो चाहे ड्रामा हो कुछ भी हो, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी अपने स्कूल में। ये सारे मेरे पेपर के आर्टिकल्स हैं जो मेरे मॉम ने बहुत संभाल के रखे हैं, और जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ पेपर की कटिंग, ये है एक पेपर की कटिंग जिसमें लिखा है 7 साल की अनन्या समर्थ ने जुटा रखे हैं ढेर सारे इनाम। आप देख सकते हो इसमें पूरा आर्टिकल निकला था, और मैंने उस समय ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था 7 साल की उम्र में, तब उसके बाद ये आर्टिकल निकला था। उसके बाद आप ये पेपर की कटिंग देख सकते हो कि मैं कितनी छोटी थी जब से मैं डांस कर रही हूँ, परफॉर्मेंस शोज वगैरह मैं करती थी। और ये मैंने एक प्ले किया था जिसमें मैं राधा बनी थी, मैं इसमें दिखाती हूँ, ये पूरा हमारा ग्रुप था जिसमें मैं राधा बनी थी। आई थिंक बचपन में हर बच्चा एक बार राधा कृष्ण जरूर उसके मम्मी पापा उसको बनाते हैं, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं मिस जौनपुर बनी थी। ये बीच में मैं हूँ, ये मैं एक डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी, ये उसका है, देख सकते हो कि मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला था, पूर्वांचल की 10 शक्तिशाली महिलाओं को ये इनाम मिला था जिसमें से एक मुझे मिला था, और मैं उसमें सबसे छोटी थी, आप देख सकते हो ये सारी महिलाएं।

0: सपने रियल लाइफ में कुछ ऐसी है रूही की सौतन अग्नि, जिनके सपने काफी बड़े हैं, स्पिरिचुअल है और अपने दर्शकों को अलग अलग किरदारों से करना चाहती हैं एंटरटेन। लेकिन अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का।
1: तो जैसे आपने अग्नि को इतना सारा प्यार दिया, मैं चाहती हूँ आप आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार दे, अनन्या को भी इतना ही प्यार दे और मैं ऐसे ही आपको आगे भी एंटरटेन करती रहूंगी।
0: लेकिन जाने से पहले इनका डांसिंग टैलेंट भी तो देख लिया जाए।

0: ब्यूटीफुल।
1: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
1: ओ गॉड, विद्या जी देखिए कितनी गर्मी है, क्यों ना आप भी शेयर कर दें हमारे साथ कोई सिंपल समर स्किन केयर टिप। विद्या जी तो कह रही हैं कि ये तो बिलीव करती हैं अच्छा खाने पीने में, तो बस अच्छे से पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाइए, जैसे कि आंवला, नींबू पानी, अमरूद, और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो आप नारियल पानी पीजिए या फिर फ्रेश जूसेस पीजिए, लेकिन जूस ऐसे जिन्हें छाना ना हो और जिनमें शुगर ना ऐड की हो, तभी तो देंगे वो आपको एक्चुअल बेनिफिट। तो चलिए फिर पता कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है विद्या जी की इस कहानी में। आज लेकर चलते हैं आपको महादेव एंड सन्स के सेट पर। शुरू हुई शादी की तैयारियां, झूम कर नाची रज्जी और नर्मदा, जल्द होगा मोगरा का खुलासा। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में महादेव का पूरा घर फूलों से सज चुका है भाई, जल्द ही आशीष और मोगरा की शादी होने वाली है, ऐसे में तैयारियां चल रही हैं शादी की, बन रहे हैं पकवान, घर में गूंज रहे हैं गाने, और जब गाने बजेंगे तो जाहिर सी बात है नाचना भी तो होगा ही, और घर की दो बहू रानियां हैं, ऐसे में उनका खुशी के मारे नाचना तो बनता है, क्योंकि अब उनकी एक नई सहेली जो आने वाली है, ऐसे में दोनों जमकर नाच रही हैं,

0: भाई नाच गाने के साथ साथ यहाँ तो अच्छे अच्छे पकवान भी बन रहे हैं और विद्या पकवान बनाने में बिजी है और साथ ही बहुएं भी मदद कर रही हैं कि तभी वहाँ पर आई घर के पड़ोस ने दोनों बहुओं के घर वालों के बारे में बातचीत करने लगती हैं, जिसके चलते विद्या हिचकिचा रही है और नर्मदा रची दोनों दुखी भी हो रही हैं।
1: अरे विद्या बहन, बहुओं के घर पे क्या का नाश्ता भेजा है कि नहीं? बहुओं के घर से कुछ ना कुछ जरूर आता है ना।
0: एक तरफ औरतों के ताने और दूसरी तरफ मम्मी पापा की याद ने नर्मदा की आंखों में आंसू ला दिए। कि तभी नर्मदा को मिल जाता है सरप्राइज, क्योंकि घर आ जाते हैं नर्मदा के मम्मी पापा और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि बुलाया है विद्या और महादेव ने। अपने मम्मी पापा को देख नर्मदा बहुत खुश हो रही है और तो और अपनी सासू माँ का शुक्रिया अदा भी कर रही है।
2: माँ, सच में हम बहुत खुश नसीब हैं। थैंक यू। अरे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाना तो भूल ही गए।

0: ये है रज्जी, हमारी देवरानी कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा।
1: नर्मदा की इस खुशी में नर्मदा के मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि नर्मदा को अच्छा परिवार मिला है। अब पहली बार घर में समधी समधन आए हैं तो उनकी सेवा खुशामद भी बनती है। ऐसे में महादेव ने नर्मदा के मम्मी पापा को अपनी होने वाली बहू मोगरा की तस्वीर दिखा दी। बस फिर क्या, मोगरा की तस्वीर देख कर नर्मदा के पापा हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें मोगरा के बारे में सच्चो पता है और इस बात का कहीं न कहीं रज्जी को एहसास भी हो गया है।
2: मोगरा की फोटो देखकर आप फिटर क्यों गए थे?
3: क्योंकि मैंने उसकी फोटो पहले देखी थी।
2: कहाँ देखी थी आपने उसकी फोटो?
3: जेल में सिकंदर, उसके पास देखी थी मैंने फोटो। वो मोगरा से प्यार करता था और मोगरा ने अपने परिवार के साथ उसको ठगा था।
2: अभी चाहे जो भी हो, अगर मोगरा और उसकी फैमिली गलत है तो हम ये शादी नहीं होने दे सकते।
1: अब हो न हो रज्जी और नर्मदा दोनों मिलकर मोगरा का खुलासा सभी घर वालों के सामने करेंगी, जिसके चलते आशीष की शादी पर लग जाएगा ब्रेक और वो लाएगा कहानी में ट्विस्ट। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कहो भाई साहब, जानते हैं आप इनको?
5: मुझे तो लग रहा है ईशा फिलहाल बहुत परेशान है, एक तो उनकी जिंदगी के ट्विस्ट से और दूसरा गर्मी के इस मौसम से। तो ईशा देखिए, आप ऐसा कीजिए, घर पर बर्फ तो जरूर होती है, तो आप ना एक अच्छा सा आइस पैक बना लें, यानी एक बड़े से बोल में बर्फ डालें, उसमें कुछ पानी डाल दें और उसमें अपना फेस 2 मिनट के लिए सोक कर दें। हाँ हाँ, आपकी स्किन हो जाएगी सुपर टाइट और पोर्स हो जाएंगे एकदम बंद। और उसके बाद पीजिए एक अच्छे से ग्लास ऑफ शिकंजी या फिर नींबू पानी, देखिएगा आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे ना कि आपको लगेगा इट्स अ न्यू डे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
6: गुंडों के बीच फंसी ईशा, खतरे में पड़ी ईशा की जान। सूरज बना ईशा का रक्षक।

नन्हे बच्चे के साथ सड़क पर चल रही होती है कि अचानक कुछ गुंडे आ जाते हैं और कर देते हैं ईशा को बेहोश। असल में ये तो है ईशा सूरज का मिशन, जहां वो बच्चा चोर को पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये नकली डॉल को बच्चा बनाकर ईशा यहां पहुंची है ताकि गुंडे आए और वो इन्हें पकड़ सके। लेकिन यहां तो ईशा मुसीबत में ही फंस गई है, क्योंकि ईशा को बेहोश कर गुंडे ईशा को चाकू मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर रक्षक बन पहुंच जाता है सूरज भाई। अपनी ईशा को इस हालत में देखकर सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और देखिए कैसे वो इन गुंडों की जमकर धुनाई कर रहा है। आज तो दिखा सूरज का दबंग वाला अंदाज़।

देखिए कैसे इन गुंडों को वो खूब सबक सिखा रहा है। लातों और घूसों से मार मार कर इन्हें कर दिया है सूरज ने घायल। लेकिन ईशा तो बेहोश है। ऐसे में देखिए कैसे सूरज उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आ गया है ईशा के साथ काम करने वाला ये शख्स भी, जो दोनों मिलकर ईशा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

0: फाइनली ईशा सही सलामत है और वो होश में भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ईशा ने पहन रखा है ये काला चश्मा जिसका राज ही कुछ और है।
1: एक हमारा मिशन चल रहा है, बच्चों को जैसे किडनैपिंग हो रही है तो वो टॉपिक एक उठाया है और उसी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन है जो बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं वो बच्चा एक लेकर आती हूँ, डॉल है, उसे कहती हूँ आज हम शॉपिंग करेंगे, बात कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, रख देती हूँ वहाँ पर कि उसका चेहरा ना दिखे। तो तभी मैं फिर वही कर रही हूँ, चप्पल टूट गया, आगे चलेगी बच्चे को छोड़ के तो कोई उसे उठाने आ जाए, तो उसी वक्त दो गुंडे आते हैं, मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और बच्चे को उठाने वाले होते हैं तभी, और मुझे चाकू घुसाने वाले थे तभी सूरज आ जाता है और फिर वही उनकी फाइट होती है और मैं बेहोश पड़ी हूँ वहीं पर, कहीं वही फिर चोट गिर जाती हूँ। तो चश्मा एक बार वो भी होता है कि चश्मा पीएसआर निकालते हैं पर उनका इतना ध्यान नहीं जाता चोट पर, फिर वापस दिखने वाली होती है, मैं तभी होश आ जाता है और मैं वापस कवर अप कर लेती हूँ कि चोट ना दिखे सूरज को, वरना पता है सूरज क्या करेगा, सवाल पूछेगा क्यों हुआ कैसे हुआ, आकाश के बारे में पता चला तो आकाश को छोड़ेगा नहीं, और ये सब कुछ सैक्रिफाइस जो ईशा ने किया था वो पता चल जाएगा, जो कि ईशा चाहती है पर ये नहीं चाहती कि सूरज फिर वो हाइपर हो जाए और वो आईएएस की पोजीशन पर उसकी अफेक्ट करे, इसलिए ये सारा ड्रामा है और अभी तक चोट नहीं पता चली।
0: असल में ईशा ने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है आइए हम आपको बताते हैं। भाई आकाश ने किया है ईशा संग अत्याचार जिस वजह से ईशा को चोट लग जाती है, ऐसे में सूरज उसके लिए कुछ दवाइयाँ और सामान भेजता है, तभी वहाँ पर आकाश भी पहुँच जाता है जो फिर एक बार ईशा पर अत्याचार करने लगता है जबरदस्ती उसके आँखों में आई ड्रॉप डालकर।
2: आकाश, आकाश ये छोड़ो, आकाश
3: मैं दवाई डालूं तो बदतमीजी और वो दवाई भिजवा दे तो क्या है।
0: लेकिन ईशा भी यहाँ चुप नहीं बैठती, वो भी आकाश को दे देती है

0: Dawnik.
1: हाँ मुझे उसकी दी हुई हर चीज का है, मुझसे मेरा प्यार है, पति
2: आपसे
1: शुक्र बनाओ कि अब तक के सारे घाव मैंने मेरे सूरज से छुपा कर रखे। जिस दिन उसने देख लिया उस दिन से आखिरी सांस तक सूरज तुम्हारी जिंदगी इतनी बेहतर बनाएगा ना कि अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा।
3: तो एग्जैक्टली ये होता है कि मिहिका ट्रॉफी जीत कर आती है और मैं नीचे उतरती हूँ तो आकाश मिहिका को स्केल से मारने वाला होता है कि मैं पापा तेरे साथ तो आया नहीं था तो कैसे जीती तूने ट्रॉफी, ऐसे मारने वाला होता है, बता मुझे कौन आया था पापा बन के। तो उसी वक्त मैं मिहिका को पकड़ के साइड कर देती हूँ और मुझे लग जाती है स्केल, उसकी वजह से मुझे ये चोट लग जाती है। तो आकाश भी कहता है अब मैं सबको क्या बोलूँगा कैसे लगी तुम्हें ये चोट, तो मैं भी डर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ सूरज देखेगा तो क्या कहेगा, उसे सब सच पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ईशा फिर ये चश्मे पहन लेती है कि और ऑफिस में कहती है मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है इसलिए मैं नहीं निकाल सकती। एक बार सूरज ज़बरदस्ती करके कहते हैं चलेगा हम सबको फैल जाएगा तो बट निकालो मुझे देखना है क्या हुआ है, क्योंकि मिहिका ने कॉल पे सूरज को बता दिया होता है कि मिशू की ईशू को चोट आई है आँखों पर, तो इसी वजह से मैं निकालने वाली होती हूँ। और तभी कॉल आ जाता है और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, फिर मैं जूम कॉल पे हमारी बातें होती है, मैं फिर ऑफिस नहीं जाती कुछ दिन तक। तो बस ये चोट के पीछे का ये राज है, आकाश से चोट लगी है तो फिर सूरज मेडिसिन भी भेजता है ईशा को कि आप ये लगा लीजिए ये सारी चीज़ें, और अगर इतना दर्द था तो ऑफिस नहीं आना चाहिए था। तो वो कैरिंग साइड, बट ये नहीं पता चला कि ईशा को चोट क्या लगी है, इसलिए ये चश्मे में फर रही हूँ मैं। सूरज ने आई ड्रॉप दिया है तो उसी में मैं लगा रही होती हूँ, मुझसे नहीं जा रहा है तो आकाश छीन के ज़बरदस्ती मेरी आँखों में आई ड्रॉप्स डालता है कि अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना जान। तो फिर मैं फिर वो धक्का मार देती हूँ और कहती हूँ वो सूरज की चीज़ों को फेंकने वाले होते हैं, तो मैं कहती हूँ सूरज की चीज़ों को छुओ मत, वो मेरे पति है, मुझे उनकी सारी चीज़ प्यारी है ऐसा सब। तो मैं कहती हूँ ये तो मैं भी छुपा रही हूँ सूरज से, जिस दिन सूरज को पता चलेगा उस दिन तुम्हारे आखिरी गिनती शुरू कर दो।
0: तो भाई आकाश तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो क्या अब देखना होगा आकाश से परेशान होकर ईशा सूरज को सारा सच बताएगी। भाई यही तो है कहानी में आने वाला अगला ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मन्नत, आज तो समर स्किन केयर पर ही हम कर रहे हैं बातें और शेयर कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ कुछ स्किन केयर टिप्स गर्मियों के इस मौसम को लेकर। तो आप भी शेयर कर दीजिए ना हमारे साथ कोई सिंपल टिप। वेल, मन्नत तो कह रही हैं कि उनका फेवरेट तो है टर्मरिक पैक जो है सबसे बेस्ट। बस थोड़ी सी हल्दी और उसमें दही मिक्स की, कभी कभी वो उसमें ग्लिसरिन डाल देती हैं, कभी कभी उसमें वो रोज़ वाटर डाल देती हैं और बस उनकी स्किन करती हैं यूं मिनटों में ग्लो। वैसे मन्नत हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप यूं ही हंसती रहें और मुस्कुराती रहें, लेकिन क्या करें इन ट्विस्ट का जो आते हैं आपकी कहानियों में, लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास।

सीरियल में सिंदूरी ट्विस्ट। कलर्स के सीरियल मन्नत में विक्रांत संग हादसा हो गया है और उसे यूं अस्पताल में बेसुध पड़ा देख मन्नत हो रही है इमोशनल। और दौर अपने माथे पर लगे खून को देखकर मन्नत को समझ आ गया है कि उसका रिश्ता विक्रांत के साथ अटूट है। इतना ही नहीं, धैर्य उसे मिटाने की कोशिश करता है लेकिन मन्नत रोक लेती है क्योंकि आज भी वो अपने विक्रांत से बेहद प्यार जो करती है। तभी तो देखिए कैसे बेसुध पड़े विक्रांत को देखते हुए वो उसके पास भी जाती है, उसका ख्याल रख रही है और उसके जगने का इंतजार भी कर रही है।

0: भाई मन्नत का इंतजार तो पूरा हो गया क्योंकि उसके विक्रांत को होश जो आ गया है। और होश में आते ही देखिए कैसे मन्नत विक्रांत पर नाराज हो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि विक्रांत ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है। मन्नत को खुद पर यूं गुस्साता देख आज विक्रांत भी खुश ही हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मन्नत उस पर अपना हक जो जता रही है। ऐसे में विक्रांत मन्नत का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने साथ हुए हादसे का किस्सा बताता है।
1: हाँ गाड़ी साइड में लगा के मैं दारू पी रहा था।

0: के इस प्यार और चिंता ने विक्रांत को उठने पर मजबूर कर दिया और ऐसे में विक्रांत मन्नत से अपना हाल दिल बयां कर रहा है और बता रहा है कि वो आज भी अपनी मन्नत से बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोनों एक दूसरे के गले भी लगते हैं। लेकिन इसी बीच विक्रांत मन्नत को इस बात का भी दिलासा देता है कि वो दुआ और धैर्य के रिश्ते में कभी बीच में आएगा नहीं। और दुआ की जिंदगी में सबसे पहले धैर्य को ही रखेगा। दोनों एक दूसरे का साथ तो दे रहे हैं और इनकी बातें दूर खड़ा धैर्य सुन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल हो रहा है। खैर, अब मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो गए हैं तो जाहिर सी बात है इनका रिश्ता फिर से जोड़ा जाएगा, यानी फिर से घर में गूंजेंगी शहनाइयां।
1: धैर्य कुमार का स्पेशल इनविटेशन, मन्नत करना और विक्रांत सलूजा की शादी में जरूर आना।
0: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: किस्मत लाना, बस ढेर सारी प्यारी प्यारी दुआएं लेके आना।
2: वैसे आजकल तो ट्रेंड कर रही हैं ये सनस्क्रीन्स जिन्हें आप स्प्रे कर सकते हैं। जरा संभल कर, आंखों को रखना है अच्छे से बंद। अब देखिए, वैसे तो ये सनस्क्रीन है काफी लाइट और काफी रॉकिंग, लेकिन अगर चली गई आपकी आंखों में तो क्या होगा? हो जाएगा शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें खास मेहमान बनकर गई आलिया भट्ट। और देख लीजिए कांस फिल्म फेस्टिवल पर आलिया का ये लुक, जहां इस फ्लावरी ड्रेस में दिखा उनका रॉकिंग अंदाज।

वैसे इसी के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया है साउथ की एक्ट्रेस सुष्मिता सिंह ने, जो नजर आ चुकी है बॉम्बे स्टोरीज फिल्म में भी। आइए देखते हैं सुष्मिता का कांस वाला लुक।

खबरों की माने तो सीरियल। तो जूलियट जट दी में जल्दी हो सकती है भूमिका शर्मा की एंट्री, जो निभाएंगी सिमरन का किरदार और कहानी में लाएंगी नया ट्विस्ट। फिल्म लुखे के सेट से राशि खन्ना ने शेयर किए हैं ये BTS नज़ारे, कैसे उन्होंने एक्शन और फाइट की प्रैक्टिस की।

0: हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे साथ साथ में हमारी समस्याएं, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं।
1: देख लीजिए तुम होना का ये नया प्रोमो, जहां पर खेल के साथ साथ है इमोशंस भी, और कैसे राजीव खंडेलवाल इन सब के साथ जुड़कर चलते हैं।
0: सपने हमारी जैसे विचार, हमारी अगली सुपरस्टार, इनकी खासियत आप जानते हैं क्या? आपको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक बनाती हैं और खुद घर में बनाती हैं। जोरदार तालियां हमारी मुंबई से आई सुपरस्टार हेमा पंचारे जी के लिए।
2: हर वक्त ढूंढती रहती हूँ कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए और मैं शादी करा दूँ।
0: हमारी अगली जो सुपरस्टार गोंडा से हमारी सुपरस्टार किरण तिवारी जी के लिए।
3: मेरा यहाँ आने का ज्यादातर मेरा लड़का ही है सर, मेरा ध्यान उधर ही है कि वो अभी तक आया नहीं है।
0: मैं बुलाता हूँ, प्लीज।
3: 5 साल से पैरालाइज हो गया सर।

0: हाँ सर सबसे बेस्ट है सर, ऐसा बोलते हैं कि घर एक मंदिर होता है सर, एंड सर वहाँ उसकी भगवान होती है सर, सर मेरे शिव पार्वती इन लोग ही है सर।
1: शिव ठाकरे पहुंच गए हैं गोवा फैमिली वेकेशन पर। ऐसे में वो पहली बार अपनी दादी के साथ प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और दादी को काफी खुशी हो रही है।

खबरों की माने तो रणवीर सिंह नजर आएंगे बिरला स्टूडियोज की आने वाली नई फिल्म में द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जिसमें वो निभा सकते हैं लॉर्ड शिवा का किरदार, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अक्षय कुमार ने शेयर किया है फर्स्ट ग्लिम्प्स अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल से। इसी के साथ अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म के लिए भी तैयार है, जो वो करने वाले हैं अनीस बज्मी के साथ, जिसकी रिलीज डेट आ चुकी है। ये फिल्म रिलीज होगी दिसंबर 2026 को, लेकिन अब तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है। तमन्ना भाटिया पहुंच गई है उज्जैन के महाकाल मंदिर, जहां से उन्होंने शेयर की है कुछ तस्वीरें और वीडियोस, जहां उन्हें मिला महादेव का आशीर्वाद।

पापा बेटे यानी कि सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। ये दोनों नजर आएंगे एक एड में। देख लीजिए इसके ये BTS नजारे।

सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म अमेज़न पर रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है सिस्टम। सामने आया है इस फिल्म का ट्रेलर। इसी के साथ सोनाक्षी, ज्योतिका और सनी जुट गए हैं फिल्म के प्रमोशंस में भी।

0: तो कैसा लगा आप सबको हमारा समर स्किन केयर रूटीन और कैसी लगी ये सिंपल स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें अपने डेली रूटीन में जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपने साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
4: Gone! Home run!
3: NHL.
4: He scores!
3: College basketball.
5: He shoots it immediately.
6: He makes it in!
3: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
7: One lap to go.
3: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजों का ऐलान, इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा 95.62%, तो प्रयागराज में सबसे कम 72.43% छात्र हुए पास। इस हफ्ते के अंत तक भारत को मिल सकता है चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। नोएडा एयरपोर्ट से सफर हुआ सस्ता, इंडिगो और आकाशा ने घटाया हवाई किराया। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू हो रही है हवाई यात्रा, आकाशा ने टिकट बुकिंग की शुरू। देश से बचत की अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में की कटौती, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधे से कम की गाड़ियां। पीएम की अपील के बाद कई राज्यों के सीएम ने की अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती, गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का लिया फैसला, दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो में सफर। तेजी से आगे बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध, सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान किया, इस साल 85.20% छात्र छात्राएं हुए पास। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, 88.86% लड़कियां हुई पास, तो लड़कों का पास प्रतिशत रहा 82.13%। सीबीएसई ने इस साल भी मेरिट लिस्ट न जारी करने का किया फैसला, टॉप 0.1% विद्यार्थियों को मेरिट सर्टिफिकेट जारी करेगा सीबीएसई। सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in, डिजीलॉकर और उमंग ऐप भी देखे जा सकते हैं, उस पर नतीजे, डिजीलॉकर पर मार्कशीट डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध। नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, कई एयरलाइंस ने घटाया किराया, कई शहरों का हवाई किराया हुआ पहले से सस्ता। देश की सैन्य सुरक्षा को नई ताकत देने वाली गुड न्यूज, इस हफ्ते के अंत तक देश को मिल सकता है चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दिल्ली में कल से शुरू होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, बैठक में रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी होंगे शामिल, प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे लावरोव। सूत्रों के हवाले से खबर, चौथे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देश की पश्चिमी सीमा पर किया जाएगा तैनात, S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा था अपना दम। 2018 में भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीद का किया था समझौता, अहमियत को देखते हुए भारत ने इसी साल 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीद कर दो मंजूरी। गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त और कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस बीरेन अनिरुद्ध वैष्णव गुजरात के नए लोकायुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध, सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण में। जम्मू के विधायक अरविंद गुप्ता ने भगवती नगर यात्री निवास का किया निरीक्षण, अधिकारियों को साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए RFID कार्ड और KYC अनिवार्य करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने करा रजिस्ट्रेशन, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 12 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 3 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,600 भक्तों ने दर्शन किए, अब तक करीब 2,00,000 भक्त पहुंचे दरबार। वहीं गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक करीब 3,86,000 पहुंच चुके हैं भक्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा, ड्राई फ्रूट फल और मिठाइयों का भोग किया गया अर्पित। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार, शेषनाग मुकुट और मुंडमाल से सजा बाबा का दरबार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उत्तर प्रदेश के मंत्री ने दर्शन किए, भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे, भोलेनाथ के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हनुमान शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज शोभा यात्रा में सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, इस दौरान बाइक रैली का भी किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑर्गेनिक खेती से बदल रही है किसानों की किस्मत, ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों को हो रहा अच्छा मुनाफा। उधमपुर के रामनगर में दूरदराज गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान, किसानों को अच्छे मुनाफे के साथ साथ मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रिकेटर नंदिनी शर्मा के घर पर खुशी का माहौल, विश्व कप टीम के लिए हुआ है नंदिनी शर्मा का चयन। अयोध्या काशी मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश में अब नाथ कॉरिडोर का फोकस, बरेली स्थित नाथ परंपरा से जुड़े 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास योजना पर काम शुरू। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे भारतीय क्रिकेटर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, श्री पीताम्बरा पीठ में की पूजा, टेका मत्था। महाराष्ट्र के बीड में आम की अच्छी पैदावार ने बदली किसान की किस्मत, लाखों रुपए का हुआ मुनाफा। दिल्ली में एम्स के 91वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, छात्रों को किया सम्मानित। दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मेककेना से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पेश की मिसाल, प्रधानमंत्री मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, हालांकि इसके लिए नई गाड़ियां न खरीदने के भी निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य, योगी सरकार ने सरकारी काफिलों में 50% वाहन घटाने के निर्देश दिए। एमपी में सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से घटाए वाहन। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का किया निर्णय, राजस्थान सीएम ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, 10 से 11 की जगह अब सिर्फ 5 गाड़ियों का होगा काफिला। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भी पीएम की अपील का असर, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो में किया यात्रा, बोले जरूरत पड़ी तो केवल एक गाड़ी का करूंगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मेट्रो और ई रिक्शा का सफर करते आए नजर, इस दौरान आम लोगों और स्कूली बच्चों से भी की बात। पीएम की अपील का असर, गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा छोड़ी, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी घटाया काफिला। पीएम और सीएम की अपील के बाद भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हटाई काफिले की गाड़ियां, अब सिर्फ एक गाड़ी से चलने का किया ऐलान। आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना अब और हुआ महंगा, वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें आज से लागू, सरकार के इस फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना। सरकार ने सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% की। गुजरात के कच्छ में शादी के दौरान उड़ाए गए सोने के नोट और सिक्के की हुई बारिश, वीडियो हुआ वायरल। कच्छ में लोक संगीत के दौरान पैसे उड़ाने की परंपरा पुरानी, नोट लूटने के लिए मची होड़।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Good news today.
0: Good news today is really good. It's good, right? उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के नतीजों का ऐलान, इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा 95.62%, तो प्रयागराज में सबसे कम 72.43% छात्र हुए पास। इस हफ्ते के अंत तक भारत को मिल सकता है चौथा S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री की पीएम मोदी और विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। नोएडा एयरपोर्ट से सफर हुआ सस्ता, इंडिगो और अकासा ने घटाया हवाई किराया। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू हो रही है हवाई यात्रा, अकासा ने टिकट बुकिंग की शुरू। देश से बचत की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में की कटौती, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वॉय में आधे से कम की गाड़ियां। पीएम की अपील के बाद कई राज्यों के सीएम ने की अपने काफिले की गाड़ियों के कटौती, गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा नहीं करने का फैसला किया, दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो में सफर। तेजी से आगे बढ़ रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के व्यापक इंतजाम, सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसका संबंध है आपकी सुंदरता से, आपकी बुद्धि, वाणी और एकाग्रता से, जिसे ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। देखिए, ज्योतिषी मानते हैं कि जिसे भी बुध की शुभता मिल जाती है उसके जीवन में दुनिया की कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती है। माना जाता है कि बुध अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन बुध के कमजोर होने पर और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और वो कौन से महा उपाय हैं जिससे कुंडली का बुध हो सकता है बलवान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: जुबान तो मिलेगा मीठी वाणी का वरदान। मजबूत बुद्ध से तेज होगी बुद्धि, घर आएगी समृद्धि। अगर आप पाना चाहते हैं एकाग्रता और खूबसूरती का वरदान, तो बुद्ध की कृपा से पूरे हो सकते हैं आपके अरमान। बुद्ध, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मजबूत बुद्ध व्यक्ति को बुद्धिमान, चतुर्वक्ता और सफल व्यवसायी बना सकता है। आज हम अपने खास पेशकश में आपको बताएंगे कुंडली के ग्रह बुध की मजबूती क्यों जरूरी है और कमजोर बुध के क्या नुकसान है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं बुध की खासियत। नवग्रहों में बुध ग्रह को सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा जाता है। इनके पास पृथ्वी तत्व है और ये कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारण है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से भी संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है।
1: यह व्यक्ति के बुद्धि, विद्या, वाणी इनसे जुड़ा हुआ है और बुध ग्रह के माध्यम से जो है व्यक्ति की त्वचा के भी संबंध में विचार किया जाता है। तो बुध से अगर किसी व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर हो, नीच हो, में हो, अस्त में हो, तो व्यक्ति की वाणी जो है वह कमजोर होती है। व्यक्ति बालक जब रहता है तो वह देर से बोलना शुरू करता है, व्यक्ति साफ नहीं बोलता है, तुतला करके बोलता है। इस प्रकार व्यक्ति के या तो शरीर में जो चिन्ह निशान इत्यादि बन जाते हैं, तो ये

0: चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती है। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल तथा फरीब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है।
1: देखिए, जिस व्यक्ति का बुध कमजोर होगा, बुध के कमजोर होने के लिए ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह के बल को देखने के लिए मुख्य रूप से षडबल का निर्धारण किया जाता है। तो यदि बुध षडबल में कमजोर है, बुध अस्त अवस्था में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को विद्या में बाधाएं आएंगी। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होगा, उसके बुद्धि का उतना विकास नहीं होगा जितना सामान्य रूप से होना चाहिए, और व्यक्ति की वाणी जो होगी वह स्पष्ट नहीं होगी। व्यक्ति वाणी में जो है निश्चित रूप से कमजोर होगा।
0: कान, नाक और गले का संबंध बुध से होता है। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो त्वचा के साथ साथ कान, नाक, गले संबंधी समस्याएं भी परेशान करने लगती हैं। सुनने और बोलने की समस्या होती है, कभी कभी गला खराब हो जाता है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये उपाय कारगर होंगे। तो रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें या मन में दोहराएं। चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखवा कर गले में पहने। ज्यादा से ज्यादा हरे कपड़े पहने। रोज सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे, कंठ और सीने पर लगाएं।
1: जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति की वाणी और उसकी जो है अध्ययन के लिए बुध कारक है, तो जो कान, नाक और गला है इसमें भी बुध का अत्यंत योगदान होता है। तो बुध को बलि करके, बुध के जो मंत्र हैं उनका जप करके और बुध की जो औषधियां हैं, जो वनस्पतियां बताई गई हैं, उनका प्रयोग करके व्यक्ति बुध का लाभ ले सकता है।
0: जानकार बताते हैं कि सूर्य के साथ युति बनाकर ये बुधादित्य राजयोग बनाता है, जो सफलता दिलाने वाला योग माना गया है। माना जाता है कि जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुध के पास ही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मजबूत बुध क्या वरदान दे सकता है, ये भी समझिए। व्यक्ति हाजिर जवाब होता है। व्यक्ति चीजों को जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। व्यक्ति का चेहरा चमकदार होता है। कुंडली में बुध मजबूत हो तो व्यक्ति सुगंध प्रिय होता है।
1: जिस व्यक्ति का बुध बलवान होता है वह व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है। वह मंचों पर अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाता है। वह जनता को अपनी बातों से प्रभावित कर पाता है। बुध बलि होने पर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यक्ति मानसिक रूप से उन्नत होता है। पठन पाठन में वह तेज होता है। इस प्रकार यह जो बुध है बलि होने पर जातक को हर प्रकार से मानसिक रूप से उन्नत बनाता है।
0: माना जाता है कि कमजोर बुध के लिए भगवान विष्णु की पूजा, गाय को हरा चारा खिलाना या ज्योतिषी की सलाह पर पन्ना रत्न धारण करना सही माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपकी रसोई में छिपा है बुध को मजबूत करने का आसान उपाय। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करें। कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन भी करें। दाल में हींग का प्रयोग भी लाभकारी होगा। माना जाता है संयम और शिष्टाचार से बुध को बलवान किया जा सकता है। साथ ही आहार और व्यवहार से भी बुध की शुभता पाई जा सकती है। चलिए आपको ज्योतिष में बताए कुछ और महाप्रयोग बताते हैं। वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। चीखने चिल्लाने से जहां तक हो सके बचें। संगीत का प्रयोग और मंत्र जप करते रहें। कांसे का एक छल्ला धारण करें। अपने ननिहाल से संबंध ठीक रखें। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। बुध को बलवान करने के और कौन कौन से महा उपाय हैं हम आपको आगे बताने वाले हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

कुंडली के सबसे सुकुमार ग्रह यानी बुध को बलवान बनाने का हम आपको बताने जा रहे हैं महाप्रयोग। माना जाता है कि अगर आपको शुद्ध वाणी चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, साथ ही रूप और सौंदर्य में निखार चाहिए, तो इन सबको प्रबल करने के ज्योतिषीय महा उपाय आपको करने होंगे। अगर आपका भी बुध कमजोर है तो करके देखें ये महा उपाय, देखिए आपका जीवन न बदल जाए तो।

0: जब कुंडली का बुध होगा बलशाली, तब बुद्धि से आप होंगे शक्तिशाली। ज्योतिषी महाउपाय से बुध को करें प्रबल, बुध की शुभता से मिलेगा हर समस्या का हल। माना जाता है कि आपकी वाणी, रूप, सौंदर्य के लिए बुध ही जिम्मेदार है। बुध कहने को एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना और देखा जाता है। सबसे सुकुमार ग्रह बुध की मजबूती कैसे किसी इंसान को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है, ये तो हमने आपको बता दिया। तो यदि आप भी खूबसूरती, बुद्धि और अच्छी वाणी का वरदान चाहते हैं, तो बुध से जुड़े उपाय आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। तेज बुद्धि, अच्छी एकाग्रता आपको हर क्षेत्र में अव्वल कर सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ज्योतिष में हर समस्या के लिए कुछ महा उपाय बताए गए हैं। अब जानते हैं ऐसे कुछ और सरल उपाय जो नियमित रूप से करके आप अपने बुध को बलवान कर सकते हैं।
1: जैसा कि मैंने बताया, बुध जो है वह व्यक्ति के विद्या, अध्ययन इत्यादि से जुड़ा हुआ है, तो विद्या इत्यादि में, अध्ययन में एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो बुध को बलि करके व्यक्ति अपने अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और एकाग्रता के लिए मुख्य रूप से जो कारक ग्रह होता है किसी व्यक्ति का, वह होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को मजबूत करके व्यक्ति अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकता है, अपनी मन स्थिति को ठीक कर सकता है।
0: रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तुलसी के पत्तों के सेवन के बाद 108 बार ओम एम सरस्वते नमः का जाप करें। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर दूर्वा अपने पास रखें। आपको तेज बुद्धि, अच्छी वाणी और एकाग्रता मिलेगी। हर इंसान चाहता है कि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, चेहरा हमेशा चमकता रहे, त्वचा पर कोई दाग धब्बा ना हो। इसके लिए जरूरी है कुंडली में बुध की मजबूती। बुध कमजोर होगा तो त्वचा संबंधी समस्या परेशान करने लगेगी। तो क्या करें उपाय जिससे आपके चेहरे पर नूर बना रहे?
1: त्वचा में रोगों के लिए भी बुध जो है कारक होता है। तो बुध को स्तोत्र का पाठ करके, बुध के मंत्रों का जप करके व्यक्ति बुध की कृपा को प्राप्त कर सकता है और अपने जो उसके त्वचा संबंधी रोग है उसमें उनको लाभ हो सकता है। बुध ग्रह के जो रत्न हैं उनको धारण करने से, बुध ग्रह के स्तोत्र का जप करके, उनका पाठ करके और बुध की उपासना करके व्यक्ति अपने अध्ययन में, विद्या में इसका लाभ ले सकता है।
0: रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और सलाद का सेवन करें, प्रभावित जगह पर नारियल का तेल लगाएं। अगर त्वचा की समस्या ज्यादा हो तो सलाह लेकर एक ओनेक्स रत्न पहने। माना जाता है कि बुध की कृपा से आपकी शिक्षा में उन्नति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको गणित या सांख्यिकी में कोई समस्या है तो ज्योतिष में इसके लिए कौन सा महा उपाय है। बुध के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्याएं होती हैं। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी में भी समस्या होती है। व्यक्ति को बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है। नित्य प्रातः और सायं ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें। तो देखा आपने, बुध आपके पक्ष में रहे तो आपको मालामाल कर देगा, आपको यश कीर्ति से अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और अगर उसने नजरें फेर ली तो आपको पाई पाई का मोहताज कर सकता है। ऐसे में हर इंसान यही चाहेगा कि उसका बुध हमेशा शुद्ध रहे। तो आखिर क्या करें कि बुध की शुद्ध दृष्टि ही हम पर पड़े? आगे हम आपको बुध की मजबूती से जुड़े कुछ और महा उपाय बताने वाले हैं।
2: तो देखिए, बुध को करना है बलवान तो मंत्रों के जाप से आपके चेहरे पर आ सकती है मुस्कान। देखिए, माना जाता है कि ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बहुत ही व्यापक है। तो आप जानते हैं कि मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर बुध को बलवान करने के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है।

0: जिस पर बुध होते हैं मेहरबान उसे भरपूर मिलता है मान सम्मान, और जिस पर बुध की पड़ जाती है कुदृष्टि तो ज्योतिष के महा उपाय दिलाएंगे आपको कष्टों से मुक्ति, क्योंकि बुध करता है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण। दूसरी तरफ बुध को ही सुंदर शरीर का स्वामी भी बताया गया है। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। तो बुध को मजबूत करने का सबसे सरल प्रयोग अब समझिए।
1: सबसे जो बुध के अधिष्ठाता देवता है श्री गणेश, तो गणेश जी की उपासना करने से बुध बलि होगा। बुध की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम बुं बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और बुध के जो स्त्रोत्र हैं उन स्त्रोत्र का पाठ करना।
0: रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नित्य स्नान करें, सफाई से रहें, हल्की सुगंध का नियमित प्रयोग करें, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके भोजन। माना जाता है कि मजबूत बुध आपकी कई तरह की मुश्किलों को सुलझा सकता है। चलिए आपको बुध की मजबूती से जुड़ा वो महामंत्र भी बताते हैं जिसका जाप आपकी कुंडली के बुध को बलवान कर सकता है। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें, उस समय अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह करें। तो आप भी ज्योतिष में बताए गए इन महा उपायों को अपनाएं और अपनी कुंडली के बुध को करें बलवान, जिससे आपको मिलेगा बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और मीठी वाणी का वरदान।
2: तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: चारधाम तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मौसम अपनी चालाकियां दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है भक्तों का जोश बढ़ता ही जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस के साथ ITBP के जवान भी ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। साथ ही यात्रियों को मौसम को लेकर अपील भी की जा रही है ताकि किसी तरह से निर्बाध यात्रा का उत्साह बना रहे।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन के साथ ही केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम या फिर गंगोत्री यमुनोत्री, हर जगह भारी संख्या में यात्रियों का आना हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में औसतन रोज 15,000 से अधिक भक्त पहुंच रहे हैं, तो केदारनाथ धाम में 20,000 से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में औसतन हर रोज 12,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो यमुनोत्री धाम में 12 मई को 12,722 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई। इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,94,075 श्रद्धालु मां यमुना का दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर 12 मई को 12,600 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और अब तक 1,92,022 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 12 मई को 25,404 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का आशीर्वाद दिया। इस तरह से अभी तक 4,91,155 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा के धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 मई को 18,090 श्रद्धालुओं ने भू वैकुंठ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और अब तक बद्रीनाथ धाम में 3,02,821 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जबकि अगर चार धाम यात्रा में शामिल कुल श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी तक 11,80,043 श्रद्धालु पुण्य लाभ ले चुके हैं।

0: जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहां 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। धाम की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद दिखाई दे रहे हैं।
1: अच्छा के अच्छे इंतजाम है और यात्रा भी अच्छी चल रही है वहाँ पे और सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है वहाँ पे। मैं अभी से उतर के आ रहा हूँ बद्रीनाथ से। दर्शन के भी अच्छे इंतजाम है, लाइन से दर्शन हो रहे हैं और जो वहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनका पूरा सहयोग है वहाँ पे दर्शन कराने में।
0: मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चमोली जिला प्रशासन ने भी चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को सतर्क रहने और सावधानी के साथ यात्रा करने की सलाह दी है।
2: अभी जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सचेत किया जाता है कि सावधानी पूर्वक यात्रा करें और मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखें और कहीं पर बारिश या ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें। और बाकी कोई आपदा की स्थिति आती है या कुछ अन्य कोई समस्या आती है तो हमारे आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से कारोबारी भी खुश हैं। स्थानीय उत्पादों की डिमांड भी बढ़ रही है।
3: अचानक गर्मी, अचानक सर्दी का इस समय देखने को मिल रहा है, यही बद्रीनाथ धाम में है। धूप रहते हुए तो बद्रीनाथ में अच्छी खासी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास भी हो रहा है। जहां एक और ठंड और मौसम चुनौती बना हुआ है, वहीं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो आस्था है, वो मौसम को भी चुनौती दे रही है। इतनी भीड़ इस बार बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही है, चाहे सड़कें कहें या फिर बद्रीनाथ धाम के चप्पे चप्पे में श्रद्धालु या फिर भारत का प्रथम गाँव माणा इस समय श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है।
0: बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु देश के प्रथम गांव माणा का रुख कर रहे हैं। माणा गांव भी यात्रियों से गुलजार नजर आ रहा है। लगातार मौसम बदलने के साथ ही इलाके में जबरदस्त ठंड और बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। ऐसे में माणा में गर्म कपड़ों की दुकान पर भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कश्मीर के गस्सू गांव की स्ट्रॉबेरी उन कई फसलों में से एक है जिसकी कटाई पूरे कश्मीर घाटी में पिछले महीने के आखिर और इस महीने की शुरुआत तक होती है। इसकी जल्दी कटाई होने के चलते ज्यादातर किसान अब अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक नकदी फसल है बल्कि लंबी सर्दियों के बाद ये फसल किसानों को पैदावार के साथ आमदनी भी देती है। इसीलिए मध्य कश्मीर में कई किसान अपनी खेती का तरीका बदलकर स्ट्रॉबेरी की खेती अपना रहे हैं, क्योंकि साल के इस समय में स्ट्रॉबेरी की मांग ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि उन्हें इस फसल के लिए अच्छा खासा पैसा भी मिलता है।

0: श्रीनगर का गस्सू गांव, जो स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां स्ट्रॉबेरी अब कश्मीर में एक मीठा बदलाव ला रही है, क्योंकि अब यहां कई स्थानीय युवा और किसान पारंपरिक फसलों के बजाय स्ट्रॉबेरी को अपना रहे हैं।
1: पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी के कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई है, अब कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। इस खेती से न सिर्फ उन्हें अच्छी जो है आमदनी हासिल होती है, बल्कि साथ ही साथ इसकी हार्वेस्टिंग के बाद वो दूसरे फसल भी अपने खेतों में उगाते हैं।
0: जहाँ कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है, अप्रैल मई में कटाई वाली ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा और अच्छी आजीविका दे रही है। यहाँ के स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान कहते हैं कि इस बार मौसम इस फसल के लिए अनुकूल रहा है। उनका मानना है कि इसकी खेती में बहुत श्रम लगता है और वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा इस खेती को अपनाएं, ताकि ये परंपरा जीवित रहे।
2: मार्च से फिर बारिश स्टार्ट हुई जो इस फसल के लिए अच्छी है। आप देख रहे हैं कि इस साल अल्लाह का शुक्र है कि फसल अच्छी है। लास्ट ईयर की बात करें तो जब हार्वेस्ट पीरियड 2-3 दिन स्टार्ट हुए थे, उसी दौरान हुआ था बदकिस्मती से वो पहलगाम अटैक, जिसकी वजह से इस क्रॉप पे बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि टूरिस्ट फिर भाग गए, यहाँ पे कोई नहीं था, फिर मार्केट्स भी मतलब नहीं चल पा रहे थे। तो इस साल उम्मीदें हैं कि जो लास्ट ईयर मतलब लॉस हुआ वो इस साल कंपनसेशन हो जाएगा। और फसल की बात करें, फसल इस साल मतलब ठीक है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
0: किसान सरकार से मिल रही मदद से भी खुश हैं, बस उन्हें अब कुछ मार्केटिंग में समस्या आ रही है और वो इसका समाधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में अपनी उपज पहुंचाने के लिए विशेष रेल सेवा शुरू करना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
2: सबसे पहले हर किसी के लिए यही मैसेज है, अगर आपके पास 5-6 मराही ज़मीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं स्ट्रॉबेरी, सेफ्रॉन भी लगा सकते हैं या इवन नर्सरी भी लगा सकते हैं। तो दूसरी बात मैसेज है यहाँ की, मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट मतलब जम्मू एंड कश्मीर की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने इस साल मतलब अच्छा स्टेप लिया कि आपने मतलब चेरी को मतलब एक्सपोर्ट करना है बाहर, उसके लिए आपने अलग से ट्रेन रखी है। तो माशाल्लाह इसमें मतलब फार्मर्स का ही मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, अगले 1-2 सालों में हम भी देखेंगे कि मुझे लगता है ये भी बाहर जाएगा, क्योंकि गुड्स ट्रेन मतलब अवेलेबल हो जाएगी।
0: स्ट्रॉबेरी विलेज में मुख्य रूप से लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक तरीके से खेती की जाती है। इस फल की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसके चलते घाटी के जिलों में ही इसकी खपत होती है। कश्मीर में लंबी सर्दियां के बाद सबसे पहली फसल जो तैयार होती है वो चेरी और स्ट्रॉबेरी ही है। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज से स्ट्रॉबेरी की कीमतों में इजाफा हुआ है और बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, यही देखते हुए कश्मीर में किसान बड़ी तादाद में इसकी खेती करने लगे हैं। इससे खेती में न सिर्फ कमाई बढ़ी है, बल्कि स्ट्रॉबेरी की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई भी आसान हुई है। कश्मीर के स्ट्रॉबेरी विलेज से अशफवानी, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: बाबा चाणक्य की अपील पर प्रधानमंत्री ने किया अमल, केवल दो गाड़ियों का काफिला लेकर निकले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के काफिले में होता है डेढ़ दर्जन गाड़ियों का रेला। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आउट, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। देश का सुरक्षा चक्र होगा और मजबूत, भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा तैनात। नोएडा एयरपोर्ट से सफर हुआ सस्ता, इंडिगो और अकासा ने घटाया हवाई किराया। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू हो रही हवाई उड़ानें, अकासा ने टिकट बुकिंग शुरू की। गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की विशेष पहल, पक्षियों के लिए खास फव्वारे का इंतजाम, 481 ज्यादा बेजुबानों को मिल रही है राहत।

प्रेशर वाली सैलरी या सुकून वाली जिंदगी, आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल कहा यह जाता है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों से बड़ा सपनों को पूरा करने का संकल्प हो, और सपनों का पीछा करने वालों को अक्सर बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कुछ ऐसा ही वाकया हाल ही में दिल्ली में भी पेश आया है, जब कड़ी मेहनत के बाद प्रमोशन पाने वाले एक पुलिसकर्मी ने डिमोशन की अर्जी लगा दी। दलील ये दी कि कार्यभार बढ़ने की वजह से पुलिसकर्मी अपने निजी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के बाद खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। पुलिसकर्मी के इस फैसले से कुछ लोग चौंक गए तो कुछ उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब लोग ज्यादा सैलरी, ज्यादा अधिकार, बड़े रुतबे, ओहदे को पाने की चाह रखते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं, इस शख्स ने पद या ओहदे की जगह शिक्षा, अपने और मन की शांति को चुना। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे।

0: तो आज हम इस विषय को लेकर चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले आपको इसकी डिटेल्स दे देते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस में हाल ही में एक अलग सा मामला सामने आया है। मामला क्या है पहले वो बताते हैं। हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मनीष कुमार ने अपने आला अधिकारी से डिमोशन की मांग कर डाली। डिमोशन की अर्जी के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मुख्य वजह बताया और मनीष की दलील ये थी कि प्रमोशन मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी, वो पढ़ाई और निजी लक्ष्यों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे थे। मामले की समीक्षा के बाद मनीष की अर्जी को मंजूरी मिल गई। सब इंस्पेक्टर के फिर से सिपाही बनने का मामला सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चर्चा इस विषय पर शुरू हो गई कि आज के यूथ के लिए जरूरी क्या है, बड़ा पद या बड़ा लक्ष्य, पदभार या मन की शांति। वर्किंग क्लास के वर्क लाइफ बैलेंस के इस नए फंडे पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है।
1: सर्विस देते हुए मतलब कि उन्होंने सर्विस हटाने, वो एक नॉर्मल कम पोस्ट पे आ गए और उस सर्विस को देते हुए साथ ही साथ वो अपना अगले एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट होने के नाते यही बोलना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सही किया उन्होंने, ना ही उन्होंने कोई सर्विस को छोड़ा, उन्होंने बस अपने दायित्व को कम किया, अपने जिम्मेदारियों को थोड़ा कम किया और सेवा करते हुए उन्होंने तैयारी करने का ये निर्णय लिया जो मेरे हिसाब से सही।
2: वो एक सिपाही भर्ती हुआ, अपनी मेहनत से इंस्पेक्टर बना, लेकिन पढ़ाई ऊपर करने के कारण और एक अच्छे पोस्ट देने के कारण उसे अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने पढ़ाई पे ध्यान देने का।
3: कैसा कदम है, क्या मानते हैं?
2: लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही बिल्कुल अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर लगना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस आदमी ने जो अपना काम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, और उसकी पर्सनल उसकी खुद की इच्छा है कि वो डिमोशन देखो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आगे तैयारी आगे फर्दर कैरी करे, तो ये उसकी इच्छा है अगर वो बंदा करना चाहता है। तो मेरे को तो पर्सनल जो आदमी अपने ऊपर लेके चीज कर रहा है वो सही लग रही है, तो मेरे को तो उसका सही लग रहा है, अगर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ।
4: मैं यही कहना चाहता हूँ उसका डिसीजन सही है, अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं और हमें अच्छी जॉब पा रहे हैं जैसे आप भी हैं, अगर आपको बड़ी पोस्ट मिल रही है तो आप चाहेंगे ना हम उस पर जाएं, क्योंकि हम हर समय चाहते हैं हमारे पोस्ट में वृद्धि हो और हर एक इंसान चाहता है कि हम पैसा कमाएं और आगे बढ़े।
0: पर सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे तमाम मामले हाल फिलहाल में सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो सैलरी और ऊंचे ओहदे की बजाय अपने सुकून को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या है जेंजी का यह नया फंडा, इसी को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। जाहिर है कि आज का युवा अलग तरह का वर्क कल्चर चाहता है, जहां पर काम और तरक्की के साथ साथ वो खुद के लिए भी एक पर्सनल स्पेस चाह रहा है। और हाल ही में छुट्टी को लेकर भी एक जेंजी की लीव एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर खूब चाही थी, जिसके बाद ये चर्चा वापस शुरू हो गई थी कि क्या सुकून इंपॉर्टेंट है या फिर ओहदा और सैलरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये मामला भी बता देते हैं, बेंगलुरु का की एक कंपनी का ये मामला था जहां पर इस युवा कर्मचारी के छुट्टी मांगने के कूल तरीके को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने लिखा था कि कम से कम 4 दिन की छुट्टी की उन्होंने डिमांड की थी और इस कर्मचारी ने अपनी जरूरत को बहुत ही बेबाकी के साथ अपने बॉस के साथ शेयर किया था। लीव एप्लीकेशन में महिला युवा कर्मचारी ने लिखा था कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और इस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं मानसिक थकान महसूस कर रही हूं, मैं खुद को थोड़ा समय देना चाहती हूं जिसके लिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए। और ये युवा कर्मचारी आगे लिखती हैं कि मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देखना चाहती हूं, फिल्म का नाम उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्योंकि इस फिल्म ने मुझे कभी फैशन की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया था और इसीलिए इसका सीक्वल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं इन 4 दिनों में मी टाइम की तरह इस 4 दिन को बिताना चाहती हूं, खुद का ख्याल रखना चाहती हूं, खुद को तैयार करना चाहती हूं नई चुनौतियों के लिए, फिल्म को देखना चाहती हूं और फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती हूं। तो जेंजी की लीव एप्लीकेशन के साथ ही बॉस का जवाब भी बहुत ही वायरल हुआ था, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बॉस ने भी 3 शब्दों में जवाब लिखा, ओके अप्रूव्ड बेस्टी, यानी इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ भी गलत नहीं, अगर आप सही तरीके से सही इंटेंशन के साथ अपनी प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए ईमानदारी के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जेंजी का नया फॉर्मूला, नया फंडा है जहां पर वो तरक्की और हायर सैलरी से ज्यादा अपने सुकून को प्राथमिकता दे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जतिन चावला, करियर काउंसलर हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ज्योति कपूर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं, लेजली त्रिपाठी जेंजी को रिप्रेजेंट करती हैं हमेशा। तो लेजली, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, आपके लिए ऊंचा ओहदा, अच्छी सैलरी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी आपने पढ़ाई लिखाई की है, या फिर आपको सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
5: थैंक यू मैम एंड रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। मैं ये कहना चाहूंगी मैम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जॉब चल रहा है, वहां से सैलरी आ रही है, ठीक है, बट ज्यादा लाइक यू नो प्रेशर में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी, तो पीस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट। और अगर ऑफिस में या जिनके साथ हम काम करें उनको हम समझा सकते हैं कि मैं इतने समय में या एक दिन का ब्रेक चाहूंगी, जैसे आज मैंने बहुत काम कर लिया, कल थोड़ा ब्रेक चाहूंगी, अगर वहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो बोलते ठीक है आपने इतना काम कर दिया, दूसरों के मुताबिक आपने दो दिन का काम एक दिन में कर लिया, तो आप ब्रेक ले लो, आप थोड़े से अच्छे से कर पा रहे हो, तभी इट्स इजी टू वर्क। अदरवाइज ना सब कुछ छोड़ के अपने ड्रीम्स फुलफिल भी करने का अभी मौका मिल रहा है। सो अभी थिंग्स आर चेंजिंग, नो मोर वी आर डिपेंडेंट कि यही पे जॉब करनी है, नहीं तो अगर यहाँ से निकाल दिए तो यू नो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऐसे डिसीजन लेने से पहले ना हमेशा प्लान ए प्लान बी करके ही आगे बढ़ते हैं हम।
0: क्या जेन ज़ी का प्लान ए प्लान बी होता है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वो इस प्रेशर में नहीं रहते हैं कि अगर हमने एप्लीकेशन दी, हमें अगर छुट्टी नहीं मिली, वो कहते हैं कि ठीक है छुट्टी नहीं मिली, ये ट्रेंड भी आजकल देखा गया, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये नौकरी नहीं तो दूसरी सही।
5: क्या कहते हैं मैम, एक्चुअली खुद पे भरोसा है कि आई कैन हैंडल, अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो आई थिंक दिस कैन वर्क आउट। एंड वही वो जाके हमेशा कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले वो हमेशा सोचते, अपना होमवर्क करते हैं, फिर जाके वो बात रखते हैं। अगर सामने वाला अगर एम्प्लॉयर है या कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर वो समझ रहे हैं कि ठीक है हमें ये जमता है तो ठीक है वी गो अहेड, अदरवाइज वहां से लीव लेने में अभी बिल्कुल किसी को नोबडी इज लाइक क्राइंग ओवर इट, सोचे ठीक है आई कैन गेट अ बेटर डील।
0: अच्छा एक बात बताइए लेजली, एक बात बताइए, दो चीजें होती हैं, एक तो आप बहाने बनाकर छुट्टी लेते हैं, एक बहुत से ऐसे किस्से आए जहां पर बड़ी ईमानदारी के साथ, एक हमने अभी इसमें शेयर भी किया है जहां पर एक लड़की ने लिखा कि मैं चार दिन की छुट्टी में मी टाइम बिताना चाहती हूं क्योंकि मेरे लिए वो मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को रिफ्रेश करने के लिए फिल्म देखना चाहती हूं, ईमानदारी से बताया। क्या ईमानदारी से बताने से छुट्टी इजिली मिल जाती है या कहीं ना कहीं बहाने बनाते हैं? मतलब आजकल अगर जेन ज़ी ने इस ट्रेंड को बदला है तो क्या बॉसेस की नेचर में या उनके बिहेवियर में भी चेंज आया है क्या?
5: मैम अगेन यहाँ पे भी हर चीज बोलने से पहले प्लान ए प्लान बी होता है कि अगर यहाँ पे मैं झूठ बोलूं विल दिस वर्क, ये पता होता है कि शायद बॉस को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो प्लान बी भी रहता है कि अगर सच बोलने से वर्कआउट नहीं होगा तो लेट्स ट्राई फॉर दिस। तो आप ये जो अभी आपने बताया, ये जो लेटर आपने बताया चार दिन की छुट्टी, हो सकता है कि पहली बार ही में उन्होंने कभी सच लेकिन वो कुछ और बोला होगा, मिला नहीं होगा तो उन्होंने सच ही बोल दिया और उनके लिए वो वर्कआउट हो गया। तो आप जो भी देखते हो मैम, जेन ज़ी अभी डिसीजंस ले रहे हैं वो बस ऐसे आंखें बंद करके एक तुक्का नहीं मार रहे, दे टेक वेरी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स, उनको पता है, फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ दिस माइट वर्कआउट फॉर मी, तभी करते हैं वो। अभी क्या होता है कि इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड जनरेशन, दे रिस्पेक्ट फैमिली, फैमिली को पहले समझा देते सो दैट किसी को शॉक ना मिले, फिर समझा के वो दे टेक स्टेप्स, सो नोबडी शॉक एनीमोर, फैमिलीज आर सपोर्टिव, फ्रेंड्स आर सपोर्टिव एंड बॉसेस भी आजकल सपोर्ट कर रहे
0: हैं। जल्दी से छोटा सा सवाल जल्दी से, कम सैलरी मिले कम संसाधन मिले चल जाएगा, बशर्ते हमें सुकून मिलना चाहिए, हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, इज इट ओके? क्या ये वर्क करता है जेन ज़ी के साथ?
5: बट मैम सबकी, आई कांट स्पीक फॉर ऑल, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं कम में जी लूंगी, अभी उनके डिमांड्स भी कम हो गए हैं, जैसे चिल है लाइक जो कभी कभी लगता है कि मैं कम में चला लूंगी। अभी आप देखिए हमारे लिए बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस, हम देखते रहते हैं अच्छा दही 24 रुपीज में मिल रहा है, 35 रुपीज में भी मिलता है, लेट मी गो फॉर 24। तो इनको दिमाग में रख के ही नए नए एप्स भी आ रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि जेन ज़ी और आजकल के जनरेशन कम बजट में जीना शुरू कर रहे हैं, 10 रुपए या 15 रुपए का जैसे काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि 100 रुपए में हम खा भी सकते हैं, एक दिन भी गुजारा कर सकते हैं, सो हम सब करते रहते हैं, इवन रील्स भी बनते रहते हैं, पीपल आर शेयरिंग कि आप ऐसे कर सकते हैं।
0: कुल मिलाकर ये है कि जेंजी ने इस ट्रेंड को बदला है। जितिन जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि सोच क्या है उस पर आप दोनों से विस्तार से बात करेंगे। जितिन जी आप बहुत सारे यूथ को हेल्प करते हैं उनका करियर बनाने में, जाहिर सी बात है कि जब आपके पास आते होंगे पहली बात तो कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। आपकी कोशिश हमेशा ये रहती होगी कि पहले इनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। क्या आपने जेंजी का माइंड रीड किया है? एक लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले वो मेहनत करते हैं। आप उस लक्ष्य तक पहुंच गए, आपको अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छा ओहदा मिल गया, लेकिन फिर उसके बाद आप उसी को ठुकरा देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अगर आपको कहूं कि जेंजी के माइंड को पढ़िए, ट्रेंड्स को पढ़िए, तो आपको लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं ले सकता जेंजी, लेना नहीं चाहते, उनके लिए उनकी लाइफ, उनका सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या आपने चेंज ऑफ ट्रेंड देखा है?
6: जी, सबसे पहले यह है कि देखिए, ये आइसोलेशन में देख सकते, सबका एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो पहले हमें, क्योंकि जैसे हम कहते हैं भाई, इंडिया एक इंडिया नहीं है। अब कोई एक छोटे विलेज में बड़ा हो रहा है, कोई छोटी सिटी में हो रहा है, कोई बड़े महानगर में दिल्ली मुंबई ऐसी जगह बड़ा हो रहा है, जिसका सोशियो, मेरी इंटरेक्शन ऐसे स्कूलों में होती है जहाँ की मतलब पेरेंट्स हैव बिल्ट अप ह्यूज बिजनेसेस, तो उनकी सोच बिल्कुल अलग है और वो खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब आगे चलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आज की मिडिल क्लास की बात करूं तो उनकी सोच बदली है एंड दे आर लुकिंग एट मोर सुकून। सबसे पहले उनके एस्पिरेशंस हैं। अब जैसे हमने ये वाला केस देखा जिसमें कांस्टेबल ने एसआई की पोजीशन मिल गई और उसके बाद उसने डिमोशन खुद ही मांगा, क्योंकि उसको पता है कि एक तो उसकी क्लैरिटी है कि मेरे को देखो और ऊपर बढ़ना है, मेरे को और पढ़ाई करनी है, तो क्लैरिटी है, उसका कमिटमेंट है कि मैं कर लूंगा, मतलब वो अपने आप को कमिट भी कर रहे हैं। और एक्शन बायस है, कई लोगों को क्लैरिटी होती है, कई लोग मन में सोचते हैं हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? क्या आप उतने घंटे बैठ के पढ़ाई कर पाते हैं? क्या कोचिंग ले पाते हैं? क्या आपका एक्शन इज स्पीकिंग अबाउट इट? तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। तो इसलिए एस्पिरेशंस सब लोगों के अलग अलग हैं, तो हमें उनका उस ग्रुप के एस्पिरेशन को समझ के फिर आगे हम बात करेंगे भाई कैसा है। एक जनरल मिडिल क्लास की बात करें, डेफिनेटली बच्चों के एस्पिरेशन बहुत हैं। जैसे हमारी टीम, हम बच्चों को इंडिया अब्रॉड दोनों के लिए गाइड करते हैं, तो बहुत बच्चे अब्रॉड इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है और स्ट्रगल करने को तैयार है, अपना बेस्ट करने को तैयार है। बट हाँ, एक जनरल ये हो गया कि फिर भी मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये तो डेफिनेटली जेंजी मांगती है। एम्प्लॉयर्स भी इस चीज़ के लिए ओपन है, लोगों ने अपने आप को, मतलब जो मैनेजर्स देख रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जनरली उन लोगों ने भी रिलैक्स किया है। और इंडिया को माना जाता है कि कंपैरेटिवली बाहर की कंट्रीज में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, इसलिए बहुत से लोग मूव करते हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली फिनलैंड, स्वीडन और जो नॉर्वे, हैप्पी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अमेजिंग है, वहाँ का जो सपोर्ट कल्चर है बहुत ही अमेजिंग है। मेरे अपने ब्रदर ने स्वीडन में काम किया, तो आप सोचो किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है लेकिन 3 दिन के लिए आपको घुमा फिरा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि बच्चों का स्कूल कैसा है, एंटरटेनमेंट कैसा है, शॉपिंग कैसी है, तो आप सोचो कि क्या ये पॉसिबल भी है? मतलब क्या इंडिया में किसी को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो 3 दिन उसे एचआर घुमाएगा क्या? तो अभी बहुत डिफरेंस है हमारी कंट्री में और बाकी जगह, तो ये भी एक और मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन भी लगी हुई है। अगर एक नहीं तो एम्प्लॉयर के पास भी चॉइस है, क्योंकि एक जॉब के लिए इतने सारे लोग हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, उसका एक अलग ड्रॉ है फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो बिल्कुल जो हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड, बट मिडिल क्लास में, डिपेंडिंग ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जो बिल्कुल ही लोअर बैकग्राउंड से, तो उनको बहुत इंटरेस्ट है उस टाइप की जॉब्स में।
0: ठीक है, डॉक्टर कपिल कक्कड़, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं इस सोच को कि सुकून को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, रादर देन कि हम सैलरी के पीछे भागें, हम एक ओहदे के पीछे भागें? परिवार भी इम्पोर्टेंट है, मन की शांति, मन का सुकून भी इम्पोर्टेंट है। क्या ट्रेंड चेंज हुए हैं?
7: तो देखिए, मैंने काफी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस में भी करी है, 5-6 साल मैं वहां पे भी जाता रहा हूँ, सो आई नो हाउ दे थिंक। और मैंने कॉर्पोरेट्स में भी काफी मैं करता हूँ। अब इसमें मैं तो, आपने ये जो दो मुद्दे हैं ना, ये दो अलग अलग थोड़े से हैं बट कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब जो पुलिस वाला जो आपने ये मुद्दा लिया, जिन्होंने अपने आप को डिमोट किया, ही टुक दैट ऑप्शन क्योंकि ही वांटेड मोर टाइम टू स्टडी, परहैप्स ही वाज ट्राइंग टू स्टडी हार्ड फॉर अनदर लेवल दैट ही वांट्स टू अचीव इन लाइफ। वो एक गोल अपना जिंदगी में चाहते हैं, ही माइट वॉन्ट टू गेट इन टू सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, क्योंकि ही वॉज अ सब इंस्पेक्टर, एंड ही वॉज पोस्टेड इन अ चौकी. अब चौकी में जब आप रहते हैं आपको टाइम वगैरह आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, आप 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, आपको कहीं पे भी भेज दिया जाता है. दूसरा, दिल्ली पुलिस के अंदर आप देखेंगे एक होता है बेटिलियन, जो आपका बेटिलियन होता है वो इनके पास कम से कम 25-30 हजार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फ्री टाइम ही होता है. ये तब जाते हैं जब आपको मतलब कहीं पे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होती है, नहीं तो अगर अदरवाइज आप इनका टाइम देखेंगे दे आर बेसिकली पासिंग टाइम. तो मैं जहां तक देखता हूं इस युवक की एस्पिरेशन इतनी हाई है कि ही डिसाइडेड कि मैं डिमोशन लेता हूं, वहां मैं डिमोशन लूंगा एंड आई एम 100% श्योर ही विल ज्वाइन अ बटालियन. बटालियन में इसकी पोस्टिंग होगी जहां पे ही विल बी एबल टू स्टडी फॉर 12-12, 14-14 आवर्स. क्योंकि अगर इसी की एज अ कांस्टेबल मान लीजिए किसी थाने में हो जाती है, फिर अगेन इसके पास टाइम नहीं बिल्कुल होगा जैसे एज अ सब इंस्पेक्टर नहीं था, क्योंकि वहां पे पेट्रोलिंग भी होगी, वहां पे लोग भी आएंगे, उनके साथ भी डीलिंग होगी. तो यहाँ पे इसने सोची समझी चाल तो नहीं कहूंगा, बट इट्स अ स्ट्रेटेजी दैट ही हैज टेकन. और ये अगर आप, मैं पीएसयूज वगैरह में भी जाता हूँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इसको एक बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं. दे विल ज्वाइन अ पीएसयू. आफ्टर ज्वाइनिंग अ पीएसयू देयर मेन गोल इज कि हमने आईएएस सिविल सर्विसेज क्रैक करना है. तो ये तो आपके एक तरह के लोग हो गए जो आपका एग्जांपल था. दूसरा, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी बात करी जो बहुत अच्छी बात करी. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए आज की डेट में जो जेन जी है बहुत ऐसे केसेस आए हैं. अभी हाल ही फिलहाल में केस आया कि जहां पे जेन जी को बोला गया ओवर टाइम करने के लिए ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब, उसने क्या किया, उसने सेम डे रिजाइन कर दिया. क्योंकि उसने कहा मुझे आप लोगों ने कंपनी वालों ने बोला है 6 बजे या 5:30 बजे तक रुकना, उसके बाद वो टाइम मेरा है. तो ये जो जेन जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो उनका है कि भाई ये हमारा टाइम. और इससे एक रिसर्च भी सामने आई थी कि जेन जी दे टॉक अबाउट फ्रीडम, दे टॉक अबाउट फेयरनेस, दे टॉक अबाउट एंटाइटलमेंट एंड दे वॉन्ट वर्ल्ड टू बी अ फेयर एंड बेटर प्लेस. इसमें मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल बचाऊंगा. आपने शायद वो देखा हो कि जेन जी एक मीटिंग में बैठी है और उसने फेस मास्क पहना हुआ है और वो फेस मास्क के साथ मीटिंग कर रही है. और उसके बाद जो उसके बॉस है उससे पूछते हैं विच फेस मास्क आर यू यूजिंग, इट्स अ गेम यू शुड ऑल्सो ट्राई. कहने का मतलब जेन जी आज की डेट में है बहुत कैंडिड है. अब जब मैं आता हूं आई कम फ्रॉम जेन एक्स, उसके बाद मिलेनियल्स है. कॉर्पोरेट में बहुत ही देखा गया है कि जेन एक्स है वो जेन जी के साथ दे आर नॉट एबल टू थिंक लाइक देम. तो मिलेनियल्स यहाँ पे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है. दे बिकम एन इंटरफेस बिटवीन जेन जी एंड जेन एक्स. तो आपको ऐसे बहुत एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ.
0: तो मैं
7: बहुत एक्टिव हूँ.
0: बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास. एक बार डॉक्टर ज्योति कपूर को भी इंक्लूड कर लेते हैं. डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर जेन एक्स, जेन मिलेनियम, जेन जी की तीनों की बात कर रहे हैं, जो ट्रेंड बदला है वो हम जेन जी में ये देख रहे हैं. क्या ऐसा भी है कि भाई जेन मिलेनियम के पास उतने ऑप्शंस नहीं थे और नौकरियां उस वक्त कम थी? आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, एक बहुत बड़ा मार्केट तो आपका ऑनलाइन जॉब्स का ही है. इसीलिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि एक सुकून की नौकरी मिल जाए जहां कम समय में काम किया जाए, अपने लिए समय निकाल दिया जाए, जहां पैसा भी ठीक ठाक मिले. और अगर, और इसलिए इस तरफ ज्यादा रश नहीं है कि हाँ हमें किसी एक ओहदे पर पहुंचना है या हमें किसी पर्टिकुलर सैलरी की जरूरत है. क्या इस तरह बैक ऑफ द माइंड जेन जी की ये भी रहता है?
8: थैंक यू नवजोत. और ये बहुत पर्टिनेंट पॉइंट आपने उठाया है, पर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड लेके जाती हूँ. सुकून से जीना हम सबकी रिक्वायरमेंट है, चाहे हम जेन एक्स हैं, चाहे हम जेन जेड हैं, या जेन अल्फा हैं.
0: जेन एक्स और जेन मिलेनियम तो सुकून भूल चुके थे, उनकी डिक्शनरी में सुकून शब्द नहीं था. जेन जी वापस लेके आया है.
8: राइट, एग्जैक्टली. ये इट्स लाइक अ फुल सर्कल. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम काम की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं, तो हम करियर के लिए लोगों को बोलते हैं कि तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं करियर को चूज करने के लिए. पहला होता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दूसरा पैसा, और तीसरा होता है सोशल स्टेचर. तो एक स्टेज पे जब ये सारी चीजें बराबर होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, तो आपको खुशी मिलती है. अदरवाइज आप के लाइफ में संतुलन नहीं रहता है, और वो असंतुलन जो है वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है. तो जो जेनरेशन जिनको हम जेन एक्स या मिलेनियल कहते हैं, वो उस दौर से गुजर रहे थे जहां पे एक तो एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पैसा और मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल हुआ. अब उसको पाने के लिए मेहनत भी करना है, तो जो सारा का सारा वो कहानी था कि आप काम करते हैं, वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो सारा डिस्टर्ब होने लग गया था, खासकर जब पीछे इंटरनेट और सब चीजों की सहायता से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, बाउंड्रीज वायलेट होनी शुरू हो गई, इंटरनेशनली काम शुरू हो गया. तो स्ट्रेस इज टेकिंग इट्स टोल. एंड पिछले 5-7 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कितनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को कौन देख पा, कौन झेल रहा है, वो मिलेनियल्स हैं, हम लोग हैं. लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो अब समझ गई है कि ऐसे नहीं चल पाएगा, कि मेरी बड़ी बहन या मेरी मम्मी जो है वो लोग इस तरीके से खुश नहीं रह पा रहे. सो दे आर मेकिंग देयर चॉइसेस, एंड यू आर राइट दैट दे आर मेकिंग देयर चॉइसेस बिकॉज चॉइसेस आर अवेलेबल. किसी भी सोसाइटी में या कल्चर में बदलाव कब आता है, जब एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी उस चीज में बिलीव करने लग जाती है. अब पिछली जनरेशन जो है वो काम को, मेहनत को, लेबर को ही एक आइडियल आइडियलिज्म आ रहा था, उस चीज में बिलीव कर रही थी. तो सब उसी रैट रेस में थे कि सबसे अच्छा वही है जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, सबसे ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है. पर फिर देखा कि ऐसा करने से उतनी ही जल्दी उनको हार्ट अटैक भी होते हैं, उतनी ही जल्दी उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सोशल हेल्थ, सब कुछ खराब भी होती है. सो व्हेन यू से दैट आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, तो मेरी प्रायोरिटीज क्या है? अगर मैं अपनी ही कमाई को खा नहीं पा रहा हूँ, या अगर मैं अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, तो फिर इस सब का फायदा ही क्या है? तो आई थिंक वो क्लैरिटी आ रही है, जैसे कि जतन ने भी बोला था इस पर्टिकुलर केस में बोले तो द पर्सन हैज वेरी मच क्लैरिटी उसको कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने उस हिसाब से अपना एक्शन बायस किया, अपना डिसीजन लिया. सिमिलरली कॉरपोरेट से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको प्रायोरिटाइज करने को बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड, वो उनको डर लगता है कि मतलब क्या सोचेंगे अगर मैंने छुट्टी ली तो. लेकिन जितना आप इस बारे में क्लैरिटी लाने लग जाते हैं कि कोई क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैटर ये करता है कि मुझे क्या महसूस होता है. और अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मैं पैसा भी कमा रहा हूँ और मैं सोशल एक स्टेचर भी अपना रहा हूँ, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब हम जो दूसरा हम पक्ष लेते हैं कि क्या बच रहे हैं जेंसी, कि वो
0: जी.
8: अवॉइड करती है काम करना, कि वो आराम लाइफ जीना चाहती है. फ्रेंकली स्पीकिंग, ना तो इस केस में ऐसा लगता है और ना ही मैंने ऐसे लोगों को देखा है. जनरली दे आर मोटिवेटेड, बट दे नो कि उनकी उनको सब कुछ नहीं पाना है.
0: जी
8: अगर मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि मुझे ये स्किल डेवलप करना है, तो मैं उस पर फोकस करूँ रादर देन कि मैं भेड़चाल में सब कुछ ही करने की कोशिश करूँ. सो आई थिंक दैट क्लैरिटी हैज कम, और जिनमें आ रही है उनको, उनके लिए डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, और जिनमें नहीं आ रही है वो फिर स्ट्रगल करने वाले हैं.
0: बिल्कुल. दो चीजें जितिन जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर कपूर ने कही है. दो चीजें देखिए, एक तो बात यह है कि मी टाइम शब्द जेनजी लेकर आया है, जो शायद मिलेनियम और जेन एक्स के डिक्शनरी में कहीं था ही नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन जेनजी स्मार्ट वर्किंग कल्चर को भी लेकर आया है. क्या इसी तरीके से आगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्या इसी तरीके से वर्क कल्चर अब आगे काम करेगा?
6: तो मेरा कहना यह है कि आज ही नहीं, काफ़ी सालों से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. वो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उसमें ऑब्वियसली टाइम लगा. जो नई, जैसे आज से करीब 22 साल पहले मेरे ब्रदर ने ज्वाइन किया आईटी इंडस्ट्री, तो बैंगलोर में वो गया और उसकी कंपनी में मतलब खेलने की जगह थी. मतलब हमने कहा यार ये कैसी बात है, मतलब तुम्हारी कंपनी में खेलने के लिए कोर्ट्स बने हुए हैं, जिम बने हुए हैं, तो वो बहुत नया था इंडिया के लिए. और आज अगर मैं इंटरनेशनली देखूं तो ऑब्वियसली बहुत सारी फैसिलिटीज बड़ी बड़ी कंपनीज ने दे दी है. तो आज काफ़ी कंपनीज में उस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई, उस तरह के नॉर्म्स आ गए. तो मेरे हिसाब से तो ये चल ही रहा है. वर्बलाइजेशन स्ट्रांग हो गया, मतलब उस चीज़ का बोलना स्ट्रांग हो गया, सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया, इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें पहले से भी, जो नई इंडस्ट्री थी भाई, आईटी एक नई इंडस्ट्री थी, एंटरटेनमेंट एक नई इंडस्ट्री है, ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज पिछले मेरे ख्याल 15-20 साल में बढ़ी हैं, तो उनमें उनमें ये वाली चीज आई है और उस तरह का ओरिएंटेशन भी है. उसमें यंग एचआर मैनेजर्स आए, उन लोगों ने अलग सोच के साथ बनाया सारा सिस्टम. लेकिन जो ओल्ड कंपनीज थी उन्हें टाइम लग रहा है चेंज होने में, और एक दो एक्सेप्शन खैर हर चीज में है. तो मेरे हिसाब से और ये अच्छा है कि भाई कंपनीज भी रियलाइज कर रही हैं कि हमें एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट देना है. हमें हो सकता है कि लीव का पॉलिसी अच्छी कर रही है, आज की डेट में कुछ अच्छे सेटअप्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के सेटअप्स हैं जो कहते हैं भाई कुछ एम्प्लॉयज़ हमेशा घर से ही काम करो, या आप कहीं पर भी, उससे हमें नहीं है, बट हमें इतना काम चाहिए हमारा, आप इतने टाइम के लिए लॉग इन कर रहे हो लैपटॉप में। और टेक्नोलॉजी चेंज किया, देखिए पहले बहुत सा मॉनिटर करना, आज अगर कंपनी देखना भी चाहे भाई एम्प्लॉय ने कितना काम किया, तो आज आपकी आपके लैपटॉप से कंपनी रिपोर्ट्स ले सकती है। AI-based ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं जिससे कुछ आपको एक मैनेजर को क्लियर कट मिल जाएगा। आज से 20 साल पहले वो सब नहीं था, तो टेक्नोलॉजी से भी इनेबलमेंट हुआ है कि कोई कहीं से भी काम करे बहुत सारे चीजों में। तो इसलिए आई थिंक ये चीज बढ़ेगी और अच्छा है ओवरऑल सब लोगों के लिए।
0: ठीक है, इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सक्सेस की नई परिभाषा क्या है, क्या अच्छी सैलरी, एक अच्छा ओहदा या फिर मानसिक सुकून, ये इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।

0: प्रेशर वाली सैलरी या सुकून वाली जिंदगी इसी को लेकर चर्चा कर रहा, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेज़ली, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी जेनरेशन, अगर हम जेन ज़ी की जेनरेशन में एक सक्सेस की परिभाषा पूछें तो क्या है? आप सक्सेसफुल हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है?
1: आई थिंक मैम सबके गोल्स होते हैं, बट अपने मेटल पीस के मुताबिक सब कुछ चाहिए। माइंड में क्लैरिटी है कि कितने जगह घूमना है, कितना मैं खर्चा करना चाहता हूँ, एम आई गोइंग आउट टू स्पेंड, कितना मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, एंड मुझे इतना सैलरी अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं खुद सक्षम हूँ अपना खुद का जॉब करने के लिए। तो अभी आप देखिएगा अंडर 30 भी कितने अचीवर्स अभी आए हैं, अगर फोर्ब्स में है या कहीं पे भी, सब खुद से ही अपना बिजनेस शुरू करे, बिकॉज मुझे इतना सैलरी अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं खुद सक्षम हूँ अपना खुद का जॉब करने के लिए। तो अभी आप देखिएगा अंडर 30 भी कितने अचीवर्स अभी आए हैं, अगर फोर्ब्स में है या कहीं पे भी, सब खुद से ही अपना बिजनेस शुरू करे, बिकॉज कभी कभी उनको लगता है कि मेरे टर्म्स पे अगर सामने वाला काम नहीं कर सकता, मेरे एम्प्लॉयर काम नहीं कर सकते, तो लेट मी स्टार्ट माई ओन कंपनी, हायर पीपल हु हैव द सेम वेव लेंथ, तो हम मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी कभी कभी उनको लगता है कि मेरे टर्म्स पे अगर सामने वाला काम नहीं कर सकता, मेरे एम्प्लॉयर काम नहीं कर सकते, तो लेट मी स्टार्ट माई ओन कंपनी, हायर पीपल हु हैव द सेम वेव लेंथ, तो हम मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो क्लैरिटी आ गई है कि हमें गोल्स अचीव करने हैं, अभी देखिए बहुत सारे बिलियनर्स बन रहे हैं अंडर 30,
0: नहीं, वो गोल अचीव करने में ना, लेज़ली वही बात है, गोल अचीव करने में क्या आप अपने सुकून को दांव पर लगाओगे या फिर
1: नहीं,
0: आप कहोगे कि नहीं, मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट?
1: मेंटल पीस के साथ ही गोल्स अचीव करने हैं, तो इसीलिए 2 डेज का ब्रेक, जैसे अभी सर बता रहे थे कि स्पोर्ट्स भी होगा थोड़ा सा ऑफिस में, वो सब कुछ होना चाहिए। बात करते वक्त भी थोड़ा सा आराम के साथ हम बात करते हैं, कभी कभी जूम पे बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि जाके सबको ऑफिस में ही आके बात करनी है, तो सबको मिलता है। तुम अगर वेकेशन कर रहे हो तो थोड़ा 30 मिनट्स मिल लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ऐसी बातें होती
0: है, भी यानी चेंज हुआ है। एक बार डॉक्टर कक्कड़ आपके पास आना चाहूंगी, अब आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने मिलेनियम भी देखा, जेन ज़ी भी देख रहे, ट्रेंड बदलते हुए भी देखे हैं। एक ट्रेंड और बदल रहा है सर, जेन एक्स और जेन मिलेनियम पर प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जेन ज़ी में ये ट्रेंड भी चल रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम सिंगल रहेंगे। अभी आपने लेज़ली को सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अगर इतनी कंट्रीज घूमना है तो उसके लिए मैं खुद कमाऊंगी, अगर मैं किसी कंपनी के साथ ठीक से नहीं मेरी कंपैटिबिलिटी बन रही है तो ठीक है, मैं उसको छोड़ के मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हूँ। ये लिबर्टी जेन ज़ी एक तरीके से ले रहा है, तो क्या इससे मेंटल प्रेशर कम हो रहा है या आने वाले समय में मेंटल प्रेशर बढ़ेगा इससे?
2: देखिए, जेन ज़ी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट दे हैव

0: अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी का उनका डेफिनेशन क्या था कि हाँ अगर हमें एक अच्छा प्रमोशन और लाइफ में ऐसा ऐसा ग्रेजुअल ग्रोथ मिल रही है, दैट इज ओके। बट जेन जी के साथ वो वाली चीज नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स की तरफ से भी उनको जो दिया गया उन्होंने उस तरह की लाइफ नहीं देखी, तो इसलिए उनके पास वो एल्बो रूम है, उनके पास वो फ्रीडम है, और वो मैंने देखा वो पीछे
1: सर
0: पास को जानना भी नहीं चाहते।
1: ठीक है
0: उनके लिए एक रोड मैप है और उस रोड मैप पे वो लोग चलना चाहते
1: सर,
0: हैं।
1: ए, ए, एक
0: और
1: सेकंड डॉक्टर कक्कड़,
0: हाँ
1: मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि
0: जी
1: इस पे डॉक्टर कपूर और जितिन जी का एक रिएक्शन जरूर बनता है। देखिए सर, ये ना ट्रेंड रहा है हमेशा। जेन एक्स को लगता है कि मिलेनियम को तो सब कुछ प्लेट में मिल गया, मिलेनियम को लगता है कि जेन जी को तो सब कुछ प्लेट में मिल गया। इन्होंने क्या देखा है? ऐसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे तुम्हें तो स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी, आगे हम बच्चों को कहते हैं आपको तो सब कुछ प्लेट में मिलता है। ये एक ट्रेंड है, ये सोच भी, एक रिएक्शन इसको लेकर जितिन जी आपका और डॉक्टर कपूर, पहले जितिन जी क्या
0: तो
1: माने कि
0: मेरे
1: जेन जी को
0: ख्याल
1: स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही है?
0: नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उनके इंटरेस्ट के साथ मैच हो जाए, देखिए कोई भी इंसान कोई करियर चूज करता है और हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करते हैं, इट इज कॉल्ड IAP, इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी, इसके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। तो अगर किसी का पूरा चीज मैच हो जाए कि मुझे इसी चीज में जाना है, तो वो कितना भी काम करने को तैयार हो, वो थकते नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उनको मजा आ रहा होता है। तो मेरे साथ, मैं काफी फॉर्चुनेट था कि मैंने कॉर्पोरेट्स में बहुत जल्दी छोड़ दिया। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई लेफ्ट एंड री इन्वेंटेड मायसेल्फ एज अ करियर काउंसलर। तो मेरे साथ मतलब लोग जो जुड़े, तो मैं बता नहीं सकता, बहुत यंग लोगों ने मतलब हर काम करा है। इवन मतलब अगर जरूरत पड़ी तो क्लीन करना है, चेयर्स मूव करनी है, तो उन्होंने कोई उनको कोई हैसल्स नहीं थी कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। आई स्टिल रिमेंबर, एक 12th का बच्चा आया इंटर्नशिप के लिए 12th के बाद, और उसने कॉलिंग करी, और द जॉब वॉज टू कॉल अप CEOs, क्योंकि हम PSUs के साथ भी उनके स्टाफ के लिए करियर काउंसलिंग कर रहे थे। तो कॉलिंग करी तो उसने बिल्कुल एज्यूम कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते और रात को कहेगा, मैंने कहा चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ चले जाओ, वो कहे नहीं सर मैं 1 घंटा और करूंगा क्योंकि मुझे आज रिजल्ट निकाल के जाना है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: यानी
0: उसने
1: हर
0: मस्त।
1: जेनरेशन की अपनी स्ट्रगल रही है। एक बार डॉक्टर कपूर, आप क्या कहेंगे इसको लेके? आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है मैम।
2: सॉरी, सो आई एग्री विद यू, हर जेनरेशन की अपनी स्ट्रगल है और कोई भी स्ट्रगल छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारे लक्ष्य है और हमारी जो सामाजिक स्थिति होती है वो हर जेनरेशन की अलग अलग होती है। तो अगर हम बहुत पहले की बात करें, आजकल हम एंशंट इंडिया को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां तो बहुत ही सुकून की जिंदगी मानी जाती थी। हम अपने दादा दादी से बात करते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी एक धड़े पे चलती थी। आजकल की जो जेनरेशन है आई थिंक वो ज्यादा ट्रबल्ड है। और मैं ये एग्जाम्पल सबको देती हूँ कि आपको दो चीजों में चॉइस करनी है, एक दाल चावल एक समोसा, कितना कंफ्यूजन होगा। और यहाँ हमने आज की जनरेशन के सामने 10 चीजों का बूफे लगा दिया है और उनको कहा है कि चूज करो, और ये कहा है कि अच्छा चूज करना, टेम्प्ट भी मत होना। अब एक छोटा यंग पर्सन, उसको टेम्प्ट भी नहीं होना है जबकि उसके सामने इतना कुछ पाने के लिए है कि वो हर चीज के लिए लालसा हो रही है। तो आई थिंक आज की जनरेशन में जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है वो इस वजह से बढ़ा हुआ है, और वो अब क्लियर हो रहे हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, तो
1: ठीक
2: उन्होंने
1: है
2: अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू किया। तो ये बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है आज की डेट में, वो इसलिए हो रहा है कि जब इतना सब कुछ हो रहा होता है आपके सामने, इतना एक्सपोज हो रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ना दायरे बनाने पड़ते हैं। तो इस जनरेशन ने दायरा बना लिया कि हाँ जी मुझे इतने घंटे काम करना है, इतना मुझे खुद के लिए समय चाहिए, तभी मैं बैलेंस बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसे जो लोग कर पा रहे हैं आई थिंक बहुत रैशनल और समझदार हैं,
1: नहीं तो
2: और
1: इससे क्या
2: हमें
1: मेंटल स्ट्रेस कम होगा? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मेंटल स्ट्रेस को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, स्पेशली जेंजी को लेकर हमने बात की है। क्या इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है?
2: 110%, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आप ओवर स्टिमुलेटेड हो, इट्स लाइक अ वी टॉक अबाउट डोपामिन रश, हर जगह से आ रहा है, तो आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। जब
1: ठीक
2: आप
1: है
2: एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो प्रॉब्लम है। तो आप अपनी मुझे क्या चाहिए वो चीज आइडेंटिफाई करके
1: प्रायोरिटीज
2: प्रायोरिटाइज कर
1: अपनी
2: लो।
1: सेट कर लो। बिल्कुल जी, वापस डॉक्टर कक्कड़, अब मैं आपके पास आऊंगी। ये सबकी सब हर जेनरेशन के अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन सर सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि आज अगर जेनजी यंग एज में अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेता है, स्मार्ट काम कर रहा है, उसको पता है उसके लिए उसका मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो इस बात को समझ पा रहा है, तो क्या हम उसे एक सक्सेसफुल जेनजी, एक सक्सेसफुल पर्सन बोलेंगे?
0: देखिए, मैं जेनजी का बहुत बड़ा फैन, मैं जेनजी का इसलिए बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि वो अपनी फ्री विल के हिसाब से चलते हैं, वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेते, उनको पता है कि

0: प्रेशर लेना है, और तभी मैं जो मैं आपको उस टाइम स्ट्रगल की बात कर रहा था उनका बिहेवियर वहीं से मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज उस तरह की नहीं है जो जो शायद मिलेनियल्स ने देखी हो या जेनेक्स ने देखी हो। तो उन लोगों की जो प्राइमरी लाइफ की है, जो स्ट्रगल लाइफ की है, वो बहुत अलग है। उनके लिए स्ट्रगल का मतलब डेफिनेशन है एस्पिरेशंस। उनका ये मतलब है दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव एंड आई नीड टू अचीव इन दिस टाइम बाउंड मैनर, और इसके लिए दिस इज माय लिमिट, मैं यहां तक जा सकता हूं और मैं यहां तक अपने आप को नहीं इसके आगे जाने दूंगी। जैसे बहुत अच्छी बात जो आपके पैनल में, हमारे पैनल में जो जेंजी एक है, दैट गर्ल शी स्पोक ब्यूटीफुली, शी सेड हमें ये मालूम है कि हम 100 रुपए के अंदर भी हम कैसे चला सकते हैं और हम शायद ज्यादा पैसों में भी कैसे चला सकते हैं। इसका ये मतलब है कि उनकी बहुत अच्छी क्लैरिटी है, जो और उनकी जो क्लैरिटी है वो सेल्फ जनरेटेड है। हम लोग के टाइम में होता था, हम लोग आसपास लोगों से पूछते थे, देखते थे, उनको कॉपी करते थे कि भाई ये शायद ठीक हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। जेंजी के अंदर भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मालूम है किस इन्फ्लुएंसर्स कौन सी बात कह रहे हैं, तो वो किसी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करते। तो जेंजी के अंदर दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन बिकॉज हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप बाय देयर पेरेंट्स एंड बाय द स्कूल, क्योंकि उनकी जो उनके उनके डिक्शनरी में सर्वाइवल मोड नहीं है, उनके डिक्शनरी में मैं मानता हूं एस्पिरेशन मोड ज्यादा है।
1: ठीक है.
0: जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्कोहॉलिक्स। वर्कोहॉलिक्स का क्या होता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, 18 18 घंटे काम करते हैं, चाहे वो जेनेक्स हो चाहे मिलेनियल्स हो, और दूसरों से भी काम करवाते हैं।
1: बिल्कुल.
0: दूसरे लोग होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस वाले, उनका लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता था कि हम परिवार फैमिली और काम को साथ साथ चलाना है, तो वो प्रमोशंस के लिए भी भूखे नहीं होते थे। उन तभी आप देखेंगे बहुत ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ऐसे देखा, पीपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पीएसयू की नहीं बात कर रहा, वेयर पीपल हैव दे ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 30 ईयर्स दे रिटायर्ड फ्रॉम दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनकी जो एस्पिरेशन थी वो वर्क लाइफ बैलेंस थी।
1: बिल्कुल
0: तो जो
1: बिल्कुल.
0: आपने सक्सेस की भी बात करी थी, दैट्स वेरी प्राइवेट, कि मैं सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए वर्क लाइफ है कि वर्कहोलिज्म है।
1: बिल्कुल. यानी मशीन की तरह काम नहीं करना चाहता है जेन जी. लेज़ली, आप ही के पास आना चाहूंगी. तो फिर आपकी करियर ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है?
2: मैम, करियर ग्रोथ इज जस्ट पीस ऑफ माइंड एंड अबिलिटी कि मेरे पास एनफ पैसे हैं दैट मैं अपना बिल्स पे कर सकती हूँ खुद से, किसी पे डिपेंड ना होके. तो कभी कभी ऐसा होता है कि इफ आई एम वर्किंग, मैं बीच में, मैं खुद की एग्जांपल ले रही हूँ, मैं खुद बीच में आई वाज वर्किंग एज अ पीआर, देन वहां पे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही प्रेशर था. तो मैंने सोचा, मैंने पहले से कैलकुलेशन किया कि मेरा पर डे कितना खर्चा हो रहा है अगर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, और इतना पैसे आए हैं फिलहाल अभी तक जितना सब जनरेट हुआ है पैसे, मैं उसी से कितना चला सकती हूँ और वो सेव करके मैं आगे कुछ ट्रिप्स पे जा सकती हूँ. तो ऐसे कुछ करके मैंने छुट्टी ले ली. छुट्टी मतलब आई क्विट माई जॉब. सो उसके बाद थोड़ा ट्रिप ट्रिप किया, माइंड फ्रेश हो गया. आई वेंट फॉर मेडिटेशन, थेरेप्यूटिक ट्रिप करने के बाद अपने रिलेटिव के पास गई, सबको सब मिलके, थोड़ा बद्रीनाथ भी चले गए, सब कुछ करके माइंड फ्रेश होने के बाद दूसरा जॉब अप्लाई किया. पहले तो पिछले जॉब को ही कॉल किया, बोला कि आई नीडेड सम चेंज एंड ऑल, फिर दे एक्सेप्टेड मी एंड आई वेंट एंड आई वर्क विद देम. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स.
1: लेकिन आपकी ही जेनरेशन में एक परिभाषा ये भी चलती है ना कि मेरा कमाया हुआ पैसा हम केवल अपने पे ही खर्च करेंगे. जिम्मेदारियों से भी तो आप लोग बचते हैं.
2: हाँ मैम, ऐसे ही है ना. तो
1: वो क्या आपका
2: अभी
1: स्ट्रेस कम करती है?
2: हाँ मैम,
1: फैमिली प्रेशर.
2: स्ट्रेस का ना सोल्यूशन बहुत सारे हैं. अभी
1: हाँ.
2: क्या करना है, कहाँ जाने से स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. घर में भी बोल देते हैं थोड़ा सा मुझे ब्रेक दे दो, आई फील प्रेशर, तो घर में समझ भी जाते हैं. और फ्रेंड्स को भी
1: हाँ.
2: बोल देते हैं कि मैं 2 डेज के लिए ऑफ हो, लेकिन नो डिजिटल अनेबिलिटी,
1: डिटॉक्स.
2: मतलब डिजिटली मैं डिटॉक्स कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स समझ जाते हैं. अभी क्या है ना मैम, जैसे सर बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट जेंजी लोग, अभी के एरा के लोग ना सब मुंह खोल के बोल रहे. तो जब आप खोल के बोलते हो ना कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ प्रेशर, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते, एवरीबडी सपोर्टिव. ये एम्प्लॉयर समझ रहे हैं. अभी वर्क लाइफ बैलेंस हैज चेंज टोटली.
1: ठीक है.
2: सो
1: डॉक्टर कपूर, हम हमेशा इसी बात की चर्चा करते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल काफी ट्रेंड चेंज भी हुआ है. एक और चीज मैं यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगी जिसको लेकर हमारा एक एक पॉइंट रह गया जिसको लेकर चर्चा होनी थी. कुछ समय पहले तक ये भी कहा जा रहा था कि आप 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, 3 डेज ऑफ का एक ट्रेंड भी चल रहा था, उसको लेकर भी बड़ी बहस हुई कि क्या अगर 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो उसमें क्या आपको ज्यादा सुकून मिलेगा, हम इसको किस तरीके से इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं?
3: राइट, सो नवजोत, पहली बात तो इस सेशन से पता चल रहा है कि गुड न्यूज टीवी गुड न्यूज क्यों है, कि सारे बड़ी गुड न्यूज दे रहे हैं, वी आर सपोर्टिव।
1: नहीं, क्योंकि आप देखिए मैम कितनी बार मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा हो, यहाँ अगर मैं बैठी हूँ मेरे स्टूडियो के आसपास ही बहुत सारे, इनफैक्ट हमें भी कभी कभी मेंटल हेल्थ इशू आ जाते हैं, लेकिन वही बात है चर्चा नहीं होती है, और हम लोग को थैंक्स करना चाहिए जेंजी को क्योंकि इनकी वजह से मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चाएं हो रही है, पता चल रहा है भाई मी टाइम क्या होता है, अपने लिए समय निकालना कितना जरूरी है, आप लोग बहुत बार इस तरह के सजेशंस देते हैं।
3: राइट, तो जो छुट्टी की बात कर रहे थे वो यही बात है कि हमें जब बैलेंस चाहिए होता है तो काम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, काम सब कुछ नहीं है, तो हमारे को जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम अगर वेरियस डायमेंशंस ऑफ वेलबींग को ना लें, 8 dimensions को, देर इज पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल। अब पर्सनल लाइफ में सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में हम पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हैं, अपनी एनरिचमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सोशल लाइफ में आपके कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, और फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ है। तो अगर आप अपने दिन का 12 घंटा 16 घंटा सिर्फ काम में व्यतीत करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी चीजें जो हैं वो आपकी इम्बैलेंस होंगी, और वही रिजल्ट हम देख रहे थे, जैसे कि कक्कड़ साहब ने भी कहा कि हम सर्वाइवल मोड में जी रहे थे उस टाइम, हमारे लिए सर्वाइव करना जरूरी था, इसलिए हम सारा का सारा जो अपना हमारी आइडेंटिटी हमारे काम से जुड़ गई थी।
1: बिल्कुल,
3: आज के डेट में अगर आप पूछोगे डॉक्टर ज्योति कौन है, तो डॉक्टर ज्योति क्या सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट है, या नवजोत क्या सिर्फ एक एंकर है, शी हैज वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो
1: हम अपनी हॉबीज को कहीं पीछे छोड़ाए हैं, भूल चुके हैं। और जेंजी को ये पता है कि हमें काम के साथ साथ मेंटल सुकून और अपनी हॉबीज को भी साथ लेके चलना है।
3: राइट, तो जब आप 3 दिन की छुट्टी लेते हो या आप वर्क डेज, इनफैक्ट मेरा भी यही है कि मैं क्लिनिक में पूरा टाइम नहीं करती हूँ, मैं एक मिड वीक छुट्टी लेती हूँ, एक वेंसडे को छुट्टी लेती हूँ, इसलिए आपसे अभी बात कर रही हूँ, ओपीडी नहीं कर रही मैं समय पे।
1: चलिए, ये बहुत जरूरी, वक्त की कमी डॉक्टर कपूर, आप सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी, तो मी टाइम इज इम्पोर्टेंट, और जेंजी ने कैसे इस परिभाषा को बदला है, प्रेशर वाली सैलरी से ज्यादा सुकून वाली जिंदगी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: जूनागढ़ का गीर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है, जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और इस कला को देख मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बढ़ा है।
7: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
8: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेके बड़ी तक मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
7: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है, यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात ये है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
8: 20-25 साल से कर रहे हैं। हमारा मित्र है सुरेश बा रूपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है, और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
7: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर शासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
4: एक पिता और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी के साथ देखा जा रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। मिठाई के जरिए ये मासूम बच्ची जिस अंदाज में पिता से अपने माँ के बारे में शिकायत करती है, उसने यूजर्स का दिल जीत लिया है।
9: पापा सुनो, एक बात पूछो।
10: हाँ, को पूछो।
9: आपकी शादी में मिठाई आई थी?
10: हाँ, मिठाई आई थी।
9: आपने खाई थी?
10: हाँ, को खाई थी।
9: देते
10: क्यों?
9: मम्मा थोड़ा भी बोल लेती।
10: क्या?
9: अरे मीठा बोल लेती थोड़ा।
4: ये तो हम सब जानते हैं, इस धरती पर एक से एक अनोखे लोग मौजूद हैं। कुछ ज्यादातर लोग तो सामान्य व्यवहार करने वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक से एक अजीबोगरीब हरकत करके सब कुछ चौंका देते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स अपने दांत से कुतर रहा है। इस दौरान उसको बिल्कुल दर्द नहीं महसूस हो रहा। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दांत नहीं कोई मशीन हो। सारी दुकानों के बाहर कुछ पुतले रखे होते हैं जो कपड़ों को डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, ताकि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को नए फैशन के बारे में पता चल सके। उन पुतलों को मैनिक्विन बोलते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है एक छोटी सी बच्ची एक महिला के मैनिक्विन के पैर छू रही है। वो पहले एक पैर छूती है और फिर दूसरे पैर को छूती है। बच्ची की ऐसी मासूमियत के कारण ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर के एक पुराने SBI ATM सेंटर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल किसी बैंक ATM की तरह से दिखाई देता है, लेकिन अंदर कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग सैलून दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल ये जगह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM सेंटर हुआ करती थी। बाद में बैंक ने इसे तकनीकी और सुरक्षा कारणों से यहां से ATM हटा लिया। हालांकि पूरा सेटअप और बोर्ड वैसे ही छोड़ दिए गए थे। इसके बाद मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, जहां पर एक नाई ने अपनी सैलून की दुकान शुरू कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर बैंक की ब्रांडिंग को छिपा दिया गया। ऑटो रिक्शा में सनरूफ। जहां लोग कार में सनरूफ के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, वहीं एक ऑटो चालक पिता ने बच्चों की खुशी के लिए कमाल कर दिया। वीडियो की शुरुआत सड़क पर दौड़ते एक ऑटो रिक्शा से होती है, लेकिन उसकी छत पर एक अनोखा बदलाव दिखा। आप देखेंगे कि वहां से दो बच्चे मुस्कुराते हुए झांक रहे हैं। दरअसल पिता ने ऑटो के ऊपर लगे रैगजीन को काट कर एक खिड़की बना दी, जिसमें से दो बच्चे झांकते हुए ठंडी हवा और सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान किसी महंगी गाड़ी वाले सनरूफ से कुछ ज्यादा कीमती लग रही है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज़ टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज हमारा लुक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, फील थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्या है खास वो सब आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात हम आलिया की करते हैं, जो आज कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आई। ये दूसरी बार था जब आलिया इस इवेंट का हिस्सा बनी, तो कैसे कान में छा गई हिंदुस्तान की ये स्टार, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाएंगे एक एक करके।
4: नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। सिर्फ जलवा आलिया का ही नहीं, बल्कि पहले दिन आलिया भट्ट के अलावा वहां पर उर्वशी रौटेला पहुंची थी। उनका कैसा लुक रहा वो भी देखेंगे, जहां उन्होंने अपने ग्लैमर अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया, उनकी तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे।
5: बिल्कुल, देखिए कांस का जलवा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन साथ ही में आज के कार्यक्रम में बात हिंदुस्तान की बचत संकल्प की भी हम करेंगे, जिसका असर सड़कों से लेकर ज्वेलरी की दुकानों तक साफ नजर आने लगा है। तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अपना काफिला कम कर रहे हैं मिनिस्टर्स, और गोल्ड की जगह अब क्या कुछ खरीद रहे हैं लोग, उसके बारे में भी जानेंगे। खबरें और भी होंगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession.
3: देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अमल। केवल दो गाड़ियों का काफिला लेकर निकले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के काफिले में होती हैं डेढ़ दर्जन गाड़ियां। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। देश का सुरक्षा चक्र होगा और भी मजबूत, भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा तैनात। गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की विशेष पहल, पक्षियों के लिए खास फव्वारे का इंतजाम, 481 से ज्यादा बेजुबानों को मिल रही राहत। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच में बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का फिर से खुला रास्ता। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा बरकरार, 879 अंकों के साथ बने दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: देखिए आज हमने कैंस में बॉलीवुड दीवा दिखाने हैं और ये दीवा बनने के चक्कर में आज ये सारा आइडिया शगुफ्ता का है। दीवा बनने के चक्कर में आज आपने मुझे सीधा कैंस भेज दिया।
1: मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे बताओ कैसा लगा,
2: कैसा लग रहा है ब्रेन में। ऑनेस्टली बताऊं, जब आप ड्रेसअप होते हो ना, वो फीलिंग अलग आने लगती है। तो थैंक यू सो मच, ये आइडिया आपका था, क्योंकि हम डेली आते हैं वो उसी तरह तैयार, आज कुछ अलग था,
1: है ना, क्योंकि फील गुड,
3: फील गुड। खबर इतनी अलग है तो हमारा तो अलग लगना लाजमी था।
0: लड़कियों के लिए ना दो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा दिखना और अच्छे नए नए कपड़े हमें बस मिलते नहीं।
1: और हमने किया क्यों है, नवजोत ने आपको बता दिया है, कान फिल्म फेस्टिवल का फीवर हम पर भी चढ़ गया है, सोशल मीडिया पर भी हम दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। लेकिन इसका आगाज इसी के साथ करते हैं। पीछे तस्वीरें देख लीजिए, इन ग्लैमरस लड़कियों को देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। कान फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, हमेशा की तरह कान फेस्टिवल में ग्लैमर सिनेमा फैशन का जबरदस्त कॉम्बो नजर आया। रेड कार्पेट पर हमने देखा ये सितारे, आज हमने देखे हैं आपको आलिया भट्ट नजर आई है, उर्वशी रौटेला नजर आई है और तमाम हॉलीवुड स्टार्स भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन
0: आई एम मिसिंग ऐश्वर्या,
3: ऐश्वर्या
1: उनकी एंट्री होने वाली है।
0: होल्ड योर ग्रेट ग्रेट।
3: अच्छा लेकिन मुझे लगता है एक चीज इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि आपको आलिया का लुक कैसा लगा।
1: बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ वेस्टर्न में जो इंडियन का तड़का उन्होंने लगाया है दुपट्टे के साथ, इंडियन टच दिया ना उसमें, तो मुझे तो अच्छा लगा, ग्रेसफुल लगा।
3: आपको लगा कि कुछ अलग, आप उम्मीद कर रहे थे?
0: मैं सच बताऊं मेरी चॉइस फिक्स, आई एम स्टिल वेटिंग ऐश्वर्या की ऐश्वर्या आए।
1: उन्होंने कल भी यही बोला,
0: हालांकि मुझे मुझे का लास्ट ईयर वाला लुक भी बहुत पसंद आया था, वो भी बहुत खूबसूरत था,
1: सिल्वर साड़ी,
0: हाँ वो बहुत अच्छा
2: वो
0: था,
2: बहुत सुंदर था इनफैक्ट,
0: हाँ, हाँ। बहुत सटल सा लुक था। इस बार भी उनका लुक बहुत अच्छा है।
2: इनफैक्ट आप देखेंगे कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, जहाँ पे ऐश्वर्या का भी लगभग ऐसा ही एक बार लुक था और उसके बाद अब आलिया ने उसी तरह का कुछ रिक्रिएट किया।
3: अच्छा लगा खुशी?
2: मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मुझे सिंपल लगा, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट्स अगर होते, लेकिन वो सुंदर है।
0: पर मुझे खुशी, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि देखो जिस मंच पे आप है ना, उस मंच पे हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ वन इज इंपॉर्टेंट, नंबर टू आप सीधे दो तस्वीरों में कंपेयर कर लीजिए उर्वशी रौतेला को, आपको लग नहीं रहा कि बहुत ओवर है?
2: वो ओवर
1: ओवर
0: है ना।
1: मुझे ऐसे लगता है कि आलिया को जितनी बार मैंने देखा है ना, इनका लुक हमेशा ये सटल लुक में जा रही है और जो इनका मेकअप होता है बहुत ही सटल होता है, लिपस्टिक बहुत न्यूड होती है और कुछ भी बोल्ड आपको फेस पे नजर नहीं।
3: इसके पीछे रीजन है कि आलिया जो है ना उनका फेस बहुत क्यूट है, इनोसेंट है, इसीलिए मैंने देखा है कि शी नेवर गोज ओवरबोर्ड विद हर मेकअप।
1: आपकी जैसा है
3: बिल्कुल, वैसे अपनी तारीफ में करना नहीं चाहती थी।
2: इतने हैवी आउटफिट्स नहीं पहनती हैं ताकि जो पूरी अटेंशन है ना वो उनके फेस पर, उनकी पर्सनालिटी पर जाए, तो उस हिसाब से ड्रेसअप करती
1: हैं। मुझे ऐसा लगता है उर्वशी रौटेला ना हमेशा ओवर द बोर्ड जाती हैं, मतलब जस्ट
2: दैट्स हाउ शी लाइक्स इट। हां
0: कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा चीजें कैरी करते हैं ये दिखाने के लिए कि आई एम लुकिंग टोटली डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंट के चक्कर में ना फिर लोग आलिया को पसंद कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, सीधा लिए चलते हैं कैंस।

0: फ्रांस के रिवेरा शहर में 23 मई तक सजा कान फिल्म फेस्टिवल इन दिनों दुनिया भर को खींच रहा है। इवेंट के आगाज में ही कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी किसी से कम नजर नहीं आई। उन्होंने तो पूरी लाइमलाइट ही मानो लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में जब आलिया ने वॉक की तो ये फैशन दीवा मानो प्रिंसेस वाइब और समर परफेक्ट लुक देती नजर आई। तमारा राल्फ का कस्टम पीच कोट्यूसर गाउन कैरी किए आलिया के लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया। आलिया के स्ट्रेपलेस फ्लोर लेंथ गाउन ने उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया, तो गाउन के साथ लॉन्ग दुपट्टा उनकी ड्रेस को इंडियन टच दे रहा था। कान फिल्म फेस्टिवल में केवल आलिया का स्टनिंग लुक ही नहीं छाया बल्कि उर्वशी रौतेला भी लोगों को खूब पसंद आई। उन्होंने तो इस इंटरनेशनल फैशन इवेंट में लगातार 5वीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वियतनामी फैशन लेबल का स्टाइलिश गाउन कैरी किए उर्वशी जब रेड कार्पेट पर दिखी तो उनका ये ग्लैमरस अंदाज फैंस और फैशन लवर्स को भा गया। हर साल कान जैसे फैशन इवेंट में भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी दर्शा रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन कान फेस्टिवल की खूबसूरती में चार चांद लगा दे रहे हैं। रेड कार्पेट पर ग्लैमर, सिनेमा और फैशन का ये जबरदस्त कॉम्बो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेकिन जहां रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारे ग्लोबली सुर्खियां बटोर रहे हैं तो वहीं कान फेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना जलवा बिखेर रहा है। एआई रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरेक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। यही वजह भी रही कि फैशन, ग्लैमर और स्टाइल की चकाचौंध के बीच कान फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एआई की मौजूदगी ने टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के इस कॉम्बो को और भी स्पेशल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब हॉलीवुड से बॉलीवुड की तरफ आते हैं। एक्टर जैकी श्रॉफ की बात कर लेते हैं। वैसे नई फिल्म उनकी आ रही है और है, फिल्म का नाम है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो। पूरी तरह से फैमिली ड्रामा है और ट्रेलर की यहाँ बहुत चर्चा हो रही थी।
2: मैंने देखा ट्रेलर, मतलब मुझे अच्छा, किंग अंकल देखिए आप में से किसी ने?
1: हाँ।
2: तो मुझे ना बहुत लंबे टाइम बाद किंग अंकल वाली फील आ रही है, बट डिफरेंस बस ये है कि अब जैकी श्रॉफ जो है दादाजी के किरदार में नजर आ रहे हैं।
1: अंकल की जगह
2: अंकल की जगह दादाजी हो गए। आई रियली लाइक इट। दो इतने व्यूज नहीं थे उस पर, बट अच्छा कॉन्टेंट,
3: बट लोगों के जितने भी कॉमेंट्स थे वो मजेदार थे। आई थिंक इट्स मसाला एंटरटेनर मूवी, आप एक बार के लिए इंजॉय कर सकते हैं, दैट्स इट।
2: और कुछ ऐसा है ना जिसमें
4: वो इतनी बच्चों के लिए नहीं है, तो अब सडनली आ रहे ना एक्चुअली उनसे ऑडियंस अभी उतना रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि उतना उन्होंने काम धीरे धीरे अभी आएगा, देखो उनकी और मूवीज आए तो। लेकिन कहानी जो है दादा पोते की है, काफी इमोशनल स्टोरी है वहां पर, जिसमें साइंस फिक्शन का भी तड़का है। तो क्या कुछ खास है इस मूवी में द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो में, चलिए देखते हैं।
5: माँ क्या करती थी, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना।
6: वेरी गुड, आप ऐसे टाइम पास करते रहो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी।
7: और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था।
8: आप फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे हैं और मैं पैसे ले लूं?
9: एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई।
10: दोनों पागल बना रहे हैं।
11: अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है।
12: दादा यार जगाओ अपनी पावर को।
13: दादा जगा तेरी पावर, दादा जगा तेरी पावर, जगा।
14: शक्तिमान, बैटमैन, स्पाइडरमैन को छोड़िए, अब आ गया है असली वाला डीसी सुपर हीरो, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो। जिसकी हरकतें आपको हंसाएंगी और गुदगुदाएंगी और रोमांच की आसमान की सैर भी कराएंगी।
15: तो उड़ के आएगा ना,
16: लगता है लड़के आया है,
17: एलियन आ गया। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने,
5: इन्होंने मान लिया।
14: मंगलवार को मुंबई में अपकमिंग फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें जैकी श्रॉफ दादा का किरदार निभा रहे हैं और धरती के आखिरी छिपे हुए सुपर हीरो है। और जैसा कि फिल्म का पूरा नाम है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन, तो फिल्म में उनका सामना एलियन से होता है, जैसा कि ट्रेलर के अंत में दिखाया भी गया है।
5: नहीं आए तो
15: पॉइंट
5: मायसेल्फ जगदीश, आई एम अ सुपर हीरो।
16: यहाँ से बच्चों का सपना पूरा हो वो सीखने मिलेगा, झाड़ पान के लिए झगड़ा होगा आगे चल के वो सीखने मिलेगा, बाकी बच्चे लोगों को काम करते हुए देखने का मजा आएगा वो सीखने को मिलेगा कि जिंदगी जीने के लिए, मजे लेने के लिए, दुख दर्द ये सारी चीजें तो आती रहती है मगर खुशियां ही सब कुछ है। एक स्माइल चेहरे पे होना बड़ा जरूरी है। ये बच्चों की पिक्चर है तो बच्चों को बच्चों के बारे में सीखने मिलेगा कि आगे क्या है जिंदगी। अगर मैं सपना देखता हूं तो सपना तो देख, कुछ गोल देखेगा तो गोल मारेगा ना, है कि नहीं बिलू?
14: ट्रेलर में से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का क्लाइमैक्स तो सुपर हीरो और एलियंस के बीच रोमांचक भिड़ंत से होगा, लेकिन उससे पहले फिल्म में दादा के नाटक की पोल खोल होगी। दादाजी वाकई सुपर हीरो है या नहीं, इसकी पड़ताल होगी। लेकिन इस दरमियान फिल्म दादा और पोते के इमोशनल रिश्ते का एहसास कराएगी और रिश्ते को जीवंत रखने का मैसेज भी देती नजर आएगी।
6: वो एलियन है
14: कर वाकई सुपर हीरो है या नहीं, इसकी पड़ताल होगी। लेकिन इस दरमियान फिल्म दादा और पोते के इमोशनल रिश्ते का एहसास कराएगी और रिश्ते को जीवंत रखने का मैसेज भी देती नजर आएगी।
6: वो एलियन है, करण अर्जुन नहीं जो आएंगे।
5: अरे दीपू जरा इधर बाल्टी अंदर ले जा, कमर है।
9: सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा, ये तो उड़ के आएगा ना।
8: लगता है लड़के आया है,
17: एलियन आ गया, दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने।
5: इन्होंने मान लिया।
14: दादा और पोते के बीच की कुछ ऐसी ही मस्ती ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर की नजर आएगी, जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म की पूरी टीम नजर आई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे।
18: आपकी तारीफ,
9: हम एलियंस हैं, दूसरी ग्रह से आए।
13: दादा जगा तेरे पावर, जगा दादा जगा तेरे पावर।
8: फाइट सीक्वेंस है हमारे मूवी में, तो स्कूल में फाइट कर रहे हैं, तो उसने ना एक बच्चे को ना सच्ची में ऐसा खरोच लिया। उसकी मम्मी आई घर फिर। ये क्या है, ये क्या है?
6: एक्चुअली सेट पे इतना मजा आता था, हम सेट के डायलॉग्स पे टेक चलते हुए हंस देते थे, तो इनको बहुत हमने परेशान किया है। फिर तो हमें एक्चुअली सेट पे एक्चुअली बहुत मजा आया।
14: फिल्म में जैकी श्रॉफ और बच्चों के अलावा भाग्यश्री, शरद सक्सेना और प्रतीक बब्बर ने भी काम किया है और इसे डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनर मनीष सैनी ने, जिन्होंने बच्चों और दादा के रिश्ते पर फोकस करते हुए बेहद एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है।
19: दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो कविताएं बनाते थे और वो कविताएं बना के ना याद रखते थे, और उनके पास 100-150 कविताएं थी, तो जब भी वो बोलता दादा वो वाली कहानी सुन, वो कविता सुनाओ, तो वो सुना देते याद करके। अच्छा, तो उनको ऐसे तो सबको अपना दादा किसी ना किसी वे में सुपर हीरो लगता है, तो मैं कुछ मेरी चीज है जो उनसे इंस्पायर है।
6: तोता उड़, मैना उड़, सुपर हीरो।
14: द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो 29 मई को रिलीज होगी, जिसे आप अपने बच्चों के साथ सिनेमाघर में एंजॉय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
2: तो चलिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर निकलते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन यानी कि तेल बचाने की अपील की, तो देश भर में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की कवायद भी तेज हो गई है। मैं सुबह से खबरें देख रही हूँ, काफिले में गाड़ियां जो है वो कम हो गई है, एक मंत्री है वो तो मेट्रो से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है हमें भी कॉन्ट्रीब्यूट उसमें करना चाहिए।
1: लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो वो ईमानदारी से होना चाहिए, हालांकि विरोधाभास बहुत है। देखो, प्रधानमंत्री ने गाड़ियां कम कर दी, बहुत सारे सीएम्स हैं वो अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री लोग भी हैं जो कि आ तो रहे हैं साइकिल से, लेकिन पता चलता है कि पीछे उनका काफिला आ रहा है। मुझे लग रहा है एक ईमानदारी होनी चाहिए एटलीस्ट आपके एफर्ट्स में, अगर आप आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप ईमानदारी रखिए। अलग अलग स्टेट्स अपनी तरफ से आज मीटिंग्स हो रही हैं, खबर ये भी आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम दोबारा से शुरू हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू हो सकती है. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एफर्ट्स अपनी तरफ से भी हमें करना चाहिए. वाकई जो एक अपील है वो अपील बाकी बहुत अच्छी है.
3: बिल्कुल, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स आप दोनों ने कही ना कि इंडिविजुअल एफर्ट्स अगर आप करते हैं और सच्चे मन से उसको फॉलो करते हैं तब ये अपील जो है उस पर काम हो पाएगा,
1: सक्सेसफुल होगी, तभी
3: सक्सेसफुल होगी. अब देखिए, मंत्री जिनका नवजोत ने जिक्र किया, नेता हो, मंत्री हो, जज साहब हो, सभी अपने स्तर से ईंधन बचाने का संकल्प लेते हुए नजर आए, अपने एफर्ट्स करते हुए नजर आए हैं. ऐसे में खुद गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मंत्रियों ने भी अपने अपने काफिले को कम किया है. तो दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी मेट्रो राइड करते दिखे. मध्य प्रदेश में भी जज साहब ईंधन बचत का संकल्प लेते हुए साइकिल राइड करते हुए नजर आए.
1: कार पूल को लेकर आप लोग का क्या विचार?
2: कार पूल मुझे लगता है कोरोना की स्थिति में,
3: सच्ची बताऊं नवजोत, मैंने कभी किया नहीं है, बट मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं ऐसे एफर्ट्स ऑफिस के लिए जाते हुए, 3-4 लोगों के साथ करते जाते हैं. आई थिंक दिस इज अ गुड एफर्ट इफ यू कैन डू.
4: देखिए, ईवी भी आप वहां पर करेंगे तो वो भी उसका भी
1: अभी अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कहा है कि ज्यादा गाड़ियां जो है ईवी गाड़ियां होनी चाहिए. खैर, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं.
2: चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भी उस पर काम किया जा रहा है.
1: बिल्कुल. चलिए, इस बीच हम आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें सामने आई हैं और इस काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उनके काफिले में 12-15 गाड़ियां अक्सर होती हैं. प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से पहल की है, एक संदेश देने की कोशिश की है. तो पीएम का ये काफिले को दिल्ली पुलिस की कार लीड करती है, रास्ता क्लियर करवाती है, फिर उसके बाद एसपीजी की पायलट कार भी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चल के खतरे की एडवांस स्कैनिंग करती है. प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जैमर कार भी होती है, पीएम की कार जैसी डमी कार भी काफिले में शामिल होती है, मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस भी प्रधानमंत्री के काफिले में साथ ही चलती है. इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहने वाले एनएसजी कमांडोज की गाड़ियां भी उस काफिले का हिस्सा होती हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, 12-15 गाड़ियां. लेकिन अब अगर आप ये तस्वीरें देखें तो गाड़ियां कम हुई हैं, 2 ही गाड़ियां उनके काफिले में.
4: देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की ईंधन बचत की अपील पर काम शुरू किया है. वो अपने घर से हर रोज की तरह आज भी ऑफिस के लिए रवाना हुए, लेकिन बड़े काफिले नहीं बल्कि अपनी कार से वो ऑफिस के लिए वहां से निकले. हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह उस वक्त उनकी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं आपको.
15: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं, और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का. और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है, केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं. हम आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3-4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है. एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, वीआईपी वाहन जिसे कहा जाता था. यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं. इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे. और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो, जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे. लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से, सभी से, कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें. खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है, और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर, जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के, उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे. कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल.
4: अब देखिए प्रधानमंत्री की दो तीन तरह की अपील है। एक तो ईंधन बचत की बात उन्होंने की है, खुद ही उस स्टेप को उन्होंने फॉलो भी किया है आगे बढ़कर। आज के दौर में बढ़ती महंगाई में बेतहाशा खर्च पर भी अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन यही अपील प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भी की है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे भी आपको लगातार विदेशी ट्रिप की बजाय स्वदेश यानी अपने देश में घूमने फिरने के ऑप्शन दे रहा है। अपने ही एंकर से जान लेते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ पर घुमा जाए।
20: मैं हमेशा कहती हूँ हमारे देश में इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं कि आपको विदेश जाने की जरूरत ही नहीं, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हम लक्षद्वीप मालदीव का आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीचेस घूमना चाहते हैं दक्षिण में बहुत अच्छे बीचेस है, पहाड़ घूमना चाहते हैं वो भी हमारे देश में है,
4: नॉर्थ ईस्ट
20: रेगिस्तान जाना चाहते हैं वो भी हमारे देश में है, दुबई का ऑप्शन भी हमारे देश में है।
2: इतनी डाइवर्स है ना, जैसे आप कह रहे हो आपको अंडमान जाना, आप अंडमान जा सकते हो, आप साउथ जा सकते हो, साउथ इतना अनएक्सप्लोर्ड और इतना खूबसूरत है ना।
4: आपसे उत्तराखंड के थोड़े से स्पॉट्स बताओ, सुंदर सुंदर सी जगह।
2: उत्तराखंड में एक जगह है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं क्योंकि वो मेरा ननिहाल पड़ता है, उसका नाम है चंपावत, इट्स अ वैली, खूबसूरत है। वहां पर अगर आप थोड़े धार्मिक जगहों पर जाना चाहते हैं तो गोलू देवता का मंदिर है वहां पर, दो तीन जगह पर और है, तो ये एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अलग ही जिला है चंपावत।
20: एक जगह मैं बता देती हूँ, ये है नैनीताल और भीमताल के बीच में पड़ती है, जगह का नाम है काकड़ी घाट, और इतनी खूबसूरत जगह है। वहां पे उत्तराखंड टूरिज्म का एक छोटा सा रिजॉर्ट है, वहाँ एक ही फैमिली जाके रह सकती है, और वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि नीचे एकदम नदी बह रही है और ऊपर रिजॉर्ट है, और उसमें आपको दो ही इम्प्लॉयज मिलेंगे, मतलब आप जो खाना वाना बनाना चाहते हैं आप खुद से बनाइए, और उनको पहले से आपको बताना पड़ेगा जब भी आप बुकिंग करेंगे, तो सरकारी रिजॉर्ट है, आप बुकिंग करेंगे आपको पहले से बताना पड़ेगा कि हम इस टाइम आ रहे हैं, हमें ये मील्स खानी और हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप हमें ला दीजिए, और बहुत ही खूबसूरत है। आप नदी पे कुकिंग करना चाहते हैं वहां कीजिए, नहीं तो आप किचन में कुकिंग करना चाहते हैं तो वहां कीजिए।
4: एयरबीएनबी की तरह हो गया ये,
20: लेकिन ये सरकारी है,
4: ये
20: सरकारी है, आपको ऑनलाइन
4: उत्तराखंड में मैंने ज्यादा एक्सप्लोर करा नहीं है, लेकिन आपने जो ऑप्शंस बताए हैं
20: ठीक है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
21: हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और अपार हरियाली वाला उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल इन दिनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन हो या रोमांच का कभी ना भूलने वाला खुशनुमा एहसास, ये सभी मिलकर राज्य की पर्यटन को गति दे रहे हैं। ऐसे में चमोली जिले का माणा, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, स्की रिजॉर्ट औली और देवताल जैसे कई और पर्यटन स्थल आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकते हैं।
22: जो देश से विदेश घूमना चाहते हैं, जो अब विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है, ऐसे में हर कोई अब अपनी जो विदेशी यात्रा है, विदेश में घूमने का कार्यक्रम है, उसे कैंसिल करेंगे, लेकिन वो अब उत्तराखंड की अलग अलग वादियों में आ सकते हैं। खासकर चमोली जनपद की अगर हम बात करें, अगर चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित तमाम अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं।
21: फिलहाल तो धर्म अध्यात्म का दर्शन करने वाले, लंबे और कठिन ट्रैक पर जाने वाले ट्रैकर्स, शांत वादियों में समय बिताने वाले लोग इन तमाम टूरिस्ट प्लेस पर नजर भी आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही से ये सभी जगह इस वक्त गुलजार हैं, जिनके जरिए राज्य की उन ऑफ बीट जगहों पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद जगी है।
23: जो हमारे चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे पार्वती कुंड है, पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है, इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आपके माणा पास, माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी उस वहाँ पे हुई थी, और वे ऐसा भी उस ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे पर्यटक को पर्यटकों के लिए एक नई चीज मिले।
21: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या
23: और जाएं जहाँ पे पर्यटक को पर्यटकों के लिए एक नई चीज मिले।
21: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। यही वजह है कि इस बात का एहसास पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों को भी बखूबी है। गढ़वाल की तरह ही हलचल कुमाऊं क्षेत्र में भी नजर आ रही है। यहाँ की शांत हरी भरी वादियाँ और सुकून भरे वातावरण के बीच झील किनारे आस्था विश्वास की ये जीती जागती तस्वीर खुद में निराली है। मैदानी इलाकों में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उससे कुछ समय के लिए सही राहत पाने के लिए पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में इन दिनों खूब हो रही है। मई के महीने में इन हिल स्टेशंस पर लोग उस हल्की ठंड का एहसास लेने ही आ रहे हैं। यही नहीं, बैजनाथ मंदिर में तो दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का रोमांच भी है।
0: बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए।
21: दरअसल पिछले एक सप्ताह से रोजाना शाम को यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार बना दे रही है। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ही पर्यटक इन पहाड़ी अंचलों में पहुँच रहे हैं। जाहिर है ये खुशनुमा मौसम यहाँ पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, वहीं लोकल व्यवसाय को भी बूस्ट करने में मदद दे रहा है। तो अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान, सुकून के कुछ पलों को प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के ये तमाम पर्यटन स्थल आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
20: एक और अपील प्रधानमंत्री ने की है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही।
20: ऑप्शंस क्या है?
3: आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हमने
20: ज्वेलरी जो आ रही है इतनी सुंदर,
3: हमने जीएनटी में सुबह 12 बजे में रिपोर्ट दिखाई, आप कहाँ से खरीद सकते हैं
20: बताइए,
3: जाइए जरा जाके वो रिपोर्ट देखिए आप जरा जाके।
2: बहुत सारी मीनाकारी जो होती है बहुत ही,
20: आप देखिए टेम्पल ज्वेलरी कितनी सुंदर मिलती है गोल्ड के साथ। देखिए सेफ्टी इशू भी है, आप लेकर जाएंगे आपको डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी सुंदर लगी है।
3: सर मैं आप कुछ कह रही थी,
2: नहीं भाई मीनाकारी बोल रही थी मैं, मीनाकारी का जो काम होता है बहुत इंट्रिकेट होता है, तो आप वो खरीदिए जैसे बोल रही है कि बिल्कुल
20: कुंदन है, मीनाकारी है, बहुत तमाम ऑप्शंस हैं आपके पास।
2: ज्वेलरी इज वेरी ब्यूटीफुल,
20: सिल्वर पे गोल्ड का वो भी आजकल अच्छा ऑप्शन है इफ यू वांट टू गो फॉर अ येलो धातु पर।
3: और पता है क्या, आप देखिए आप कहते हैं कि गोल्ड वहां पर हो, लेकिन आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगे वो कितनी भी खरीद सकते हैं, गोल्ड के आप एक दो सेट ही ले सकते हैं,
20: इसमें हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि ऑप्शन क्या है।
21: प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर दिखने लगा है। इसी अपील के साथ लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड भी बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और चमक में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नज़र उस विकल्प पर टिकी है जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित है। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक देती है पर जेब पर बोझ नहीं डालती।
7: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज कराने के ऑप्शंस हैं, तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
21: प्रधानमंत्री की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ी है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडी होने से ज्यादा पसंद की जा रही है।
10: मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब मेरे को अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
11: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल क्वाल ज्वेलरी आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देख कर और लेकर।
21: इन्हें शादी पार्टी में या रोजाना पहना जा सकता है, या यूं कहें कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल आपको मिल जाएंगे।
12: बहुत ज्यादा कीमत में हम एक दो सेट ही ले पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल कस्टमाइज करके लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है हमें और हमारे पास ज्यादा सेट हो जाते हैं।
16: अभी जैसे गोल्ड खरीदना नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं और सेफ भी रहता है।
21: ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात। गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीदी जा सकती है।
17: ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो बेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है। इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए, और हम बनाते भी ये फोटोग्राफी के हिसाब से, बहुत रिच लुक देती है।
21: गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी ही दिखती है।
24: ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप तीन तीन चार चार साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ये ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1,00,000-2,00,000 में आता है, ये फर्क तो आता ही है ना।
21: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल गहने मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
25: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, और दूसरा सेफ रहता है ट्रैवल में, अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है, और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता।
21: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है। ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है देश के मौसम का हालचाल, तो बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
27: जाए। And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
28: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
29: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चाय पर चर्चा में। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
30: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: देश से ईंधन बचाने की अपील कर प्रधानमंत्री ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां।
1: 12वीं का रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। देश का सुरक्षा चक्र होगा और मजबूत, भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा तैनात। गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष पहल, पक्षियों के लिए फव्वारे का इंतजाम, 481 से ज्यादा बेजुबानों को मिल रही राहत। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का फिर से खुला रास्ता।
4: हाय, गर्मी वाला गाना याद आ रहा है मुझे, वैसे मैं कह रही थी वी आर फीलिंग हॉट, गर्मी
2: गर्मी
4: है या नहीं?

0: करें क्या, गर्मी आई है या फिर नहीं आई है?
1: तो देखिए सब कंफ्यूज हैं, तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का मौसम इस समय क्या दर्शा रहा है।
0: हिंदुस्तान के मौसम को समझना है तो ये तीन तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर हरियाणा की नूह की है जहां बारिश और ओले बरस रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है जहां गर्मी के बीच आंधी बारिश का दौर आ जा रहा है। और तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला की जहां आसमान से आग बरस रही है। कुल मिलाकर पूरे देश में मौसम का हाल ऐसा ही है। पहले दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं तो यहां मौसम की धूप छांव जारी है। शाम को बदले मौसम के बाद पारा डाउन है। अभी दिन की बात करें तो दिल्ली में पारा 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हवा में ठंडक है। अनुमान ये है कि मौसम की राहत आज भी बनी रह सकती है, लेकिन कल से फिर से पारा चढ़ने का अनुमान है।
2: मौसम में धूप और बारिश का लुका छिपी का खेल लगातार जारी है। दिल्ली में देर रात बारिश हुई, उसके बाद सुबह लोगों को ठंडी सुहावनी हवा मिली, गर्मी से राहत मिली, लेकिन इस वक्त भी अब तेज धूप निकली हुई है और जाहिर तौर पर लोगों को इस धूप के चलते तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो तापमान है वो 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है, यानी कि मौसम में गर्माहट बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 12 से 17 मई तक उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, हल्की हल्की बारिश होगी और 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार जो हवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर अभी 17 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा।
0: उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं जहां तमाम शहरों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। पश्चिम यूपी में आंधी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बादलों की आवाजाही है। आज यूपी के 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी में भी ओले गिर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां भी मौसम हाल फिलहाल बदला हुआ है। ये तस्वीरें नूह की हैं, जहां आंधी बारिश के साथ ओले गिरने से राहत है। नूह के लिए तस्वीर इसलिए भी राहत भरी है क्योंकि लगातार चढ़ते पारे के बीच ओलों ने गर्मी का पारा डाउन किया है। बाकी हरियाणा की बात करें तो आज राज्य के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं अगले हफ्ते लू की भविष्यवाणी भी है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। यहाँ कल आई आंधी बारिश के बाद पारा डाउन तो हुआ है, लेकिन ये राहत मामूली है क्योंकि राज्य के बाकी तमाम हिस्से गर्मी से झुलस रहे हैं। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ मंगलवार को पारा 48 डिग्री तक जा पहुँचा। पूरे राज्य में गर्मी का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। गर्मी से हाल महाराष्ट्र का भी बेहाल है। ये तस्वीरें अकोला की हैं जहां दिन में आग बरस रही है। अकोला में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। राज्य के विदर्भ इलाके में गर्मी का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। अगले 5 दिन विदर्भ के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाले हैं। फिलहाल विदर्भ में लू के हालात बने हुए हैं और अनुमान यही है कि इस हफ्ते पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। एक तरफ देश के कई राज्य गर्मी की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं तो वहीं कुछ राज्यों में प्री मॉनसून जैसी एक्टिविटीज भी दिखने लगी हैं। ये कर्नाटक का मंगलोर है जहां झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। पूरे राज्य में मौसम की बात की जाए तो 27 तारीख तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल और बारिश की भविष्यवाणी है। इस बीच देश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उत्तर श्रीलंका के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अब मजबूत हो रहा है और उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ जुड़ा साइक्लोनिक सिस्टम 6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसका असर दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी के आसपास दिखना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाघों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखता है सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसे आबाद करने में वैसे तो कई बाघ बाघिनों का अहम योगदान है, लेकिन यहां की पॉपुलर बाघिन T16 मछली के बाद अगर किसी बाघिन को याद रखा जाए तो वो है T39 नूर, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है।
3: बिल्कुल, 19 साल से ज्यादा उम्र की ये बाघिन नूर उम्रदराज होने के चलते भले ही अब रणथंभौर के बाहरी इलाके में ना घूमती हो, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वो यहाँ बखूबी सर्वाइव कर रही हैं और फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ हैं।

0: ये रणथंभौर की जीवंत विरासत रणथंभौर की नूर है। नूर यानी यहाँ की एक लेजेंड बागिन जो T-39 के रूप में जानी जाती है और प्यार से इसे नूर या सुल्तानपुर फीमेल कहा जाता है। नूर महज एक साधारण बागिन नहीं है, अपने असाधारण जीवन से नई मिसाल कायम करने वाली नूर यहाँ की सबसे उम्रदराज बागिन है। 19 साल की नूर अब बढ़ती उम्र के साथ जंगल के बाहरी इलाकों में घूमती नजर आती है। आमतौर पर जंगली बागों का जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन नूर बिना किसी बाहरी सहायता या मानवीय बाधा के रणथंभौर में 19 साल पूरे कर लिए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है। 2008 में रणथंभौर के सुल्तानपुर में बागिन T-39 नूर का जन्म हुआ। नूर बागिन T-13 बिंदा की संतान है, जबकि बागिन T-16 मछली नूर की मौसी है। बागिन बिंदा और मछली ने भी लंबी उम्र पाई थी और दोनों का रणथंभौर को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नूर की तुलना अक्सर उसकी मौसी बागिन T-16 मछली से की जाती है, जो वंशावली बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नूर भी यहाँ 5 बार माँ बन चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 5 बार में नूर ने यहाँ कुल 9 शावकों को जन्म दिया। 2022 के आखिर में महज 15 साल की उम्र में नूर ने 2 शावकों को जन्म देकर सबको चौंकाया था। नूर ने 19 साल में रणथंभौर को आबाद करने में अहम भूमिका निभाई है। नूर की वंशपेला रणथंभौर में खूब फल फूल रही है। नूर की बेटी नूरी और सुल्ताना का अब यहाँ राज है।
1: तो ये बागिन तो बहुत ही अनोखी है। ये बागिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है, क्योंकि इसका जो एक बेटा है सुल्तान, वो धौलपुर और करौली दोनों जिलों में बाघ के बच्चे पैदा करने के लिए जाना जाता है। सुल्तान बहुत ही यहाँ का फेवरेट टाइगर रहा है और वहाँ जाकर के उसने परिवार बसाए। इसके और भी बच्चे रणथंभौर में बहुत ही फेमस रहे, सुल्ताना और नूरी, जिन्होंने अभी भी दो अलग अलग जोन में दिखते हैं। इसकी बेटी सुल्ताना अक्सर देखी जाती है रोड पे, गणेश रोड पर। परंतु इस जो बाघिन का पूरा परिवार का रणथंभौर के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत बड़ा योगदान।
0: स्वभाव में शांत नूर के शरीर पर लहरदार धारियां हैं, जो किसी आभूषण के जैसे चमकती दिखती हैं। इसलिए उसे नूर यानी चमक नाम दिया गया। यही नहीं, वो यहाँ माला के नाम से भी जानी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बागिन नूर के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। युवा बाघ बागिनों के दबाव में अब बागिन नूर रणथंभौर के जंगल के बाहरी इलाकों में ही दिखती है, जो बढ़ती उम्र के चलते इलाका छोड़ने और शांत स्थानों की तलाश करने का संकेत है।
2: T-39 को किसी भी तरीके का कभी भी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या किसी तरीके की मेडिकल सपोर्ट की कभी आवश्यकता नहीं रही और ये वाइल्ड में हमेशा ऐसी घूमती रही। हाँ, अब इसकी उम्र ज्यादा हो गई है तो पेरिफेरल सी थ्रू में देखी जाती है। कल भी इसका मूवमेंट बोदल, जो हमारी उगाल की पुलिया, उसके पास देखा गया था, तो लगातार हमारी टीम इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। रणथंभौर को आबाद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसने 3 बार लिटर दिए और जो अभी वर्तमान में T-105 107 जो आप लाइग्रेस देखते हैं, जिनके और बच्चे हुए और पूरे इस मेल कोर जोन में जो रहते हैं वो इन्हीं के वंशज थे। बेटी 13 की बेटी थी और नेचुरली वाइल्ड में किसी एक टाइगर का नेचुरली इतने समय तक जीवित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो इसने अचीव की।
0: रणथंभौर टाइगर रिजर्व जैसे जंगलों में जहां बाघ बागिनों के लिए हर दिन अस्तित्व की परीक्षा होती है, वहां ये बागिन नूर शानदार जीवन जी रही है। 19 साल की उम्र में भी रणथंभौर की नूर ने बाघों की कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, इसलिए वो आज भी पर्यटकों में पॉपुलर है और बाघों की रानी का ताज हासिल किया है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए हौसले की एक कहानी आपके सामने यहाँ पर रख देते हैं। सहारनपुर की नंदिनी ने क्रिकेट के मैदान पर शानदार कामयाबी हासिल की है। नंदिनी की कहानी क्या है? नंदिनी का चयन T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है।
4: जी हाँ, देखिए यही बड़ी बात है। उनकी इस कामयाबी पर उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहर है। आज नंदिनी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।
0: की गलियों से निकलकर जुनून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान तक पहुंचा तो नंदनी के साथ सहारनपुर का नाम भी रोशन हो गया। सहारनपुर के रणदेवा गांव की बेटी नंदनी शर्मा महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तेज गेंदबाज बनकर मैदान में उतरेंगी। जब वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन की खबर नंदनी के परिवार को मिली तो घर के हर सदस्य का सिर गर्व से ऊंचा हो गया।
5: जब से उसका वर्ल्ड कप में चयन हुआ सब बहुत ज्यादा खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे भी सब यही बोलते कि हम भी नंदनी जैसी बनेंगे।
6: नंदनी का देखो जी, जिस समय वर्ल्ड कप में चयन हुआ उससे पहले WPL में हुआ था और WPL में उसने 18 विकेट जो पूरी सीरीज में लिए, एक विदेशी लड़की ने लिए थे, लेकिन भारत की जो लड़कियां खेल रही थी बॉलिंग कर रही थी उन्हें सबसे नंबर वन पर लड़की नंदनी थी, उसने 18 विकेट लिए थे। और शायद सेलेक्टरों ने उसी समय शुरू होएगा था TV पाना अमेजिंग गर्ल ऑफ द क्रिकेट, प्रतिभावान खिलाड़ी और अनकैप्ड लड़की नंदनी शर्मा का नाम जब चला तो टीवी वाले जो टीवी की कमेंट्री करते थे वो उन्होंने पहले ही जताना शुरू कर दिया था कि एक दिन ये लड़की भारत की टीम में जरूर जाएगी।
0: इस कामयाबी से नंदनी ने अपना नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि अपने पिता का अधूरा सपना भी पूरा कर दिया है। नंदनी के पिता भी क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन परिवार के हालात ने कभी ये मौका नहीं दिया। पहले वो चाय की दुकान चलाते थे, बाद में वेल्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन क्रिकेट के लिए नंदनी को प्रोत्साहन देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता की कोशिश का ही नतीजा था कि नंदनी का चयन पहले चंडीगढ़ की टीम में हुआ और फिर वुमेन प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें एक नई पहचान दिला दी।
7: बाप को बहुत शौक था, जुनून बढ़ा बच्चों के अंदर, लड़का भी मैं भी जुनून पूरा था, मतलब इससे लड़की से बड़ा था पर वो पास नहीं हुआ। यह लड़की भगवान ने कहा उसने चाह पास होगी क्रिकेट में और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा भाई।
0: विमेन प्रीमियर लीग में गुजरात के खिलाफ एक मैच में हैट्रिक समेत 5 विकेट लेकर नंदनी ने अपनी काबिलियत का प्रमाण भी दे दिया। इस लाजवाब हुनर के दम पर ही नंदनी को अब वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिली है। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर नंदनी क्रिकेट की दुनिया में लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। उनकी कामयाबी अब गांव के हर बच्चे के सपने को उड़ान दे रही है। इस गांव का हर बच्चा अब नंदनी जैसा ही एक कामयाब क्रिकेटर बनना चाहता है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।
4: छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे CRPF के जवानों ने सूझबूझ से बचाई एक जिंदगी।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है, यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो, क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun. We've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
12: It's college football time. College basketball feels
11: like
12: Pardon
11: My Take.
13: The Rams catching the Commanders.
11: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: कश्मीर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स अचानक से सड़क किनारे गिर पड़ा। सांसें धीमी हो रही थी, हर सेकंड भारी पड़ रहा था। तभी वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवान किसी फरिश्ते की तरह आए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन के जवानों ने सूझबूझ और तेजी दिखाते हुए एक नागरिक की जान बचा ली। शख्स को कार्डियक इमरजेंसी हुई थी, हालात नाजुक हो रहे थे।
3: बिल्कुल, देखिए जवानों ने बिना देर किए मौके पर ही सीपीआर देना शुरू किया। इमरजेंसी दवाएं दी गई उस शख्स को और गोल्डन आवर के भीतर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाया गया। जवानों की इस फुर्ती और तत्परता ने मौत के मुंह से जिंदगी को वापस खींच लिया। और देखिए घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ जवानों की जमकर सराहना की है। ये घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत, साहस और जिम्मेदारी की मिसाल भी बन गई है।
1: आम नागरिक अपनी कार में आता हुआ दिखाई दिया हमारे कार्मिकों को और उसको और आकर के हमारे जहां पर हमारे ट्रूप्स तैनात थे उसके पास उसने अपनी गाड़ी रोकी। हमारे जवानों को लगा कि चालक को कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत दौड़ करके वहां पर हमारे कार्मिक गए जवान और उन्होंने देखा कि चालक अनकॉन्शस स्टेट में है। उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया गया, CPR दिया गया, साथ ही साथ हार्ट अटैक से संबंधित जो मेडिसिन है वो तुरंत उसको दी गई। उसके पश्चात उस व्यक्ति को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबेहरा पहुँचाया गया और जिससे कि उसकी जान बच सकी।
4: चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
15: आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अब देखिए दुकानों में सिर्फ सेल्समैन ही नहीं, रोबोट भी ग्राहकों की मदद करते नजर आ रहे हैं। जर्मनी के एक हार्डवेयर स्टोर में इन दिनों शॉटी नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। ये रोबोट ऑस्ट्रियाई लहजे में बात करता है। चीन में बना ये रोबोट स्टोर की पूरी लोकेशन याद कर चुका है। ग्राहक किसी सामान के बारे में पूछे तो शॉटी ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि खुद चलकर सही रैक तक उन्हें पहुंचा देता है।
20: बिल्कुल, खास बात यह भी है कि इसे स्टोर कर्मचारी जैसी ड्रेस पहनाई गई है और इसके सामने एक टैबलेट भी लगा दिया गया है। शॉटी नाम का ये रोबोट अप्रैल 2026 में जर्मनी के पॉकिंग शहर के इस स्टोर में टेस्टिंग पर काम कर रहा था। इससे पहले भी यहाँ एक रोबोट लगाया गया था लेकिन वह सिर्फ खड़ा रह सकता था। शॉटी की खासियत यह है कि यह चलकर सारे काम कर सकता है और जितने भी दुकानदार से कोई सामान लेने आते हैं वो भी दे सकता है। देखिए रिपोर्ट।
4: लेट्स थैंक शगुफ्ता।
3: थैंक यू।
4: विल कीप डूइंग इट।
3: विल कीप डूइंग इट ना। और ऐसी ही चाय पे चर्चा में हम खूब सारी ढेर सारी खबरें भी लाते रहेंगे और साथ ही साथ आपको कान फिल्म फेस्टिवल की हलचल भी दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही ख्याल रखिए अपना, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है, यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो, क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने भी किया अमल। केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के काफिले में होती हैं 1.5 दर्जन गाड़ियां। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की विशेष पहल, पक्षियों के लिए खास फव्वारे का इंतजाम, 481 से ज्यादा बेजुबानों को मिल रही राहत। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच पीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का भी फिर से खुला रास्ता। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा बरकरार, 879 अंकों के साथ बने दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव लेकर एक बेहद खास पेशकश आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है। बीते रविवार को और सोमवार को उन्होंने एक साल तक गोल्ड ना खरीदने के साथ ही ईंधन बचाने की भी अपील 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की थी। पीएम ने बुधवार को खुद इसकी नजीर पेश करते हुए अपने काफिले को डाउनसाइज कर दिया। असर ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत अपने काफिले को कट करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की। कुछ राज्यों के मंत्री तो काफिले की जगह एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील ने देश भर में सत्याग्रह का रूप ले लिया।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और बुधवार को उन्होंने खुद ही अपने काफिले में कटौती का निर्देश देकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने शानदार नजीर भी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को डाउनसाइज करने का निर्देश दे दिया है। खबर ये भी है कि पीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने वाली नोडल एजेंसी SPG ने इस निर्देश के बाद वर्कआउट भी शुरू कर दिया है।
3: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से एक अपील की गई। उस अपील को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लगभग 50% के आसपास गाड़ियों की संख्या जो है कम की गई है उनके द्वारा।
2: अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पीएम के काफिले में कुल कितनी गाड़ियां होती हैं और पीएम के निर्देश के बाद अब कितनी गाड़ियां काफिले में रह जाएंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से पीएम के काफिले की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, जरूरत और सिक्योरिटी के हिसाब से उसे कम या ज्यादा भी किया जाता है। वैसे औसतन प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की तादाद 30 से लेकर 40 के बीच में रहती है। हालांकि जब वो राजधानी दिल्ली में चलते हैं तो काफिले में गाड़ियों की संख्या अमूमन कम होती है। गाड़ियों की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी होती है वे व्यवस्थित क्रम में चलती है। पीएम के काफिले में रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज कंपनी की टॉप लेवल कारें होती हैं और इनमें से किसी एक में वो बैठते हैं। हालांकि वो किस गाड़ी में बैठेंगे ये पहले से तय नहीं होता, आखिर समय में SPG के अधिकारी ये तय करते हैं। काफिले के मुख्य हिस्से के तौर पर एक पायलट गाड़ी होती है जो हूटर बजाते हुए सबसे आगे चलती है और रास्ता साफ करती है। वहीं एक जैमर गाड़ी भी काफिले में चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से लैस होती है। काफिले की जैमर गाड़ी रिमोट से चलने वाले विस्फोटकों के लिए जरूरी रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। इसके बाद स्कॉर्ट गाड़ियां होती हैं। पीएम जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके आगे पीछे SPG के साथ चलने वाली SUV गाड़ियां शामिल रहती हैं। आपको बता दें कि पीएम के काफिले में कुछ डमी गाड़ियां भी होती हैं। काफिले में डमी गाड़ियां इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि कोई हमले की फिराक में हो तो उसके भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। इसके साथ ही एक हाईटेक एम्बुलेंस भी काफिले का हिस्सा होती है। इसमें लाइव सपोर्ट सिस्टम से लेकर पीएम के ब्लड ग्रुप का खून तक उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे पीछे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के साथ खुफिया विभाग की गाड़ियां रहती हैं। अब जबकि सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने स्वयं काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश दिया है, तो SPG के लिए बड़ी चुनौती होगी कि काफिले को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश देकर नजीर बनाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वे को आधा या उससे भी कम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री ने अपने काफिले को काफी ज्यादा डाउन साइज कर दिया है। गृह मंत्री को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और आमतौर पर उनके काफिले में 15 से 20 गाड़ियां चलती हैं। हालांकि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था उस अपील के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से कम कर दी है। एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इसी तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं।
2: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अगर आप दान पुण्य का उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसके बाद उसका असर होना तय है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउन साइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अविलंब अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1, एस्कॉर्ट 2 गाड़ी और साथ ही में बीच में VIP यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस। लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पर तैनात कर दी गई है।
2: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले को छोटा किया तो उनकी कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने और बड़ी लकीर खींचते हुए काफिले के जगह सिर्फ एक ही गाड़ी में दफ्तर जाने का फैसला कर लिया।
4: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3 से 4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है। एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, VIP वाहन जिसे कहा जाता था। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से सभी से कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे।
2: उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे जाते हुए ज्यादा ईंधन कंज्यूम करने वाली एसयूवी गाड़ियों की जगह खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने के लिए अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी लोग इसको कम करने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, सब लोगों ने अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पे आज से सभी मंत्रियों ने हम लोग कहा है कि हम लोग अपने गाड़ियों के काफिले को कम कर देंगे।
2: बिहार के कुछ मंत्री तो एक ही वाहन में एक साथ विधानसभा जाते दिखे।
5: प्रधानमंत्री जी का अपील है और तेल को ईंधन को बचाना है तो कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है, और जब हम लोग को आना ही है कैबिनेट में तो एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गाड़ी का और कम से कम गाड़ी का जो हम लोग का काफिला होता है 3-4 गाड़ी का उसका हम लोग कम कर वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील किए हैं कैबिनेट में, सब लोग इसको अपनाएंगे और ये अच्छा रहेगा।
2: इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले को डाउनसाइज कर लिया है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पीएम के सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील को अमल में लाते हुए मेट्रो में बैठकर सचिवालय पहुंचे।
6: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यह निर्णय लिया गया, ये निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
7: क्या मुख्यमंत्री के काफिले को भी कम करने की
6: डेफिनेटली कल ही उन्होंने निर्णय ले लिया है और उनके काफिले को आधे से भी ज्यादा कम मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं ही कर दिया है।
2: पीएम की अपील को सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी अमल में ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलने का संकल्प लिया है। उदय सामंत बुधवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सफर करते नजर आए। कहते हैं कि दिल से निकली सदाओं का असर दूर तलक होता है। रविवार और सोमवार को पीएम मोदी ने फॉरेक्स बचाने के लिए 7 पॉइंट एजेंडा पेश किया और बुधवार तक उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। उसका असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ सियासी हलके तक ही सीमित है। गैर सियासी लोग भी पीएम की ईंधन बचाने की मुहिम में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जस्टिस तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। उधर गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल न करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। नेतृत्व जब नजीर पेश करता है तो आम जनमानस तक इसका व्यापक असर होता है। पीएम की अपील के बाद ईंधन बचाने को लेकर जिस तरह की मुहिम चल रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे।

0: पीएम मोदी अगर कोई अपील करे तो उसका असर होता है, असर सिर्फ सियासी दायरे में नहीं बल्कि सर्वव्यापक होता है। मोदी की अपील को अमल में लाना केंद्र सरकार के मंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी इसे अलम में ला रहे हैं जिनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल। पीएम मोदी की अपील के बाद जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से अदालत पहुंचकर बेहतरीन मिसाल पेश की। जस्टिस बंसल कड़ी धूप में अपने आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वे सड़क पर ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए बिल्कुल एक आम आदमी जैसे नजर आ रहे थे।
1: दो दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए आज अपने घर से कोर्ट तक जाने के लिए साइकिल का साधन चुना और अन्यथा भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की प्रेरणा से हम साइकिल चलाते रहे। कभी डुमना रोड जाते हैं, कभी पूरे शहर के अंदर जबलपुर में भी हम माननीय चीफ जस्टिस सचदेवा साहब के साथ साइकिलिंग की है। तो मुझे कोई ऐसा कोई खास काम नहीं लगा साइकिल पर जाना, मान कि केवल इसलिए कि हम हाईकोर्ट जा साइकिल से नहीं जा सकते, मुझे लगा ऐसा कि खास बात नहीं, इसलिए मैंने आज साइकिल से जाने का।
0: जस्टिस बंसल से जब ये पूछा गया कि हाईकोर्ट का जज होते हुए भी साइकिल पर चलने से आपको कोई परहेज नहीं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है।
1: अब ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस से क्या फर्क पड़ता है, साइकिलिंग तो सभी को करना चाहिए। थोड़ा धूप जरूर रहती है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एक टाइम था साइकिल से लोग रोज 10-10 किलोमीटर जाते थे। हम बहुत गए हैं, आज भी हम रोज सुबह साइकिल चलाते ही चलाते हैं, करीब जो है कहना चाहिए 3-4 किलोमीटर की साइकिलिंग तो हमारी रोज आज भी हो जाती है, बस स्पोर्ट जरूर जा रहे हैं साइकिल से आज।
0: जस्टिस बंसल ने साइकिल से कोर्ट जाकर बेहतरीन नजीर पेश की तो उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया कि देश के धन की स्थिति सामान्य होने तक वे राज्य के भीतर किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेट प्लस सुरक्षा काफिले को छोड़कर आचार्य देवव्रत ने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दे दिया है।
2: जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन रसायन इंजन मुक्त दिवस के रूप में मनाएं। राज्यपाल देवव्रत ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। गुजरात के राज्यपाल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वे राजुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आई। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने स्कॉट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नजीर पेश करने के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री तक ईंधन बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
3: सुरक्षा और सादगी को एक साथ लेकर के जो देश के शीर्ष मंत्री हैं, वो लोग चल रहे हैं, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम विश्व के बाजार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको कैसे भारत में स्थिर रखा जा सकता है। इस तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे, इस तरीके के मेजर्स अगर उठाए जाएंगे, तो शायद देश की जनता को किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरीके से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
0: ईंधन बचाने की पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द ही आम जनमानस में भी इसकी व्यापक प्रेरणा जगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम होगा। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज चौधरी भी डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचे। बस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
5: प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है डॉक्टर पंकज सिंह। सर, विकासपुरी से सचिवालय पहुंचे हैं, लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके, कितना ये मुश्किल रहा और कितना ये आपको लगता है कि आगे कारगर रहने वाला है ये सफर?
6: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे आज बस में बैठ के ये आपसे कह सकता हूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बड़ा आनंद आया। और इस बात का आनंद आया है कि पिछले 1.25 साल में जो हमने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था कि हम डीटीसी को ऐसी सुविधा से युक्त करेंगे कि जिससे आपको समस्याएं ना आए, तो आज मुझे बस में बैठ के ये महसूस हुआ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक को आना चाहिए, दिल्ली की जनता को आना चाहिए। जो भी सुविधा दिल्ली की जनता चाहेगी वो डीटीसी में और मेट्रो में है, और व्यवस्था चाहिए वो भी पूरा कराएंगे।
5: आप भी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रूटीन में?
6: देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए, मैं डीटीसी की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी ईवी खरीदी जाएंगी, कटौती तो हमारी एक गाड़ी चलती है, पुरानी पार्टी की तरह है नहीं जी कि वो 5-5 गाड़ियां चलाती रहेंगे। मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन में ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीटीसी में और भी बसें हम बढ़ा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ दें।
5: लंबा सफर आपने तय करा, हम लोगों से भी बातचीत करी होगी बस के अंदर, क्या उनको लगा कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, क्या वाकई उनको लगता है कि ये सही अपील है?
6: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, दिल्ली की जनता चाहे भारत की जनता हो, सब इस बात को सहमत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी सुविधा के साथ होगी, अब मैं आज आया हूँ, मुझे खुद इतना अच्छा आनंद लगा बिना कोई टेंशन के, बिना कुछ के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी तो लोग क्यों नहीं ले इसको अवेल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कुछ कमियां भी है तो मैं इस बस में बैठ के उसको दूर करने का काम कर रहा हूं। जैसे कोई कहता है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा, चाहे कोई मेरे ये ड्राइवर बस स्टॉपेज नहीं रुकता है और बस की कमी है, तो वो भी सुविधा हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप ईवी पे कन्वर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेरे गांव का आखिरी कोना, आखिरी गांव, दिल्ली का आखिरी गांव अनथराइज कॉलोनी तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसें की सुविधा रहेगी, मेट्रो की सुविधा रहेगी, मेट्रो दिन पर दिन एक्सपेंशन कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए।
5: ये कई देशों के अंदर देखने में आया कि कई सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अक्सर हम देखते हैं कि आपका सातवीं मंजिल पर ऑफिस है और सातवीं मंजिल आप सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, क्या वो भी कंटिन्यू रहेगा आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल?
6: स्वाभाविक है, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ कि जितना कम लिफ्ट इस्तेमाल कर सकूँ वो मैं करता हूँ और वही उस पर लगा ही रहूंगा जी,
5: कंटिन्यू
6: रहेगा।
5: बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सचिवालय पहुंचे अपने दफ्तर के अंदर। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेरा दिल्ली।
4: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की आज की हमारी बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ सुनिए।
7: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है? यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए, और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो? क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
9: Thank God I get to wake up.
8: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल। केवल दो गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी। पीएम के काफिले में होती है डेढ़ दर्जन गाड़ियां। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास। 17,000 से ज्यादा छात्रों को मिले 95% नंबर।

0: गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की विशेष पहल, पक्षियों के लिए खास फव्वारे का इंतजाम, 481 से ज्यादा बेजुबानों को मिल रही राहत। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का फिर से खुला रास्ता। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा बरकरार, 879 अंकों के साथ बने दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का किया ऐलान, इस साल 85.2% छात्र छात्राएं हुए पास। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, 88.86% लड़कियां हुई पास, तो लड़कों का पास प्रतिशत रहा 82.13%। सीबीएसई ने इस साल भी मेरिट लिस्ट न जारी करने का किया है फैसला, टॉप 0.1% विद्यार्थियों को मेरिट सर्टिफिकेट जारी करेगा सीबीएसई। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखे जा सकते हैं परीक्षा परिणाम, डिजीलॉकर पर मार्कशीट डाउनलोड के लिए उपलब्ध। नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, कई एयरलाइंस को ने घटाया किराया, कई शहरों का हवाई किराया हुआ पहले से सस्ता। देश की सैन्य सुरक्षा को नई ताकत देने वाली गुड न्यूज, इस हफ्ते के अंत तक देश को मिल सकता है चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दिल्ली में कल से शुरू होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, बैठक में रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी होंगे शामिल, पीएम मोदी विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे लावरोव। सूत्रों के हवाले से खबर, चौथे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देश की पश्चिमी सीमा पर किया जाएगा तैनात, S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था अपना दम। में भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीद का किया था समझौता, अहमियत को देखते हुए भारत ने इसी साल 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीद को दी है मंजूरी। गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त और कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस बीरेन अनिरुद्ध वैष्णव गुजरात के नए लोकायुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने लाई शपथ। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन और पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध, सिद्रा में आधुनिक यात्री निवास का निर्माण अंतिम चरण में। जम्मू के विधायक अरविंद गुप्ता ने भगवती नगर यात्री निवास का किया निरीक्षण, अधिकारियों को साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए RFID कार्ड और EKYC अनिवार्य। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन, लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 12 लाख। केदारनाथ धाम का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक करीब सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 3 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 2 लाख भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक करीब 3,86,000 भक्त पहुंचे। उज्जैन में महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा, ड्राई फ्रूट फल और मिठाई का भोग किया गया अर्पित। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, शेषनाग मुकुट और मुंडमाला से सजा बाबा का दरबार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में यूपी के मंत्री ने किए दर्शन, भगवान महाकाल का लिया आशीर्वाद। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे, चिंटू भोलेनाथ का किया दर्शन। भीषण गर्मी के बीच पक्षियों को राहत देने के लिए जामनगर महानगर पालिका का अनोखा प्रयास, पक्षी घर में परिंदों के लिए किए गए खास इंतजाम। पक्षी घर में करीब 481 से अधिक पक्षी करते हैं निवास, इनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, इमू सहित कई दुर्लभ आकर्षक प्रजातियों के पक्षी भी शामिल। महानगर पालिका की टीम दिन में 3 बार करती है पानी का छिड़काव, हर पिंजरे में की गई है विशेष फवारों की व्यवस्था। पक्षियों के खान पान, पीने के पानी और स्वास्थ्य पर भी लगातार रखी जा रही नजर, मौसम को ध्यान में रखते हुए बरती जा रही विशेष सावधानी। जामनगर महानगर पालिका के संवेदनशील प्रयास से पक्षी प्रेमी खुश, महानगर पालिका के प्रयासों की हो रही सराहना। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान रखा बरकरार, 879 अंकों के साथ दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर बने हैं बुमराह। भारतीय बल्लेबाज अश्विन जायसवाल आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचे, जायसवाल के खाते में 750 रेटिंग अंक दर्ज। भारतीय टेस्ट टीम के

2020 विश्व कप जीतने के बाद गौतम गंभीर यहां आए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हनुमान शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित शोभा यात्रा में सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, इस दौरान बाइक रैली का भी किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑर्गेनिक खेती से बदल रही किसानों की किस्मत, ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों को हो रहा अच्छा मुनाफा। उधमपुर के रामनगर में दूरदराज गांव में आधुनिक खेती कर रहे किसान, किसानों को अच्छे मुनाफे के साथ साथ मिल रहा रोजगार। यूपी के सहारनपुर में क्रिकेटर नंदिनी शर्मा के घर पर खुशी का माहौल, विश्व कप टीम के लिए हुआ है नंदिनी शर्मा का चयन। अयोध्या काशी मथुरा के बाद यूपी में अवनाथ कॉरिडोर पर फोकस, बरेली स्थित नाथ परंपरा से जुड़े 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों की विकास योजना पर काम शुरू। महाराष्ट्र के बीड में आम की अच्छी पैदावार ने बदली किसानों की किस्मत, लाखों रुपयों का हुआ मुनाफा। दिल्ली में एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, छात्रों को किया गया सम्मानित। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेनकना से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ओडिशा के कई इलाकों में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से होगी बारिश। तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने पेश की मिसाल, पीएम मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के लिए दिए निर्देश। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, हालांकि इसके लिए नई गाड़ियां न खरीदने के निर्देश। पीएम मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य योगी सरकार ने सरकारी काफिलों में 50% वाहन घटाने के दिए निर्देश। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला, अपने काफिले से घटाए वाहन। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का लिया निर्णय, राजस्थान सीएम ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, 10 से 11 की जगह अब सिर्फ 5 गाड़ियों का होगा काफिला। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भी पीएम की अपील का असर, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो में की यात्रा, बोले जरूरत पड़ी तो केवल एक गाड़ी का करूंगा इस्तेमाल। पीएम की अपील के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मेट्रो और ई रिक्शा का सफर करते नजर आए, इस दौरान आम लोगों और स्कूली बच्चों से भी बात की। पीएम की अपील का असर, गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा छोड़ी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी घटाया काफिला। पीएम और सीएम की अपील के बाद भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हटाई काफिले की गाड़ियां, अब सिर्फ एक गाड़ी से चलने का किया ऐलान। आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना होगा अब और महंगा, वित्त मंत्रालय में सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें आज से लागू, सरकार के इस फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना। सरकार ने सोने पर लगने वाली कोल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% की। गुजरात के कच्छ में शादी के दौरान उड़ाए गए सोने के नोट और सिक्के को ही बारिश, वीडियो वायरल। कच्छ में लोक संगीत के दौरान पैसे उड़ाने की परंपरा पुरानी, नोट लूटने के लिए मची होड़। एन रंगास्वामी 5वीं बार संभाली पुडुचेरी की कमान के

0: शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दाखिल की याचिका। परीक्षा प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में आयोजित करवाने की मांग। एनटीए को हटाकर तकनीकी रूप से मजबूत संस्था बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल में अब ऊंची आवाज में मस्जिद और मंदिर में नहीं बज सकेंगे लाउड स्पीकर्स। शुभेंदु सरकार ने जारी किया आदेश। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला। अहमदाबाद सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदले। कान पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आया ग्लैमरस अंदाज। रेड कार्पेट पर पीच कलर के गाउन में बला की खूबसूरत नजर आई आलिया। दर्शकों को वेव करते हुए पेपराजी के सामने पोज करती नजर आई। रेड कार्पेट एंट्री से पहले सोशल मीडिया पर सामने आया आलिया का खूबसूरत फोटोशूट। मिंट ग्रीन बॉल ड्रेस पहने आलिया भट्ट ने खींचा सबका ध्यान। हल्के हरे नीले लेवेंडर और पीले रंगों के हाथ से पेंट किया गया गाउन जिसमें बना है फ्रेंच रिवेरा का खूबसूरत नजारा। फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर डिजाइनर यश पाटिल और अहमदाबाद की भित्ति चित्रकार बांसुरी चौकसी ने मिलकर तैयार किया है आलिया का ये लुक। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। अभिनेता निर्देशक अंशुमन एक्टर डायरेक्टर अंशुमन झा की फिल्म लकड़बग्घा 2 का द मंकी बिजनेस की कान फिल्म फेस्टिवल में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। भारत इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक को प्रोडक्शन। एफटीआई की छात्रा बेहर मल्होत्रा द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स की बनी चर्चा। कान के लास्ट सिनेफ सेक्शन के लिए चुनी गई ये फिल्म। फेमस पंजाबी एक्टर सिंगर एमी विक और रूपी गिल की फिल्म में चढ़ती कला भी कांत में प्रीमियर के लिए तैयार। 29 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।
1: कोई कितने पैसे लिए इस काम के?
0: कान में दिखाई जाएगी गुजराती फिल्म लालू कृष्णा सदा साहित्य। महज 50 लाख के बजट में बनी फिल्म दुनिया भर में कर चुकी है 122 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। कान क्लासिक्स के लिए चुनी गई है मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म अम्मा अरियन। 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म को 4K में किया गया रिस्टोर। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल को फिल्म मिला यूएस सर्टिफिकेट। 15 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बंगला ने 26वें दिन की धमाकेदार कमाई 161 करोड़ पहुंचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अल्लू अर्जुन के फिल्म राका में पूजा हेगड़े की एंट्री। पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं अल्लू और पूजा हेगड़े। मई को सलमान और गोविंदा की कई फिल्में दोबारा हो रही रिलीज। सलमान खान की मैंने प्यार किया क्यों किया और मुझसे शादी करोगी, वहीं गोविंदा की आंखें और राजा बाबू हो रही रिलीज। ईडी के विरोध के बाद सरकारी गवाह बनने से पीछे हटी जैकलीन। ठग सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी अपील। आईपीएल के 57वें मैच में टकराएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। मैच जीतकर दोबारा टॉप पोजीशन हासिल करना चाहेगी आरसीबी, जबकि लगातार 4 मैच जीत चुकी है केकेआर। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपनी 5वीं जीत दर्ज करने उतरेगी। दोनों टीम टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में केकेआर का पल्ला भारी है। कोलकाता की टीम ने 36 में से 20 मैचों में जीत दर्ज की है। प्लेऑफ के लिहाज से मुकाबला काफी अहम है। प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए केकेआर को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस मैच में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार से होंगी उम्मीद। वहीं केकेआर के सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन पर टिकी है सबकी नजरें। जर्मनी के हार्डवेयर स्टोर में ह्यूमनॉइड रोबोट ग्राहकों को सामान ढूंढने में कर रहा है मदद। ये रोबोट सवालों के जवाब देने के साथ साथ ग्राहकों को सही ठिकाने तक ले जाता है। ऑस्ट्रियन एक्सेंट में बात करने वाला रोबोट अप्रैल 2026 में स्टोर में टेस्टिंग पर है। कर्मचारियों की मदद के लिए तैयार किया गया रोबोट। चीन में बना यह रोबोट स्टोर का नक्शा सीख चुका है और ग्राहकों को सीधे बातचीत करता है। इस कंपनी के मुताबिक इसकी लागत के हिसाब से इसकी प्रति घंटे की सैलरी करीब 1.70 यूरो। ह्यूमनॉइड रोबोट की कई गतिविधियां रिमोट से होती है। इस कंट्रोल लगातार ट्रेनिंग से रोबोट बनता जा रहा है और ज्यादा स्मार्ट। टेलीकॉम स्टोर में वेलकम मैनेजर की भूमिका भी निभा रहा है यह रोबोट। वहां भी ये महिला आवाज में ग्राहकों का स्वागत करता है, उन्हें गाइड करता है। हांगकांग की प्रदर्शनी में फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट ने म्यूजिक पर किया शानदार डांस। उसके स्मूथ मूवमेंट्स देखकर हैरान रह गए लोग। चीनी कंपनी एगीबॉट का नया रोबोट इंसानों की तरह कर सकता है बातचीत। कंपनी का दावा है कि यह एक असली साथी जैसा देता है अनुभव। एम्बॉडीड एआई समिट में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सबका ध्यान खींचा। रोबोट्स को माना जा रहा है भविष्य की नई इंडस्ट्रियल ताकत। हांगकांग में एआई प्लस और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बनेगी नई कमेटी। सरकार अब हेल्थ टेक और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर करेगी फोकस। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने एआई से इंडस्ट्री बदलने की रणनीति पेश की। उन्होंने कंपनियों को हांगकांग के निवेश और टेक अपग्रेड के लिए किया आमंत्रित। चीन के हांगजू में 87 ब्रांड्स और 136 एआई रोबोट्स के साथ भविष्य की तकनीक का किया गया प्रदर्शन। यहां इंसानों और रोबोट्स के साथ काम करने के नए मॉडल दिखाए गए। हांगजू के सेंटर में 33 प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीन बनाए गए। यहां रोबोट्स को असली माहौल और वर्चुअल सिस्टम दोनों में किया जा रहा है टेस्ट। एआई रोबोट्स के साथ लोगों को मिला काम करने का अनुभव। इस दौरान सर्विस ट्रेनिंग और ह्यूमन रोबोट सहयोग की झलक देखने को मिली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: नई सरकार के बनते ही बंगाल में हंगामा। बंगाल में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक। मेरठ में दो गुटों के बीच लड़ाई के वीडियो का सच। सिर के बल खड़े होकर गाया शिव तांडव स्त्रोत। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए शुभम के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
4: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात सहारनपुर के नंदिनी की करते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर शानदार कामयाबी हासिल की है। नंदिनी का चयन T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। उनकी इस कामयाबी पर उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहर है, और यही वजह है कि आज नंदिनी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।
2: गांव की गलियों से निकलकर जुनून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान तक पहुंचा तो नंदिनी के साथ सहारनपुर का नाम भी रोशन हो गया। सहारनपुर के रणदेवा गांव की बेटी नंदिनी शर्मा महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तेज गेंदबाज बनकर मैदान में उतरेंगी। जब वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन की खबर नंदिनी के परिवार को मिली तो घर के हर सदस्य का सिर गर्व से ऊंचा हो गया।
3: जब से उसका वर्ल्ड कप में चयन हुआ सब बहुत ज्यादा खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे भी सब यही बोलते कि हम भी नंदिनी जैसी बनेंगे।
4: नंदिनी का देखो जी, जिस समय वर्ल्ड कप में चयन हुआ उससे पहले WPL में हुआ था, और WPL में उसने 18 विकेट जो पूरी सीरीज में लिए, एक विदेशी लड़की ने लिए थे, लेकिन भारत की जो लड़कियां खेल रही थी बॉलिंग कर रही थी उन्हें सबसे नंबर वन पर लड़की नंदिनी थी, उसने 18 विकेट लिए थे। और शायद सेलेक्टरों ने उसी समय शुरू होएगा था टीवी पाना अमेजिंग गर्ल ऑफ द क्रिकेट, प्रतिभावान खिलाड़ी और अनकैप्ड लड़की नंदिनी शर्मा का नाम जब चला तो टीवी वाले जो टीवी की कमेंट्री करते थे वो उन्होंने पहले ही जताना शुरू कर दिया था कि एक दिन ये लड़की भारत की टीम में जरूर जाएगी।
2: इस कामयाबी से नंदिनी ने अपना नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि अपने पिता का अधूरा सपना भी पूरा कर दिया है। नंदिनी के पिता भी क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन परिवार के हालात ने कभी ये मौका नहीं दिया। पहले वो चाय की दुकान चलाते थे, बाद में वेल्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन क्रिकेट के लिए नंदिनी को प्रोत्साहन देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता की कोशिश का ही नतीजा था कि नंदिनी का चयन पहले चंडीगढ़ की टीम में हुआ और फिर वुमेन प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें एक नई पहचान दिला दी।
5: बाप को बहुत शौक था, उन्होंने जुनून बढ़ा बच्चों के अंदर, लड़का भी मैं भी जुनून पूरा था, मतलब इससे लड़की से बड़ा था, पर वो पास नहीं हुआ। यह लड़की भगवान ने कहा उसने चाह पास होगी क्रिकेट में, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा भाई।
2: विमेन प्रीमियर लीग में गुजरात के खिलाफ एक मैच में हैट्रिक समेत 5 विकेट लेकर नंदिनी ने अपनी काबिलियत का प्रमाण भी दे दिया। इस लाजवाब हुनर के दम पर ही नंदिनी को अब वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिली है। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर नंदिनी क्रिकेट की दुनिया में लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। उनकी कामयाबी अब गांव के हर बच्चे के सपने को उड़ान दे रही है। इस गांव का हर बच्चा अब नंदिनी जैसा ही एक कामयाब क्रिकेटर बनना चाहता है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है? यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए, और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो? क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: धाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, रोजाना पहुंच रहे करीब 33,000 भक्त। देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। गुजरात के जामनगर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने की विशेष पहल, पक्षियों के लिए खास फव्वारे का इंतजाम, 481 से ज्यादा बेजुबानों को मिल रही राहत। हिमस्खलन के बीच बीआरओ के प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का रास्ता खुला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है 7 अच्छी खबरों का, यानी 7 गुड न्यूज आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज सबसे पहले आपको बता देते हैं, और वो ये है कि सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार भी लड़कियों ने परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। ऐसे में आज की सबसे पहली गुड न्यूज यानी गुड न्यूज नंबर 1, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी पासी। लड़कियों ने एक बार फिर से सीबीएसई की परीक्षा में लड़कों को पछाड़ दिया है। लड़कियों ने इस बार परीक्षा में बाजी मारी। 12वीं की परीक्षा में 88% से ज्यादा लड़कियां पास हुई, वही लड़कों का पास प्रतिशत रहा 82%, यानी 12वीं की परीक्षा में लड़कों के मुकाबले 6% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। जहां तक कुल पास करने वालों की संख्या की बात है तो इसमें 85% से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा पास की है, और पिछले साल से थोड़ा कम है। इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट त्रिवेंद्रम रीजन का रहा, 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर पास हुए, वहीं प्रयागराज रीजन में 72.43% रिजल्ट रहा है।
12: देश भर में लाखों सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा के परिणामों के लिए सबर आज पूरा हुआ। सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर जो अपने रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए। इसी बीच देखा गया कि 85.20% इस बार का पास जो परसेंटेज है वो रहा, और इस बार लड़कियों ने बाजी मारी। अगर लड़कियों की बात की जाए तो 88.86% जो लड़कियों का पास परसेंटेज रहा, और वहीं दूसरी तरफ लड़कों का अगर पास परसेंटेज देखा जाए तो 82.13% रहा। यहां लड़कियों ने बाजी मार ली। और अगर बात की जाए रीजन के हिसाब से तो रीजन के हिसाब से तिरुवनंतपुरम केरला में सबसे ज्यादा पास परसेंटेज नोट किया गया है, यानी कि 95% से ऊपर का पास परसेंटेज वहां पर नोट किया गया। और वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो वहां 72% के आसपास जो पास परसेंटेज है वो रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 18 लाख विद्यार्थियों ने CBSE की 12वीं की परीक्षाएं दी थी। CBSE देश का सेंट्रल और सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है, और अब परीक्षाओं के बाद देखा जाएगा जो विद्यार्थी हैं आने वाले समय के लिए UG में और जो अन्य कोर्सेज हैं उसके एंट्रेंस की तैयारियां अपनी शुरू करेंगे।
11: 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं, और इस बार 94,000 से ज्यादा छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक स्कोर किया है। वहीं 17,000 से ज्यादा बच्चों ने 95% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। अमेठी स्कूल में बच्चे रिजल्ट के बाद बेहद उत्साहित नजर आए।
13: हेलो मैम, रिजल्ट सिर्फ बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुश होने का मौका नहीं देते, बल्कि ये मौका खुशी का होता है टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए भी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ कितनी मेहनत पूरे साल की होती है। फिलहाल पहले हम बच्चों से बात करते हैं, कितने मार्क्स हैं आपके, कौन सी स्ट्रीम थी?
14: PCB ली थी, 97.2 आया।
13: कितना रोल आपकी इस जर्नी में, आपके इन मार्क्स में टीचर्स का रहा?
14: टीचर्स का काफ़ी बिग रोल था, बिकॉज काफ़ी टाइम पढ़ते पढ़ते आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, सो उस समय अगर आपके पास प्रॉपर सोशल सपोर्ट हो, प्रॉपर टीचर्स जो आपको गाइड कर सके, सो उस समय बहुत हेल्पफुल होता है।
13: आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल था जिसमें आपको टीचर से गाइडेंस सबसे ज़्यादा लगी?
14: मेरे लिए फिजिक्स काफ़ी मुश्किल था, उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, सो उसमें मेरी टीचर्स और मेरे कोचिंग के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स सब ने बहुत हेल्प की।
13: कितने मार्क्स आए आपके?
14: 98.8% आए, साइंस स्ट्रीम था।
13: इतने मार्क्स बताना एक बार सब्जेक्ट वाइज।
14: फिजिक्स में 88 थे, 98 इन केमिस्ट्री, 98 इन इंग्लिश, 99 इन साइकोलॉजी एंड स्कल्पचर में 100।
13: इस मार्क्स में, इस जर्नी में कैसा रोल रहा टीचर्स का? क्या कभी टीचर्स से परेशान हुए, कितना पूछते हो तुम, कितना पूछते हो, कितने डाउट्स थे तुम्हारे?
14: टीचर्स का तो काफ़ी ज़्यादा ही रोल रहता है, हम घर पे बैठ बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो फिर दे हेल्प अस विद द रिसोर्सेज।
11: आगे बढ़ते, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन के साथ केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री हो या यमुनोत्री, हर जगह पर अच्छी संख्या में यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। आज की हमारी गुड न्यूज नंबर 2 भी यही है। चारधाम में भक्ति का महासंगम, 12 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा आस्था और अटूट विश्वास के साथ चल रही है। यहाँ मौसम भी श्रद्धालुओं का साथ दे रहा है, पहाड़ों पर हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। हालांकि पहाड़ों पर बारिश अपने से थोड़ी मुसीबत भी लाती है, लेकिन इस सब के बीच भक्तों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता है जोश और हाई हो जाता है, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ रहा है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को यात्रा के लिए खोल दिए गए थे, और अब तक यहां पर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मौसम चुनौती जरूर पेश कर रहा है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है।
15: बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं, अब तक 3,02,000 श्रद्धालु 20 दिनों में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। लगातार सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुबह से शाम तक बद्रीनाथ धाम जाने और आने वाली गाड़ियों का लगातार रेला देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो उत्साह है वो बद्रीनाथ धाम में अलग ही देखने को मिल रहा है। वहीं जहां मौसम लगातार बना हुआ है, इस समय मौसम पूरी तरह से सुहाना है। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट 2 दिनों का जारी किया था, लेकिन मौसम ने राहत दे दी है, मौसम पूरी तरह से सुहाना है, धूप खिली हुई है। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम में बेहतर व्यवस्थाएँ, और जो बद्रीनाथ धाम है हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। बीते दिन ही 18,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुँचे थे, लगातार 16,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुँच रहे हैं, जिसका उत्साह दिखाई दे रहा है।
11: आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में एक नई पहल का आगाज हुआ है। यहां अब श्रद्धालुओं और आम लोगों को बेहद कम खर्च में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। गुरुद्वारा के पॉलीक्लिनिक में नई एंडोस्कोपी यूनिट और मिनी ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई, जिसमें जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। और ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 3 भी यही है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में गरीबों के लिए मिनी अस्पताल, गुरु हरकृष्ण पॉली क्लिनिक में नई एंडोस्कोपी यूनिट और मिनी ऑपरेशन थिएटर शुरू हुआ है, जिसमें मरीजों के छोटे मोटे ऑपरेशन किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यहां पर आंखों के इलाज के लिए भी अत्याधुनिक आई केयर यूनिट्स लगाने की योजना है।
16: दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरु किशन जी का वो दरबार जहां सेवा, समर्पण और मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां हर दिन हजारों लोग आस्था के साथ पहुंचते हैं और जहां धर्म के साथ इंसानियत की भी मिसाल कायम है। इस पवित्र और पावन जगह पर सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों के लिए अब गुरु हरकृष्ण पॉली क्लिनिक में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
13: सिटी स्कैन, MRI, फिजियोथेरेपी जैसे तमाम सुविधाएं यहां पर पहले से मौजूद थी, लेकिन अब यहां पर एक नई यूनिट भी खुल गई है, माइनर OT इसका नाम दिया गया है, मतलब छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं वो भी अब यहां पर करना आसान हो गया है, संभव हो गया है। लगभग 25 से 30 जो माइनर OTs होती हैं, जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, उन्हें यहाँ पर आसानी से अंजाम दिया जाएगा। और इंडोस्कोपी भी अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इंडोस्कोपी की नई मशीन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यही वो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर लगभग 25 से 30 छोटी छोटे जो ऑपरेशन होंगे।
16: बंगला साहिब गुरुद्वारे में नई एंडोस्कोपी यूनिट और मिनी ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई है, जिसकी खासियत है कि यहाँ बेहद कम खर्च में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इतना ही नहीं, उन्हें किफायती दरों पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
17: अगर हम बात करें तो लोग बंगला साहब गुरुद्वारे बड़ी एक उम्मीद से आते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास बजट नहीं होता, फाइनेंशियली डायग्नोस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये डायग्नोस की अगर बात करें, ये बाहर अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली 8-10 हजार रुपए से शुरू होकर अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर 25-30 हजार के अंदर होती हैं, जो कि यहाँ पर मात्र सिर्फ 1000, 1000 रुपया इंडोस्कोपी की फीस है और 500 रुपये डॉक्टर की फीस है, सिर्फ 1500 रुपये के अंदर आपको ये वाली फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।
16: सिख परंपरा में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन लगातार लोगों के लिए नई सुविधाएं जोड़ रहा है। अब तक जहां यहां लंगर और सामाजिक सेवा के जरिए लाखों लोगों की मदद की जाती रही है, वहीं अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है।
17: जो मिनी ऑपरेशन थिएटर यहाँ शुरू किया गया है, इसमें जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं 25 से 30 किस्म की हमारे पास लिस्ट है, वो सारे ऑपरेशन यहाँ सीनियर सर्जन्स के द्वारा होते हैं।
16: हालांकि बंगला साहिब के पॉली क्लिनिक में पहले से ही CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी और लैब टेस्ट जैसी सुविधाएं 50 रुपए की कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन अब नई एंडोस्कोपी यूनिट जुड़ने से मरीजों को और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
18: अब तो बिल्कुल पैसे से कुछ भी लगते नहीं है यहाँ पर, अपने दवाई लेने जब भी आते तब यहीं पर आते हैं, हमेशा यहाँ सुख सुविधाएं सभी मिलती हैं।
16: इतना ही नहीं, सेवा और मानवता का ये भाव केवल यहीं तक सीमित नहीं है। बंगला साहिब से जुड़ी इस संस्था का लक्ष्य आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक बेहतर इलाज पहुँचाया जा सके। गुरु हरकृष्ण पॉली क्लिनिक में अब अगला बड़ा कदम आंखों के इलाज से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ाया जा रहा है।
17: अब हम बहुत जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यहां पर आईज का कंप्लीट यूनिट इंस्टॉल होने जा रहा है, जिसके अंदर
13: इंक्लूडिंग सर्जरी
17: जिसमें कैटरेक्स का भी होगा, और जो सबसे मेन चीज, दिल्ली NCR नहीं, बहुत सारी जगह पर जो लेंस के नाम के ऊपर बहुत महंगे महंगे लेंस लगाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी मर्जी लेवल लेंस होगा, किसी भी लेवल का, वो मात्र यहाँ 3-3.5 हजार के अंदर हम लोग वो लेंस जो है, वो ऑपरेशन जो है, वो संगत के लिए, पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे।
16: गुरुद्वारे में इस पहल का मकसद उन लोगों तक बेहतर चिकित्सा पहुंचाना है जो महंगे अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में यहां सेवा भावना के साथ जरूरतमंद मरीजों को राहत और बेहतर जीवन देने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि एक साल तक सोना खरीदने से परहेज करें और इसके बाद बाजारों में बिना सोने वाले गहनों की मांग बढ़ गई है। जयपुर में लोग अपने सोने की जगह आर्टिफिशियल गहनों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज यही है। सोने पर संयम बढ़ रही, बिना सोने वाली गहनों की डिमांड। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है जो लोगों को लुभा रही है, लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।
19: प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर दिखने लगा है। इसी अपील के साथ लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड भी बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और चमक में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नज़र उस विकल्प पर टिकी है जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित है। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक देती है पर जेब पर बोझ नहीं डालती।
20: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज करवाने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें, और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
19: प्रधानमंत्री की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ी है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडी होने से ज्यादा पसंद की जा रही है। इन्हें शादी, पार्टी में या रोजाना पहना जा सकता है, या यूं कहें कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात। गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीदी जा सकती है।
21: ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो बेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है। इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए और हम बनाते भी है फोटोग्राफी के हिसाब से, ये बहुत रिच लुक देती है।
19: गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी ही दिखती है।
22: ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप तीन तीन चार चार साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1,00,000-2,00,000 में आता है, ये फर्क तो आता ही है ना।
19: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल गहने मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
23: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं और दूसरा सेफ रहता है, ट्रैवल में अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता।
19: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है। ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुजरात का गीर शेरों के लिए विख्यात है लेकिन अब गीर एक और वजह से फेमस हो रहा है और वो वजह है यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट। थ्रेड आर्ट में छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें तैयार की जा रही हैं। ऐसे में आज की पांचवी गुड न्यूज भी यही है, धागों की दुनिया में धागों के शेर। थ्रेड आर्ट से कलाकार अद्भुत कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं जो न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही बल्कि कई युवाओं को रोजगार भी दे रही है।

0: महादेव, बजरंग बली, सोमनाथ, गणपति बप्पा और शेर की ये अद्भुत तस्वीर किसी रंग या पेंट से नहीं बल्कि हजारों छोटी कीलों और रंगीन धागों से तैयार की गई है, जिन्हें गुजरात के गिर शासन क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। ये एक खास थ्रेड आर्ट है जो इन दिनों लोगों को खूब आकर्षित कर रही है।
1: जैसे कि लायन का है, गणेश जी का है, श्री कृष्ण का है, महादेव जी का है और अलग अलग सभी देवी देवताओं का, राष्ट्रीय पुरुषों का, महापुरुषों का, संत पुरुषों का, सभी ऑफिशियल कंपनी के सब लोगोज होते हैं, तो कस्टमाइज कोई बनवाता है स्पेशल, तो सब हम बनाते हैं। और यहाँ तो पूरा गिर है, तो गिर में घूमने के लिए जो पर्यटक टूरिस्ट आते हैं तो ज्यादातर तो हमारा यहाँ पे लायन चलता है।
0: गिर शासन में पिछले 20 से 25 सालों से ये खास थ्रेड आर्ट बनाई जा रही है। इस कला में लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीलें लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर एक खूबसूरत तस्वीर तैयार की जाती है।
1: छोटी वाली कील होती है तो इसे वन बाय वन ऐसे पकड़ के ऐसे लगाते हैं, बराबर है ऐसे, फिर उसके बाद ये थ्रेड का वर्क होता है जो हमारी यही मेथड रहती है। तो ऐसे वन बाय वन थ्रेड में भी थ्रेड से ऐसे वर्क करते हैं, जैसे कि ये यहाँ से किस इसको आकार कितना क्या देना है, बराबर है, और कौन सा मूड है जो लायन का वो हम बना रहे हैं, तो सब अलग अलग मोमेंट होता है।
0: इस कला की सबसे खास बात यह है कि इसमें धैर्य, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है, लेकिन जब ये तस्वीर तैयार होती है तो ये किसी 3D आर्ट से कम नहीं लगती।
1: ये लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर, तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेके बड़ी तक, मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर हम बनाते हैं।
0: थ्रेड आर्ट अब गिर की एक खास पहचान बन गई है। कलाकारों का दावा है कि इस तरह की अनोखी थ्रेड आर्ट भारत में सिर्फ गिर शासन में ही बनाई जाती है, और इतना ही नहीं, पर्यटक भी इस कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसे गिर की सांस्कृतिक पहचान के तौर पर लेकर जाते हैं। गिर शासन से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: महाराष्ट्र के विदर्भ में पारा आसमान छू रहा है। अकोला में तपिश का इतना कहर है कि पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में पेड़ों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए निकाला है वृक्ष संजीवनी रथ। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज यही है, पेड़ों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए निकला वृक्ष संजीवनी रथ। पेड़ों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है संजीवनी रथ, और इस रथ पर सवार कुछ लोग पेड़ों को बचाने के लिए तपती सड़कों पर उतरकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं।

0: महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला में आसमान से आग बरस रही है। अकोला में तो तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसी तपती और झुलसती गर्मी के इस दौर में आम लोग तो घरों में बंद होकर अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन पेड़ों और पौधों के सामने उनके झुलसने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अकोला में पिछले 50 सालों से पेड़ पौधों की रक्षा में जुटा अकोला गार्डन क्लब सामने आया है। शहर में सक्रिय अकोला गार्डन क्लब ने इस संकट की घड़ी में अनोखी पहल शुरू की है। गार्डन क्लब ने एक विशेष वृक्ष संजीवनी रथ तैयार किया है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर भीषण गर्मी में पेड़ों को पानी देकर उन्हें राहत प्रदान कर रहा है।
1: हम फिलहाल एक गौरक्षण रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि दोपहर के समय इस रोड पर जो है धूप के कारण सन्नाटा है, लेकिन एक जो गार्डन क्लब के जो व्यक्ति है, जो उनके पदाधिकारी है, जो अपना वृक्ष संजीवनी रथ लेकर जो लगाए जो पेड़ है उन्हें संजीवनी देने के लिए धूप में जो है, कड़ी धूप में जो 45 डिग्री की धूप में जो है वो यहाँ पर उसे पानी देने का काम कर रहे हैं।
0: तपती दोपहरी में जब 12-42 डिग्री के पार होता है, तब भी क्लब के सदस्य सड़कों पर निकलकर पेड़ों की जड़ों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। उनका साफ कहना है कि जो पेड़ हमें छांव और ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है।
2: अकोला गार्डन क्लब पिछले 53 वर्ष जूनी संस्था है और हर साल पर्यावरण के लिए, गार्डन के लिए, फ्लावर के लिए काम करती है, निरंतर काम करते आई है संस्था। हम सिर्फ बारिश में वृक्षारोपण ही नहीं करते, बारिश में लगाए हुए वृक्षों को, पौधों को, हमारे अकोला जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला शहर माना जाता है, उसी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगाए हुए झाड़ों को हर एरिया में, हमारी अकोला गार्डन क्लब का वृक्ष संजीवनी और जाता है और वहाँ पानी देके उन वृक्षों को जीवन दान देता है ताकि वो वृक्ष बड़े हो।
0: अकोला में पिछले कई सालों से तेजी से कंक्रीटीकरण हुआ है। इसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है। जितने पेड़ काटे गए हैं उतने पेड़ लगाए नहीं गए हैं। ऐसे में हर साल यहाँ गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण यहाँ के जलाशयों का पानी भाप बनकर उड़ता जा रहा है और जमीन के भीतर के जल स्रोत भी तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में संजीवनी रथ के जरिए पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में नए पेड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन जो पेड़ पहले से लगे हैं उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। अगर ये पेड़ सूख गए तो आने वाले समय में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। ऐसे में अकोला गार्डन क्लब के वृक्ष संजीवनी रथ की ये पहल उम्मीद की किरण जगाती है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल को संभल कर खर्च करने की नसीहत दी है। उनकी इस अपील का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। आज की हमारी सातवीं गुड न्यूज यही है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए पीएम की अपील का असर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर आम लोगों पर भी खूब हुआ है। पीएम की अपील के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल ने अपनी सरकारी गाड़ी की जगह साइकिल से कोर्ट पहुंचने का फैसला किया। जबलपुर में जस्टिस बंसल ने पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश देते हुए आज साइकिल से वो कोर्ट पहुंचे। जस्टिस बंसल शहर की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाते नजर आए। जस्टिस बंसल ने सिविल लाइन्स के पंचपेड़ी स्थित सरकारी आवास से एमपी हाईकोर्ट तक का सफर आज साइकिल से तय किया। इस दौरान कोर्ट के कर्मचारी भी ने भी बैग, टिफिन और अन्य जरूरी कागजात लेकर जस्टिस बंसल के साथ साइकिल पर ही सफर किया। जस्टिस बंसल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की प्रेरणा से साइकिल चलाने का हवाला दिया और लोगों से भी तेल की बचत करने और साइकिल चलाने का आह्वान किया।
4: चले, चले।
3: तो ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
3: बचत का कटौती वाला फॉर्मूला, काफिले में कटौती देश के लिए नजीर, घूम लो अपना देश भूल जाओगे विदेश, दुआ के अलावा दवा का इंतजाम, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, रोजाना पहुंच रहे करीब 35,000 भक्त। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। जनता की जेब पर असर डालने वाली बड़ी खबर, अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम, कल से लागू होगी नई कीमतें। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास, 17,000 से अधिक छात्रों को मिले 95% नंबर। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक सफल, लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हटाई बर्फ, पर्यटन व्यापार का फिर से खुला रास्ता।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर पेश कर दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए लोग ये दावा कर रहे हैं कि मेरठ में 6 मस्जिदों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया, एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में आग लगा दी गई। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों की भीड़ अफरा तफरी में इधर उधर भागती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर तोड़फोड़ करते भी दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती इस रिपोर्ट में।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करते हुए सत्ता पर काबिज हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों की भीड़ अफरा तफरी में इधर उधर भागती नजर आ रही है। कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में काफी शोर शराबा भी सुना जा सकता है। फेसबुक पर वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में आज गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी वालों को मार रहे हैं और टीएमसी वाले बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव से राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वीडियो में लोगों की भीड़ अफरा तफरी में इधर उधर भागती नजर आ रही है। कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर इस नजारे को देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ये जानकारी हाथ लगी कि वीडियो किसी फ्लाईओवर के ऊपर से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक बाइक भी नजर आती है, जिसकी नंबर प्लेट पर बांग्ला में कुछ लिखा है, जबकि भारत में नंबर प्लेट पर अंग्रेजी में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि कहीं और का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में हमें यहां वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। अगर वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और

0: पश्चिम बंगाल से जोड़कर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक बांग्लादेशी फेसबुक यूजर के अकाउंट पर पहुंचे, जहां 26 अप्रैल की पोस्ट में ये वीडियो मिला। बेहतर क्वालिटी वाले इस वीडियो में राइडर 89 नाम का एक लोगो नजर आता है। राइडर 89 एक बांग्लादेशी अकाउंट है। इस यूजर ने 24 अप्रैल को ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिस पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इसने 26 अप्रैल को एक बार फिर यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है। अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो में मछली की एक दुकान भी नजर आती है। सर्च करने पर पता चला कि ये दुकान बांग्लादेश के ढाका में है। हमें गूगल मैप्स की स्ट्रीट व्यू पर भी ये लोकेशन मिल गई। इसमें हूबहू वही सड़क और बिल्डिंग नजर आ रही है, जैसी वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के ढाका का है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है।
0: सोशल मीडिया पर दो गुटों के बीच लड़ाई का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां 6 मस्जिदों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में आग लगा दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक मकान की छत पर चढ़े हुए हैं, जहां वो पैर के जोर से छत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे भी काफी लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब कुछ खत्म करने के इरादे से एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां 6 मस्जिदों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर हो रहा है।
0: सोशल मीडिया पर दो गुटों के बीच लड़ाई का ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां 6 मस्जिदों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया। एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में आग लगा दी गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जाँच शुरू की। सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हाल फिलहाल में मेरठ में ऐसी कोई घटना हुई है। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। साल 2025 में मेरठ में 6 मजारों को तोड़ने का एक मामला सामने आया था। फलावदा थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने करीब 6 मजारों को तोड़ दिया था। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। SDM और CO ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया था। अब नगर पंचायत ने क्षतिग्रस्त मजारों को ठीक भी करवा दिया था। वायरल वीडियो का उस घटना से कोई संबंध नहीं मिला। इसके अलावा हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। अब पहला सवाल है, अगर ये दावा सही है तो वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई? और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की हकीकत क्या है।
1: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी, लेकिन सर्च के दौरान हमें ना तो मस्जिदों को ध्वस्त करने की कोई हालिया विश्वसनीय रिपोर्ट मिली, ना ही एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में आग लगाने की कोई खबर मिली। अगर सच में इस तरह की कोई घटना हुई होती तो उससे जुड़ी कोई ना कोई न्यूज रिपोर्ट जरूर मौजूद होती। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के एक रीजनल चैनल के एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 9 मई 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के अनुसार हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती पर दो पक्षों में हिंसक झड़प। हमें दावे से जुड़ी एक

0: रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 10 मई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार हापुड़ के साठा चौरासी क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के समापन के बाद गांव देहरा में पुलिस की मौजूदगी में हालात बिगड़ गए। ड्रोन और फोर्स तैनात होने के बावजूद करीब 20 मिनट तक जमकर पथराव हुआ। उपद्रवी घरों की छतों पर चढ़ गए और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने महिलाओं से अभद्रता और मारपीट का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट में वायरल वीडियो के की फ्रेम मौजूद है। 10 मई 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ के साठा चौरासी क्षेत्र में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन वहां का माहौल देखते ही देखते बिगड़ गया और तनावपूर्ण हो गया। कुछ युवकों के बीच मामूली कहासुनी ने पूरे माहौल को उपद्रव की आग में झोंक दिया। उपद्रवियों ने सड़क निर्माण के लिए डाले गए पत्थरों को हथियार बना लिया और आधे घंटे तक लगातार पथराव चला। वाहनों से लेकर दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ हुई और कई दुकानदारों ने लूटपाट के आरोप लगाए। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट हापुड़ पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मिली। पोस्ट को 10 मई 2026 को किया गया था। कैप्शन के अनुसार, थाना धौलाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ग्राम देहरा में शोभा यात्रा के दौरान आपस में हुई पत्थरबाजी की घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार एवं संदेह के आधार पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तोड़फोड़ और हिंसा करते लोगों के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। माहौल बिगाड़ने के इरादे से मनगढ़ंत और फर्जी पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मेरठ में ना तो 6 मस्जिदों को ध्वस्त किया गया और न ही किसी को जलाने जैसी घटना वहां हुई है। वायरल हो रहा वीडियो असल में हापुड़ का है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये वीडियो उसी दौरान दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी की घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में रखते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
3: बचत का कटौती वाला फॉर्मूला, काफिले में कटौती, देश के लिए नजीर। घूम लो अपना देश, भूल जाओगे विदेश। दुआ के अलावा दवा का इंतजाम, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: हर वक्त चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
11: इन दिनों सोशल मीडिया पर कर्नाटक के एक बच्चे ओमेन की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस बच्चे ने अपने हुनर से बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया है। ओम ने दीवार के सहारे सिर के बल खड़े होकर यानी शीर्षासन मुद्रा में बेहद कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्त्रोतम का पाठ किया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

जिसे देखकर नेटिजन्स दंग रह गए हैं। सिर्फ 8 साल की उम्र में ओम ने पूरे स्त्रोत को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर के बल खड़े होकर संस्कृत के मंत्रों का इतना तेज और शुद्ध उच्चारण करना बेहद मुश्किल होता है।

0: क्योंकि इसके लिए सांसों पर जबरदस्त काबू और शरीर का संतुलन चाहिए होता है। कर्नाटक के सिरसी के रहने वाले ओम की इन उपलब्धियों को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस बच्चे के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी इस बच्चे के डांस स्किल के मुरीद हो गए हैं। वीडियो क्लासरूम का बताया जा रहा है, जहां टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। इन सब के बीच इस बच्चे ने अपने बेहतरीन डांस स्टेप से माहौल में रोमांच भर दिया। एक्सप्रेशंस और परफेक्शन के मेल से इसने लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है। वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी हुई है। बच्चा मजे से पानी में खेल रहा है और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया है, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के बारे में कितना सोचती है। ऐसी चिंता और ऐसा ख्याल तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। जिस बहन ने बाप की तरह भाइयों को संभाला, आज उन भाइयों ने भी अपना फर्ज कुछ ऐसा निभाया कि पूरी दुनिया रो पड़ी। लुधियाना के अमर देवगन और देव देवगन ने अपनी बहन मनप्रीत कौर बिरदी के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जुबान पर। दरअसल साल 2007 में पिता के गुजर जाने के बाद मनप्रीत ने चट्टान की तरह खड़े होकर अपने भाइयों और परिवार को संभाला था। भाइयों के दिल में बहन के इस निस्वार्थ प्रेम के लिए जो इज्जत थी, वो 50 लाख के इस आलीशान घर की शक्ल में बाहर आई। वायरल वीडियो के मुताबिक दोनों भाई पिछले 5 साल से चुपचाप इस सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे, ताकि अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी दे सकें। सरप्राइज का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक धार्मिक कार्यक्रम के बहाने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे परिवार को लुधियाना के कोट मंगल सिंह इलाके में ले जाया गया। वहां 175 गज में बने नए घर के सामने जैसे ही भाइयों ने नेम प्लेट से कागज हटाया और उस पर बहन मनप्रीत का नाम चमकता दिखा, तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। अपनी आंखों के सामने अपना खुद का घर देखकर मनप्रीत अपने जज्बातों को काबू में नहीं कर पाई और भाइयों को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं ही दिखता है, और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर है। स्कूल की दीवार पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या कभी आपने ऐसी बारात देखी है जो सीधे आसमान में उड़ते विमान के अंदर ही निकली हो? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता नजर आ रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान के अंदर कई लोग शादी के जश्न में डूबे हुए हैं। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल इतना जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है मानो प्लेन नहीं बल्कि कोई शादी का बैंकेट हॉल उड़ रहा हो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बचत का कटौती वाला फॉर्मूला, काफिले में कटौती देश के लिए नजीर। घूम लो अपना देश, भूल जाओगे विदेश। दुआ के अलावा दवा का इंतजाम। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: यात्रा के दौरान किन ग्रहों को देखना जरूरी है? यात्रा के दौरान अपने साथ कौन सी चीज नहीं ले जानी चाहिए, और यात्रा करने के पहले ऐसा क्या उपाय करें कि यात्रा सुखद हो? क्या है यात्रा को सफल और सुखद बनाने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज अच्छी और सच्ची खबरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से काफिले में कटौती जो की गई है वो किस तरीके से एक नजीर बन रही है आपको बताएंगे। आगे घूम लो अपना देश भूल जाओगे विदेश, हम आपको GNT पर दिखाएंगे भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और एक छत के नीचे दुआ भी और दवा भी, बंगला साहिब गुरुद्वारा में मिनी अस्पताल की शुरुआत। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने दर्शन किए। देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने किया अमल। केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम। पीएम के काफिले में होती हैं 1.5 दर्जन गाड़ियां। जनता की जेब पर असर डालने वाली खबर। अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम। कल से लागू होंगी नई कीमतें। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। 85% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास। 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले 95% नंबर। बीस मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति। मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास। 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अपील की। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील की थी। इस अपील के साथ ही अब खबर यह आई है कि खुद पीएम ने अपने काफिले में 50% की कटौती कर दी है और वो भी सुरक्षा से कोई समझौता किए बगैर। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस अपील पर अमल करते हुए काफिले को छोटा करना शुरू कर दिया है।

0: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना,
1: पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने ये अपील देशवासियों से की तो इसकी चर्चा हर तरफ हुई। इस चर्चा के बीच ही प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने मिसाल पेश करते हुए अपने काफिले को छोटा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम के काफिले में 50% की कटौती की गई है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छा जताई कि उनके सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी गाड़ियों को जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। पीएम के आदेश के बाद एसपीजी ने निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग कर ये बदलाव लागू किया जाएगा। हालांकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ब्लू बुक में निर्धारित जरूरी सुरक्षा दिशा निर्देशों से कोई समझौता न हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है, लगभग 50% के आसपास गाड़ियों की संख्या जो है कम की गई है उनके द्वारा। हालांकि अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा में किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की ब्लू बुक के आधार पर एसपीजी के द्वारा किया जाता है, जिसमें एसपीजी सुरक्षा में किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर रही है।
1: वैसे औसतन प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की तादाद 30 से 35 के बीच में ही रहती है। हालांकि जब वो दिल्ली में चलते हैं तो काफिले में गाड़ियों की संख्या अमूमन कम होती है। गाड़ियों की तादाद जगह और कार्यक्रम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी होती है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के क्रम में चलती है। इस काफिले में प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ मुख्य कार जैसे मर्सिडीज मेबैक, रेंज रोवर सेंटिनेल या बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, पायलट वाहन, एसपीजी सुरक्षा गाड़ियां, जैमर, एम्बुलेंस, डमी कार और सपोर्ट वाहन शामिल होते हैं।
2: एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। आज हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे, उस दौरान कैबिनेट मीटिंग के लिए जो मंत्री पहुंचे थे उन्होंने अपनी गाड़ियों की संख्या में काफ़ी कम गाड़ियां रखी, और उसके साथ साथ उनके द्वारा ये कोशिश और एक तरीके का मैसेज दिया जा रहा है कि अब देश के जो बड़े नेता हैं वो भी अपने गाड़ियों की संख्या में काफ़ी कमी कर रहे हैं।
1: पीएम ने आगे बढ़कर देशवासियों के सामने नजीर पेश की तो उनके कैबिनेट के मंत्री भला कहां पीछे रहते। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिना वक्त गवाए अपने अपने काफिले को छोटा कर दिया, वो भी सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना। ईंधन बचत को लेकर पीएम की अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखा जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली से ही सामने आई, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिसके बाद मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफिस पहुंचे।
3: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यह निर्णय लिया गया, यह निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है।
1: बात अगर दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की करें तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, एमपी से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर राजस्थान तक मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों ने पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए या तो काफिले को घटा दिया या फिर ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जहां बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, वहीं एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में अब 13 की बजाय 8 गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। वहीं पीएम की अपील के बाद गुजरात से खबर आई है कि राज्यपाल ने अपनी हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है, जबकि उप मुख्यमंत्री ने भी विदेशी दौरा रद्द कर दिया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1, एस्कॉर्ट 2 गाड़ी और साथ ही में बीच में वीआईपी यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस। लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पर तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव में, जहां वो लाडली बहना योजना की जो राशि है वो हितग्राही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और उसी कार्यक्रम के जब आप मुख्यमंत्री निकले तो लंबे चौड़े काफिले के इतर आज एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली है।
1: पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की है, जिसके बाद सवाल ये है कि लोग शादी या फिर किसी दूसरे फंक्शन के लिए कौन सी ज्वेलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो सोने का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और लोगों की जेब पर भी बोझ नहीं डालती।
5: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज कराने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
6: मैम मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब मेरे को अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
7: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है और ये बिल्कुल रियल क्वालिटी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देखकर और लेकर।
8: ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप 3-4 साल पहनी कुछ खराब नहीं होती है ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1,00,000-2,00,000 में आता है, ये फर्क तो आता ही है ना।
1: वैसे तो पीएम की अपील से पहले भी लोग आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी अपील के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल मिलाकर अगर 140 देशवासियों ने पीएम मोदी की अपील पर अमल किया तो किसी भी संकट से पार पाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए प्रधानमंत्री की एक और अपील की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभी फिलहाल विदेश यात्रा जाने से बचने की अपील की है। तो ऐसे में जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए अपने ही देश में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में हम आपको बताते हैं।

0: खूबसूरत पहाड़, हरे भरे रास्ते और शांत वातावरण। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी अगर ऐसी जगह पर परिवार संग घूमने का मौका मिले तो भाई कहना ही क्या। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें विदेश के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नहीं बल्कि अपने ही देश की हैं। पहले बात देवभूमि उत्तराखंड की, जो तीर्थाटन के अलावा पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है। चमोली जिले का माणा गांव, फूलों की घाटी, स्की रिजॉर्ट ओली और देवताल जैसे कई पर्यटन स्थल जो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकते हैं।
1: जो देश से विदेश घूमना चाहते हैं, जो अब विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है, ऐसे में हर कोई आप अपनी जो विदेशी यात्रा है, विदेश में घूमने का कार्यक्रम है, उसे कैंसिल करेंगे। लेकिन वो आप उत्तराखंड की अलग अलग वादियों में आ सकते हैं, खासकर चमोली जनपद की अगर हम बात करें। अगर चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित तमाम अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, खासकर ट्रैकिंग के जो शौकीन हैं, खासकर जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस समय सबसे बढ़िया उत्तराखंड का चमोली जनपद है।
0: वैसे आमतौर पर लोग मशहूर पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन साल दर साल ऐसे पर्यटन स्थलों पर भीड़ काफी बढ़ी है, लिहाजा धीरे धीरे लोग ऐसी जगहों पर घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं।
2: जो हमारे चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आप माणा पास, माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी उस वहाँ पे हुई थी और वे ऐसा भी वो ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पर जाएँ जहाँ पर पर्यटकों के लिए एक नई चीज़ मिले।
0: चमोली की तरह ही बागेश्वर में भी घूमने फिरने की कई जगह हैं। कोसानी और बैजनाथ इन्हीं में से एक है, जहां शांत हरी भरी वादियां और सुकून भरे वातावरण के बीच झील भी है। यहां बैजनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का मजा भी आप ले सकते हैं।
3: बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहां पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहां पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहां आइए।
0: इसी तरह देश के एक पूर्वी राज्य झारखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सिर्फ खनिज संपदा ही बहुतायत में नहीं है बल्कि समृद्ध आदिवासी संस्कृति और हरी भरी पहाड़ियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में मौजूद पतरातु घाटी एक बेहद खूबसूरत और घुमावदार पहाड़ी रास्ता है। ये रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये अपनी हरियाली, घुमावदार सड़कों और पतरातु डैम के लिए काफी फेमस है। अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता के लिए इसे झारखंड का मनाली कहा जाता है। तो अगर आप भी भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून भरे पलों को बिताना चाहते हैं तो पतरातु वैली आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है।
4: झारखंड का डिजिटल फुटप्रिंट बड़ा छोटा था, अपने लोगों के माध्यम से, अपने स्टेट के डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से हम लोगों ने इस दिशा में पहल की है और हमें उम्मीद है कि इसके बड़े सुखद नतीजे आएंगे। जो राज्य आज डिजिटल फुटप्रिंट के लिए परेशान है, हमारे डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से हम लोग एक सशक्त उपस्थिति पूरे हिंदुस्तान में दर्ज करेंगे और आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन भी एक नई ऊंचाई में कुछ होगी। 2019 से लेकर 2026 तक में पतरातु में टूरिस्ट का फुटफॉल 3 गुना बढ़ चुका है और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि सरकार की नीतियां, तमाम आप जैसे लोगों के प्रचार और प्रसार ने पतरातु को झारखंड के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया है। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें और भी दिखेंगी।
0: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है, जिसके बाद कई लोग विदेश यात्रा रद्द कर अब वेकेशंस के लिए देश के अंदर ही ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड और झारखंड के पर्यटन स्थल आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चमोली से कमलन सिलोड़ी, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात एक ऐसी छत की जिसके नीचे सच्चे मन से की गई दुआ भी सुनी जाती है। जरूरतमंदों को मुफ्त दवा और इलाज भी मिलता है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में लंबे समय से एक मिनी अस्पताल चल रहा है, जहां बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को रोगों से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। महज 50 रुपए में MRI की सुविधा वाले इस पॉलीक्लिनिक में अब माइनर OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर की सुविधा शुरू की गई है, जहां पर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी जैसे 25 से ज्यादा छोटे ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

0: दिल्ली में सिख धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये पवित्र धार्मिक स्थल सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी की स्मृतियों से भी जुड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल पर सच्चे दिल से मांगी गई दुआ सुनने के अलावा दवा का भी इंतजाम होता है। यहाँ चलने वाला गुरु हरिकृष्ण पॉली क्लिनिक सस्ते इलाज के जरूरतमंदों के लिए समानता, सेवा और प्रेम का प्रतीक बन चुका है। मुफ्त दवा या सस्ते इलाज की फेहरिस्त में छोटी मोटी सर्जरी के लिए माइनर ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा शुरू हो गई है, जहां एंडोस्कोपी के लिए लाखों रुपए की नई मशीन भी लगाई गई है।
1: गुरुद्वारे में लोग मत्था टेकने आते हैं, अपनों के लिए दुआ मांगने आते हैं, लेकिन दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में अब दुआ के साथ साथ दवा का भी इंतजाम हो गया है। असल में दवा का इंतजाम तो यहाँ पहले से ही था, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी शुरू किया जा रहा है, जहाँ पर 25 से 30 छोटी छोटी बीमारियों का जो ऑपरेशन है वो भी हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ एंडोस्कोपी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, यानी कि जिस काम के लिए लोग हजारों रुपए बाहर खर्च करते हैं, अब वो बस बहुत छोटी सी रकम खर्च करके उसका लाभ उठा सकते हैं।
0: एंडोस्कोपी मशीन का इस्तेमाल बिना बड़ी सर्जरी के शरीर के आंतरिक अंगों, खासकर पाचन तंत्र को सीधे देखने के लिए होता है, ताकि बिना किसी चीरफाड़ वाली सर्जरी के बीमारियों का पता लग सके और उनका उपचार हो सके। दिल्ली या आसपास के शहरों के छोटे बड़े अस्पतालों में 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होने वाली एंडोस्कोपी यहाँ महज 1,500 रुपए में हो जाएगी।
2: हमारे को काफी पेशेंट्स आते थे एंडोस्कोपी के, जो पेशेंट्स मिस होते थे, क्योंकि बंगला साहब गुरुद्वारे अगर हम बात करें तो लोग बंगला साहब गुरुद्वारे बड़ी एक उम्मीद से आते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास बजट नहीं होता, फाइनेंशियली डायग्नोस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये डायग्नोस की अगर बात करें, जो लास्ट सैटरडे यहाँ पर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी दोनों फैसिलिटियाँ शुरू की गई हैं, ये बाहर अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली 8-10 हज़ार रुपये से शुरू होकर अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर 25 से 30 हज़ार के अंदर होती हैं, जो कि यहाँ पर मात्र सिर्फ 1,000, 1,000 रुपया इंडोस्कोपी की फीस है और 500 रुपये डॉक्टर की फीस है। सिर्फ 1,500 रुपये के अंदर आपको ये वाली फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।
0: मिनी ऑपरेशन थिएटर में 25 से ज्यादा छोटे ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। पॉलीक्लिनिक में सीटी स्कैन, MRI, मेमोग्राफी, TMT, फेटल इको, अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर जैसे महंगे टेस्ट के अलावा लैब टेस्ट जैसी सुविधा भी पहले से मौजूद है। ऐसे में अब नई एंडोस्कोपी यूनिट जुड़ने से मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा।
2: क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते थे, पेशेंट्स वापस जाते थे, तो फिर हमने इसका प्लान किया, गुरु साहब ने कृपा की, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, ये सारी की सारी मशीन्स जो हैं, ये संगत द्वारा डोनेशंस के अंदर आई हुई मशीन्स हैं। हाँ जी,
1: तो आप लोगों ने पहले सोचा, फिर संगत में ये बात रखी कि भाई बहुत पेशेंट इसके लौट रहे हैं, कुछ किया जाए?
2: हाँ, 100%, क्योंकि जो पेशेंट्स लौटते हैं तो वो भी हमारे पास एक रिपोर्ट बनती है कि आज ऐसे ही हमारे पास इको का था, हार्ट का, तो हमने कंप्लीट यहाँ पर कार्डियो का सारा TMT और इको की फैसिलिटी भी शुरू की।
0: जहाँ बाहर अलग अलग रोग से जुड़ी सर्जरी के लिए जेब से हजारों निकल जाते हैं, वही यहाँ 500 से लेकर 2,000 के अंदर हो सकता है। यही वजह है कि हफ्ते में 6 दिन खुले रहने वाले गुरु हरिकृष्ण पॉलीक्लिनिक में हर रोज 350 जरूरतमंद सस्ते इलाज के लिए पहुंचते हैं।
2: ये जो मिनी ऑपरेशन थिएटर यहाँ शुरू किया गया है, इसमें जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं, 25 से 30 किस्म की हमारे पास लिस्ट है, वो सारे ऑपरेशन यहाँ सीनियर सर्जन के द्वारा होते हैं, चाहे वो पाइल्स का हो, हड्डियों का होता है, एक कान का होता है, नाक की हड्डी बड़ी होती है, या किसी के कोई जख्म की प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइप के बड़ी सारी जो रेंज है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, वो सारे ऑपरेशन यहाँ पर बहुत सक्सेसफुली किए जाते हैं। और फुटफॉल की बात करें तो 300-350 पेशेंट्स जो जिसमें सीनियर सिटीजन की ज़्यादा तादाद होती है, वो डेली की फुटफॉल यहाँ पर है, और सैटरडे संडे तो कई बार बहुत बढ़ जाती है।
1: सैटरडे संडे बंद नहीं होता, ये भी नोट करने वाली बात है। किसी भी दिन ऑफ है यहाँ पर? वीक ऑफ है?
2: मंडे को ऑफिशियली ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है।
1: जो छोटे छोटे जो हम सर्जरीज कर रहे हैं, उनके चार्जेस क्या हैं?
2: वो बहुत कम है, मात्र 500 रुपए से शुरू होके 1,000, 1,500, 2,000 तक ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। हम सिर्फ अपनी कॉस्ट लेते हैं, जो हमारी या अपनी जो दवाइयों की कॉस्ट आती है, या कई बार जो छुटपुट कोई डॉक्टर की फीस होती है, बहुत कम रेट के अंदर ही हम लोग ये सारा का सारा यहाँ मैनेज करते हैं।
0: आने वाले दिनों में यहाँ आई यूनिट से जुड़ी सुविधा भी शुरू होगी, जहाँ आंखों से जुड़े मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, संक्रमण, रेटिना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के अलावा लेसिक सर्जरी से जुड़ी व्यवस्था भी होगी। बाजार में मिलने वाले महंगे से महंगा लेंस भी यहाँ महज 3000 से 3500 में ही लग जाएगा। साफ है कि जहाँ हर तरफ का इलाज महंगा हो चुका है, वहीं दिल्ली का ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की एक नई मिसाल बनकर सामने आया है।
3: यहाँ तो बहुत ही कम पैसे में हो जाता है इलाज, मतलब आप मैं बताऊँ लिटरली 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी 1 मंथ से आ रही हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सर्विस है।
4: 2 साल से आ रहे हैं, एलर्जी की बीमारी थी, हमको काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है जी। अब तो बिल्कुल पैसे से कुछ भी लगते नहीं है यहाँ पर, अपने दवाई लेने जब भी आते तब यहीं पर आते हैं हमेशा। यहाँ सुख सुविधाएं सभी मिलती हैं।
5: सीटी स्कैन कराने आया था मैं, और सीटी स्कैन मेरा हो गया है और रिपोर्ट लेनी बाकी है थोड़ी, लेकिन रोग भी कोऑपरेटिव हैं, आप अच्छे रोग हैं।
6: सीटी स्कैन कितने हुए?
5: ये मेरे 2 छाती का और गले का था, 2400 रुपये में हो गया, और बाहर में मेरे मांगा था 14,000-14,500 रुपये।
7: बीमारी आती है 10 रुपये की पर्ची कटती है, आसानी से डॉक्टर साहब को दिखाओ, डॉक्टर साहब बड़ी रिस्पेक्ट से ढंग से बात करते हैं, उसके बाद जो मेडिसिन है वो यहाँ पर फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 10 रुपये वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे इन्होंने रखा है, जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है।
0: जहाँ संगत की सेवा सिर्फ लंगर तक सीमित नहीं, बल्कि अब स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुँच चुकी है। मानवता की सेवा के दौरान न किसी का धर्म, न किसी की जाति और न ही अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
1: कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं, किस जाति के आप हैं कोई मतलब नहीं रखता, किस धर्म के आप हैं कोई मतलब नहीं रखता। और बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर और एंडोस्कोपी की भी सुविधा शुरू हो गई है। हजारों रुपए लोग इसके लिए बाहर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम से कम कीमत में आकर लोग एंडोस्कोपी और अपना ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। जाहिर तौर पर मानवता की सच्ची सेवा यही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
13: After multiple assassination attempts, they can't even get...
14: They're reliable.
15: Always when I need them.
12: To live sports action...
16: One-hand jam by LeBron on the break!
17: That's another play, Steph Curry!
12: And your favorite music.
18: Well, the dawn begins to crack.
12: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
19: News Today, Pat.
20: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, ज जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यात्रा की। कैसी भी यात्रा हो, छोटी हो, बड़ी हो, काम की हो, मनोरंजन की हो, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहे, सफलता वाली रहे, क्या करें उपाय, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं यात्राओं की। सबसे पहले जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, जो चर राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां मानी जाती हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। नवम भाव से लंबी यात्रा और द्वादश भाव सामान्यतः विदेश का भाव माना जाता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है तो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर लगी रहती हैं।
शनि राहु और केतु का प्रभाव होता है तो एक बार में ही आदमी लंबी यात्रा पर काफी दूर चला जाता है। यात्राओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को

कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब हमारी यात्रा अच्छी होती है, सुखद होती है, और कब यात्रा में हमें दिक्कत होती है, कब यात्रा में हमें समस्या होती है। देखिए, यात्रा के समय अगर चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा अनुकूल हो, तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के समय शुक्र की स्थिति अगर ठीक है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा से जीवन में आनंद मिलता है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले, यात्रा की शुरुआत में ईश्वर का दर्शन हो, पूजन हो, तब भी यात्रा अच्छी हो जाती है। आपकी यात्रा के समय अगर चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अनुकूल ना हो, तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशाशूल होता है, जिस दिशा का, उस दिशा में यात्रा करने से यात्रा में समस्या होती है। जैसे बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो उपाय करके यात्रा कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती उतर रही हो, ढैया उतर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी यात्रा करने में समस्या पैदा होती है। और अगर ऐसी स्थिति में आप लंबी यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल नहीं होती है। यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

0: हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर, बड़ी यात्रा पर, अगर आप अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। अपने साथ यात्रा में मांसाहारी या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। ऐसा करने से यात्रा पर राहु का प्रभाव आएगा और यात्रा में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिशाशूल वाले दिन जिस दिशा का दिशाशूल है उस दिशा में यात्रा ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करने के बाद यात्रा करिएगा ताकि दिशाशूल की दिक्कत ना हो। यात्रा आरंभ करने के पहले दही जरूर खा लीजिएगा। थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करेंगे, शुक्र के प्रभाव से यात्रा आनंददायक हो जाएगी। यात्रा कहीं भी करने जा रहे हों, लंबी या छोटी, उसके पहले पूजा के स्थान पर कुछ धन, थोड़ा सा पैसा रख दीजिएगा और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से यात्रा में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आप दुर्घटनाओं से और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का लकी टिप क्या है और क्या है सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता के योग हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने जाना यात्रा को सुखद और लाभकारी कैसे बना सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो एक नीम का पौधा, जमीन है तो जमीन में, या गमला है तो गमले में एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा। नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: नमक के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है? क्या नमक के प्रयोग से किसी ग्रह को बेहतर किया जा सकता है? क्या किसी का नमक खाने से आप मुश्किल में आ सकते हैं? क्या है नमक के प्रयोग के नियम और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पद पर। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पद पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विशोन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती हैं 1.5 दर्जन गाड़ियां। बीस मई से शुरू होगी भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर, सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा गुजरात के सासन गीर की दिव्य कला की भी हो रही है।
4: चारधाम की यात्रा में दिन पर दिन यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट खूब आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते यहां यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इससे यहां कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, यहाँ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी भक्तों से भरा हुआ है, यहाँ हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, यहाँ 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या 2 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो गंगोत्री धाम में भी मंगलवार 12 मई तक श्रद्धालुओं की संख्या 1,94,000 से अधिक पहुंच चुकी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास में चल रहा ये काम उसी तैयारी का हिस्सा है, चाहे बिल्डिंग की मरम्मत का काम हो या साफ सफाई का, सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के यहाँ ठहरने, बिजली पानी से लेकर भोजन समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का पूरा फोकस है, उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जन प्रतिनिधि भी जायजा लेते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। अमरनाथ यात्री यहाँ पहुँचने के बाद आगे कश्मीर की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बागेश्वर जिले के इन 2 प्रमुख पर्यटन स्थल की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से शाम को हो रही बारिश से यहां का मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमने के साथ ही पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही झील में नौकायान का रोमांच का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी घर में 481 से ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, जिनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक पिंजरे में फव्वारों की व्यवस्था की गई है। साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ रहने वाले इन देशी विदेशी पक्षियों को ज्यादा तापमान में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासनगिर की एशियाई शेरों को लेकर एक अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों से दिव्य तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि इस कला के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सासनगिर में पिछले 20 से 25 साल से ये खास कला देखने को मिल रही है, जिससे लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी संख्या में छोटी कीलें लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तस्वीरें तैयार की जाती हैं, जिसमें एशियाई शेरों की तस्वीरें पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसे खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। शेरों के अलावा देवी देवताओं, संत महापुरुषों और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें भी इस आर्ट में बनाई जाती हैं, और अगर किसी खास तस्वीर या डिजाइन की डिमांड होती है तो वो भी तैयार की जाती है। तस्वीरों की कीमत 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
2: और अब बात गूगल मैप की, जो कि अब देगा जानलेवा मोड़ों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स का अलर्ट। जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा कर रहे हैं तो आप एक क्लिक पर देख सकेंगे कि आगे कहां कहां दुर्घटना संभावित पॉइंट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि आप अलर्ट रहकर यात्रा कर सके। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही रेंज के सभी नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे तमाम कारणों से इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से लोग अब इसे एक्सप्रेसवे की जगह डेथवे यानी मौत का रास्ता तक कहने लगे हैं। लिहाजा राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए
0: पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। इसके तहत जगह जगह पर QR कोड लगाए गए हैं और उन QR कोड को स्कैन करने के बाद सफर करने वाले लोगों को इस हाईवे पर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह सुविधा गूगल मैप पर आने वाली है और इसके बाद जैसे ही वो गूगल मैप पर इस हाईवे की लोकेशन लगाएंगे उनको हादसों की जानकारी मिल पाएगी। इस हाईवे पर लेन सिस्टम लागू हो चुका है। लेन सिस्टम लागू होने के बाद सड़क हादसों में खासी कमी आई है, तो अब इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों के माने तो आगामी दिनों में सड़क हादसों में खासी कमी आएगी।
0: जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अलवर समेत जयपुर रेंज के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। वाहन चालकों को GPS और मैप के माध्यम से इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वो सतर्क होकर वाहन चला सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।
2: लेन सिस्टम का अभी हमने एक स्टडी किया था कि पिछले जो लास्ट 8 महीने थे और अभी के जो 8 महीने जब लेन सिस्टम चला है इसके कंपैरिजन करने पे क्या फर्क पड़ा है एक्सीडेंट्स पे या डेथ्स पे या घायलों पे, तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। 40 डेथ कम हुए थे, 109 घायल कम हुए थे, तो 40 डेथ बहुत बड़ी बात होती है 8 माह में कम होना, और उसके साथ एक्सीडेंट भी लगभग 55 के आसपास कम हुए थे। इसको हम लोग जो कोटपुतली बैरोड जो दिल्ली अजमेर वाला रूट है उस पर अजमेर रेंज में बहुत गंभीरता से चला रहे हैं, और एनी पे भी हमने शुरू किया अभी। इसमें जो ITMS था उसमें पहले लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी रिक्वेस्ट करके जुड़वा दिया है। हॉटस्पॉट्स जो थे उसके लिए हमने QR कोड जारी किया था, जिसको स्कैन करने पर जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट आपको पहले दिख जाएंगे, तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको गूगल मैप पे अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देंगे।
0: IG राहुल प्रकाश ने ये भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो जोन जहां पिछले 3 साल में 10 एक्सीडेंट हुए हों, ऑरेंज जोन जहां पिछले 3 साल में 10 से 20 एक्सीडेंट हुए हों, रेड जोन जहां पिछले 3 साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों। मिशन सेफर रोड के तहत ब्लैक स्पॉट को मैप पर ऐड करने के लिए पुलिस ने गूगल को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर गूगल ने सहमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में इन्हें मैप पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन हाईवेज पर यात्रा के दौरान अगर मैप ऑन करेंगे तो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे और आपको अलर्ट भी मिलेगा। हाल ही में IG राहुल प्रकाश ने रेंज के सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सर्वे कराया था। इसमें 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए, जहां पिछले 3 साल में 1108 लोगों ने जान गंवाई। इन्हें दुरुस्त कराने के लिए इससे जुड़े विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इनमें रेड जोन वाले 6 स्पॉट्स हैं जहां 162 मौतें हुई, ऑरेंज जोन वाले 37 स्पॉट पर 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह येलो जोन वाले 78 स्पॉट पर 471 लोगों की जान जा चुकी है।
2: SP साहब दौसा और SP साहब अलवर दोनों लगातार एनसीआई के संपर्क में हैं। अलवर SP साहब ने तो उनका एक मोबाइल लेकर के हाईवे मोबाइल भी विशेष तौर पर इन्हीं के ऊपर चला रखा है। SP साहब दौसा को भी अभी यही निर्देश दिए गए कि वो भी संपर्क करके जो हाईवे मोबाइल एनसीआई के हैं उसमें पुलिस का जाप्ता लगा करके और उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखें, जिससे कि जो अनुशासन है रोड का वो बना रहे।
0: लिहाजा लोगों को सतर्क करने के लिए पहले QR कोड की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे स्कैन करने पर सड़क के ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाती थी। अब पुलिस एक कदम आगे बढ़ते हुए इन ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर मार्क कर रही है। इससे वाहन चालक नेविगेशन के दौरान नोटिफिकेशन और वॉइस अलर्ट के जरिए पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे किस कैटेगरी का ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है। तय लेन और स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर ऑनलाइन चालान होगा। इसके लिए पुलिस ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली लेन बाहरी वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी लेन मध्यम गति के वाहनों के लिए है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर चलेंगे। तीसरी लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही चौथी लेन ओवरटेकिंग या आपातकालीन वाहनों के लिए रखी गई है। हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइविंग नियमों के पोस्टर लगाकर जागरूकता बढ़ाई है और ओवर स्पीडिंग पर निगरानी के लिए कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। पहले चरण में वाहन चालकों को इस सिस्टम की जानकारी दी गई थी और अब चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों के अनुसार पहले एक्सप्रेसवे पर किसी भी लेन में कोई भी वाहन चलने लगता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी की गई कटौती। चलिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल परीक्षा में कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं। ये पिछले साल से 3% कम है। 2026 के रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। नतीजों के मुताबिक कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। वहीं 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में सराय रंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार में बिहार सहित दूसरे राज्यों के 15 से अधिक कॉलेजों के 280 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी तकनीकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। इसमें कुल 14 तकनीकी और गैर तकनीकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कई आकर्षक इवेंट्स शामिल रहे।
3: और अब बात गोल्ड के स्मार्ट ऑप्शन की। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल सोना नहीं खरीदने की अपील की है। तो अगर आप भी सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सोने के गहनों का विकल्प मौजूद है। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है, जो लोगों को लुभा रहे हैं, लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई है।

0: ईरान और अमेरिका युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर अब दिखने लगा है। लिहाजा लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और टशन में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नजरें उस विकल्प पर आकर टिक गई हैं जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित हो। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती।
1: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज करवाने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से, अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडी होने से लोगों को ज्यादा लुभाती है।
2: मैम, मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब मेको अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
3: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स, इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल क्वाल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देखकर और लेकर।
0: इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैरिज, पार्टी या रोजाना भी पहन सकते हैं, या यूं कहें कि यहाँ की दुकानों में हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल मिल जाएंगे।
4: बहुत ज्यादा कीमत में हम एक दो सेट ही ले पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल कस्टमाइज करके लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है हमें और हमारे पास ज़्यादा सेट हो जाते हैं।
5: जैसे गोल्ड खरीदना नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं और सेफ भी रहता है।
0: ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात, जबकि गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीद कर अपने फैशन को पूरा किया जा सकता है।
6: तो पहले भी लोगों को यही सजेस्ट करता था कि ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है। इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए और हम बनाते भी ये फोटोग्राफी के हिसाब से, ये बहुत रिच लुक देती है।
1: अच्छा, रेंट का भी एक ऑप्शन होता है, क्या आपके पास में वो अवेलेबल है?
6: यस, बिल्कुल, हम ब्राइडल ज्वेलरी रेंट पे ही देते हैं।
0: दुकानदारों के मुताबिक गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी दिखती है।
7: इमिटेशन ज्वेलरी तो लोग अब बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदने लगे हैं क्योंकि इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड की। अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कैरी करने के लिए भी अच्छी है, कहीं जाने आने के लिए भी अच्छी है और शादी ब्याह के लिए भी अच्छी है, तो इसका मार्केट तो बहुत अच्छा ही है।
8: और इसका, क्योंकि गोल्ड ऐसा होता है कि उसका रंग कभी भी नहीं,
7: हाँ जी हाँ जी नहीं, ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप तीन तीन चार चार साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ना, तो इट्स गुड। हाँ, तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1,00,000-2,00,000 में आता है, ये फर्क तो आता ही है।
0: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
9: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं और दूसरा सेफ रहता है, ट्रैवल में अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता। और सोना अभी जो रेट बढ़ा है बहुत टू मच, मतलब ऐसा मन भी नहीं करता।
0: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है। ये ना सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी।
1: बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है कि वो रियल गोल्ड हो या ब्रास हो, किसी को फर्क पता नहीं चलेगा। और सबसे खास बात कि ये जो ब्रास है ये आपके शरीर पे इस तरीके से पहनेंगे तो ना ही ये टार्निश होगा लंबे समय तक, साथ ही साथ में ये जो एंटी एलर्जिक मेटल है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी समय तक पहन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आप अपनी ज्वेलरी कैरी करते हैं, आप कहीं पे आप उसको लॉक करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर लॉकर नहीं हो तो भी आप सेफ़ हैं, आपको डर नहीं है क्योंकि सेफ़ रहेगी, रियल ज्वेलरी नहीं है, रियल दिखने वाली बिल्कुल है, लुक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो डर कोई बना नहीं रहेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन हार्म नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रोज जो हैं वो अभी इस समय पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि अभी एक बार के लिए रुक जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोई भी शादी हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस समय में मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं, जो कि एक मैं मानती हूँ फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
10: और न्यूज वक्त में आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर।
11: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 49 अंकों की बढ़त के साथ 74,608 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के बाद 23,412 पर बंद हुआ। बुधवार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से गोल्ड की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 8,550 रुपए बढ़कर 1,65,350 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी आई और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 20,500 रुपए की बढ़त के साथ 2,97,500 रुपए पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर रुपए की कीमत पर लगातार पड़ रहा है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.80 रुपए तक गिर गया। हालांकि आखिर में ये 1 पैसे की बढ़त के साथ 95.67 रुपए पर बंद हुआ।
10: रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज बात एक बेटी की मेहनत के दम पर हासिल की गई उपलब्धि की होगी। अगर किसी चीज को लेकर जुनून हो और ईमानदारी से कोशिश की जाए तो मुश्किल हालात में भी कामयाबी हासिल होती है, और इसे साबित कर दिखाया है नंदिनी शर्मा ने, जिसको लेकर यूपी के सहारनपुर उनके पैतृक गाँव में जश्न का माहौल है।

0: एक बेटी जब कामयाबी हासिल करती है तो उससे न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा समाज कितना ज्यादा खुश होता है उसकी ये तस्वीर है। हर चेहरे पर अपनी बहन और बेटी की सफलता की चमक साफ झलक रही है। हम बात कर रहे हैं यूपी के सहारनपुर के रणदेवा गांव की, जहां एक पिता का क्रिकेटर बनने का सपना पीछे छूट गया था, लेकिन जब उस पिता की बेटी नंदिनी शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के लिए चयन हुआ तो पूरा गांव जैसे खुशी से सराबोर हो उठा। नंदिनी अब महिला T20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। नंदिनी को वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुने जाने की जानकारी मिलते ही सहारनपुर का रणदेवा गांव जश्न में डूब गया। हर किसी के चेहरे पर गर्व का भाव साफ झलक रहा था। हर कोई नंदिनी की इस कामयाबी को अपनी जीत मान रहा है।
1: जब से उसका वर्ल्ड कप में चयन हुआ सब बहुत ज्यादा खुश हुए। छोटे छोटे बच्चे भी सब यही बोलते कि हम भी नंदिनी जैसी बनेंगे।
2: तो गांव की लड़कियां प्रेरित हुई।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा।
2: कैसा लगता है आप टीवी पर खेलते हुए?
1: बहुत ज्यादा खुशी होती है कि भाई हमारे गांव की लड़की ने नाम रोशन किया है, गांव का, पूरे इलाके का, सब बहुत खुश होते हैं। हम भी सबको बताते कि हमारी छोटी बहन है।
0: इस गांव के गरीब परिवार से निकलकर T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना नंदिनी के लिए आसान नहीं था। पिता श्याम सुंदर शर्मा कभी चाय की दुकान चलाते थे और बाद में चंडीगढ़ जाकर वेल्डिंग का काम करने लगे। उनका खुद का क्रिकेटर बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वो उस सपने को अपनी बेटी नंदिनी के जरिए जीने लगे। उन्होंने छोटी उम्र से ही नंदिनी को क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाई। नंदिनी भी जमकर पसीना बहाती रही और फिर एक दिन उनका चयन चंडीगढ़ की टीम में हुआ। इसके बाद पीछे मुड़कर नंदिनी ने कभी नहीं देखा।
3: नंदिनी का देखो जी, जिस समय वर्ल्ड कप में चयन हुआ उससे पहले WPL में हुआ था और WPL में उसने 18 विकेट जो पूरी सीरीज में लिए, एक विदेशी लड़की ने लिए थे, लेकिन भारत की जो लड़कियां खेल रही थी, बॉलिंग कर रही थी, उन्हें सबसे नंबर वन पर लड़की नंदिनी थी, उसने 18 विकेट लिए थे। और शायद सेलेक्टरों ने उसी समय शुरू होएगा था टीवी पाना अमेजिंग गर्ल ऑफ द क्रिकेट, प्रतिभावान खिलाड़ी और अनकैप्ड लड़की नंदिनी शर्मा का नाम जब चला तो टीवी वाले जो टीवी की कमेंट्री करते थे वो उन्होंने पहले ही जताना शुरू कर दिया था कि एक दिन ये लड़की भारत की टीम में जरूर जाएगी।
0: वुमेन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नंदिनी ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात के खिलाफ एक मैच में हैट्रिक सहित 5 विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि ये रुकने वाली नहीं है, बल्कि क्रिकेट में अपना मुकाम हासिल करके ही मानेंगी। और फिर वो दिन आया जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में छाने का मौका मिल गया। सहारनपुर के रणदेवा गांव के लोगों को अब उस पल का इंतजार है जब नंदिनी T20 वर्ल्ड कप में देश के लिए गेंदबाजी करती नजर आएंगी।
4: अब उसकी फुर्ती देखी क्रिकेट में, मतलब सब चीज जो है वह बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती थी। मतलब कोई शरीर में थकावट नहीं, मतलब चेहरे पर वही मुस्कान, बाप को बहुत शौक था।
5: तो पिता को देख के ही क्रिकेट का जुनून सवार हुआ।
4: हाँ, उसने नहीं, उसने जुनून बढ़ा बच्चों के अंदर। लड़का भी, मैं भी जुनून पूरा था, मतलब इससे लड़की से बड़ा था, पर वो पास नहीं हुआ। यह लड़की भगवान ने कहा, उसने चाह पास होगी क्रिकेट में और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा भाई।
0: खास बात यह है कि नंदिनी शर्मा ने अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया, लेकिन शानदार तेज गेंदबाजी की वजह से उनका चयन T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। नंदिनी ने अपनी इस उपलब्धि से अपने परिवार और अपने गांव को गर्व महसूस करने का मौका दिया है, साथ ही साथ सहारनपुर समेत पूरे राज्य का नाम भी रोशन किया है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: संजय दत्त की नई फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़।
7: व्हाट अबाउट 1975 इमरजेंसी?
8: भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
7: आपके लीडर्स इंडिया।
9: संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हुई पास। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, यानी ये फिल्म 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए है। इस बात की ओर ये इशारा है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले मुद्दे गंभीर और संवेदनशील हो सकते हैं।
7: आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट।
10: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोचे विकी,
9: ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिजीत मोहन निर्देशित फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नवाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी हैं।
10: सच बनाना होता है।
11: अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते।
9: एक ऐसी फिल्म जिसका नाम अभी भले ही सामने नहीं आया है लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर ये अनटाइटल्ड फैमिली एंटरटेनर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी को इस फिल्म के लिए दिलराजू साथ लेकर आए हैं। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में दिखेंगी। विजय राज और सुदेश लहरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा शेड्यूल हाल ही में केरलम में पूरा हुआ है। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। इवेंट के आगाज में कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया ने वॉक करते हुए शानदार लुक दिया। आलिया के अलावा उर्वशी रौतेला ने भी इस इंटरनेशनल इवेंट में लगातार 5वीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स के साथ हर साल भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी साफ बता रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। इस इवेंट में AI का जलवा भी देखने को मिल रहा है। AI रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
6: आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के वशून पर्वत से शुरू होती है यात्रा, कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्त पहुंचे। देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने किया अमल, केवल 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले पीएम मोदी। पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। बीस मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय में उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन। न्यूज़पथ में आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
13: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतर कर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और न ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
14: यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
13: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
6: न्यूज़ पथ के सफर में रुक करते सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आज अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। इन कीमतों में के बढ़ने की वजह केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 और 1 किलो चांदी की कीमत 22,000 रुपए बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,000 तक पहुंच गया और 1 किलो सोने चांदी का भाव 2,99,000 रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने फैसला अमेरिकी और ईरान के जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के मद्देनजर लिया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। दरअसल भारत में लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे विदेश से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाने लगता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले से आपको महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी अब कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने भी सराफा व्यापारियों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
15: 13 मई से जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी थी सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर 6% थी, वो आज से उन्होंने डायरेक्टली 15% कर दी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 9% की बढ़ोतरी आई हुई है दोनों प्रेशियस मेटल के अंदर। जो सोना कल जो 1,52,000 पे मिल रहा था 10 ग्राम, वो आज सोना डायरेक्ट हो गया 1,65,000, यानी सोने के अंदर 10,000 का सीधा इंक्रीज आया हुआ है। वैसे ही सिल्वर में देखें तो आज सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट 3,00,000 पे पहुंच गया, जिसमें 18,000 का फर्क कल के और आज के दिन में 18,000 का फर्क आ गया, रेज हो गया है। दोनों के अंदर की रेट बढ़ोतरी हो गई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था कि आप सोना मत लो, कम कर दो, तो वही एक स्टेप उन्होंने ये फर्दर लिया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है जिससे लोग सोना कम खरीदे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो GDP है उसमें काफी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर वर्ग है, स्टाफ वर्ग है, को रिलेटेड है, जैसे बॉक्सेस है, डिस्प्ले है, काफी चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक मीटिंग कर रहे हैं और इसका समाधान के हिसाब से थोड़ा सोच रहे कि कैसे इसको हम आगे करें और पूरा साल हम कैसे ये बिजनेस को आगे ले जाए। जैसे हमें लग रहा है कि अभी घर घराव जो सोना पड़ा हुआ है उसको गवर्नमेंट बाहर ला सकती है कोई भी ऐसी स्पेशल स्कीम निकाल के, जिससे लोगों को मन हो के सामने से कि चलो हम यही सोने से हम नई ज्वेलरी खरीदे। इससे क्या होगा कि कारीगर को भी अपना काम मिल जाएगा ज्वेलर से, तो उसको भी अपनी मेकिंग मिलती रहेगी, तो हिसाब से सबका काम चलता रहेगा।
16: अचानक की रात को जैसे सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई है, पहले भी 15% थी, उसके बाद घटा के 6% की थी। उसके पीछे कारण था कि पहले थोड़ा 15% के हिसाब से स्मगलिंग ज्यादा होने लगा था, तो सरकार को टैक्स का नुकसान जा रहा था, तो उन्होंने फिर 6% घटा के की थी। लेकिन अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जो भी अपना पूरा वर्ल्ड वॉर जोन में चला गया है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 1 साल तक आप गोल्ड नहीं खरीदना, तो लोग गोल्ड खरीदे नहीं, इसके हिसाब से भी ड्यूटी बढ़ाई है। जैसे गोल्ड महंगा वगैरह, लोग ये जो अभी संकट का समय है तो लोग गोल्ड खरीदने से परहेज करेंगे, तो उस हिसाब से भी हमको लग रहा है कि ड्यूटी बढ़ाई है। लेकिन ड्यूटी बढ़ाने की इम्पैक्ट हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की एक हम लोग उससे संभल पाया नहीं रहते, तब ये एक अचानक से अलग से एक झटका आया है, तो अभी हमको भी सोचना पड़ेगा आगे हम लोग क्या और कैसे रणनीति बनाए।
17: जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान करा कि नागरिक देश के लोग ज्वेलरी ना खरीदे गोल्ड ना खरीदे, तो उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही दिख गया था कि जो रूटीन ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, वो ऑर्डर प्लेसमेंट कम हो गया था, वो 70% तक कम हो गया था, तो उसका इफेक्ट तो दिखा ही है। और उसके बाद में प्रधान मतलब अपना ये इम्पोर्ट ड्यूटी भी हाइक कर दिया, जो 5% से अभी 6% से अभी 15% कर दिया गया है, तो उसके बाद तो ऑर्डर मतलब रुक ही गए हैं, मतलब हार्डली 10% जैसा ही काम आना रह गया है वैसा दिख रहा है।
18: जैसे हमें कल रात को हमारे ग्रुप्स में आना शुरू हुआ कि मोदी जी ने या हमारी जो सेंटर सरकार है 6% से लगा के हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 15% कर दी गई है, तो इसमें हमारी जो व्यापार है उसमें सब में चिंता का विषय है, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी का बयान भी आया है आदरणीय 3-4 दिन पहले भी गोल्ड हमारा को कम खरीदना चाहिए या ना ही खरीदो 1 साल तक, तो उससे क्या है हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी हमारी जो इंडिया की है वो 50 लाख से ऊपर हमारे जो ज्वेलर्स हैं, और उसके साथ कम से कम एक एक दुकानदार के साथ हमारा 10-10-12-12 परिवार जुड़े हैं, तो उससे हमारी ज्वेलरी को पहले ही बहुत इफेक्ट है। पहले ही हमारा जो इतने रेट बढ़ने से काम वैसे ही 10-15% ही रह गया है, वो तो बचे हुए इसलिए हैं भगवान ने अपनी दुकानें दी हैं तो बचे हुए हैं, या हमें खुद थोड़ा बहुत काम आता है, तो आने वाले समय पर हमें लग रहा है कि ये जो भार पड़ रहा है अल्टीमेटली तो कस्टमर पे ही भार पड़ रहा है।
6: केवल ईंधन बचत का ही नहीं बल्कि आज के दौर में बढ़ती महंगाई में बेतहाशा खर्च पर भी अंकुश लगाने की जरूरत पड़ रही है, और यही अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की। ऐसे में गुड न्यूज टुडे भी आपको खासकर विदेशी ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने सैर सपाटे के तमाम विकल्पों के बारे में बता रहा है, तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, बताते हैं कौन से ऐसे डेस्टिनेशन है जो फिलहाल आपका इंतजार कर रहे हैं।
19: हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और अपार हरियाली वाला उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल इन दिनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहां धार्मिक पर्यटन हो या रोमांच का कभी ना भूलने वाला खुशनुमा एहसास, ये सभी मिलकर राज्य की पर्यटन को गति दे रहे हैं।

0: वहाँ हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जैसे पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आप माणा पास, माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी उस वहाँ वहाँ पे हुई थी, और वे ऐसा भी उस ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे पर्यटकों के लिए एक नई चीज मिले।
1: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। यही वजह है कि इस बात का एहसास पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों को भी बखूबी है। गढ़वाल की तरह ही हलचल कुमाऊं क्षेत्र में भी नजर आ रही है। यहाँ की शांत हरी भरी वादियाँ और सुकून भरे वातावरण के बीच झील किनारे आस्था विश्वास की ये जीती जागती तस्वीर खुद में निराली है। मैदानी इलाकों में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उससे कुछ समय के लिए सही राहत पाने के लिए पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में इन दिनों खूब हो रही है। मई के महीने में इन हिल स्टेशंस पर लोग उस हल्की ठंड का एहसास लेने ही आ रहे हैं। यही नहीं, बैजनाथ मंदिर में तो दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का रोमांच भी है।
2: आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए।
1: दरअसल पिछले एक सप्ताह से रोजाना शाम को यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार बना दे रही है। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ही पर्यटक इन पहाड़ी अंचलों में पहुँच रहे हैं। जाहिर है ये खुशनुमा मौसम यहाँ पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, वहीं लोकल व्यवसाय को भी बूस्ट करने में मदद दे रहा है। तो अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान, सुकून के कुछ पलों को प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के ये तमाम पर्यटन स्थल आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखता है। इसे आबाद करने में वैसे तो कई बाघ बाघिनों का अहम योगदान रहा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलर बाघिन T16 मछली के बाद अगर किसी बाघिन को याद रखा जाए तो वो है T39 नूर, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है।
4: ये रणथंभौर की जीवंत विरासत रणथंभौर की नूर है। नूर यानी यहाँ की एक लेजेंड बाघिन जो T39 के रूप में जानी जाती है और प्यार से इसे नूर या सुल्तानपुर फीमेल कहा जाता है। नूर महज एक साधारण बाघिन नहीं है, अपने असाधारण जीवन से नई मिसाल कायम करने वाली नूर यहाँ की सबसे उम्रदराज बाघिन है। 19 साल की नूर अब बढ़ती उम्र के साथ जंगल के बाहरी इलाकों में घूमती नजर आती है। आमतौर पर जंगली बाघों का जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन नूर बिना किसी बाहरी सहायता या मानवीय बाधा के रणथंभौर में 19 साल पूरे कर लिए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है। 2008 में रणथंभौर के सुल्तानपुर में बाघिन T39 नूर का जन्म हुआ। नूर बाघिन T13 बिंदा की संतान है, जबकि बाघिन T16 मछली नूर की मौसी है। बाघिन बिंदा और मछली ने भी लंबी उम्र पाई थी और दोनों का रणथंभौर को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नूर की तुलना अक्सर उसकी मौसी बाघिन T16 मछली से की जाती है, जो वंशावली बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नूर भी यहाँ 5 बार माँ बन चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 5 बार में नूर ने यहाँ कुल 9 शावकों को जन्म दिया। 2022 के आखिर में महज 15 साल की उम्र में नूर ने 2 शावकों को जन्म देकर सबको चौंकाया था। नूर ने 19 साल में रणथंभौर को आबाद करने में

0: अहम भूमिका निभाई है। नूर की वंशपेला रणथंबोर में खूब फल फूल रही है। नूर की बेटी नूरी और सुल्ताना का अब यहाँ राज है।
1: तो ये बागीन तो बहुत ही अनोखी है। ये बागीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है, क्योंकि इसका जो एक बेटा है सुल्तान, वो धौलपुर और करौली दोनों जिलों में बाघ के बच्चे पैदा करने के लिए जाना जाता है। सुल्तान बहुत ही यहाँ का फेवरेट टाइगर रहा है और वहाँ जाकर के उसने परिवार बसाए। इसके और भी बच्चे रणथंबोर में बहुत ही फेमस रहे, सुल्ताना और नूरी, जिन्होंने अभी भी दो अलग अलग जोन में दिखते हैं। इसकी बेटी सुल्ताना अक्सर देखी जाती है रोड पे, गणेश रोड पर। परंतु इस जो बाघिन का पूरा परिवार का रणथंबोर के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत बड़ा योगदान।
0: स्वभाव में शांत नूर के शरीर पर लहरदार धारियां हैं, जो किसी आभूषण के जैसे चमकती दिखती हैं। इसलिए उसे नूर यानी चमक नाम दिया गया। यही नहीं, वो यहाँ माला के नाम से भी जानी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बाघिन नूर के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। युवा बाघ बाघिनों के दबाव में अब बाघिन नूर रणथंबोर के जंगल के बाहरी इलाकों में ही दिखती है, जो बढ़ती उम्र के चलते इलाका छोड़ने और शांत स्थानों की तलाश करने का संकेत है।
2: पद पर थोड़ी देर रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर, और ब्रेक के उस पार खेल की खबरें, खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
4: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों में बुमराह की बात चाहत कायम, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
10: आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों में टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह टॉप पर कायम है, वो 879 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में टीम इंडिया के दो बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मौजूद हैं। यशस्वी 700 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में 8वें नंबर पर हैं, जबकि शुभमन गिल एक स्थान की छलांग लगाते हुए 730 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। IPL 2026 का 57वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में इस सीजन में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है, RCB जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, जबकि KKR के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। टीम इंडिया के हेड कोच मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ में आए नजर, वहां उन्होंने मां बगला मुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही धूमावती माई की आरती का हिस्सा भी बने और भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता की कामना की। गौतम गंभीर की पीताम्बरा पीठ में गहरी आस्था मानी जाती है, वो क्रिकेट के कई बड़े टूर्नामेंट और सीरीज से पहले यहां दर्शन करने पहुंचते रहे हैं।
2: मैं मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. Tune in is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: The
11: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विशोन पर्वत से शुरू होती है यात्रा, कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर प्रधानमंत्री ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। बीस मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
11: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। पूरे देश के लिए बड़ी गुड न्यूज है, जो मानसून जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता था वो इस बार मई के अंत में ही भिगोने आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर तेज रफ्तार पकड़ ली है। अगर हवाओं का रुख इसी तरह बना रहा तो केरल में समय से करीब 1 हफ्ता पहले ही मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी से उठी मानसून वाली आहट पूरे देश के मौसम का मिजाज बदल रही है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत तक बादलों की हलचल तेज हो गई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं असम, मेघालय, सिक्किम और उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी आने वाले दिनों में मौसम का रंग पूरी तरह बदल सकता है। मानसून की आहट ने गर्मी के बीच लोगों को राहत की बड़ी उम्मीद जगा दी है।

0: गरजते बादल, चमकती बिजली और तेज हवाएं। मॉनसून अब ज्यादा दूर नहीं, अब बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, आने वाले मॉनसून की आहट भी दे रहे हैं। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आसमान में घिरते बादल, तेज हवाएं, गरजती बिजली की तस्वीरें कई राज्यों से आ चुकी हैं। बारिश इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार मॉनसून सामान्य समय से पहले दस्तक दे सकता है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत तक मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत सिस्टम ने पूरे देश के मौसम को सक्रिय कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि परिस्थितियां इतनी अनुकूल बन चुकी हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून तय समय से पहले आगे बढ़ सकता है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं। अगले कुछ दिनों में वहां मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।
1: अभी साउथ ईस्ट मॉनसून की स्थिति है, जो कंडीशंस फेवरेबल हुआ है, जो हमारा साउथ बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, अंडमान और निकोबार आइलैंड में 16 मई को टच करने का संभावना रहेगा, जिसका नॉर्मल डेट है 18 मई।
0: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बना लो प्रेशर एरिया अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 14 से 17 मई के बीच तेज बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
1: हमारा जो फोरकास्ट है अगले 7 दिन के लिए 13 से लेकर 19 मई तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसमें हमारे जो दो सिनोप्टिक वेदर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, एक ऊपरी पवन के साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो एमपी साउथ दक्षिण पश्चिम एमपी के ऊपर था, अभी भी वो स्थित है, उसका विस्तृत जो 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक। अभी एक फ्रेश WD उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है 15 मई को।
0: कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। रायल सीमा और दक्षिणी राज्यों के कई हिस्सों में बादलों की तेज गतिविधि देखने को मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी बढ़ गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और उत्तर बंगाल के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में 64 से 115 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकती है। ओडिशा में अगले 6 दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। राज्य के करीब 20 जिलों में बिजली गिरने, तेज हवा चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड और बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तर भारत में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में खराब मौसम को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
2: मौसम में धूप और बारिश का लुका छिपी का खेल लगातार जारी है। दिल्ली में देर रात बारिश हुई, उसके बाद सुबह लोगों को ठंडी सुहावनी हवा मिली, गर्मी से राहत मिली, लेकिन इस वक्त भी अब तेज धूप निकली हुई है और जाहिर तौर पर लोगों को इस धूप के चलते तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो तापमान है वो 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है, यानी कि मौसम में गर्माहट बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 12 से 17 मई तक उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, हल्की हल्की बारिश होगी और 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार जो हवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर अभी 17 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिन में धूप रह सकती है, लेकिन बीच बीच में लोगों को ठंडी फुहार का आनंद भी मिल सकता है। उत्तर भारत के अलावा कई और हम राज्यों की बात करें तो जगह जगह पर बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, केरल, इन सभी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, मौसम सुहावना होगा और रह रहकर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो सकती है।
0: पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। कई इलाकों में अचानक तेज हवा और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश राहत लेकर आ रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिम राजस्थान और गुजरात में 17 मई तक लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। IMD ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
2: मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जिस तरह से संभावनाएं बन रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि इस बार मानसून भी समय से पहले दस्तक दे सकता है। अगर मानसून ने समय से पहले दस्तक दिया और इसी तरह से मौसम में बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रही तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली NCR वालों को और उत्तर भारत के लोगों को इस बार शायद गर्मी का सामना कम करना पड़े या फिर लगातार गर्मी का प्रकोप ना झेलना पड़े।
3: बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है, जिसका असर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और तटीय इलाकों में दिखाई देने लगा है। वहीं राजस्थान, गुजरात और विदर्भ में गर्मी और लू की मार पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से तापमान गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है तो कहीं मध्यम बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे सकती है।

0: देश का मौसम इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आसमान का हर रंग अलग कहानी कह रहा है। कहीं काले बादल धरती को भिगो रहे हैं, कहीं तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो कहीं हवाओं की रफ्तार अचानक मौसम का मिजाज बदल रही है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक और मैदानों से लेकर रेगिस्तान तक प्रकृति ने पूरे देश में अलग अलग तस्वीरें बना दी हैं। प्री मानसून की हलचल अब साफ दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उत्तर श्रीलंका के पास बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ बना चक्रवात समुद्र तल से करीब 6.25 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 दिनों में ये और सक्रिय हो सकता है, जिससे कई हिस्सों में बादलों की गतिविधियां तेज होंगी और बरसात का दायरा बढ़ेगा। दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार और तटीय इलाकों में इसका असर पहले ही नजर आने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई मौसमी तंत्र एक साथ सक्रिय हैं। पश्चिम राजस्थान के आसपास चक्रवाती हवा का प्रभाव है, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर भी वातावरण में हलचल बनी हुई है। इन परिस्थितियों की वजह से कई राज्यों में तेज हवा, बिजली चमकने और बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यही सिस्टम आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के तापमान को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगह पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। हालांकि देश के पश्चिमी भागों की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है।
1: जुहू बीच है, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, अपना मजा मस्ती हर कोई अपने परिवार संग यहाँ पे कर रहा है। लगभग 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का पारा इस समय मुंबई में गर्मी में है। बावजूद इसके थोड़ा सा ठंडापन है। कैसी लग रही है गर्मी? आपका चेहरा तो बिल्कुल एकदम ऐसे सूख गया है।
2: हाँ सर, मैं पहली बार इधर मुंबई आया हूँ इधर बीच पे देखने के लिए कि इधर बहुत से लोग बहुत मजा एंजॉय करते हैं, तो मैं पहली बार आया, मगर इधर तो बहुत हरियाली दिख रही है और बहुत मजा लूट रहे थे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं मुंद्रा कच्छ से, मनोज जोगी मुंद्रा कच्छ से।
1: गर्मी कैसी है?
2: गर्मी तो है, मगर समझ लो गर्मी तो लग रही है, मगर ठंडक का भी एंजॉय ले रहे हैं ना।
0: राजस्थान, गुजरात और विदर्भ के कई इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं।
3: जो पवन का दिशा है पश्चिम से, उत्तर पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति है राज्य में। अभी जो अधिकतम तापमान है अगले 48 घंटा तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल रहेगी, ग्रेजुअल फॉल रहेगी। और कुछ इक्का दुक्का जो आइसोलेटेड प्लेसेस में जो तापमान है, अधिकतम तापमान है 41-45 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने का संभावना रहेगा अगले 2 दिन। और हीटवेव का वार्निंग दिया गया है डे वन डे टू में 13 और 14 मई को। इसमें गुजरात रीजन में येलो वार्निंग दिया गया है। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बनसकांठा, पाटन और बड़ौदा के लिए दिया गया है।
0: कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। तेज गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कुछ क्षेत्रों में हालात गंभीर हीट वेव तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है।
4: राजस्थान मानो इस समय पर भट्टी बन चुका है, जिसमें पूरे राजस्थानी तपते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और राहत कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रही है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में मैं मौजूद हूँ, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर अभी गर्मी की वजह से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे टूरिज्म लगभग ना के बराबर है। पर्यटक यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। वो गर्मी की वजह से पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में जो टूरिज्म है वो इस समय पे बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि गर्मी इसके अंदर बढ़ती जा रही है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो राजस्थान के वेस्ट, साउथ वेस्ट एरियाज में और ईस्ट एरिया में अभी हर जगह पे 45-48 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे गर्म शहर अभी बाड़मेर है जहाँ पे 48.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। उसके साथ में ही राजस्थान के 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर 45 पार रहा है और मिनिमम टेम्परेचर चूरू में दर्ज किया गया है जो कि 21.3 डिग्री सेल्सियस है।
0: राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले सकता है। अनुमान के मुताबिक इन इलाकों में कहीं कहीं बादल छाने, गरज चमक होने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी वातावरण बदला बदला नजर आ सकता है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही जारी रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कई सिस्टम एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। यही कारण है कि कहीं राहत देने वाली बारिश हो रही है, कहीं उमस परेशान कर रही है और कहीं भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनती जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के आसपास सक्रिय हो रहा लो प्रेशर सिस्टम मानसून की शुरुआती गतिविधियों को रफ्तार दे सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस वर्ष अल नीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मानसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है, कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मौसम की दस्तक सुना रही है। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने पिछले 31 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 48 डिग्री को पार पहुंच चुका है और विदर्भ में भी गर्मी बढ़ने का अनुमान है। भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच गुजरात के जामनगर से सुकून देने वाली तस्वीरें भी आई है, जहां बेजुबान परिंदों और जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
0: राजस्थान के बाड़मेर जिले में गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है। मंगलवार को यहां गर्मी ने 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है।
6: पिछले 3 दिनों में आप देखिए पूरे देश के अंदर सबसे अधिक तापमान है वो लगातार बाड़मेर के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है इससे पहले 31 साल पहले यानी 95 के अंदर है वो 12 मई तक है वो तापमान है वो 49 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, यानी 31 साल पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है, टूट गया। और उसके साथ में आप देखिए अब पहली दफा इस सीजन के अंदर देखा गया है कि रेड अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। सीधे तौर पर कहा है कि अगले 48 से 72 घंटे है वो तापमान 2 डिग्री बढ़ सकता है, यानी आप सोचिए 50 के पार है वो लगातार हालत। आप देखिए कई जगहों पर गर्मी इतनी भयंकर है और जिसके कारण से जनजीवन पूरी तरीके से लगातार है वो प्रभावित हो रहा है। मैसेज भेजकर इस बात को लेकर जो आप ये देखिए 13 तारीख को 11:52 से लेकर 14 तारीख को 11:52 यानी 24 घंटों में बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर भीषण गर्मी और जो है वो कैसी गर्मी है इस बार, क्या
7: पूछो मत, बहुत खतरनाक।
6: अच्छा, आप कहाँ गाँव में रहते हो?
7: ये गाँव जोटन के पास
6: बॉर्डर के इलाकों में, तो वहाँ क्या स्थिति है अभी 2-3 दिनों से
7: अंदर ही रहते, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बाहर निकले तो ऊपर धूप और परेशानी और पानी की तो बहुत ही किल्लत,
8: भयंकर गर्मी पड़ रही है।
6: क्या गर्मी में क्या दिक्कत आती है गांव ग्रामीण इलाकों में?
8: ग्रामीण इलाकों में विशेषकर पशुओं के लिए बहुत ज्यादा
9: गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पशुओं का हाल भूंडा हो रहा है।
6: पशुओं
9: की गर्मी में कोई चारों नहीं, कोई पानी नहीं, बिजली व्यवस्था नहीं है।
0: एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में रहने वाले लोगों को मैसेज भेजकर अगले 24 घंटों के लिए सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण विदर्भ में तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है।
3: कि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में जो अधिकतम तापमान है उसमें फर्दर 2 से 3 डिग्री का या फिर किसी किसी स्थान पर 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। और इसको देखते हुए विदर्भ के कुछ जिलों को येलो अलर्ट्स पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर ऐसी पूरी संभावना है कि हीट वेव जैसी परिस्थितियां बन सकती है। वहां का तापमान जो है 45 या 46 तक पहुंच सकता है। और जो मुख्य तौर पर जो जिले हैं जो हीट वेव से प्रभावित हो सकते हैं अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में, वो अकोला है, अमरावती, वर्धा है, जिनका ऐसा एक प्रबल संभावना बन रहा है कि तापमान जो यहाँ का 45 या 46 तक बन सकता है। बाकी के जो जिले हैं जैसे हम बात करें नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, इन जिलों का भी तापमान जो अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए सामान्य से ऊपर बना रहेगा। और इनका भी तो तापमान है अगले आने वाले कुछ दिनों में तापमान जो 43 या 44 तक पहुंचने की पूरी संभावना बन रही है।
0: गर्मी के बीच गुजरात से सुकून देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जामनगर महानगर पालिका का अनोखा प्रयास देखने को मिल रहा है। रणमल तालाब स्थित चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिंजरे में फव्वारे का इंतजाम किया गया है और पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पक्षियों और जानवरों के खाने पीने के पानी और स्वास्थ्य पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जामनगर से दर्शन टक्कर और नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अभी के लिए फिलहाल यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
10: क्या नमक के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है? क्या नमक के प्रयोग से किसी ग्रह को बेहतर किया जा सकता है? क्या किसी का नमक खाने से आप मुश्किल में आ सकते हैं? क्या है नमक के प्रयोग के नियम और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
13: La Que Buena.
12: ESPN Radio.
14: We know LeBron has to be the best player on the planet to
12: get The Daily.
15: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
12: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
16: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
19: उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
6: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत. उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विशोन पर्वत से शुरू होती है यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना. देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन. देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां. 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है.
6: राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश, उत्तम नगर में बारिश के साथ साथ गिरे ओले. बारिश के बौछार से लोगों को मिली राहत, भीषण गर्मी से मिली निजात. दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बारिश की फुहार, तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना. राजधानी के कई इलाकों में हुई बारिश, ओखला इलाके में तेज आंधी के साथ राहत वाली बरसात. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बदला मौसम, झमाझम बारिश से मौसम सुहाना. कर्नाटक के हुबली में राहत वाली बारिश, मौसम हुआ सुहावना. हुबली में बारिश के साथ साथ चली तेज हवाएं, तापमान में आई गिरावट. गोरखपुर में आज शाम 5 बजे अचानक मौसम ने बदली करवट, धूल भरी आंधी के साथ आसमान में छाए काले बादल. रात वाली बारिश से तापमान में आई कमी, लोगों को गर्मी से मिली निजात. नागपुर में गर्मी का येलो अलर्ट, अगले 5 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी. सीबीएसई 12वीं में रांची के भव्य रंजन ने किया कमाल, 9.8% अंक के साथ नेशनल टॉपर्स बनी. भव्या ने इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे शहर में खुशी का माहौल. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का किया ऐलान, इस साल 85.20% छात्र छात्राएं हुए पास. जालंधर की नरेंद्र कौर ने 61 साल की उम्र में पास की 10वीं की परीक्षा, लगभग 77% अंक प्राप्त कर पेश की मिसाल। दिल्ली का सरकारी टीचर, बच्चों की बदल रहा है जिंदगी, पार्क को ही बना दिया पाठशाला, अब तक 12 बच्चों का सरकारी स्कूल में करवाया एडमिशन। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत। कोट भ्रामरी मंदिर में हुई विधि विधान से पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। गढ़वाल के विशोन पर्वत से शुरू होती है यात्रा, 13 जिलों के प्रमुख धामों की परिक्रमा करती है यात्रा। 10,000 किलोमीटर का सफर तय करती जगदीशिला यात्रा, विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखना यात्रा का उद्देश्य। पिछले 25 वर्षों से लगातार निकाली जा रही धार्मिक यात्रा, स्थानीय लोगों ने यात्रियों का किया अभिनंदन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। भगवती नगर में यात्रियों के ठहरने, भोजन, पंजीकरण के लिए व्यापक प्रबंध, सिद्धरा में आधुनिक यात्री निर्माण का निवास का निर्माण अंतिम चरणों में। जम्मू के विधायक अरविंद गुप्ता ने भगवती नगर यात्री निवास का किया निरीक्षण, अधिकारियों को साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए RFID कार्ड और EKYC अनिवार्य। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, भक्तों का आंकड़ा पहुंचा करीब 12 लाख। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, अब तक करीब सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 18,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का आंकड़ा 3 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में कल 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 2 लाख भक्त पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 12 मई को 12,600 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक करीब 3,86,000 पहुंच चुके हैं भक्त। देश की सैन्य सुरक्षा को नई ताकत देने वाली गुड न्यूज, इस हफ्ते के अंत तक देश को मिल सकता है 4th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दिल्ली में कल से शुरू होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, बैठक में रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी होंगे शामिल, पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे लावरोव। सूत्रों के हवाले से खबर, 4th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देश की पश्चिमी सीमा पर किया जाएगा तैनात, S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था अपना दम। 2018 में भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीद का किया समझौता, अहमियत को देखते हुए भारत ने इसी साल 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीद को दी मंजूरी। गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त और कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस वीर अनिरुद्ध वैष्णव गुजरात के नए लोकायुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वादियों से पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित, गोविंद सागर झील और ऊंची पहाड़ियों का नजारा लोगों को आ रहा है बेहद पसंद। बिलासपुर में पर्यटकों को खूब लुभा रहा है नौकायन का रोमांच, झील पर एडवेंचर का अलग मिलता है अनुभव। बिलासपुर में पर्यटन बढ़ाने के लिए सरकार और पर्यटन विभाग लगातार कर रहा है प्रयास, हर मौसम में यहां की प्राकृतिक खूबसूरती होती है देखने लायक। आने वाले समय में यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद, पहाड़ों का सुंदर नजारा लोगों को मोह रहा है मन। अमरेली में नदी के पानी में नहाने का मजा ले रहे हैं शेर का वीडियो वायरल, बढ़ती गर्मी के कारण शेर कर रहे नदियों का रुख। भीषण गर्मी के बीच पक्षियों को राहत देने के लिए जामनगर महानगर पालिका का अनोखा प्रयास, पक्षी घर में परिंदों के लिए किए गए खास इंतजाम। पक्षी घर में करीब 481 से अधिक पक्षी करते हैं निवास, इनमें लव बर्ड, अजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी भी शामिल। महानगर पालिका की टीम 3 दिन में 3 बार करती है पानी का छिड़काव, हर पिंजरे में की गई है विशेष फवारों की व्यवस्था। पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था पर लगातार रखी जा रही है नजर, मौसम को ध्यान में रखते हुए

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर वन स्थान बरकरार रखा। 889 अंकों के साथ दुनिया के टॉप टेस्ट बॉलर बने हुए हैं बुमराह। भारतीय बल्लेबाज अश्विनी जायसवाल आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों के रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचे। जायसवाल के खाते में 750 रेटिंग अंक दर्ज। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाई। गिल अब 730 अंकों के साथ 9वें स्थान पर आए। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर देर रात दतिया पहुंचे। मां बगुलामुखी और वनखंडेश्वर महादेव के किए दर्शन। गौतम गंभीर की पीतांबरा पीठ में है गहरी आस्था। भारत के 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी गौतम गंभीर यहां आए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हनुमान शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान बजरंगबली के विशाल प्रतिमा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। इस दौरान बाइक रैली का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑर्गेनिक खेती से बदल रही किसानों की किस्मत। ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों को हो रहा अच्छा मुनाफा। उधमपुर के रामनगर में दूरदराज गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसान। किसानों को अच्छे मुनाफे के साथ साथ मिल रहा रोजगार। यूपी के सहारनपुर में क्रिकेटर नंदिनी शर्मा के घर पर खुशी का माहौल। विश्व कप टीम के लिए हुआ है नंदिनी शर्मा का चयन। अयोध्या काशी मथुरा के बाद यूपी में अब नाथ कॉरिडोर पर फोकस। बरेली स्थित नाथ परंपरा से जुड़े 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास योजना पर काम शुरू। महाराष्ट्र के बीड में आम की अच्छी पैदावार ने बदली किसान की किस्मत। लाखों रुपए का हुआ मुनाफा। दिल्ली में एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। छात्रों को किया सम्मानित। दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। ओडिशा के कई इलाकों में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से होगी बारिश। तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने पेश की मिसाल। पीएम मोदी ने एसपीजी को अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के दिए निर्देश। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि इसके लिए नई गाड़ियां न खरीदने के निर्देश। पीएम मोदी की अपील पर एक्शन में बीजेपी शासित राज्य योगी सरकार ने सरकारी काफिलों में 50% वाहन घटाने के निर्देश दिए। एमपी में सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के बाद लिया बड़ा फैसला। अपने काफिले से घटाए वाहन। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने का लिया निर्णय। राजस्थान के सीएम ने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला। 10 से 11 की जगह अब सिर्फ 5 गाड़ियों का होगा काफिला। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भी पीएम की अपील का दिख रहा असर। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो में की यात्रा। बोले, आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का करूंगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो और ई रिक्शा का किया सफर। इस दौरान आम लोगों और स्कूली बच्चों से की मुलाकात। पीएम की अपील का असर। गुजरात के राज्यपाल ने हवाई यात्रा छोड़ी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने भी घटाया काफिला। पीएम और सीएम की अपील के बाद भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हटाई काफिले की गाड़ियां। अब सिर्फ एक गाड़ी से चलने का किया ऐलान। आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना अब और महंगा। वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें आज से लागू। सरकार के इस फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना। सरकार ने सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से 10% हुई। गुजरात के कच्छ में शादी के दौरान उड़ाए गए सोने के नोट और सिक्के। हुई बारिश, वीडियो वायरल। कच्छ में लोक संगीत के दौरान पैसे उड़ाने की पुरानी परंपरा है। नोट लूटने के लिए मची होड़। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल को मिला यूए सर्टिफिकेट। 15 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म भूत बंगला ने 26वें दिन धमाकेदार कमाई की। 161 करोड़ पहुंचा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन। अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में पूजा हेगड़े की एंट्री। पहले भी एक दूसरे के साथ कर चुके हैं काम। 22 मई को सलमान और गोविंदा की कई फिल्में दोबारा हो रही हैं रिलीज। सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया और मुझसे शादी करोगी होगी दोबारा रिलीज। वहीं गोविंदा की आंखें और राजा बाबू होगी रिलीज। ईडी के विरोध के बाद सरकारी गवाह बनने से पीछे हटी जैकलीन ठग सुकेश।

0: लॉन्ड्रिंग मामले में की थी अपील। यूनिटरी रोबोटिक्स ने दुनिया का पहला ट्रांसफॉर्मेटेबल ह्यूमनॉइड रोबोट स्विड GD01 किया लॉन्च। यह इंसान को बैठाकर दो पैरों और चार पैरों वाले मोड में बदल सकता है। डेमो वीडियो में कंपनी के CEO खुद GD01 को ऑपरेट करते नजर आए। ये मैका तेजी से दौड़ता है और मुश्किल रास्तों पर आसानी से चलता है। ये अर्बन रोड से लेकर सीढ़ियों और पहाड़ी रास्तों तक चलने में है सक्षम। इसमें लगाया गया है डायनामिक बैलेंस सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर्स जैसी SCI-5 टेक्नोलॉजी अब बनती दिख रही है हकीकत। जरूरत पड़ने पर स्टील बेस्ड बन सकता है GD01। तेजी से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है चीन का रोबोटिक सेक्टर। रोबोट डॉग्स और ह्यूमनॉइड्स के बाद अब मैन्ड मेका कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत। जर्मनी के हार्डवेयर स्टोर में ह्यूमनॉइड रोबोट ग्राहकों को सामान ढूंढने में कर रहा है मदद। ये रोबोट सवालों के जवाब देने के साथ साथ ग्राहकों को सही ठिकाने तक भी ले जाता है। ऑस्ट्रियन एक्सेंट में बात करने वाला रोबोट अप्रैल 2026 से स्टोर में टेस्टिंग पर है। कर्मचारियों की मदद के लिए तैयार किया गया रोबोट। चीन में बनाई रोबोट स्टोर का नक्शा सीख चुका है और ग्राहकों को सीधे करता है उनसे बातचीत। कंपनी के मुताबिक इसकी लागत के हिसाब से इसकी प्रति घंटे की सैलरी करीब 1.70 यूरो। ह्यूमनॉइड रोबोट की कई गतिविधियां रिमोट से होती है कंट्रोल। लगातार ट्रेनिंग से ये रोबोट बनता जा रहा है और भी ज्यादा स्मार्ट। टेलीकॉम स्टोर में वेलकम मैनेजर की भूमिका भी निभा रहा है रोबोट। वहां ये महिला की आवाज में ग्राहकों से करता है बात, उनका करता है स्वागत। चीन के हांगजो में 87 ब्रांड्स और 136 AI रोबोट्स के साथ भविष्य की तकनीक का किया गया प्रदर्शन। यहां इंसानों और रोबोट्स के साथ काम करने के नए मॉडल दिखाए गए। हांगजो के सेंटर में 33 प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीन बनाए गए। यहां रोबोट्स को असली माहौल और वर्चुअल सिस्टम दोनों में किया जा रहा है टेस्ट। AI रोबोट्स के साथ लोगों को मिला काम करने का अनुभव। इस दौरान सर्विस ट्रेनिंग और ह्यूमन रोबोट्स सहयोग की झलक देखने को मिली। हांगजो के सेंटर में रोबोट्स को कई कामों के लिए किया जा रहा है तैयार। चीन में AI तकनीक को लैब से सीधे आम जिंदगी तक पहुंचाने पर हो रहा तेजी से काम। हांगजो तेजी से AI रोबोटिक्स हब के रूप में उभर रहा है। एग्जीबिशन सेंटर ने चीन की एम्बॉडीड इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को नई पहचान दी। हांगकांग की प्रदर्शनी में फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट ने म्यूजिक पर किया शानदार डांस। उसके स्मूथ मूवमेंट्स देखकर लोग हैरान रह गए। चीनी कंपनी एगीबोट का नया रोबोट इंसानों की तरह कर सकता है बातचीत। कंपनी का दावा है कि यह असली साथी जैसा देता है अनुभव। एम्बॉडीड AI समिट में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सबका ध्यान खींचा। रोबोट्स को माना जा रहा है भविष्य की नई इंडस्ट्रियल ताकत। हांगकांग में AI प्लस और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बनेगी नई कमेटी। सरकार अब हेल्थ टेक और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर करेगी फोकस। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने AI से इंडस्ट्री बदलने की रणनीति पेश की। उन्होंने कंपनियों को हांगकांग में निवेश और टेक अपग्रेड के लिए किया आमंत्रित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
6: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज. कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले. तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत. उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा. गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा. कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना. देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा. केदारनाथ धाम में 4.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन. बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन. देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल. केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी. पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां. 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति. मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास. 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन.

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं नमक के बारे में। आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां आती हैं तो नमक के चमत्कारी प्रयोग करके उन परेशानियों का अंत कैसे किया जा सकता है। हम नॉर्मल और आम जीवन में अक्सर नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नमक चमत्कारी नमक कैसे बन सकता है, आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है, तमाम हल और तमाम सॉल्यूशंस पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
1: धन स्थान पर सफेद रंग के दो हाथी, पत्थर के हों, मिट्टी के बने हों, सफेद रंग के होने चाहिए। दो हाथी आमने सामने रखिएगा। ऐसा करने से नियमित रूप से धन आपके पास आता रहेगा। हाथी को घर में रखना हाथी की मूर्ति या हाथी का चित्र शुभता और धन दोनों आपके जीवन में बढ़ा देगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी नमक के बारे में, आपको बताएंगे नमक का चमत्कारी प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है पंडित जी से कि नमक का ज्योतिष में महत्व क्या है और क्यों इतना खास माना जाता है नमक को।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नमक हमारे जीवन में तो मूल्यवान है ही, ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है नमक का? नमक को एक विशेष तरीके का रसायन या केमिकल कहा जा सकता है। नमक कई प्रकार का होता है, इसमें समुद्री नमक सी सॉल्ट और पहाड़ी नमक रॉक साल्ट ये प्रमुख है। पहाड़ी नमक को, रॉक साल्ट को हम सेंधा नमक कहते हैं और व्रत में इसका खूब प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, सी सॉल्ट का भी और रॉक साल्ट का भी। ज्योतिष में नमक का संबंध माना जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। जल से पैदा होता है, जल तत्व की भूमिका है, चंद्रमा इसका स्वामी है और नमकीन स्वाद सॉल्टी टेस्ट का मालिक भी चंद्रमा होता है। इसीलिए ज्यादातर नमक के पीछे चंद्रमा की भूमिका होती है और कुछ मात्रा में शुक्र भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा, ज्यादातर कुंडली का चंद्रमा इससे सीधा प्रभावित होता है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेडिकल कारणों से तो रखनी ही चाहिए, सामान्य जीवन में भी आप नमक का प्रयोग कैसे करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझ करके चलना चाहिए।
0: चलिए, बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से जानने हैं और आप सबके सवाल भी आगे जाके इस सेगमेंट में हम लेंगे, लेकिन बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की। सबसे पहले पहली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं, मेष, वृष और मिथुन। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ

0: आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए, नमक के बारे में आपको तमाम जानकारी हम बता रहे हैं। तो दैनिक जीवन में हम नमक का प्रयोग तो करते ही हैं। दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में आपको सावधानियां क्या बरतनी है, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन पंडित जी आपको बताएंगे कि किस तरह से सावधानियां बरतें और क्या बातों का ख्याल रखें।
0: देखिए, दैनिक जीवन में हम सब नमक का प्रयोग अवश्य करते हैं अपने भोजन में। नमक के प्रयोग में डेली लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए? नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए, मेटल के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में ना रखें। नमक को कभी बर्बाद ना करें, जमीन पर ना गिराएं। जो लोग नमक बर्बाद करते हैं, नमक का नुकसान करते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है और उनको मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं। बहुत प्राचीन समय से ये मान्यता है कि नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। हर व्यक्ति का नमकीन भोजन या नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मजबूरी में आकर, दबाव में या प्रेशर में आकर हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति खराब संस्कारों का है या आपके प्रति अपने मन में अच्छे भाव नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में उसका नमक ग्रहण करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
1: चलिए, बाकी प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। उससे पहले आगे बढ़ते हुए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए बाकी प्रश्न भी पंडित जी से जानते हैं, लेकिन अब लेते हैं आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इस सेगमेंट में आगे बढ़ूं पहले प्रश्न की तरफ, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका इस शो में आप भेज सकते हैं अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है आपके पास?
0: जी, आज का पहला प्रश्न लवली वर्मा ने हमें लिखा है। लवली वर्मा हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1995। जन्म का समय दोपहर में 2:25। जन्म स्थान है आगरा। लवली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? लवली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय आरंभ हो चुका है और साल 2027 के आरंभिक समय में आपका विवाह होना चाहिए। आगरा या आगरा के निकट आपका विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की। कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है वो भी जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी, अगला प्रश्न स्वाति पांडे ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1998। जन्म का समय सुबह के 6:00। जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि मैं अभी मैनेजमेंट के सेक्टर में नौकरी कर रही हूं, क्या मुझे आईटी के सेक्टर में स्विच करना चाहिए? क्या मुझे थोड़ी पढ़ाई करके आईटी में जाने पर ज्यादा लाभ होगा? मेरे भविष्य की क्या स्थिति है? स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट का सेक्टर बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें इसी को अपग्रेड करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड में आईटी आदि के क्षेत्रों में आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको करियर में सफलता मिले, जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
1: चलिए, नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पंडित जी से पूछ लेते हैं। सवाल यह है पंडित जी आपसे कि नमक का ज्योतिष के अनुसार प्रयोग कैसे किया जाए, यानी आमतौर पर जैसे प्रयोग करते हैं उससे अलग कैसे होता है ये?
0: सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग कैसे करें ये तो आपने समझ लिया, अब ज्योतिष के हिसाब से नमक का प्रयोग कैसे करें वो भी जान लीजिए। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पक्की तौर पर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का, सी सॉल्ट का प्रयोग मत करिएगा, वरना ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग करें। मंगल कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ऐसी स्थिति में समुद्री नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा। घर में जहां नमक रखते हैं, जिस डब्बे में, कांच के पात्र में, उसमें 2 लौंग 3 लौंग डालकर हमेशा रखिए। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। बाजार से सस्ता वाला नमक 1 पैकेट 2 पैकेट खरीद लाइए। जब भी घर में पोंछा लगता है उस पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालिए और उस पानी का पोंछा लगवाइए अपने घर में या लगाइए। हल्के नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में खुशियां रहेंगी और घर की तनाव चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। रोज पोंछा लगे 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उस पानी का पोंछा लगाना अच्छा होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपके लिए हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: देखिए, नमक के प्रयोगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया है, लेकिन नमक के ही कुछ और प्रयोग यानी चमत्कारी प्रयोग क्या हैं वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि नमक के प्रयोग से आपको विशेष लाभ कैसे हो सकता है, नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता हो, हमेशा मन में तनाव और चिंता बनी रहती हो, तो नहाने के पानी में एक चुटकी दो चुटकी नमक मिलाकर उस जल से स्नान करें। अगर कमरे में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, कमरे में आपको नींद नहीं आती है, तो पत्थर वाले नमक का एक टुकड़ा कमरे के कोने में, किसी भी कोने में रख दीजिए, कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो, नजर दोष का चक्कर हो, तो सर से 3 बार नमक वार करके बहते पानी में बहाएं या वेशिन का टैप खोलिए, टोटी खोलिए, जब पानी बहने लगे तो वो सर से नमक उतारकर उस पानी में गिरा दीजिए, नजर उतर जाएगी। लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहा हो तो कांच की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक उसके सिरहाने किसी टेबल पर रख दीजिए, हफ्ते हफ्ते भर में पुराने नमक को बहाते रहिए और नया नमक उसमें रख दीजिए, शीघ्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर शुक्र की वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो, अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से लाभ होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से अमावस्या के दिन अगर आप चावल और नमक, थोड़ा सा नमक और चावल, अगर ये अमावस्या के दिन आप दान करें तो पितरों की जो कृपा है वो आपको मिलेगी। और अगर कुंडली में कोई अज्ञात बाधा है तो वो अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का हाल भी आपके साथ पंडित जी साझा करेंगे। मकर, कुंभ और मीन वालों की बारी है, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आपका सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूं कि आपकी कोई भी परेशानी है उसका निवारण आप चाहते हैं, कोई दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन से दर्शक का है?
0: अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 2003, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। कुणाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी कर लिया है, आगे मुझे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे लॉ करना चाहिए, क्या करने पे मुझे सफलता ज्यादा मिलेगी? कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाइए। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये क्षेत्र आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपको कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका भविष्य अच्छा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दर्शकों का अंतिम सवाल ले लेते हैं और कौन सा है अगला प्रश्न पंडित जी, वो भी जान लेते हैं आपसे।
0: जी, अंतिम प्रश्न संध्या शर्मा जी ने हमें लिखा है और संध्या जी हमें मेल लिखती हैं जयपुर, राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1980, जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे, जन्म का स्थान है भरतपुर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग सेक्टर में नौकरी करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, जिस विद्यालय में मैं काम करती हूं काफी समय से लटका हुआ है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा प्रमोशन हो, मेरी उन्नति हो। संध्या जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी प्रमोशन होने में वक्त लगेगा। 2027 के लास्ट में, जून 2027 के बाद आपके प्रमोशन की स्थिति दिख रही है। लगभग 1 साल का समय अभी बाकी है। नौकरी बदलने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका प्रमोशन होगा, यहीं पर आपकी उन्नति होगी और बढ़िया करियर है आपका, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रमोशन अच्छा हो, आप करियर में बेहतर उन्नति कर सकें, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर ये अपने बड़े बुजुर्गों को हमने कहते हुए सुना है कि किसी के भी घर का नमक आपको नहीं खाना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को कई बार आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सच है, ऐसा होता है?
0: देखिए, नमक जो है, किसी भी घर का जो नमक है वो उस घर की तरंगों के बारे में आपको जानकारी देता है। जो लोग वाइब्रेशन पकड़ना जानते हैं, वाइब्रेशन समझते हैं, वो आपके घर का थोड़ा सा नमक देख करके बता सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। दो चीज़ें आपके घर के वाइब्रेशन के बारे में बताती हैं, एक है नमक और एक है चावल। पहले ज़माने में लोग चेक करने के लिए थोड़ा सा घर से चावल मांग के चेक करते थे या नमक मांग के चेक करते थे कि घर के वाइब्रेशन कैसे हैं। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत कामों में लिप्त रहता है, आपके प्रति गलत सोच रखता है अपने मन में, और आप उसके घर का नमकीन खाना खाते हैं या नमक किसी चीज़ में पड़ा हो वो चीज़ ग्रहण करते हैं, यानी सॉल्टी फूड अगर आप खाते हैं, उसके घर का नमक खा लेते हैं, तो आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं निगेटिव एनर्जी की वजह से, और मेंटली भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है अगर आप लगातार उसके घर का नमक खाना शुरू कर दें और वो आपके प्रति मन में बुरा भाव रखे, या वो आदमी निगेटिव हो तो आप उसका खाना खाने के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे गड़बड़ होते जाएंगे। देखिए, इसीलिए खुशियों के मौके पे आप किसी को मना ना करें। एक परंपरा चली ना कि मीठा कराओ मुंह, नमक मत खाओ। मुंह मीठा कराया जाता है क्योंकि मिठाई के अंदर या चीनी के अंदर वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। मिठाई आप किसी की भी खा सकते हैं, मीठी चीज आप किसी के घर भी खा सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के घर का नमकीन खाना खाना है या किसी के घर का नमक खाना है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, आपके प्रति कैसी सोच रखता है, तभी उसके घर का नमकीन खाना या नमक खाना बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी, आपको बताएंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 14 मई को, सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, अब आपका हैप्पी बर्थडे, आपका गुड दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी आपको बताएंगे।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 14 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो जाएगा और धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी, जैसा कि आपको बताते हैं जिज्ञासा के बारे में, तो आज की शो की जिज्ञासा क्या है वो भी आपको जानकारी देते हैं।
0: देखिए आज की जिज्ञासा है कि क्या केवल पूजा के स्थान पर बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए? देखिए ये जरूरी नहीं है कि केवल पूजा के स्थान पर बैठ कर ही पूजा की जाए, लेकिन एक जगह अगर आप फिक्स कर लें और वहां पर पूजा करें तो ज्यादा उत्तम होगा। बार बार जगह बदल करके अगर आप पूजा करेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना कठिन होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 14 मई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आज की गुडलक राशि का वक्त हो चला है आपको बताने का, तो पंडित जी आपको बताएंगे कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों का ये समय अगला 1-1.5 महीना कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है सिंह। इस समय दुर्घटना और चोट चपेट से सावधान रहें। स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना करें।
1: चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां पंडित जी ने आपके साथ साझा की है। अब बारी आ जाती है महा उपाय पर आने की। आज का खास उपाय जो पंडित जी अक्सर आपको बताते हैं, तो आज का खास उपाय पंडित जी क्या है वो भी जान लेते हैं।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के हेल्पर, सहायक, मेट, सर्वेंट आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? शनिवार के दिन घर में नॉनवेज और अल्कोहल का प्रयोग ना करें। शनिवार के दिन अपने सहायकों को, मेड्स को, सर्वेंट आदि को मिठाई दें और शनिवार को रात में लगभग 9 बजे के बाद मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सेवकों और सहायकों से होने वाली समस्या दूर हो जाएगी।
1: तो पंडित जी ये उपाय बताने के लिए और आज का महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
0: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, लेकर एक बेहद खास पेशकश आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है। बीते रविवार को और सोमवार को उन्होंने एक साल तक गोल्ड ना खरीदने के साथ ही ईंधन बचाने की भी अपील 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की थी। पीएम ने बुधवार को खुद इसकी नजीर पेश करते हुए अपने काफिले को डाउनसाइज कर दिया। असर ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत अपने काफिले को कट करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की। कुछ राज्यों के मंत्री तो काफिले की जगह एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील ने देश भर में सत्याग्रह का रूप ले लिया।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और बुधवार को उन्होंने खुद ही अपने काफिले में कटौती का निर्देश देकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने शानदार नजीर भी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को डाउनसाइज करने का निर्देश दे दिया है। खबर ये भी है कि पीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने वाली नोडल एजेंसी SPG ने इस निर्देश के बाद वर्कआउट भी शुरू कर दिया है।
3: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से एक अपील की गई। उस अपील को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लगभग 50% के आसपास गाड़ियों की संख्या जो है कम की गई है उनके द्वारा।
2: अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पीएम के काफिले में कुल कितनी गाड़ियां होती हैं और पीएम के निर्देश के बाद अब कितनी गाड़ियां काफिले में रह जाएंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से पीएम के काफिले की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, जरूरत और सिक्योरिटी के हिसाब से उसे कम या ज्यादा भी किया जाता है। वैसे औसतन प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की तादाद 30 से लेकर 40 के बीच में रहती है। हालांकि जब वो राजधानी दिल्ली में चलते हैं तो काफिले में गाड़ियों की संख्या अमूमन कम होती है। गाड़ियों की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी होती है वे व्यवस्थित क्रम में चलती है। पीएम के काफिले में रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज कंपनी की टॉप लेवल कारें होती हैं और इनमें से किसी एक में वो बैठते हैं। हालांकि वो किस गाड़ी में बैठेंगे ये पहले से तय नहीं होता, आखिर समय में SPG के अधिकारी ये तय करते हैं। काफिले के मुख्य हिस्से के तौर पर एक पायलट गाड़ी होती है जो हूटर बजाते हुए सबसे आगे चलती है और रास्ता साफ करती है। वही एक जैमर गाड़ी भी काफिले में चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से लैस होती है। काफिले की जैमर गाड़ी रिमोट से चलने वाले विस्फोटकों के लिए जरूरी रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। इसके बाद स्कॉर्ट गाड़ियां होती हैं। पीएम जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके आगे पीछे SPG के साथ चलने वाली SUV गाड़ियां शामिल रहती हैं। आपको बता दें कि पीएम के काफिले में कुछ डमी गाड़ियां भी होती हैं। काफिले में डमी गाड़ियां इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि कोई हमले की फिराक में हो तो उसके भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। इसके साथ ही एक हाईटेक एम्बुलेंस भी काफिले का हिस्सा होती है। इसमें लाइव सपोर्ट सिस्टम से लेकर पीएम के ब्लड ग्रुप का खून तक उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे पीछे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के साथ खुफिया विभाग की गाड़ियां रहती हैं। अब जबकि सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने स्वयं काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश दिया है तो SPG के लिए बड़ी चुनौती होगी कि काफिले को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश देकर नजीर बनाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वे को आधा या उससे भी कम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री ने अपने काफिले को काफी ज्यादा डाउन साइज कर दिया है। गृह मंत्री को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और आमतौर पर उनके काफिले में 15 से 20 गाड़ियां चलती हैं। हालांकि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था उस अपील के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से कम कर दी है। एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इसी तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं।
2: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अगर आप दान पुण्य का उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसके बाद उसका असर होना तय है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउन साइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अविलंब अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1, एस्कॉर्ट 2 गाड़ी और साथ ही में बीच में वीआईपी यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पे तैनात कर दी गई है।
2: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले को छोटा किया तो उनकी कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने और बड़ी लकीर खींचते हुए काफिले की जगह सिर्फ एक ही गाड़ी में दफ्तर जाने का फैसला कर लिया।
4: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3 से 4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है। एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, वीआईपी वाहन जिसे कहा जाता था। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से सभी से कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे।
2: उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे जाते हुए ज्यादा ईंधन कंज्यूम करने वाली एसयूवी गाड़ियों की जगह खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने के लिए अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी लोग इसको कम करने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, सब लोगों ने अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पे आज से सभी मंत्रियों ने हम लोग कहा है कि हम लोग अपने गाड़ियों के काफिले को कम कर देंगे।
2: बिहार के कुछ मंत्री तो एक ही वाहन में एक साथ विधानसभा जाते दिखे।
5: प्रधानमंत्री जी का अपील है और तेल को ईंधन को बचाना है तो कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है और जब हम लोग को आना ही है कैबिनेट में तो एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गाड़ी का और कम से कम गाड़ी का जो हम लोग का काफिला होता है 3-4 गाड़ी का उसका हम लोग कम कर वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील किए हैं कैबिनेट में, सब लोग इसको अपनाएंगे और ये अच्छा रहेगा।
2: इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले को डाउन साइज कर लिया है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पीएम के सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील को अमल में लाते हुए मेट्रो में बैठकर सचिवालय पहुंचे।
6: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह निर्णय लिया गया, ये निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
7: क्या मुख्यमंत्री के काफिले को भी कम करने की
6: डेफिनेटली कल ही उन्होंने निर्णय ले लिया और उनके काफिले को आधे से भी ज्यादा कम मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ही कर दिया है।
2: पीएम की अपील को सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी अमल में ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलने का संकल्प लिया है। उदय सामंत बुधवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सफर करते नजर आए। कहते हैं कि दिल से निकली सदाओं का असर दूर तलक होता है। रविवार और सोमवार को पीएम मोदी ने फॉरेक्स बचाने के लिए 7-पॉइंट एजेंडा पेश किया और बुधवार तक उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। उसका असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ सियासी हलके तक ही सीमित है, गैर सियासी लोग भी पीएम की ईंधन बचाने की मुहिम में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जस्टिस तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। उधर गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल न करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। नेतृत्व जब नजीर पेश करता है तो आम जनमानस तक इसका व्यापक असर होता है। पीएम की अपील के बाद ईंधन बचाने को लेकर जिस तरह की मुहिम चल रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे।
2: पीएम मोदी अगर कोई अपील करे तो उसका असर होता है, असर सिर्फ सियासी दायरे में नहीं बल्कि सर्वव्यापक होता है। मोदी की अपील को अमल में लाना केंद्र सरकार के मंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी इसे अलम में ला रहे हैं जिनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल। पीएम मोदी की अपील के बाद जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से अदालत पहुंचकर बेहतरीन मिसाल पेश की। जस्टिस बंसल कड़ी धूप में अपने आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वे सड़क पर ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए बिल्कुल एक आम आदमी जैसे नजर आ रहे थे।
8: दो दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए आज अपने घर से कोर्ट तक जाने के लिए साइकिल का साधन चुना, और अन्यथा भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की प्रेरणा से हम साइकिल चलाते रहे। कभी डुमना रोड जाते हैं, कभी पूरे शहर के अंदर जबलपुर में भी हम माननीय चीफ जस्टिस सचदेव आपके साथ साइकिलिंग की है। तो मुझे कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं लगा साइकिल पर जाना, मान केवल इसलिए कि हम हाईकोर्ट जज साइकिल से नहीं जा सकते, मुझे लगा ऐसा कि खास बात नहीं, इसलिए मैंने आज साइकिल से जाने का।
2: जस्टिस बंसल से जब ये पूछा गया कि हाईकोर्ट का जज होते हुए भी साइकिल पर चलने से आपको कोई परहेज नहीं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है।
8: अब ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस से क्या फर्क पड़ता है, साइकिलिंग तो सभी को करना चाहिए, थोड़ा धूप जरूर रहती है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एक टाइम था साइकिल से लोग रोज 10-10 किलोमीटर जाते थे, हम बहुत गए हैं, आज भी हम रोज सुबह साइकिल चलाते ही चलाते हैं, करीब जो है कहना चाहिए 3-4 किलोमीटर की साइकिलिंग तो हमारी रोज आज भी हो जाती है, बस स्पोर्ट जरूर जा रहे हैं साइकिल से आज।
2: जस्टिस बंसल ने साइकिल से कोर्ट जाकर बेहतरीन नजीर पेश की, तो उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया कि देश के धन की स्थिति सामान्य होने तक वे राज्य के भीतर किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेट प्लस सुरक्षा काफिले को छोड़कर आचार्य देवव्रत ने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दे दिया है।
9: जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
2: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन रसायन इंजन मुक्त दिवस के रूप में मनाएं। राज्यपाल देवव्रत ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। गुजरात के राज्यपाल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वे राजुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आई। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने स्कॉट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नजीर पेश करने के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री तक ईंधन बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
3: सुरक्षा और सादगी को एक साथ लेकर के जो देश के शीर्ष मंत्री हैं, वो लोग चल रहे हैं, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि अब पेट्रोल और डीजल कि दाम विश्व के बाजार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं उसको कैसे भारत में स्थिर रखा जा सकता है। इस तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे, इस तरीके के मेजर्स अगर उठाए जाएंगे तो शायद देश की जनता को किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं होगी और इसी तरीके से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
2: ईंधन बचाने की पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द ही आम जनमानस में भी इसकी व्यापक प्रेरणा जगेगी और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम होगा। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज चौधरी भी डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचे। बस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
7: प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह। सर, विकासपुरी से सचिवालय पहुंचे हैं, लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके, कितना ये मुश्किल रहा और कितना ये आपको लगता है कि आगे कारगर रहने वाला है ये सफर?
10: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे आज बस में बैठ के ये आपसे कह सकता हूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बड़ा आनंद आया। और इस बात का आनंद आया कि पिछले सवा साल में जो हमने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था कि हम डीटीसी को ऐसी सुविधा से युक्त करेंगे कि जिससे आपको समस्याएं ना आए, तो आज मुझे बस में बैठ के महसूस हुआ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक को आना चाहिए, दिल्ली की जनता को आना चाहिए। जो भी सुविधा दिल्ली की जनता चाहेगी वो डीटीसी में और मेट्रो में है और व्यवस्था चाहिए भी पूरा कराएंगे।
7: आप भी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रूटीन में?
10: देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी ईवी खरीदी जाएंगी। कटौती तो हमारी एक गाड़ी चलती है, पुरानी पार्टी की तरह है नहीं जी कि वो पांच पांच गाड़ियां चलाती रहेंगी। मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन में ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीटीसी में और भी बसें हम बढ़ा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ दें।
7: लंबा सफर आपने तय करा, आप लोगों से भी बातचीत करी होगी बस के अंदर, क्या उनको लगा कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, क्या वाकई उनको लगता है कि ये सही अपील है?
10: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, दिल्ली की जनता चाहे भारत की जनता हो, सब इस बात को सहमत हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी सुविधा के साथ होगी, अब मैं आज आया हूँ, मुझे खुद इतना अच्छा आनंद लगा बिना कोई टेंशन के, बिना कुछ के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी तो लोग क्यों नहीं इसको अवेल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कुछ कमियां भी है तो मैं इस बस में बैठ के उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। जैसे कोई कहता है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा, चाहे कोई मेरे ये ड्राइवर बस स्टॉपेज नहीं रुकता है और बस की कमी है, तो वो भी सुविधा हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप ईवी पे कन्वर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेरे गांव का आखिरी कोना, आखिरी गांव, दिल्ली का आखिरी गांव अनथराइज कोली तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसें की सुविधा रहेगी, मेट्रो की सुविधा रहेगी, मेट्रो दिन पर दिन एक्सपेंशन कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए।
7: ये कई देशों के अंदर देखने में आया कि कई सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे और अक्सर हम देखते हैं कि आपका सातवीं मंजिल पर ऑफिस है और सातवीं मंजिल आप सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, क्या वो भी कंटिन्यू रहेगा आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल?
10: स्वाभाविक है, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से, सालों से इसको फॉलो कर रहा हूं कि जितना कम लिफ्ट इस्तेमाल कर सकूं वो मैं करता हूं और वही उस पर लगा ही रहूंगा जी, कंटिन्यू रहेगा।
7: शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सचिवालय पहुंचे अपने दफ्तर के अंदर। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेरा दिल्ली।
11: Listen. listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
12: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
11: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
13: You're listening to MSNBC.
11: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
14: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: राज्य के जूनागढ़ का गीर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जा रही हैं और इस कला को देख मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बढ़ा है।
15: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
16: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेके बड़ी तक मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
15: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है, यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात यह है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
16: 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा मित्र है सुरेश बा रूपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
15: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं, यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर सासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
17: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के
0: शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा गुजरात के सासन गिर की दिव्य कला की भी हो रही है।
18: चारधाम की यात्रा में दिन पर दिन यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट खूब आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते यहां यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इससे यहां कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, यहां मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी भक्तों से भरा हुआ है, यहां हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या 2 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो गंगोत्री धाम में भी मंगलवार 12 मई तक श्रद्धालुओं की संख्या 1,94,000 से अधिक पहुँच चुकी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास में चल रहा ये काम उसी तैयारी का हिस्सा है, चाहे बिल्डिंग की मरम्मत का काम हो या साफ सफाई का, सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के यहाँ ठहरने, बिजली पानी से लेकर भोजन समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का पूरा फोकस है, उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जन प्रतिनिधि भी जायजा लेते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अमरनाथ यात्री यहां पहुंचने के बाद आगे कश्मीर की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बागेश्वर जिले के इन 2 प्रमुख पर्यटन स्थल की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से शाम को हो रही बारिश से यहां का मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमने के साथ ही पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही झील में नौकायान का रोमांच का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी घर में 481 से ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, जिनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक पिंजरे में फव्वारों की व्यवस्था की गई है, साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि यहाँ रहने वाले इन देशी विदेशी पक्षियों को ज्यादा तापमान में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासन गिर की एशियाई शेरों को लेकर एक अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों से दिव्य तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि इस कला के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सासन गिर में पिछले 20 से 25 साल से ये खास कला देखने को मिल रही है, जिससे लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी संख्या में छोटी कीले लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तस्वीरें तैयार की जाती हैं, जिसमें एशियाई शेरों की तस्वीरें पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसे खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। शेरों के अलावा देवी देवताओं, संत महापुरुषों और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें भी इस आर्ट में बनाई जाती हैं और अगर किसी खास तस्वीर या डिजाइन की डिमांड होती है तो वो भी तैयार की जाती है। तस्वीरों की कीमत 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
0: और अब बात गूगल मैप की, जो कि अब देगा जानलेवा मोड़ों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स का अलर्ट। जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा कर रहे हैं तो आप एक क्लिक पर देख सकेंगे कि आगे कहां कहां दुर्घटना संभावित पॉइंट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि आप अलर्ट रहकर यात्रा कर सकें। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही रेंज के सभी नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे तमाम कारणों से इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से लोग अब इसे एक्सप्रेसवे की जगह डेथ वे यानी मौत का रास्ता तक कहने लगे हैं। लिहाजा राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। इसके तहत जगह जगह पर QR कोड लगाए गए हैं और उन QR कोड को स्कैन करने के बाद सफर करने वाले लोगों को इस हाईवे पर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह सुविधा गूगल मैप पर आने वाली है और इसके बाद जैसे ही वो गूगल मैप पर इस हाईवे की लोकेशन लगाएंगे उनको हादसों की जानकारी मिल पाएगी। इस हाईवे पर लैंड सिस्टम लागू हो चुका है। लैंड सिस्टम लागू होने के बाद सड़क हादसों में खासी कमी आई है, तो अब इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों के माने तो आगामी दिनों में सड़क हादसों में खासी कमी आएगी।
0: जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अलवर समेत जयपुर रेंज के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। वाहन चालकों को GPS और मैप के माध्यम से इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वो सतर्क होकर वाहन चला सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।
2: लेन सिस्टम का अभी हमने एक स्टडी किया था कि पिछले जो लास्ट के 8 महीने थे और अभी के जो 8 महीने जब लेन सिस्टम चला है इसके कंपेरिजन करने पे क्या फर्क पड़ा है एक्सीडेंट्स पे या डेथ्स पे या घायलों पे, तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। 40 डेथ कम हुए थे, 109 घायल कम हुए थे, तो 40 डेथ बहुत बड़ी बात होती है 8 माह में कम होना, और उसके साथ एक्सीडेंट भी लगभग 55 के आसपास कम हुए थे। इसको हम लोग जो कोटपुतली बैरोड जो दिल्ली अजमेर वाला रूट है उस पर अजमेर रेंज में बहुत गंभीरता से चला रहे हैं, और एनी पे भी हमने शुरू किया है अभी। इसमें जो ITMS था उसमें पहले लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी रिक्वेस्ट करके जुड़वा दिया है। हॉटस्पॉट्स जो थे उसके लिए हमने QR कोड जारी किया था, जिसको स्कैन करने पर जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट आपको पहले दिख जाएंगे, तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको गूगल मैप पे अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देंगे।
0: IG राहुल प्रकाश ने ये भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो जोन जहां पिछले 3 साल में 10 एक्सीडेंट हुए हों, ऑरेंज जोन जहां पिछले 3 साल में 10 से 20 एक्सीडेंट हुए हों, रेड जोन जहां पिछले 3 साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों। मिशन सेफर रोड के तहत ब्लैक स्पॉट को मैप पर ऐड करने के लिए पुलिस ने गूगल को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर गूगल ने सहमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में इन्हें मैप पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन हाईवेज पर यात्रा के दौरान अगर मैप ऑन करेंगे तो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे और आपको अलर्ट भी मिलेगा। हाल ही में IG राहुल प्रकाश ने रेंज के सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सर्वे कराया था। इसमें 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए, जहां पिछले 3 साल में 1108 लोगों ने जान गंवाई। इन्हें दुरुस्त कराने के लिए इससे जुड़े विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इनमें रेड जोन वाले 6 स्पॉट्स हैं जहां 162 मौतें हुई, ऑरेंज जोन वाले 37 स्पॉट पर 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह येलो जोन वाले 78 स्पॉट पर 471 लोगों की जान जा चुकी है।
2: SP साहब दौसा और SP साहब अलवर दोनों लगातार एनएचआई के संपर्क में हैं। अलवर SP साहब ने तो उनका एक मोबाइल लेकर के हाईवे मोबाइल भी विशेष तौर पर इन्हीं के ऊपर चला रखा है। SP साहब दौसा को भी अभी यही निर्देश दिए गए कि वो भी संपर्क करके जो हाईवे मोबाइल एनएचआई के हैं उसमें पुलिस का जाप्ता लगा करके और उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखें, जिससे कि जो अनुशासन है रोड का वो बना रहे।
0: लिहाजा लोगों को सतर्क करने के लिए पहले QR कोड की व्यवस्था शुरू की गई थी।

0: जानकारी मिल जाती थी। अब पुलिस एक कदम आगे बढ़ते हुए इन ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर मार्क कर रही है। इससे वाहन चालक नेविगेशन के दौरान नोटिफिकेशन और वॉइस अलर्ट के जरिए पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे किस कैटेगरी का ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है। तय लेन और स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर ऑनलाइन चालान होगा। इसके लिए पुलिस ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली लेन बाहरी वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी लेन मध्यम गति के वाहनों के लिए है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर चलेंगे। तीसरी लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही चौथी लेन ओवरटेकिंग या आपातकालीन वाहनों के लिए रखी गई है। हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइविंग नियमों के पोस्टर लगाकर जागरूकता बढ़ाई है और ओवर स्पीडिंग पर निगरानी के लिए कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। पहले चरण में वाहन चालकों को इस सिस्टम की जानकारी दी गई थी और अब चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों के अनुसार पहले एक्सप्रेसवे पर किसी भी लेन में कोई भी वाहन चलने लगता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी की गई कटौती। चलिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
2: सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल परीक्षा में कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं। ये पिछले साल से 3% कम है। 2026 के रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। नतीजों के मुताबिक कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। वहीं 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में सराय रंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार में बिहार सहित दूसरे राज्यों के 15 से अधिक कॉलेजों के 280 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी तकनीकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। इसमें कुल 14 तकनीकी और गैर तकनीकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कई आकर्षक इवेंट्स शामिल रहे।
1: और अब बात गोल्ड के स्मार्ट ऑप्शन की। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल सोना नहीं खरीदने की अपील की है। तो अगर आप भी सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सोने के गहनों का विकल्प मौजूद है। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है, जो लोगों को लुभा रहे हैं, लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई है।

0: ईरान और अमेरिका युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर अब दिखने लगा है। लिहाजा लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और टशन में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नजरें उस विकल्प पर आकर टिक गई हैं जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित हो। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती।
1: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज़ करवाने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से, अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा

0: रही हैं, और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडी होने से लोगों को ज्यादा लुभाती है।
0: मैम, मेरी खुद की वेडिंग है, तो मतलब मेरे को अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
2: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल क्वाल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देखकर और लेकर।
1: इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैरिज पार्टी या रोजाना भी पहन सकते हैं, या यूं कहें कि यहाँ की दुकानों में हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल मिल जाएंगे।
3: बहुत ज्यादा कीमत में हम एक दो सेट ही ले पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल कस्टमाइज करके लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है हमें, और हमारे पास ज़्यादा सेट हो जाते हैं।
4: जैसे गोल्ड खरीदना नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं और सेफ भी रहता है।
1: ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात, जबकि गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीद कर अपने फैशन को पूरा किया जा सकता है।
5: तो पहले भी लोगों को यही सजेस्ट करता था कि ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है, इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए, और हम बनाते भी ये फोटोग्राफी के हिसाब से, ये बहुत रिच लुक देती है।
0: अच्छा, रेंट का भी एक ऑप्शन होता है, क्या आपके पास में वो अवेलेबल है?
5: यस, बिल्कुल, हम ब्राइडल ज्वेलरी रेंट पे ही देते हैं।
1: दुकानदारों के मुताबिक गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी दिखती है।
6: इमिटेशन ज्वेलरी तो लोग अब बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदने लग गए हैं, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड की, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कैरी करने के लिए भी अच्छी है, कहीं जाने आने के लिए भी अच्छी, और शादी ब्याह के लिए भी अच्छी है, तो इसका मार्केट तो बहुत अच्छा ही है।
0: और इसका,
6: हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप 3-4 साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ये ना, तो इट्स गुड। हाँ, तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1-2 लाख में आता है, ये फर्क तो आता ही है।
1: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
7: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, और दूसरा सेफ रहता है, ट्रैवल में अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है, और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता, और सोना अभी जो रेट बढ़ा है बहुत टू मच, मतलब ऐसा मन भी नहीं करता।
1: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है, ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी।
8: बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है कि वो रियल गोल्ड हो या ब्रास हो, किसी को फ़र्क पता नहीं चलेगा। और सबसे ख़ास बात कि ये जो ब्रास है ये आपके शरीर पे इस तरीके से पहनेंगे तो ना ही ये टार्निश होगा लंबे समय तक, साथ ही साथ में ये जो एंटी एलर्जिक मेटल है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी समय तक पहन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आप अपनी ज्वेलरी कैरी करते हैं, आप कहीं पे आप उसको लॉक करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर लॉकर नहीं हो तो भी आप सेफ हैं, आपको डर नहीं है क्योंकि सेफ रहेगी, रियल ज्वेलरी नहीं है, रियल दिखने वाली बिल्कुल है, लुक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो डर कोई बना नहीं रहेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन हार्म नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रोज जो हैं वो अभी इस समय पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि अभी एक बार के लिए रुक जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोई भी शादी हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस समय में मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं, जो कि एक मैं मानती हूँ फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ जयपुर।
9: संजय दत्त की नई फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़।
10: 1975,
11: इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
10: आपके लीडर्स इंडिया।
12: संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हुई पास। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, यानी ये फिल्म 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए है। इस बात की ओर ये इशारा है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले मुद्दे गंभीर और संवेदनशील हो सकते हैं।
10: आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट।
5: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोचे विकी डिबेट।
12: ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिजीत मोहन निर्देशित फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नवाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी हैं।
13: सच बनाना होता है।
5: अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज कल के सो कॉल लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते।
12: एक ऐसी फिल्म जिसका नाम अभी भले ही सामने नहीं आया है, लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर ये अनटाइटल्ड फैमिली एंटरटेनर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी को इस फिल्म के लिए दिलराजू साथ लेकर आए हैं। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में दिखेंगी। विजय राज और सुदेश लहरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा शेड्यूल हाल ही में केरलम में पूरा हुआ है। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। इवेंट के आगाज में कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया ने वॉक करते हुए शानदार लुक दिया। आलिया के अलावा उर्वशी रौतेला ने भी इस इंटरनेशनल इवेंट में लगातार 5वीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स के साथ हर साल भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी साफ बता रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। इस इवेंट में AI का जलवा भी देखने को मिल रहा है। AI रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
9: न्यूज पथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
14: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतर कर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
15: यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
14: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
9: न्यूज़पथ के सफर में रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आज अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। इन कीमतों में के बढ़ने की वजह केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 और 1 किलो चांदी की कीमत 22,000 रुपए बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,000 तक पहुंच गया और 1 किलो सोने चांदी का भाव 2,99,000 रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने फैसला अमेरिकी और ईरान के जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के मद्देनजर लिया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। दरअसल भारत में लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे विदेश से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाने लगता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले से आपको महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी अब कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने भी सराफा व्यापारियों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
16: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
17: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
18: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
19: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।

0: देख रहे हैं 6 बजे का जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव लेकर एक बेहद खास पेशकश आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है। बीते रविवार को और सोमवार को उन्होंने 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने के साथ ही ईंधन बचाने की भी अपील 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की थी। पीएम ने बुधवार को खुद इसकी नजीर पेश करते हुए अपने काफिले को डाउन साइज कर दिया। असर ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत अपने काफिले को कट करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की। कुछ राज्यों के मंत्री तो काफिले की जगह एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील ने देश भर में सत्याग्रह का रूप ले लिया।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और बुधवार को उन्होंने खुद ही अपने काफिले में कटौती का निर्देश देकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने शानदार नजीर भी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश दे दिया है। खबर ये भी है कि पीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने वाली नोडल एजेंसी SPG ने इस निर्देश के बाद वर्कआउट भी शुरू कर दिया है।
3: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से एक अपील की गई। उस अपील को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लगभग 50% के आसपास गाड़ियों की संख्या जो है कम की गई है उनके द्वारा।
2: अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पीएम के काफिले में कुल कितनी गाड़ियां होती हैं और पीएम के निर्देश के बाद अब कितनी गाड़ियां काफिले में रह जाएंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से पीएम के काफिले की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, जरूरत और सिक्योरिटी के हिसाब से उसे कम या ज्यादा भी किया जाता है। वैसे औसतन प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की तादाद 30 से लेकर 40 के बीच में रहती है। हालांकि जब वो राजधानी दिल्ली में चलते हैं तो काफिले में गाड़ियों की संख्या अमूमन कम होती है। गाड़ियों की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी होती है वे व्यवस्थित क्रम में चलती है। पीएम के काफिले में रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज कंपनी की टॉप लेवल कारें होती हैं और इनमें से किसी एक में वो बैठते हैं। हालांकि वो किस गाड़ी में बैठेंगे ये पहले से तय नहीं होता, आखिर समय में SPG के अधिकारी ये तय करते हैं। काफिले के मुख्य हिस्से के तौर पर एक पायलट गाड़ी होती है जो हूटर बजाते हुए सबसे आगे चलती है और रास्ता साफ करती है। वही एक जैमर गाड़ी भी काफिले में चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से लैस होती है। काफिले की जैमर गाड़ी रिमोट से चलने वाले विस्फोटकों के लिए जरूरी रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। इसके बाद स्कॉर्ट गाड़ियां होती हैं। पीएम जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके आगे पीछे SPG के साथ चलने वाली SUV गाड़ियां शामिल रहती हैं। आपको बता दें कि पीएम के काफिले में कुछ डमी गाड़ियां भी होती हैं। काफिले में डमी गाड़ियां इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि कोई हमले की फिराक में हो तो उसके भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। इसके साथ ही एक हाईटेक एम्बुलेंस भी काफिले का हिस्सा होती है। इसमें लाइव सपोर्ट सिस्टम से लेकर पीएम के ब्लड ग्रुप का खून तक उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे पीछे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के साथ खुफिया विभाग की गाड़ियां रहती हैं। अब जबकि सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने स्वयं काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश दिया है, तो एसपीजी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि काफिले को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश देकर नजीर बनाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वे को आधा या उससे भी कम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री ने अपने काफिले को काफी ज्यादा डाउन साइज कर दिया है। गृह मंत्री को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और आमतौर पर उनके काफिले में 15 से 20 गाड़ियां चलती हैं। हालांकि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था उस अपील के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से कम कर दी है। एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इसी तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं।
2: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अगर आप दान पुण्य का उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसके बाद उसका असर होना तय है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउन साइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अविलंब अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1 एस्कॉर्ट 2 गाड़ी और साथ ही में बीच में वीआईपी यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस। लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पे तैनात कर दी गई है।
2: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले को छोटा किया तो उनकी कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने और बड़ी लकीर खींचते हुए काफिले की जगह सिर्फ एक ही गाड़ी में दफ्तर जाने का फैसला कर लिया।
4: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3 से 4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है। एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, वीआईपी वाहन जिसे कहा जाता था। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से सभी से कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे।
2: उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे जाते हुए ज्यादा ईंधन कंज्यूम करने वाली एसयूवी गाड़ियों की जगह खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने के लिए अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी लोग इसको कम करने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल सब लोगों ने अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पे आज से सभी मंत्रियों ने हम लोग कहा है कि हम लोग अपने गाड़ियों के काफिले को कम कर देंगे।
2: बिहार के कुछ मंत्री तो एक ही वाहन में एक साथ विधानसभा जाते दिखे।
5: प्रधानमंत्री जी का अपील है और तेल को ईंधन को बचाना है तो कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है और जब हम लोग को आना ही है कैबिनेट में तो एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गाड़ी का और कम से कम गाड़ी का जो हम लोग का काफिला होता है 3-4 गाड़ी का उसका हम लोग कम कर वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील किए हैं कैबिनेट में, सब लोग इसको अपनाएंगे और ये अच्छा रहेगा।
2: इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले को डाउन साइज कर लिया है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पीएम के सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील को अमल में लाते हुए मेट्रो में बैठकर सचिवालय पहुंचे।
6: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये निर्णय लिया गया, ये निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
7: क्या मुख्यमंत्री के काफिले को भी कम करने की
6: डेफिनेटली कल ही उन्होंने निर्णय ले लिया और उनके काफिले को आधे से भी ज्यादा कम मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं ही कर दिया है।
2: पीएम की अपील को सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी अमल में ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलने का संकल्प लिया है। उदय सामंत बुधवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सफर करते नजर आए। कहते हैं कि दिल से निकली सदाओं का असर दूर तलक होता है। रविवार और सोमवार को पीएम मोदी ने फॉरेक्स बचाने के लिए 7-पॉइंट एजेंडा पेश किया और बुधवार तक उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। उसका असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ सियासी हलके तक ही सीमित है, गैर सियासी लोग भी पीएम की ईंधन बचाने की मुहिम में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जस्टिस तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। उधर गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल न करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। नेतृत्व जब नजीर पेश करता है तो आम जनमानस तक इसका व्यापक असर होता है। पीएम की अपील के बाद ईंधन बचाने को लेकर जिस तरह की मुहिम चल रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे।

0: पीएम मोदी अगर कोई अपील करे तो उसका असर होता है, असर सिर्फ सियासी दायरे में नहीं बल्कि सर्वव्यापक होता है। मोदी की अपील को अमल में लाना केंद्र सरकार के मंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी इसे अलम में ला रहे हैं जिनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल। पीएम मोदी की अपील के बाद जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से अदालत पहुंचकर बेहतरीन मिसाल पेश की। जस्टिस बंसल कड़ी धूप में अपने आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वे सड़क पर ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए बिल्कुल एक आम आदमी जैसे नजर आ रहे थे।
1: दो दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। किसी बात के मध्य में जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए आज अपने घर से कोर्ट तक जाने के लिए साइकिल का साधन चुना, और अन्यथा भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की प्रेरणा से हम साइकिल चलाते रहे। कभी डुमना रोड जाते हैं, कभी पूरे शहर के अंदर जबलपुर में भी हम माननीय चीफ जस्टिस सचदेवा साहब के साथ साइकिलिंग की है। तो मुझे कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं लगा साइकिल पर जाना, केवल इसलिए कि हम हाईकोर्ट जज साइकिल से नहीं जा सकते, मुझे लगा ऐसा कि खास बात नहीं, इसलिए मैंने आज साइकिल से जाने का।
0: जस्टिस बंसल से जब ये पूछा गया कि हाईकोर्ट का जज होते हुए भी साइकिल पर चलने से आपको कोई परहेज नहीं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है।
1: अब ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस से क्या फर्क पड़ता है, साइकिलिंग तो सभी को करना चाहिए। थोड़ा धूप जरूर रहती है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एक टाइम था साइकिल से लोग रोज 10-10 किलोमीटर जाते थे। हम बहुत गए हैं, आज भी हम रोज सुबह साइकिल चलाते ही चलाते हैं, करीब जो है कहना चाहिए 3-4 किलोमीटर की साइकिलिंग तो हमारी रोज आज भी हो जाती है, बस स्पोर्ट जरूर जा रहे हैं साइकिल से आज।
0: जस्टिस बंसल ने साइकिल से कोर्ट जाकर बेहतरीन नजीर पेश की, तो उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया कि देश के धन की स्थिति सामान्य होने तक वे राज्य के भीतर किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेट प्लस सुरक्षा काफिले को छोड़कर आचार्य देवव्रत ने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दे दिया है।
2: जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन रसायन इंजन मुक्त दिवस के रूप में मनाएं। राज्यपाल देवव्रत ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। गुजरात के राज्यपाल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वे राजुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आई। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने स्कॉट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नजीर पेश करने के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री तक ईंधन बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
3: सुरक्षा और सादगी को एक साथ लेकर के जो देश के शीर्ष मंत्री हैं, वो लोग चल रहे हैं, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम विश्व के बाजार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको कैसे भारत में स्थिर रखा जा सकता है। इस तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे, इस तरीके के मेजर्स अगर उठाए जाएंगे, तो शायद देश की जनता को किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरीके से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
0: ईंधन बचाने की पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द ही आम जनमानस में भी इसकी व्यापक प्रेरणा जगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम होगा। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज चौधरी भी डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचे। बस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
5: प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह। सर, विकासपुरी से सचिवालय पहुंचे हैं, लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके, कितना ये मुश्किल रहा और कितना ये आपको लगता है कि आगे कारगर रहने वाला है ये सफर?
6: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे आज बस में बैठ के ये आपसे कह सकता हूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बड़ा आनंद आया। और इस बात का आनंद आया है कि पिछले 1.25 साल में जो हमने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था कि हम डीटीसी को ऐसी सुविधा से युक्त करेंगे कि जिससे आपको समस्याएं ना आए, तो आज मुझे बस में बैठ के महसूस हुआ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक को आना चाहिए, दिल्ली की जनता को आना चाहिए। जो भी सुविधा दिल्ली की जनता चाहेगी वो डीटीसी में और मेट्रो में है, और व्यवस्था चाहिए भी पूरा कराएंगे।
5: आप भी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रूटीन में?
6: देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए, मैं डीटीसी की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी ईवी खरीदी जाएंगी, कटौती तो हमारी एक गाड़ी चलती है, पुरानी पार्टी की तरह है नहीं जी कि वो 5-5 गाड़ियां चलाती रहेंगे। मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन में ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीटीसी में और भी बसें हम बढ़ा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ दें।
5: लंबा सफर आपने तय करा, आप लोगों से भी बातचीत करी होगी बस के अंदर, क्या उनको लगा कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, क्या वाकई उनके वो लगता है कि ये सही अपील है?
6: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, दिल्ली की जनता चाहे वो भारत की जनता हो, सब इस बात को सहमत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी सुविधा के साथ होगी, अब मैं आज आया हूँ, मुझे खुद इतना अच्छा आनंद लगा बिना कोई टेंशन के, बिना कुछ के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी तो लोग क्यों नहीं ले इसको अवेल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कुछ कमियां भी है तो मैं इस बस में बैठ के उसको दूर करने का काम कर रहा हूं। जैसे कोई कहता है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा, चाहे कोई मेरे ये ड्राइवर बस स्टॉपेज नहीं रुकता है और बस की कमी है, तो वो भी सुविधा हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप ईवी पे कन्वर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेरे गांव का आखिरी कोना, आखिरी गांव, दिल्ली का आखिरी गांव अनथराइज कॉलोनी तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसें की सुविधा रहेगी, मेट्रो की सुविधा रहेगी, मेट्रो दिन पर दिन एक्सपेंशन कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए।
5: ये कई देशों के अंदर देखने में आया कि कई सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अक्सर हम देखते हैं कि आपका सातवीं मंजिल पर ऑफिस है और सातवीं मंजिल आप सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, क्या वो भी कंटिन्यू रहेगा आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल?
6: स्वाभाविक है, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ कि जितना कम लिफ्ट इस्तेमाल कर सकूँ वो मैं करता हूँ और वही उस पर लगा ही रहूंगा जी, कंटिन्यू रहेगा।
5: शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह, दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सचिवालय पहुंचे अपने दफ्तर के अंदर। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेरा दिल्ली।
7: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: आगे जूनागढ़ का गिर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जा रही हैं, और इस कला को देख मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बढ़ा है।
9: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माताजी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
10: लायन का गौर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर, सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें है चर्चा गुजरात के सासन गिर की दिव्य कला की भी हो रही है।
12: चारधाम की यात्रा में दिन पर दिन यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट खूब आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते यहां यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इससे यहां कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। यहां मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी भक्तों से भरा हुआ है। यहां हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या 2 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो गंगोत्री धाम में भी मंगलवार 12 मई तक श्रद्धालुओं की संख्या 1,94,000 से अधिक पहुँच चुकी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास में चल रहा ये काम उसी तैयारी का हिस्सा है। चाहे बिल्डिंग की मरम्मत का काम हो या साफ सफाई का, सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के यहाँ ठहरने, बिजली पानी से लेकर भोजन समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का पूरा फोकस है, उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जन प्रतिनिधि भी जायजा लेते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अमरनाथ यात्री यहां पहुंचने के बाद आगे कश्मीर की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बागेश्वर जिले के इन 2 प्रमुख पर्यटन स्थल की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से शाम को हो रही बारिश से यहां का मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमने के साथ ही पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही झील में नौकायान का रोमांच का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी घर में 481 से ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, जिनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक पिंजरे में फव्वारों की व्यवस्था की गई है। साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ रहने वाले इन देशी विदेशी पक्षियों को ज्यादा तापमान में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासनगिर की एशियाई शेरों को लेकर एक अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों से दिव्य तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि इस कला के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सासनगिर में पिछले 20 से 25 साल से ये खास कला देखने को मिल रही है, जिससे लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी संख्या में छोटी कीले लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तस्वीरें तैयार की जाती हैं, जिसमें एशियाई शेरों की तस्वीरें पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसे खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। शेरों के अलावा देवी देवताओं, संत महापुरुषों और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें भी इस आर्ट में बनाई जाती हैं, और अगर किसी खास तस्वीर या डिजाइन की डिमांड होती है तो वो भी तैयार की जाती है। तस्वीरों की कीमत 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
4: और अब बात गूगल मैप की, जो कि अब देगा जानलेवा मोड़ों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स का अलर्ट। जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा कर रहे हैं तो आप एक क्लिक पर देख सकेंगे कि आगे कहां कहां दुर्घटना संभावित पॉइंट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि आप अलर्ट रहकर यात्रा कर सके। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही रेंज के सभी नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे तमाम कारणों से इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से लोग अब इसे एक्सप्रेसवे की जगह डेथवे यानी मौत का रास्ता तक कहने लगे हैं। लिहाजा राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। इसके तहत जगह जगह पर QR कोड लगाए गए हैं और उन QR कोड को स्कैन करने के बाद सफर करने वाले लोगों को इस हाईवे पर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह सुविधा गूगल मैप पर आने वाली है और इसके बाद जैसे ही वो गूगल मैप पर इस हाईवे की लोकेशन लगाएंगे उनको हादसों की जानकारी मिल पाएगी। इस हाईवे पर लैंड सिस्टम लागू हो चुका है। लैंड सिस्टम लागू होने के बाद सड़क हादसों में खासी कमी आई है, तो अब इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों के माने तो आगामी दिनों में सड़क हादसों में खासी कमी आएगी।
0: जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अलवर समेत जयपुर रेंज के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। वाहन चालकों को GPS और मैप के माध्यम से इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वो सतर्क होकर वाहन चला सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।
2: लेन सिस्टम का अभी हमने एक स्टडी किया था कि पिछले जो लास्ट 8 महीने थे और अभी के जो 8 महीने जब लेन सिस्टम चला है इसके कंपेरिजन करने पे क्या फर्क पड़ा है एक्सीडेंट्स पे या डेथ्स पे या घायलों पे, तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। 40 डेथ कम हुए थे, 109 घायल कम हुए थे, तो 40 डेथ बहुत बड़ी बात होती है 8 माह में कम होना, और उसके साथ एक्सीडेंट भी लगभग 55 के आसपास कम हुए थे। इसको हम लोग जो कोटपुतली बैरोड जो दिल्ली अजमेर वाला रूट है उस पर अजमेर रेंज में बहुत गंभीरता से चला रहे हैं और एनी पे भी हमने शुरू किया है। अभी इसमें जो ITMS था उसमें पहले लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी रिक्वेस्ट करके जुड़वा दिया है। हॉटस्पॉट्स जो थे उसके लिए हमने QR कोड जारी किया था जिसको स्कैन करने पर जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट आपको पहले दिख जाएंगे तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद ये सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको गूगल मैप पर अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देंगे।
0: IG राहुल प्रकाश ने ये भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो जोन जहां पिछले 3 साल में 10 एक्सीडेंट हुए हों, ऑरेंज जोन जहां पिछले 3 साल में 10 से 20 एक्सीडेंट हुए हों, रेड जोन जहां पिछले 3 साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों। मिशन सेफर रोड के तहत ब्लैक स्पॉट को मैप पर ऐड करने के लिए पुलिस ने गूगल को चिट्ठी लिखी थी जिस पर गूगल ने सहमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में इन्हें मैप पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन हाईवेज पर यात्रा के दौरान अगर मैप ऑन करेंगे तो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे और आपको अलर्ट भी मिलेगा। हाल ही में IG राहुल प्रकाश ने रेंज के सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सर्वे कराया था। इसमें 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए जहां पिछले 3 साल में 1108 लोगों ने जान गंवाई। इन्हें दुरुस्त कराने के लिए इससे जुड़े विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इनमें रेड जोन वाले 6 स्पॉट्स हैं जहां 162 मौतें हुई, ऑरेंज जोन वाले 37 स्पॉट पर 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह येलो जोन वाले 78 स्पॉट पर 471 लोगों की जान जा चुकी है।
2: SP साहब दौसा और SP साहब अलवर दोनों लगातार एनसीआई के संपर्क में हैं। अलवर SP साहब ने तो उनका एक मोबाइल लेकर के हाईवे मोबाइल भी विशेष तौर पर इन्हीं के ऊपर चला रखा है। SP साहब दौसा को भी अभी यही निर्देश दिए गए कि वो भी संपर्क करके जो हाईवे मोबाइल एनसीआई के हैं उसमें पुलिस का जाप्ता लगा करके और उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखें जिससे कि जो अनुशासन है रोड का वो बना रहे।
0: लिहाजा लोगों को सतर्क करने के लिए पहले QR कोड की व्यवस्था शुरू की गई थी जिसे स्कैन करने पर सड़क के ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाती थी। अब पुलिस एक कदम आगे बढ़ते हुए इन ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर मार्क कर रही है। इससे वाहन चालक नेविगेशन के दौरान नोटिफिकेशन और वॉइस अलर्ट के जरिए पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे किस कैटेगरी का ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है। तय लेन और स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर ऑनलाइन चालान होगा। इसके लिए पुलिस ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली लेन बाहरी वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी लेन मध्यम गति के वाहनों के लिए है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर चलेंगे। तीसरी लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही चौथी लेन ओवरटेकिंग या आपातकालीन वाहनों के लिए रखी गई है। हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइविंग नियमों के पोस्टर लगाकर जागरूकता बढ़ाई है और ओवर स्पीडिंग पर निगरानी के लिए कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। पहले चरण में वाहन चालकों को इस सिस्टम की जानकारी दी गई थी और अब चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों के अनुसार पहले एक्सप्रेसवे पर किसी भी लेन में कोई भी वाहन चलने लगता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी की गई कटौती। चलिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल परीक्षा में कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं। ये पिछले साल से 3% कम है। 2026 के रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। नतीजों के मुताबिक

0: देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार में बिहार सहित दूसरे राज्यों के 15 से अधिक कॉलेजों के 280 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी तकनीकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। इसमें कुल 14 तकनीकी और गैर तकनीकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कई आकर्षक इवेंट्स शामिल रहे।
1: और अब बात गोल्ड के स्मार्ट ऑप्शन की। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल सोना नहीं खरीदने की अपील की है। तो अगर आप भी सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास सोने के गहनों का विकल्प मौजूद है। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है जो लोगों को लुभा रहे हैं, लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई है।

0: ईरान और अमेरिका युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर अब दिखने लगा है। लिहाजा लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और टशन में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नजरें उस विकल्प पर आकर टिक गई हैं जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित हो। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती।
1: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज करवाने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से, अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना और चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडी होने से लोगों को ज्यादा लुभाती है।
2: मैम, मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब मेरे को अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
3: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स, इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल क्वालिटी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देखकर और लेकर।
0: इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैरिज, पार्टी या रोजाना भी पहन सकते हैं, या यूं कहें कि यहाँ की दुकानों में हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल मिल जाएंगे।
4: बहुत ज्यादा कीमत में हम एक दो सेट ही ले पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल कस्टमाइज करके लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है हमें और हमारे पास ज़्यादा सेट हो जाते हैं।
5: जैसे गोल्ड खरीदना नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं और सेफ भी रहता है।
0: ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात, जबकि गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीद कर अपने फैशन को पूरा किया जा सकता है।
6: तो पहले भी लोगों को यही सजेस्ट करता था कि ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है, इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए, और हम बनाते भी ये फोटोग्राफी के हिसाब से, ये बहुत रिच लुक देती है। अच्छा।

0: रेंट का भी एक ऑप्शन होता है, क्या आपके पास में वो अवेलेबल है?
1: यस, बिल्कुल, हम ब्राइडल ज्वेलरी रेंट पे ही देते हैं।
2: दुकानदारों के मुताबिक गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी दिखती है।
3: इमिटेशन ज्वेलरी तो लोग अब बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदने लग गए हैं क्योंकि इस सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड की, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कैरी करने के लिए भी अच्छी है, कहीं जाने आने के लिए भी अच्छी है और शादी ब्याह के लिए भी अच्छी है, तो इसका मार्केट तो बहुत अच्छा ही है।
0: और क्योंकि गोल्ड ऐसा होता है कि उसका रंग कभी भी नहीं,
3: हाँ जी हाँ जी, नहीं ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप 3-4 साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ये ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1000-2000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1-2 लाख में आता है, ये फर्क तो आता ही है।
2: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
4: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं और दूसरा सेफ़ रहता है, ट्रैवल में अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ़ लगता है और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता। और सोना अभी जो रेट बढ़ा है बहुत टू मच, मतलब ऐसा मन भी नहीं करता।
2: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है, ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी।
5: बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है कि वो रियल गोल्ड हो या ब्रास हो, किसी को फ़र्क पता नहीं चलेगा। और सबसे ख़ास बात कि ये जो ब्रास है ये आपके शरीर पे इस तरीके से पहनेंगे तो ना ही ये टार्निश होगा लंबे समय तक, साथ ही साथ में ये जो एंटी एलर्जिक मेटल है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी समय तक पहन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आप अपनी ज्वेलरी कैरी करते हैं, आप कहीं पे आप उसको लॉक करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर लॉकर नहीं हो तो भी आप सेफ़ हैं, आपको डर नहीं है क्योंकि सेफ़ रहेगी, रियल ज्वेलरी नहीं है, रियल दिखने वाली बिल्कुल है, लुक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो डर कोई बना नहीं रहेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन हार्म नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रोज जो हैं वो अभी इस समय पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि अभी एक बार के लिए रुक जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोई भी शादी हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस समय में मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं, जो कि एक मैं मानती हूँ फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ जयपुर।
2: संजय दत्त की नई फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड।
6: व्हाट अबाउट 1975 इमरजेंसी?
7: भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
6: आपके लीडर्स इंडिया।
8: संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हुई पास। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, यानी ये फिल्म 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए है। इस बात की ओर ये इशारा है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले मुद्दे गंभीर और संवेदनशील हो सकते हैं।
6: आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट।
9: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी, डिबेट।
8: ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिजीत मोहन निर्देशित फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नवाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी हैं।
10: सच बनाना होता है।
9: अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज कल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते।
8: एक ऐसी फिल्म जिसका नाम अभी भले ही सामने नहीं आया है लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर ये अनटाइटल्ड फैमिली एंटरटेनर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी को इस फिल्म के लिए दिलराजू साथ लेकर आए हैं। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में दिखेंगी। विजय राज और सुदेश लहरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा शेड्यूल हाल ही में केरलम में पूरा हुआ है। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। इवेंट के आगाज में कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया ने वॉक करते हुए शानदार लुक दिया। आलिया के अलावा उर्वशी रौतेला ने भी इस इंटरनेशनल इवेंट में लगातार 5वीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स के साथ हर साल भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी साफ बता रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। इस इवेंट में एआई का जलवा भी देखने को मिल रहा है। एआई रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
2: न्यूज पथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
11: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहाँ का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
12: यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
11: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कंपटीशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
2: न्यूज पथ के सफर में रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आज अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। इन कीमतों में के बढ़ने की वजह केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 और 1 किलो चांदी की कीमत 22,000 रुपए बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,000 तक पहुंच गया और 1 किलो सोने चांदी का भाव 2,99,000 रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने फैसला अमेरिकी और ईरान के जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के मद्देनजर लिया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। दरअसल भारत में लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे विदेश से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाने लगता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले से आपको महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी अब कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती है। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने भी सराफा व्यापारियों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
13: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती है यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, लेकर एक बेहद खास पेशकश आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है। बीते रविवार को और सोमवार को उन्होंने 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने के साथ ही ईंधन बचाने की भी अपील 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की थी। पीएम ने बुधवार को खुद इसकी नजीर पेश करते हुए अपने काफिले को डाउनसाइज कर दिया। असर ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत अपने काफिले को कट करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की। कुछ राज्यों के मंत्री तो काफिले की जगह एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील ने देश भर में सत्याग्रह का रूप ले लिया।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और बुधवार को उन्होंने खुद ही अपने काफिले में कटौती का निर्देश देकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने शानदार नजीर भी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को डाउनसाइज करने का निर्देश दे दिया है। खबर यह भी है कि पीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने वाली नोडल एजेंसी SPG ने इस निर्देश के बाद वर्कआउट भी शुरू कर दिया है।
3: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से एक अपील की गई। उस अपील को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लगभग 50% के आसपास गाड़ियों की संख्या जो है कम की गई है उनके द्वारा।
2: अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि पीएम के काफिले में कुल कितनी गाड़ियां होती हैं और पीएम के निर्देश के बाद अब कितनी गाड़ियां काफिले में रह जाएंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से पीएम के काफिले की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, जरूरत और सिक्योरिटी के हिसाब से उसे कम या ज्यादा भी किया जाता है। वैसे औसतन प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की तादाद 30 से लेकर 40 के बीच में रहती है। हालांकि जब वो राजधानी दिल्ली में चलते हैं तो काफिले में गाड़ियों की संख्या अमूमन कम होती है। गाड़ियों की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी भी होती है वे व्यवस्थित क्रम में चलती है। पीएम के काफिले में रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज कंपनी की टॉप लेवल कारें होती हैं और इनमें से किसी एक में वो बैठते हैं। हालांकि वो किस गाड़ी में बैठेंगे ये पहले से तय नहीं होता, आखिर समय में SPG के अधिकारी ये तय करते हैं। काफिले के मुख्य हिस्से के तौर पर एक पायलट गाड़ी होती है जो हूटर बजाते हुए सबसे आगे चलती है और रास्ता साफ करती है। वहीं एक जैमर गाड़ी भी काफिले में चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से लैस होती है। काफिले की जैमर गाड़ी रिमोट से चलने वाले विस्फोटकों के लिए जरूरी रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। इसके बाद स्कॉर्ट गाड़ियां होती हैं। पीएम जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके आगे पीछे SPG के साथ चलने वाली SUV गाड़ियां शामिल रहती हैं। आपको बता दें कि पीएम के काफिले में कुछ डमी गाड़ियां भी होती हैं। काफिले में डमी गाड़ियां इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि कोई हमले की फिराक में हो तो उसके भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। इसके साथ ही एक हाईटेक एम्बुलेंस भी काफिले का हिस्सा होती है। इसमें लाइव सपोर्ट सिस्टम से लेकर पीएम के ब्लड ग्रुप का खून तक उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे पीछे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के साथ खुफिया विभाग की गाड़ियां रहती हैं। अब जबकि सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने स्वयं काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश दिया है, तो SPG के लिए बड़ी चुनौती होगी कि काफिले को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को डाउन साइज करने का निर्देश देकर नजीर बनाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कॉन्वे को आधा या उससे भी कम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री ने अपने काफिले को काफी ज्यादा डाउन साइज कर दिया है। गृह मंत्री को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और आमतौर पर उनके काफिले में 15 से 20 गाड़ियां चलती हैं। हालांकि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था उस अपील के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से कम कर दी है। एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इसी तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं।
2: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अगर आप दान पुण्य का उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसके बाद उसका असर होना तय है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउन साइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अविलंब अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1, एस्कॉर्ट 2 गाड़ी और साथ ही में बीच में VIP यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पर तैनात कर दी गई है।
2: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले को छोटा किया तो उनकी कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने और बड़ी लकीर खींचते हुए काफिले की जगह सिर्फ एक ही गाड़ी में दफ्तर जाने का फैसला कर लिया।
4: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3 से 4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है। एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, VIP वाहन जिसे कहा जाता था। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से सभी से कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे।
2: उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे जाते हुए ज्यादा ईंधन कंज्यूम करने वाली एसयूवी गाड़ियों की जगह खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने के लिए अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी लोग इसको कम करने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल सब लोगों ने अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पे आज से सभी मंत्रियों ने हम लोग कहा है कि हम लोग अपने गाड़ी के काफिले को कम कर देंगे।
2: बिहार के कुछ मंत्री तो एक ही वाहन में एक साथ विधानसभा जाते दिखे।
5: प्रधानमंत्री जी का अपील है और तेल को ईंधन को बचाना है तो कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है, और जब हम लोग को आना ही है कैबिनेट में तो एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गाड़ी का और कम से कम गाड़ी का जो हम लोग का काफिला होता है 3-4 गाड़ी का उसका हम लोग कम कर वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील किए हैं कैबिनेट में, सब लोग इसको अपनाएंगे और ये अच्छा रहेगा।
2: इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले को डाउनसाइज कर लिया है। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पीएम के सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील को अमल में लाते हुए मेट्रो में बैठकर सचिवालय पहुंचे।
6: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यह निर्णय लिया गया, ये निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
7: क्या मुख्यमंत्री के काफिले को भी कम करने की
6: डेफिनेटली कल ही उन्होंने निर्णय ले लिया है और उनके काफिले को आधे से भी ज्यादा कम मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं ही कर दिया है।
2: पीएम की अपील को सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी अमल में ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलने का संकल्प लिया है। उदय सामंत बुधवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सफर करते नजर आए। कहते हैं कि दिल से निकली सदाओं का असर दूर तलक होता है। रविवार और सोमवार को पीएम मोदी ने फॉरेक्स बचाने के लिए 7-पॉइंट एजेंडा पेश किया और बुधवार तक उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। उसका असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ सियासी हलके तक ही सीमित है। गैर सियासी लोग भी पीएम की ईंधन बचाने की मुहिम में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जस्टिस तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। उधर गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल न करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। नेतृत्व जब नजीर पेश करता है तो आम जनमानस तक इसका व्यापक असर होता है। पीएम की अपील के बाद ईंधन बचाने को लेकर जिस तरह की मुहिम चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे।
2: पीएम मोदी अगर कोई अपील करे तो उसका असर होता है। असर सिर्फ सियासी दायरे में नहीं बल्कि सर्वव्यापक होता है। मोदी की अपील को अमल में लाना केंद्र सरकार के मंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी इसे अलम में ला रहे हैं जिनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल। पीएम मोदी की अपील के बाद जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से अदालत पहुंचकर बेहतरीन मिसाल पेश की। जस्टिस बंसल कड़ी धूप में अपने आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वे सड़क पर ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए बिल्कुल एक आम आदमी जैसे नजर आ रहे थे।
8: दो दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्दे में जब मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए आज अपने घर से कोर्ट तक जाने के लिए साइकिल का साधन चुना, और अन्यथा भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की प्रेरणा से हम साइकिल चलाते रहे। कभी डुमना रोड जाते हैं, कभी पूरे शहर के अंदर जबलपुर में भी हम माननीय चीफ जस्टिस सचदेव आपके साथ साइकिलिंग की है। तो मुझे कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं लगा साइकिल पर जाना, मान केवल इसलिए कि हम हाईकोर्ट जज साइकिल से नहीं जा सकते, मुझे लगा ऐसा कि खास बात नहीं, इसलिए मैंने आज साइकिल से जाने का।
2: जस्टिस बंसल से जब ये पूछा गया कि हाईकोर्ट का जज होते हुए भी साइकिल पर चलने से आपको कोई परहेज नहीं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है।
8: अब ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस से क्या फर्क पड़ता है, साइकिलिंग तो सभी को करना चाहिए, थोड़ा धूप जरूर रहती है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एक टाइम था साइकिल से लोग रोज 10-10 किलोमीटर जाते थे, हम बहुत गए हैं, आज भी हम रोज सुबह साइकिल चलाते ही चलाते हैं, करीब जो है कहना चाहिए 3-4 किलोमीटर की साइकिलिंग तो हमारी रोज आज भी हो जाती है, बस स्पोर्ट जरूर जा रहे हैं साइकिल से आज।
2: जस्टिस बंसल ने साइकिल से कोर्ट जाकर बेहतरीन नजीर पेश की, तो उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया कि देश के धन की स्थिति सामान्य होने तक वे राज्य के भीतर किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेट प्लस सुरक्षा काफिले को छोड़कर आचार्य देवव्रत ने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दे दिया है।
9: जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
2: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन रसायन इंजन मुक्त दिवस के रूप में मनाएं। राज्यपाल देवव्रत ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। गुजरात के राज्यपाल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वे राजुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आई। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने स्कॉट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नजीर पेश करने के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री तक ईंधन बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
3: सुरक्षा और सादगी को एक साथ लेकर के जो देश के शीर्ष मंत्री हैं वो लोग चल रहे हैं, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम विश्व के बाजार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको कैसे भारत में स्थिर रखा जा सकता है। इस तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे, इस तरीके के मेजर्स अगर उठाए जाएंगे, तो शायद देश की जनता को किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरीके से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
2: ईंधन बचाने की पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द ही आम जनमानस में भी इसकी व्यापक प्रेरणा जगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम होगा। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज चौधरी भी डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचे। बस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
10: प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह। सर, विकासपुरी से सचिवालय पहुंचे हैं, लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके, कितना ये मुश्किल रहा और कितना ये आपको लगता है कि आगे कारगर रहने वाला है ये सफर?
11: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे आज बस में बैठ के ये आपसे कह सकता हूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बड़ा आनंद आया। और इस बात का आनंद आया है कि पिछले सवा साल में जो हमने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था कि हम डीटीसी को ऐसी सुविधा से युक्त करेंगे कि जिससे आपको समस्याएं ना आए, तो आज मुझे बस में बैठ के ये महसूस हुआ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक को आना चाहिए, दिल्ली की जनता को आना चाहिए। जो भी सुविधा दिल्ली की जनता चाहेगी वो डीटीसी में और मेट्रो में है, और व्यवस्था चाहिए वो भी पूरा कराएंगे।
10: आप भी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रूटीन में?
11: देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए जाने के लिए मैं डीटीसी की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी ईवी खरीदी जाएंगी, कटौती तो हमारी एक गाड़ी चलती है, पुरानी पार्टी की तरह है नहीं जी कि वो पांच पांच गाड़ियां चलाती रहेंगे। मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन में ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीटीसी में और भी बसें हम बढ़ा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से सिर्फ अपील करूंगा कि आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ दें।
10: लंबा सफर आपने तय करा, आप लोगों से भी बातचीत करी होगी बस के अंदर, क्या उनको लगा कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, क्या वाकई उनको लगता है कि ये सही अपील है?
11: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, दिल्ली की जनता चाहे भारत की जनता हो, सब इस बात को सहमत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी सुविधा के साथ होगी, अब मैं आज आया हूँ, मुझे खुद इतना अच्छा आनंद लगा बिना कोई टेंशन के, बिना कुछ के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी तो लोग क्यों नहीं ले इसको अवेल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कुछ कमियां भी है तो मैं इस बस में बैठ के उसको दूर करने का काम कर रहा हूं। जैसे कोई कहता है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा, चाहे कोई मेरे ये ड्राइवर बस स्टॉपेज नहीं रुकता है और बस की कमी है, तो वो भी सुविधा हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप ईवी पे कन्वर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेरे गांव का आखिरी कोना, आखिरी गांव, दिल्ली का आखिरी गांव अनऑथराइज कॉलोनी तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसें की सुविधा रहेगी, मेट्रो की सुविधा रहेगी, मेट्रो दिन पर दिन एक्सपेंशन कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए।
10: ये कई देशों के अंदर देखने में आया कि कई सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अक्सर हम देखते हैं कि आपका सातवीं मंजिल पर ऑफिस है और सातवीं मंजिल आप सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, क्या वो भी कंटिन्यू रहेगा आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल?
11: स्वाभाविक है, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से, सालों से इसको फॉलो कर रहा हूं कि जितना कम लिफ्ट इस्तेमाल कर सकूं वो मैं करता हूं और वही उस पर लगा ही रहूंगा जी, कंटिन्यू रहेगा।
10: शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सचिवालय पहुंचे अपने दफ्तर के अंदर। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।
12: Hmm. The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
0: कि जूनागढ़ का गिर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और इस कला को देख मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बढ़ा है।
14: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माताजी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
15: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है, तो लायन की छोटी से लेके बड़ी तक मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
14: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है, यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात ये है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
15: 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा मित्र है सुरेश बार उपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है, और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
14: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं, यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर सासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 125,000 भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 325,000 भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
0: शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर, सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, चर्चा गुजरात के सासन गीर की दिव्य कला की भी हो रही है।
17: चारधाम की यात्रा में दिन पर दिन यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट खूब आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते यहां यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इससे यहां कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, यहां मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 500,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी भक्तों से भरा हुआ है, यहां हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, यहां 3,00,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या 2,00,000 की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो गंगोत्री धाम में भी मंगलवार 12 मई तक श्रद्धालुओं की संख्या 1,94,000 से अधिक पहुँच चुकी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास में चल रहा ये काम उसी तैयारी का हिस्सा है, चाहे बिल्डिंग की मरम्मत का काम हो या साफ सफाई का, सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के यहाँ ठहरने, बिजली पानी से लेकर भोजन समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का पूरा फोकस है, उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जन प्रतिनिधि भी जायजा लेते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अमरनाथ यात्री यहां पहुंचने के बाद आगे कश्मीर की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बागेश्वर जिले के इन 2 प्रमुख पर्यटन स्थल की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से शाम को हो रही बारिश से यहां का मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमने के साथ ही पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही झील में नौकायान का रोमांच का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी घर में 481 से ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, जिनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक पिंजरे में फव्वारों की व्यवस्था की गई है, साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ रहने वाले इन देशी विदेशी पक्षियों को ज्यादा तापमान में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासनगिर की एशियाई शेरों को लेकर एक अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ छोटी छोटी कीलो और रंग बिरंगे धागों से दिव्य तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि इस कला के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सासनगीर में पिछले 20 से 25 साल से ये खास कला देखने को मिल रही है, जिससे लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी संख्या में छोटी कीले लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तस्वीरें तैयार की जाती हैं, जिसमें एशियाई शेरों की तस्वीरें पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसे खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं। शेरों के अलावा देवी देवताओं, संत महापुरुषों और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें भी इस आर्ट में बनाई जाती हैं और अगर किसी खास तस्वीर या डिजाइन की डिमांड होती है तो वो भी तैयार की जाती है। तस्वीरों की कीमत 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
0: और अब बात गूगल मैप की, जो कि अब देगा जानलेवा मोड़ों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स का अलर्ट। जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा कर रहे हैं तो आप एक क्लिक पर देख सकेंगे कि आगे कहां कहां दुर्घटना संभावित पॉइंट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि आप अलर्ट रहकर यात्रा कर सके। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही रेंज के सभी नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे तमाम कारणों से इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से लोग अब इसे एक्सप्रेसवे की जगह डेथवे यानी मौत का रास्ता तक कहने लगे हैं। लिहाजा राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। इसके तहत जगह जगह पर QR कोड लगाए गए हैं और उन QR कोड को स्कैन करने के बाद सफर करने वाले लोगों को इस हाईवे पर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह सुविधा गूगल मैप पर आने वाली है और इसके बाद जैसे ही वो गूगल मैप पर इस हाईवे की लोकेशन लगाएंगे उनको हादसों की जानकारी मिल पाएगी। इस हाईवे पर लेन सिस्टम लागू हो चुका है। लेन सिस्टम लागू होने के बाद सड़क हादसों में खासी कमी आई है, तो अब इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों के माने तो आगामी दिनों में सड़क हादसों में खासी कमी आएगी।
0: जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अलवर समेत जयपुर रेंज के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। वाहन चालकों को GPS और मैप के माध्यम से इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वो सतर्क होकर वाहन चला सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।
2: लेन सिस्टम का अभी हमने एक स्टडी किया था कि पिछले जो लास्ट 8 महीने थे और अभी के जो 8 महीने जब लेन सिस्टम चला है इसके कंपैरिजन करने पे क्या फर्क पड़ा है एक्सीडेंट्स पे या डेथ्स पे या घायलों पे, तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। 40 डेथ कम हुए थे, 109 घायल कम हुए थे, तो 40 डेथ बहुत बड़ी बात होती है 8 माह में कम होना, और उसके साथ एक्सीडेंट भी लगभग 55 के आसपास कम हुए थे। इसको हम लोग जो कोटपुतली बैरोड जो दिल्ली अजमेर वाला रूट है उस पर अजमेर रेंज में बहुत गंभीरता से चला रहे हैं और एनी पे भी हमने शुरू किया है। अभी इसमें जो ITMS था उसमें पहले लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी रिक्वेस्ट करके जुड़वा दिया है। हॉटस्पॉट्स जो थे उसके लिए हमने QR कोड जारी किया था जिसको स्कैन करने पर जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट आपको पहले दिख जाएंगे, तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको गूगल मैप पे अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देंगे।
0: IG राहुल प्रकाश ने ये भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो जोन जहां पिछले 3 साल में 10 एक्सीडेंट हुए हों, ऑरेंज जोन जहां पिछले 3 साल में 10 से 20 एक्सीडेंट हुए हों, रेड जोन जहां पिछले 3 साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों। मिशन सेफर रोड के तहत ब्लैक स्पॉट को मैप पर ऐड करने के लिए पुलिस ने गूगल को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर गूगल ने सहमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में इन्हें मैप पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन हाईवेज पर यात्रा के दौरान अगर मैप ऑन करेंगे तो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे और आपको अलर्ट भी मिलेगा। हाल ही में IG राहुल प्रकाश ने रेंज के सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सर्वे कराया था। इसमें 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए, जहां पिछले 3 साल में 1108 लोगों ने जान गंवाई। इन्हें दुरुस्त कराने के लिए इससे जुड़े विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इनमें रेड जोन वाले 6 स्पॉट्स हैं जहां 162 मौतें हुई, ऑरेंज जोन वाले 37 स्पॉट पर 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह येलो जोन वाले 78 स्पॉट पर 471 लोगों की जान जा चुकी है।
2: SP साहब दौसा और SP साहब अलवर दोनों लगातार एनसीआई के संपर्क में हैं। अलवर SP साहब ने तो उनका एक मोबाइल लेकर के हाईवे मोबाइल भी विशेष तौर पर इन्हीं के ऊपर चला रखा है। SP साहब दौसा को भी अभी यही निर्देश दिए गए कि वो भी संपर्क करके जो हाईवे मोबाइल एनसीआई के हैं उसमें पुलिस का जाप्ता लगा करके और उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखें, जिससे कि जो अनुशासन है रोड का वो बना रहे।
0: लिहाजा लोगों को सतर्क करने के लिए पहले QR कोड की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे स्कैन करने पर सड़क के ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाती थी। अब पुलिस एक कदम आगे बढ़ते हुए इन ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर मार्क कर रही है, इससे वाहन चालक नेविगेशन के दौरान नोटिफिकेशन और वॉइस अलर्ट के जरिए पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे किस कैटेगरी का ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है। तय लेन और स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर ऑनलाइन चालान होगा। इसके लिए पुलिस ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली लेन बाहरी वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी लेन मध्यम गति के वाहनों के लिए है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर चलेंगे। तीसरी लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही चौथी लेन ओवरटेकिंग या आपातकालीन वाहनों के लिए रखी गई है। हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइविंग नियमों के पोस्टर लगाकर जागरूकता बढ़ाई है और ओवर स्पीडिंग पर निगरानी के लिए कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। पहले चरण में वाहन चालकों को इस सिस्टम की जानकारी दी गई थी और अब चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों के अनुसार पहले एक्सप्रेसवे पर किसी भी लेन में कोई भी वाहन चलने लगता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी की गई कटौती। चलिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल परीक्षा में कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं। ये पिछले साल से 3% कम है। 2026 के रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.5

0: लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। नतीजों के मुताबिक कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं, वहीं 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार में बिहार सहित दूसरे राज्यों के 15 से अधिक कॉलेजों के 280 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी तकनीकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। इसमें कुल 14 तकनीकी और गैर तकनीकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कई आकर्षक इवेंट्स शामिल रहे।
1: और अब बात गोल्ड के स्मार्ट ऑप्शन की। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल सोना नहीं खरीदने की अपील की है। तो अगर आप भी सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सोने के गहनों का विकल्प मौजूद है। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है, जो लोगों को लुभा रहे हैं। लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई है।

0: ईरान और अमेरिका युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर अब दिखने लगा है। लिहाजा लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और टशन में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नजरें उस विकल्प पर आकर टिक गई हैं जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित हो। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती।
1: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज़ कराने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से, अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडिंग होने से लोगों को ज्यादा लुभाती है।
2: मैम, मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल में देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
3: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स, इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल क्वाल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ ये ज्वेलरी देखकर और लेकर।
0: इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैरिज, पार्टी या रोजाना भी पहन सकते हैं, या यूं कहें कि यहाँ की दुकानों में हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल मिल जाएंगे।
4: बहुत ज्यादा कीमत में हम एक दो सेट ही ले पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल कस्टमाइज करके लेते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है हमें और हमारे पास ज़्यादा सेट हो जाते हैं।
5: जैसे गोल्ड खरीदना नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं और सेफ भी रहता है।
0: ये तो हुई डिजाइन और स्टाइल की बात, जबकि गोल्ड के मुकाबले आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी काफी कम कीमत में खरीद कर अपने फैशन को पूरा किया जाता है।

0: आ सकता है।
1: तो पहले भी लोगों को यही सजेस्ट करता था कि ब्राइडल ज्वेलरी में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो बेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार काम आती है। इसमें तो आपको फैशन ज्वेलरी ही पहननी चाहिए, और हम बनाते भी ये फोटोग्राफी के हिसाब से, ये बहुत रिच लुक देती है।
2: अच्छा, रेंट का भी एक ऑप्शन होता है, क्या आपके पास में वो अवेलेबल है?
1: यस, बिल्कुल, हम ब्राइडल ज्वेलरी रेंट पे ही देते हैं।
3: दुकानदारों के मुताबिक गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील ब्रास बेस पर अच्छी प्लेटिंग वाली ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है और सोने जैसी दिखती है।
4: इमिटेशन ज्वेलरी तो लोग अब बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदने लगे हैं, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड की अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैरी करने के लिए भी अच्छी है, कहीं जाने आने के लिए भी अच्छी, और शादी ब्याह के लिए भी अच्छी है, तो इसका मार्केट तो बहुत अच्छा ही है।
2: और क्योंकि गोल्ड ऐसा होता है कि उसका रंग कभी भी नहीं,
4: हाँ जी हाँ जी, नहीं ये भी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, आप तीन तीन चार चार साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ये ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ 1,000-2,000 में सेट आ जाता है, वहाँ 1,00,000-2,00,000 में आता है, ये फर्क तो आता ही है।
3: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
5: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, और दूसरा सेफ रहता है, ट्रैवल में अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है, और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता। और सोना अभी जो रेट बढ़ा है बहुत टू मच, मतलब ऐसा मन भी नहीं करता।
3: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है। ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी।
6: बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है कि वो रियल गोल्ड हो या ब्रास हो, किसी को फर्क पता नहीं चलेगा। और सबसे खास बात की ये जो ब्रास है ये आपके शरीर पे इस तरीके से पहनेंगे तो ना ही ये टार्निश होगा लंबे समय तक, साथ ही साथ में ये जो एंटी एलर्जिक मेटल है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी समय तक पहन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आप अपनी ज्वेलरी कैरी करते हैं, आप कहीं पे आप उसको लॉक करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर लॉकर नहीं हो तो भी आप सेफ हैं, आपको डर नहीं है क्योंकि सेफ रहेगी, रियल ज्वेलरी नहीं है, रियल दिखने वाली बिल्कुल है, लुक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो डर कोई बना नहीं रहेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन हार्म नहीं हो रही है। बहुत सारे प्रोज जो हैं वो अभी इस समय पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि अभी एक बार के लिए रुक जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोई भी शादी हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस समय में मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं, जो कि एक मैं मानती हूँ फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
3: संजय दत्त की नई फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड। व्हाट
7: अबाउट 1975 इमरजेंसी?
8: भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
7: आपके लीडर्स इंडिया।
9: संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हुई पास। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, यानी ये फिल्म 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए है। इस बात की ओर ये इशारा है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले मुद्दे गंभीर और संवेदनशील हो सकते हैं।
7: आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट।
10: अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोचे विकी, डिबेट।
9: ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिजीत मोहन निर्देशित फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नवाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी हैं।
11: सच बनाना होता है।
10: अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज कल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते।
9: एक ऐसी फिल्म जिसका नाम अभी भले ही सामने नहीं आया है, लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर ये अनटाइटल्ड फैमिली एंटरटेनर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी को इस फिल्म के लिए दिलराजू साथ लेकर आए हैं। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में दिखेंगी। विजय राज और सुदेश लहरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा शेड्यूल हाल ही में केरलम में पूरा हुआ है। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। इवेंट के आगाज में कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया ने वॉक करते हुए शानदार लुक दिया। आलिया के अलावा उर्वशी रौतेला ने भी इस इंटरनेशनल इवेंट में लगातार पांचवी बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स के साथ हर साल भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी साफ बता रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। इस इवेंट में एआई का जलवा भी देखने को मिल रहा है। एआई रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरैक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
0: न्यूज पथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
12: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहां का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
13: यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
12: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
0: न्यूज पथ के सफर में रुक करते सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आज अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। इन कीमतों में के बढ़ने की वजह केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 और 1 किलो चांदी की कीमत 22,000 रुपए बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,000 तक पहुंच गया और 1 किलो सोने चांदी का भाव 2,99,000 रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने फैसला अमेरिकी और ईरान के जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के मद्देनजर लिया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। दरअसल भारत में लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे विदेश से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाने लगता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है। यानी सोना पहले के मुकाबले से आपको महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी अब कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने भी सराफा व्यापारियों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
14: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
16: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे का GNT स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, लेकर एक बेहद खास पेशकश आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है। बीते रविवार को और सोमवार को उन्होंने एक साल तक गोल्ड ना खरीदने के साथ ही ईंधन बचाने की भी अपील 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से की थी। पीएम ने बुधवार को खुद इसकी नजीर पेश करते हुए अपने काफिले को डाउनसाइज कर दिया। असर ये हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत अपने काफिले को कट करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की। कुछ राज्यों के मंत्री तो काफिले की जगह एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील ने देश भर में सत्याग्रह का रूप ले लिया।
1: प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था, उस अपील के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से कम कर दी है। एक तरीके का बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को भी सोचना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से विश्व बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में भारत में इसको स्थिर रखने के लिए किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जाएं, उसको लेकर के देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की अपील की तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ही कदम बढ़ाया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं उनको कम से कम किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इसी तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं।
2: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अगर आप दान पुण्य का उपदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले खुद उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसके बाद उसका असर होना तय है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउनसाइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अविलंब अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी। और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं गाड़ी जो है आपको दिख जाएगी। कुल 8 गाड़ियां हैं जिसमें अब मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। ये दरअसल पूरा इलाका जो है मुख्यमंत्री निवास है जहां से ये गाड़ियों का पूरा काफिला निकला है। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां थी उसका क्रम जो है वो कल निर्धारित हो गया था। पायलट गाड़ी सबसे आगे रहेगी, टेल कार सबसे पीछे, और इसके बीच में एक एस्कॉर्ट 1, एस्कॉर्ट 2 गाड़ी, और साथ ही में बीच में VIP यानी मुख्यमंत्री की कार होगी, एक स्पेयर कार, एक एम्बुलेंस। लेकिन एम्बुलेंस को फिलहाल हटा दिया गया है काफिले से और एम्बुलेंस जो है स्टेट हैंगर पर तैनात कर दी गई है।
2: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले को छोटा किया तो उनकी कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने और बड़ी लकीर खींचते हुए काफिले के जगह सिर्फ एक ही गाड़ी में दफ्तर जाने का फैसला कर लिया।
3: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं विश्वास सारंग अकेले एक ही गाड़ी से अपने ऑफिस आज रवाना हो रहे हैं। और ये घर है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का। और इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश शासन की इनकी कार है, केवल उसी एक कार से अब वो अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब आपको ये दिखा दें कि इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के साथ 3 से 4 गाड़ियां चलती थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो मंत्रियों का प्रोटोकॉल होता है। एक पायलट वाहन होता था, एक फॉलो वाहन होता था, एक स्पेयर वाहन होता था और एक मंत्री का वाहन होता था, VIP वाहन जिसे कहा जाता था। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई है वो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया उन्होंने, इस पे हूटर वगैरह लगे हुए आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी हम आपको पीछे आपको एक और गाड़ी दिखा देते हैं, वो स्कॉर्पियो जिससे आमतौर पर 1-2 दिनों पहले तक मंत्री जो है वो काफिले में चला करते थे। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से कि पेट्रोल और डीजल का संयम तरीके से इस्तेमाल करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार देर रात को अपील की है मंत्रियों से और विधायकों से, सभी से, कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। खुद मुख्यमंत्री की काफिला जो है वो भी अब छोटा हो गया है, और मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर और प्रधानमंत्री की इस अपील पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी फैसला किया है कि वो आज से सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर के अपने दौरे पर, जो स्थानीय दौरे रहेंगे भोपाल के, उनमें वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ ही चला करेंगे।
4: उधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे जाते हुए ज्यादा ईंधन कंज्यूम करने वाली SUV गाड़ियों की जगह खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने के लिए अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं।
3: मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद और माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी लोग इसको कम करने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, सब लोगों ने अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पे आज से सभी मंत्रियों ने हम लोग कहा है कि हम लोग अपने गाड़ियों के काफिले को कम कर देंगे।
4: बिहार के कुछ मंत्री तो एक ही वाहन में एक साथ विधानसभा जाते दिखे।
5: प्रधानमंत्री जी का अपील है और तेल को, ईंधन को बचाना है तो कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करना है, और जब हम लोग को आना ही है कैबिनेट में तो एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गाड़ी का और कम से कम गाड़ी का जो हम लोग का काफिला होता है 3-4 गाड़ी का, उसका हम लोग कम कर वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील की है कैबिनेट में, सब लोग इसको अपनाएंगे और ये अच्छा रहेगा।
4: इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले को डाउन साइज कर लिया है। इतना ही नहीं, CM रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा PM के सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील को अमल में लाते हुए मेट्रो में बैठकर सचिवालय पहुंचे।
6: देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल शाम को ही मुख्यमंत्री महोदया ने सभी मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन कॉल की थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें यह निर्णय लिया गया, ये निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण कम से कम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, न्यूनतम इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। उसको लागू करते हुए आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
7: क्या मुख्यमंत्री के काफिले को भी कम करने की
6: डेफिनेटली कल ही उन्होंने निर्णय ले लिया है, और उनके काफिले को आधे से भी ज्यादा कम मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं ही कर दिया है।
4: PM की अपील को सिर्फ BJP के नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी अमल में ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलने का संकल्प लिया है। उदय सामंत बुधवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही सफर करते नजर आए। कहते हैं कि दिल से निकली सदाओं का असर दूर तलक होता है। रविवार और सोमवार को PM मोदी ने फॉरेक्स बचाने के लिए 7-point एजेंडा पेश किया, और बुधवार तक उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। उसका असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ सियासी हलके तक ही सीमित है। गैर सियासी लोग भी PM की ईंधन बचाने की मुहिम में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जस्टिस तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। उधर गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल न करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। नेतृत्व जब नजीर पेश करता है तो आम जनमानस तक इसका व्यापक असर होता है। PM की अपील के बाद ईंधन बचाने को लेकर जिस तरह की मुहिम चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएंगे।
4: PM मोदी अगर कोई अपील करे तो उसका असर होता है। असर सिर्फ सियासी दायरे में नहीं बल्कि सर्वव्यापक होता है। मोदी की अपील को अमल में लाना केंद्र सरकार के मंत्रियों या BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी इसे अलम में ला रहे हैं।
8: जिनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं,
4: उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस डीडी बंसल। पीएम मोदी की अपील के बाद जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से अदालत पहुंचकर बेहतरीन मिसाल पेश की। जस्टिस बंसल कड़ी धूप में अपने आवास से करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वे सड़क पर ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए बिल्कुल एक आम आदमी जैसे नजर आ रहे थे।
9: दो दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्दे में जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए आज अपने घर से कोर्ट तक जाने के लिए साइकिल का साधन चुना और अन्यथा भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की प्रेरणा से हम साइकिल चलाते रहे। कभी डुमना रोड जाते हैं, कभी पूरे शहर के अंदर जबलपुर में भी हम माननीय चीफ जस्टिस सचदेवा साहब के साथ साइकिलिंग की है। तो मुझे कोई ऐसा कोई खास काम नहीं लगा साइकिल पर जाना, माननीय केवल इसलिए कि हम हाईकोर्ट जज साइकिल से नहीं जा सकते, मुझे लगा ऐसा कि खास बात नहीं, इसलिए मैंने आज साइकिल से जाने का।
4: जस्टिस बंसल से जब ये पूछा गया कि हाईकोर्ट का जज होते हुए भी साइकिल पर चलने से आपको कोई परहेज नहीं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है।
9: अब ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस से क्या फर्क पड़ता है, साइकिलिंग तो सभी को करना चाहिए, थोड़ा धूप जरूर रहती है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एक टाइम था साइकिल से लोग रोज 10-10 किलोमीटर जाते थे, हम बहुत गए हैं, आज भी हम रोज सुबह साइकिल चलाते ही चलाते हैं, करीब जो है कहना चाहिए 3-4 किलोमीटर की साइकिलिंग तो हमारी रोज आज भी हो जाती है, बस कोर्ट जरूर जा रहे हैं साइकिल से। आज
4: जस्टिस बंसल ने साइकिल से कोर्ट जाकर बेहतरीन नजीर पेश की, तो उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया कि देश के धन की स्थिति सामान्य होने तक वे राज्य के भीतर किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेट प्लस सुरक्षा काफिले को छोड़कर आचार्य देवव्रत ने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दे दिया है।
10: जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त जेड प्लस सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
4: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन रसायन इंजन मुक्त दिवस के रूप में मनाएं। राज्यपाल देवव्रत ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों को पेट्रोल डीजल वाहनों की बजाय साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। गुजरात के राज्यपाल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वे राजुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आई। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने स्कॉट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है।
8: कहने की जरूरत नहीं कि देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नजीर पेश करने के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री तक ईंधन बचाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
1: सुरक्षा और सादगी को एक साथ लेकर के जो देश के शीर्ष मंत्री हैं वो लोग चल रहे हैं, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम विश्व के बाजार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको कैसे भारत में स्थिर रखा जा सकता है। इस तरीके के अगर कदम बढ़ाए जाएंगे, इस तरीके के मेजर्स अगर उठाए जाएंगे, तो शायद देश की जनता को किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरीके से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
8: ईंधन बचाने की पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द ही आम जनमानस में भी इसकी व्यापक प्रेरणा जगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम होगा। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब दिखने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज चौधरी भी डीटीसी की बस से सचिवालय पहुंचे। बस यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
7: प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है डॉक्टर पंकज सिंह। सर, विकासपुरी से सचिवालय पहुंचे हैं, लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके, कितना ये मुश्किल रहा और कितना ये आपको लगता है कि आगे कारगर रहने वाला है ये सफर?
11: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे आज बस में बैठ के ये आपसे कह सकता हूं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बड़ा आनंद आया। और इस बात का आनंद आया कि पिछले सवा साल में जो हमने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था कि हम डीटीसी को ऐसी सुविधा से युक्त करेंगे कि जिससे आपको समस्याएं ना आए, तो आज मुझे बस में बैठ के ये महसूस हुआ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक को आना चाहिए, दिल्ली की जनता को आना चाहिए। जो भी सुविधा दिल्ली की जनता चाहेगी वो डीटीसी में और मेट्रो में है, और व्यवस्था चाहिए वो भी पूरा कराएंगे।
7: आप भी अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रूटीन में?
11: देखिए, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए मैं डीटीसी की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी ईवी खरीदी जाएंगी, कटौती तो हमारी एक गाड़ी चलती है, पुरानी पार्टी की तरह है नहीं जी कि वो पांच पांच गाड़ियां चलाती रहेंगी। मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन में ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीटीसी में और भी बसें हम बढ़ा रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हमारा साथ दें।
7: लंबा सफर आपने तय करा, हम लोगों से भी बातचीत करी होगी बस के अंदर, क्या उनको लगा कि ये जो अपील है प्रधानमंत्री की, क्या वाकई उनको लगता है कि ये सही अपील है?
11: देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, दिल्ली की जनता चाहे भारत की जनता हो, सब इस बात को सहमत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी सुविधा के साथ होगी, अब मैं आज आया हूँ, मुझे खुद अच्छा आनंद लगा बिना कोई टेंशन के, बिना कुछ के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी तो लोग क्यों नहीं ले इसको अवेल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर कुछ कमियां भी है तो मैं इस बस में बैठ के उसको दूर करने का काम कर रहा हूं। जैसे कोई कहता है कि मेरा कार्ड नहीं चल रहा, चाहे कोई मेरे ये ड्राइवर बस स्टॉपेज नहीं रुकता है और बस की कमी है, तो वो भी सुविधा हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप ईवी पे कन्वर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेरे गांव का आखिरी कोना, आखिरी गांव, दिल्ली का आखिरी गांव अनथराइज कोली तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसें की सुविधा रहेगी। मेट्रो की सुविधा रहेगी, मेट्रो दिन पर दिन एक्सपेंशन कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए।
7: ये कई देशों के अंदर देखने में आया कि कई सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अक्सर हम देखते हैं कि आपका सातवीं मंजिल पर ऑफिस है और सातवीं मंजिल आप सीढ़ी से अप डाउन करते हैं, क्या वो भी कंटिन्यू रहेगा आप इस लिफ्ट का इस्तेमाल?
11: स्वाभाविक है, मैं तो इस बात को बहुत दिनों से सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ कि जितना कम लिफ्ट इस्तेमाल कर सकूँ वो मैं करता हूँ और वही उसपे लगा ही रहूंगा जी, कंटिन्यू रहेगा।
7: शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह, रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि 40 किलोमीटर का सफर तय करके प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सचिवालय पहुंचे अपने दफ्तर के अंदर। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेरा दिल।
12: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: रात के जूनागढ़ का गिर सासन सिर्फ एशियाटिक शेरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कला के लिए भी पहचान बना रहा है। यहाँ यूनिक थ्रेड आर्ट तैयार की जाती है जिसमें छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और इस कला को देख मंत्रमुग्ध सैलानी शेरों की तस्वीरें थ्रेड आर्ट से बनवाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस कला ने इलाके को न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि रोजगार भी बढ़ा है।
14: जूनागढ़ के गिर सासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गए, बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीले लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं।
15: लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज्यादा लायन ही चलता है क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है। तो लायन की छोटी से लेकर बड़ी तक, मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग, जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं।
14: कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है। यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात ये है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
15: 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा मित्र है सुरेश बा रूपारेलिया, जो काफी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है, और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं।
14: यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है। एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर सासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
17: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंची बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा, गढ़वाल के विश्वन पर्वत से शुरू होती यात्रा, कोट ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्री विशाल के दरबार में अब तक 3.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देश से ईंधन बचाने की अपील पर पीएम ने भी किया अमल, केवल 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पीएम मोदी, पीएम के काफिले में होती है 1.5 दर्जन गाड़ियां। 20 मई से शुरू होगा भारतीय सेना का अभ्यास प्रगति, मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ संयुक्त अभ्यास, 31 मई तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
0: शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर, सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा गुजरात के सासन गीर की दिव्य कला की भी हो रही है।
18: चारधाम की यात्रा में दिन पर दिन यात्रियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम व्यू पॉइंट खूब आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते यहाँ यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है और इससे यहाँ कारोबार भी अच्छा खासा फल फूल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, यहाँ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी भक्तों से भरा हुआ है, यहाँ हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, वहीं यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या 2 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो गंगोत्री धाम में भी मंगलवार 12 मई तक श्रद्धालुओं की संख्या 1,94,000 से अधिक पहुंच चुकी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास में चल रहा ये काम उसी तैयारी का हिस्सा है, चाहे बिल्डिंग की मरम्मत का काम हो या साफ सफाई का, सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के यहाँ ठहरने, बिजली पानी से लेकर भोजन समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का पूरा फोकस है, उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, जिसका जन प्रतिनिधि भी जायजा लेते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। अमरनाथ यात्री यहाँ पहुँचने के बाद आगे कश्मीर की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का हिल स्टेशन कौसानी और बैजनाथ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बागेश्वर जिले के इन 2 प्रमुख पर्यटन स्थल की प्राकृतिक छटा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से शाम को हो रही बारिश से यहां का मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं। कौसानी की शांत वादियों में घूमने के साथ ही पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही झील में नौकायान का रोमांच का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। गुजरात के जामनगर में गर्मी को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से रणमल तालाब स्थित पक्षी घर में पक्षियों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पक्षी घर में 481 से ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, जिनमें लव बर्ड, बजरीगर, टर्की, कॉकाटील, ईमू सहित कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक पिंजरे में फव्वारों की व्यवस्था की गई है, साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ रहने वाले इन देशी विदेशी पक्षियों को ज्यादा तापमान में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के खान पान, पीने के पानी की दुरुस्त व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासन गिर की एशियाई शेरों को लेकर एक अलग पहचान तो है ही, साथ ही यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों से दिव्य तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि इस कला के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सासन गिर में पिछले 20 से 25 साल से ये खास कला देखने को मिल रही है, जिससे लकड़ी के बोर्ड पर बड़ी संख्या में छोटी कीले लगाई जाती हैं और फिर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तस्वीरें तैयार की जाती हैं, जिसमें एशियाई शेरों की तस्वीरें पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उसे खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। शेरों के अलावा देवी देवताओं, संत महापुरुषों और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें भी इस आर्ट में बनाई जाती हैं, और अगर किसी खास तस्वीर या डिजाइन की डिमांड होती है तो वो भी तैयार की जाती है। तस्वीरों की कीमत 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है।
0: और अब बात गूगल मैप की, जो कि अब देगा जानलेवा मोड़ों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स का अलर्ट। जयपुर से दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड पर यात्रा कर रहे हैं तो आप एक क्लिक पर देख सकेंगे कि आगे कहां कहां दुर्घटना संभावित पॉइंट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि आप अलर्ट रहकर यात्रा कर सके। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही रेंज के सभी नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

0: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे तमाम कारणों से इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से लोग अब इसे एक्सप्रेसवे की जगह डेथवे यानी मौत का रास्ता तक कहने लगे हैं। लिहाजा राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है।
1: दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आए दिन होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। इसके तहत जगह जगह पर QR कोड लगाए गए हैं और उन QR कोड को स्कैन करने के बाद सफर करने वाले लोगों को इस हाईवे पर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उन ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह सुविधा गूगल मैप पर आने वाली है और इसके बाद जैसे ही वो गूगल मैप पर इस हाईवे की लोकेशन लगाएंगे उनको हादसों की जानकारी मिल पाएगी। इस हाईवे पर लेन सिस्टम लागू हो चुका है। लेन सिस्टम लागू होने के बाद सड़क हादसों में खासी कमी आई है, तो अब इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों के माने तो आगामी दिनों में सड़क हादसों में खासी कमी आएगी।
0: जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अलवर समेत जयपुर रेंज के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। वाहन चालकों को GPS और मैप के माध्यम से इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे वो सतर्क होकर वाहन चला सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी।
2: लेन सिस्टम का अभी हमने एक स्टडी किया था कि पिछले जो लास्ट के 8 महीने थे और अभी के जो 8 महीने जब लेन सिस्टम चला है इसके कंपैरिजन करने पे क्या फर्क पड़ा है एक्सीडेंट्स पे या डेथ्स पे या घायलों पे, तो उसमें बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। 40 डेथ कम हुए थे, 109 घायल कम हुए थे, तो 40 डेथ बहुत बड़ी बात होती है 8 माह में कम होना, और उसके साथ एक्सीडेंट भी लगभग 55 के आसपास कम हुए। इसको हम लोग जो कोटपुतली बैरोड जो दिल्ली अजमेर वाला रूट है उस पर अजमेर रेंज में बहुत गंभीरता से चला रहे हैं और एनी पे भी हमने शुरू किया है। अभी इसमें जो ITMS था उसमें पहले लेन ड्राइविंग का ऑफेंस नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी रिक्वेस्ट करके जुड़वा दिया है। हॉट स्पॉट्स जो थे उसके लिए हमने QR कोड जारी किया था जिसको स्कैन करने पर जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट आपको पहले दिख जाएंगे तो आप थोड़ा सावधान हो सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद ये सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको गूगल मैप पे अगर आप नेविगेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देंगे।
0: IG राहुल प्रकाश ने ये भी बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर सड़क किनारे वाहन खड़े कर इधर उधर चले जाते हैं जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। येलो जोन जहां पिछले 3 साल में 10 एक्सीडेंट हुए हों, ऑरेंज जोन जहां पिछले 3 साल में 10 से 20 एक्सीडेंट हुए हों, रेड जोन जहां पिछले 3 साल में 20 से ज्यादा हादसे हुए हों। मिशन सेफर रोड के तहत ब्लैक स्पॉट को मैप पर ऐड करने के लिए पुलिस ने गूगल को चिट्ठी लिखी थी जिस पर गूगल ने सहमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में इन्हें मैप पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन हाईवेज पर यात्रा के दौरान अगर मैप ऑन करेंगे तो ब्लैक स्पॉट नजर आएंगे और आपको अलर्ट भी मिलेगा। हाल ही में IG राहुल प्रकाश ने रेंज के सभी जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से सर्वे कराया था। इसमें 121 ब्लैक स्पॉट सामने आए जहां पिछले 3 साल में 1108 लोगों ने जान गंवाई। इन्हें दुरुस्त कराने के लिए इससे जुड़े विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इनमें रेड जोन वाले 6 स्पॉट्स हैं जहां 162 मौतें हुई, ऑरेंज जोन वाले 37 स्पॉट पर 475 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह येलो जोन वाले 78 स्पॉट पर 471 लोगों की जान जा चुकी है।
2: SP साहब दौसा और SP साहब अलवर दोनों लगातार इंचाई के संपर्क में हैं। अलवर SP साहब ने तो उनका एक मोबाइल लेकर के हाईवे मोबाइल भी विशेष तौर पर इन्हीं के ऊपर चला रखा है। SP साहब दौसा को भी अभी यही निर्देश दिए गए हैं कि वो भी संपर्क करके जो हाईवे मोबाइल एनएचआई के हैं उसमें पुलिस का जाप्ता लगा करके और उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखें जिससे कि जो अनुशासन है रोड का वो बना रहे।
0: लिहाजा लोगों को सतर्क करने के लिए पहले QR कोड की व्यवस्था शुरू की गई थी जिसे स्कैन करने पर सड़क के ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल जाती थी। अब पुलिस एक कदम आगे बढ़ते हुए इन ब्लैक स्पॉट्स को गूगल मैप पर मार्क कर रही है। इससे वाहन चालक नेविगेशन के दौरान नोटिफिकेशन और वॉइस अलर्ट के जरिए पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे किस कैटेगरी का ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है। तय लेन और स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर ऑनलाइन चालान होगा। इसके लिए पुलिस ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली लेन बाहरी वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी लेन मध्यम गति के वाहनों के लिए है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर चलेंगे। तीसरी लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए है, जिसकी स्पीड लिमिट रखी गई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही चौथी लेन ओवरटेकिंग या आपातकालीन वाहनों के लिए रखी गई है। हाईवे अथॉरिटी ने लेन ड्राइविंग नियमों के पोस्टर लगाकर जागरूकता बढ़ाई है और ओवर स्पीडिंग पर निगरानी के लिए कैमरे भी तैनात कर दिए हैं। पहले चरण में वाहन चालकों को इस सिस्टम की जानकारी दी गई थी और अब चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों के अनुसार पहले एक्सप्रेसवे पर किसी भी लेन में कोई भी वाहन चलने लगता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी की गई कटौती। चलिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल परीक्षा में कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं, ये पिछले साल से 3% कम है। 2026 के रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। नतीजों के मुताबिक कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं, वहीं 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50% की कटौती की है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार में बिहार सहित दूसरे राज्यों के 15 से अधिक कॉलेजों के 280 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी तकनीकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। इसमें कुल 14 तकनीकी और गैर तकनीकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, टेक क्विज, गेमिंग, डिजाइनिंग और अन्य कई आकर्षक इवेंट्स शामिल रहे।
3: और अब बात गोल्ड के स्मार्ट ऑप्शन की। सोना यानी कि गोल्ड की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल सोना नहीं खरीदने की अपील की है। तो अगर आप भी सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सोने के गहनों का विकल्प मौजूद है। जयपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में मौजूद है, जो लोगों को लुभा रहे हैं, लिहाजा इन ज्वेलरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई है।

0: ईरान और अमेरिका युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में सोना न खरीदने की अपील का असर अब दिखने लगा है। लिहाजा लोगों ने अपना फैशन ट्रेंड बदल दिया है ताकि उनके स्टाइल और टशन में कोई कमी न आए। ऐसे में अब लोगों की नजरें उस विकल्प पर आकर टिक गई हैं जो स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली और सुरक्षित हो। ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड का सबसे स्मार्ट, सुंदर और किफायती ऑप्शन बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसा लुक भी देती है और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती।
1: जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सारी बाहर मार्केट में डिस्प्ले में आ चुकी है। जयपुर के बापू बाजार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप्स है वहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। हर कोई अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमाइज़ करवाने के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि वो अपने तरीके से, अपनी जो आउटफिट्स हैं उसके हिसाब से ज्वेलरी लें। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रोज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अभी होते हैं। सोना चांदी की जो रेटें हैं वो लगातार अभी चढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचत हो रही है, ऑप्शंस वो मल्टीपल ले पा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आर्टिफिशियल और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है क्योंकि ये कम बजट में मिल जाती है, साथ ही रॉयल लुक और ट्रेंडिंग होने से लोगों को ज्यादा लुभाती है।
2: मैम, मेरी खुद की वेडिंग है तो मतलब मेरे को अभी मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से आई डोंट वांट टू गो फॉर गोल्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ लगता है बिकॉज गोल्ड से बेटर आप आर्टिफिशियल भी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल टू, एंड आप देख के जज नहीं कर पाओगे कि हम ये ले रहे हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली।
3: जैसे ये अपने जड़ाऊ सेट्स, इसकी मैरिज का हो जाएगा, कुंदन ज्वेलरी है जो इसकी सगाई पे काम आएगी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पहन सकती है, और ये बिल्कुल रियल गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल लुक कहीं से देगा। मेरी बेटी बहुत खुश है कि उसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत कम बजट में हो रहा है। मैं भी

0: ट्वेंटी खरीदने लगे हैं क्योंकि इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड की, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कैरी करने के लिए भी अच्छी है, कहीं जाने आने के लिए भी अच्छी है और शादी ब्याह के लिए भी अच्छी है, तो इसका मार्केट तो बहुत अच्छा ही है।
1: और इसका क्योंकि गोल्ड ऐसा होता है कि उसका रंग कभी भी नहीं,
0: हाँ जी हाँ जी नहीं, ये भी अच्छी रहती है क्वालिटी इसकी, लॉन्ग लास्टिंग है, आप तीन तीन चार चार साल पहनी, कुछ खराब नहीं होती है ये ना, तो इट्स गुड। हाँ तो बहुत डिफरेंस है जमीन आसमान का, यहाँ हजार दो हजार में सेट आ जाता है, वहाँ लाख दो लाख में आता है, ये फर्क तो आता ही है।
2: फैशन एक्सपर्ट्स ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेन स्ट्रीम फैशन स्टेटमेंट होंगे।
3: आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक तो डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं, और दूसरा सेफ रहता है ट्रैवल में, अगर हम जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पे सेफ लगता है, और घूम भी गया तो भी कुछ नहीं लगता। और सोना अभी जो रेट बढ़ा है बहुत टू मच, मतलब ऐसा मन भी नहीं करता।
2: ये वक्त स्मार्ट बनने का है, ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है, ये न सिर्फ आपकी चमक बढ़ाएगी बल्कि जेब खाली होने से भी बचाएगी।
4: बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है कि वो रियल गोल्ड हो या ब्रास हो, किसी को फ़र्क पता नहीं चलेगा। और सबसे ख़ास बात कि ये जो ब्रास है ये आपके शरीर पे इस तरीके से पहनेंगे तो ना ही ये टार्निश होगा लंबे समय तक, साथ ही साथ में ये जो एंटी एलर्जिक मेटल है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी समय तक पहन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आप अपनी ज्वेलरी कैरी करते हैं, आप कहीं पे आप उसको लॉक करके रखते हैं, तो अगर प्रॉपर लॉकर नहीं हो तो भी आप सेफ हैं, आपको डर नहीं है क्योंकि सेफ रहेगी, रियल ज्वेलरी नहीं है, रियल दिखने वाली बिल्कुल है, लुक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो डर कोई बना नहीं रहेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन हार्म नहीं हो रही है। बहुत सारे प्रोज जो हैं वो अभी इस समय पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि अभी एक बार के लिए रुक जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोई भी शादी हो तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस समय में मार्केट में अवेलेबल होने लग गए हैं, जो कि एक मैं मानती हूँ फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ जयपुर।
5: संजय दत्त की नई फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, इसके साथ ही ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड।
6: बट व्हाट अबाउट 1975 इमरजेंसी?
7: भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
6: आपके लीडर्स इंडिया।
8: संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हुई पास। CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, यानी ये फिल्म 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए है। इस बात की ओर ये इशारा है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले मुद्दे गंभीर और संवेदनशील हो सकते हैं।
6: आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट।
9: अरे ये डिबेट विबेट भान की सोचे विकी डिबेट।
8: ये फिल्म 15 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अभिजीत मोहन निर्देशित फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नवाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी हैं।
10: सच बनाना होता है।
9: अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज कल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते।
8: एक ऐसी फिल्म जिसका नाम अभी भले ही सामने नहीं आया है, लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर ये अनटाइटल्ड फैमिली एंटरटेनर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अनीस बज्मी को इस फिल्म के लिए दिलराजू साथ लेकर आए हैं। अनीस बज्मी निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ राशि खन्ना भी अहम भूमिका में दिखेंगी। विजय राज और सुदेश लहरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा शेड्यूल हाल ही में केरलम में पूरा हुआ है। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। इवेंट के आगाज में कई सेलेब्स की स्टाइल और ग्लैमर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट लूट ली। रेड कार्पेट पर पीच कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आलिया ने वॉक करते हुए शानदार लुक दिया। आलिया के अलावा उर्वशी रौतेला ने भी इस इंटरनेशनल इवेंट में लगातार 5वीं बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और फैशन आइकॉन्स के साथ हर साल भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी साफ बता रही है कि फैशन और सिनेमा दोनों में ही इंडियन आर्टिस्ट अपनी खास पहचान बना रहे हैं। इस इवेंट में AI का जलवा भी देखने को मिल रहा है। AI रोबोट्स अपने शानदार मूवमेंट, इंटरेक्टिव स्टाइल और हैरतअंगेज कलाबाजियों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
5: न्यूज पथ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक बच्चा नदी में उतरकर पानी में खेल रहा है, वहीं पास में सीढ़ी पर उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कपड़ों से बनी हुई रस्सी को बच्चे के शरीर पर बांधा हुआ है और दूसरा छोर पकड़े हुए बैठी है। बच्चे मजे से पानी में खेल रहे हैं और वहीं माँ उसकी रक्षा कर रही है। अब ये वीडियो कब और कहां का है ये तो नहीं पता चल पाया, मगर वीडियो बता रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में कितना सोचती है। वो कहते हैं ना, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। वीडियो में एक शख्स अपने तबले के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ उसका पालतू डॉगी भी है। तभी बैकग्राउंड में एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग की आवाज गूंजती है। इसके बाद ये शख्स इस गाने के साथ तबले की थाप पर इस कदर मिक्स करता है कि लोग दाद देने से नहीं चूक रहे हैं। भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है और ना ही किसी कपड़े के शोरूम से निकली है। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर खुद रुक गए।
1: यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये उनकी गाड़ी तैयार की है, तो छोटे बच्चे डर गए
0: और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगी हुई है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक बच्ची नजर आ रही है और वो बच्ची फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बच्ची मैगी बनी हुई है, सिर पर क्राउन है जिस पर मैगी लिखा हुआ है और वहीं उसका ड्रेस नूडल्स जैसे डिजाइन में है। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि स्कूल में आयोजित कॉम्पिटिशन का थीम शायद खाने पर रखा गया होगा, क्योंकि वीडियो में एक दूसरा बच्चा भी दिखता है जो फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है।
2: न्यूज़ पथ के सफर में रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आज अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। इन कीमतों में के बढ़ने की वजह केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 और 1 किलो चांदी की कीमत 22,000 रुपए बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,000 तक पहुंच गया और 1 किलो सोने चांदी का भाव 2,99,000 रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने फैसला अमेरिकी और ईरान के जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के मद्देनजर लिया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। दरअसल भारत में लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे विदेश से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाने लगता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जब सरकार टैक्स या फिर ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी कि भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले से आपको महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी अब कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने भी सराफा व्यापारियों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
4: The music you love is all right here on TuneIn. Bring

0: you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे